0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वर रंजनी, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में। आज आपने सुना गोपाल कृष्णा का सितार वादन राग ललित। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और उनके चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा की भावना विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस पर हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। इसके अलावा उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। कॉलेज की स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई के एक दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो इंडिया वॉल्स में शामिल होंगे। ये हृदय से जुड़ी बीमारियों के इलाज को बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि सम्मेलन में ब्रिक्स सदस्य और सहयोगी देशों के मुख्य न्यायाधीश और वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी भाग ले रहे हैं।
2: भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने रूस, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका, ईरान और उज्बेकिस्तान सहित कई देशों के न्यायिक प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। इन बैठकों में देशों के बीच न्यायिक सहयोग को मजबूत करने, न्यायपालिका की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को एकीकृत करने, तेजी सैनिक प्रक्रियाएं पूरी करके लोगों के बीच संबंध बेहतर करने और अलग अलग देशों के बेहतरीन कानूनी तौर तरीकों पर चर्चा की गई। अनुपम मिश्र के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। वहीं चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। भारत आगे भी नेपाल की जरूरत के अनुसार मदद जारी रखेगा।
3: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
4: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
3: And recovery efforts in the country.
1: महिला क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। उधर विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रखे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स की जोड़ी आज चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया की जोड़ी के साथ खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 6:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 20 सेकंड और अब समय हुआ है भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, नमस्कार, सुप्रभात। तो आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। और श्रोताओं, अब समय हुआ है चिंतन का। चिंतन में आज आप सुनेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के प्रसंग।

यह घटना उस समय की है जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मद्रास स्कूल के छात्र थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बालपन से ही बेहद कुशाग्र एवं तीव्र बुद्धि के थे। उनकी कम उम्र में ही उच्च स्तर की गतिविधियां व कार्यकलाप प्रत्येक व्यक्ति को हैरानी में डाल देते थे। एक बार स्कूल में उनकी कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहे थे। अध्यापक बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हें धर्म के विषय में बताऊंगा। आखिर हर विद्यार्थी को यह ज्ञात होना चाहिए कि धर्म का क्या उद्देश्य होता है। धर्म और शिक्षा भारतीय संस्कृति को मजबूत करते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। अध्यापक बोले, आप मुझे बताएं कि धर्म का क्या उद्देश्य है, धर्म का क्या अभिप्राय है। अध्यापक की बात सुनकर एक विद्यार्थी बोला, सर, धर्म का अभिप्राय है पूजा करना। इसके बाद दूसरा विद्यार्थी बोला, सर, धर्म हमें सुख और शांति प्रदान करता है। अब तीसरे विद्यार्थी ने कहा, सर, धर्म का अभिप्राय है ईश्वर में गहरी आस्था और शुद्ध व सात्विक मन से नियमित रूप से ईश्वर की आराधना करना। इसके बाद अध्यापक डॉक्टर राधाकृष्णन से बोले, बेटा, अब तुम बताओ। डॉक्टर राधाकृष्णन अपने स्थान पर खड़े हुए। वह बोले, सर, धर्म हमें सिखाता है कि हमें जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए, अशिक्षितों को पढ़ाना चाहिए और जो अनाथ हैं उन्हें भरपूर प्यार देना चाहिए। वास्तव में ऐसे काम करना ही धर्म का उद्देश्य है और यही असली पूजा है। नन्हे से बालक के मुंह से यह बात सुनकर अध्यापक दंग रह गए। उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वे सभी विद्यार्थियों से बोले, देखना, यह बच्चा एक दिन भारत का नाम अवश्य रोशन करेगा। जो बालक अभी से धर्म के बारे में गूढ़ ज्ञान रखता है, वह आगे भी इस देश को नई रोशनी दिखाएगा। अध्यापक की बात आगे चलकर सच साबित हुई। यही बालक राधाकृष्णन अध्यापक की बात को ध्यान में रखते हुए अपनी योग्यता और प्रतिभा से आगे बढ़ते रहे और अपने अध्यापक

बात पर खरे उतरे। वे देश के दूसरे राष्ट्रपति बने। डॉक्टर राधाकृष्णन भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद, महान दार्शनिक और एक आस्थावान विचारक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। राजनीति में आने से पहले उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्ष शिक्षक के रूप में व्यतीत किए थे। उनमें एक आदर्श शिक्षक के सारे गुण मौजूद थे। उन्होंने अपना जन्मदिन अपने व्यक्तिगत नाम से नहीं बल्कि संपूर्ण शिक्षक जगत को सम्मानित किए जाने के उद्देश्य से शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा की थी। उनके जन्मदिवस 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के प्रसंग। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब आप सुनेंगे रामचरितमानस पाठ में अयोध्या कांड का भाग 39वां।

निषाद राज को अनेक प्रकार से समझा बुझाकर श्री राम ने उन्हें अपने घर लौट जाने को सहमत किया और आप लक्ष्मण तथा सीता समेत गहन वन की ओर चले। राह में उन्हें अनेक वनवासी मिलते हैं जिन्हें दोनों भाइयों के रूप स्वरूप में राज चिन्ह देखकर बड़ा सोच होता है। ऐसे राजसी लक्षणों वाले कुमार तापस वेश में वन में पैदल चले जा रहे हैं, ये देख वनवासियों को ज्योतिष शास्त्र भी असत्य प्रतीत होता है। वनवासी उन्हें रास्ता दिखाने बताने को अनायास ही प्रेरित हो जाते हैं। आज्ञा चाहते हैं कि जहां तक उन्हें जाना है वहां तक पहुंचाकर उन्हें प्रणाम कर वे वापस लौट आएंगे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता की आंखों में प्रेम के आंसू उमड़ आते हैं। कृपा सिंधु उनसे विनय भरे वचन बोलकर उन्हें लौटा देती हैं, किंतु वन में यहां वहां बसे गांव और पूर्वों के बालक, वृद्ध, नर नारी, किशोर किशोरियां बार बार उनके दर्शनों को दौड़ते आते हैं और नाना प्रकार से उनकी सहायता कर अपना प्रेम दर्शाते थकते नहीं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से अपने ज्ञान को लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शिक्षकों से विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और जिज्ञासा विकसित करने का आग्रह किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों से योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहे हैं जो देश की नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश और 6 केंद्रीय संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज चेन्नई में इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व पंजिका का विमोचन भी करेंगे। उपराष्ट्रपति वेल्लूर कोट्टम में दिनामलर समाचार पत्र के प्रकाशन के 75 वर्ष पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ग्रस्त त्रिशूली बाजार इलाके से 3 और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला गया है। इनमें 5 साल का बच्चा भी शामिल है। सुरक्षित निकाले गए भारतीयों की संख्या 169 हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 275 भारतीय अब भी लापता हैं। चीन से 1907 भारतीय सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। उन्होंने बताया कि भारत ने नेपाल में बाढ़ के बाद अब तक लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है।
1: We have extended our solidarity and support to the government and people of Nepal.
2: हमने नेपाल सरकार और वहाँ की जनता के प्रति अपनी एकजुटता और समर्थन व्यक्त किया है। एक करीबी मित्र और साझेदार के रूप में भारत ने तुरंत सहायता पहुँचाई और हम नेपाल के पुनर्निर्माण और राहत के प्रयासों में लगातार सहयोग करते रहेंगे।
1: And recovery efforts in the country.
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत, रूस और यूक्रेन दोनों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ऐसे सुझावों पर विचार कर रहा है जिनसे युद्ध कम करने या समाप्त करने में सहायता मिल सके। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। युद्ध से केवल जान माल का नुकसान होता है और दुनिया पर आर्थिक बोझ पड़ता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि युद्ध समाप्त करने के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमरीका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। यह देश 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वहीं पाकिस्तान ने अब तक केवल 1 मैच खेला है और उसमें थाईलैंड को हराया है। पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 1 और अंक की आवश्यकता है। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता 9 सितंबर तक चलेगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renu Kataria. President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers' Day today, the president said teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through the guidance and mentorship. Teachers' Day is observed every year on 5th of September to mark the birth anniversary of Dr. Radhakrishnan, a renowned educationist, author, philosopher and former president. The occasion honors the vital role of teachers and educators in nation building. On the occasion, President Murmu will confer the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories and 6 central government organizations. She will also present national awards to 21 teachers and faculty members from higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of the country's premier institutions of higher education. Established in 1926 by eminent industrialist and philanthropist Sir Sri Ram, the college has, over the past century, nurtured generations of scholars, professionals, administrators, entrepreneurs, policymakers, and nation builders. External Affairs Minister S. Jaishankar said India is in continuous touch with both Ukraine and Russia. He said New Delhi is exploring ideas and suggestions that could help mitigate or end the conflict. Dr. Jaishankar made the remarks while addressing a joint press conference with Poland's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radoslaw Sikorski following their talks in Warsaw yesterday. The External Affairs Minister reiterated that India believes that endless war must give way to an end to war. He said wars have no winners and only lead to more deaths, destruction and global costs.
4: India believes that endless war must give way to an end to war. These are wars without winners. Every additional day means more death, more destruction, more loss to the parties themselves, and more cost to the rest of the world.
3: The External Affairs Ministry has said three more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing border updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. The spokesperson said India has supplied around 95 tons of relief material to Nepal since the devastating flash floods hit the country on the 26th of last month. The National Testing Agency has released admit cards for candidates appearing for UGC NET June 2026 in

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, और अब समय हो चुका है गीतों भरी गुड मॉर्निंग का। गीतों भरी गुड मॉर्निंग लेकर आपके साथ हूँ मैं कुसुम। और लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बहुत ही सुंदर मन को मोहने वाले गीत के साथ, सत्यम शिवम सुंदरम फिल्म से, आवाज़ मुकेश की।

सुबह का समय है और बहुत ही खूबसूरत दिल्ली का मौसम हो रहा है। बाहर बौछार है अभी, लेकिन लगता है थोड़ी देर में बहुत तेज बारिश आने वाली है, या कह सकते हैं मौसम का मूड बदल जाए। लेकिन हम अपना मूड बनाएंगे जरूर, बारिश आए या ना आए, क्योंकि भाई हमें तो अपने मूड को अच्छा रखना है। कल इतना अच्छा दिन था, श्री कृष्ण जन्माष्टमी का, और हमने अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पूजा अर्चना की होगी और इस दिन को मनाया होगा। और अगला दिन यानी कि आज की सुबह तो और भी खूबसूरत लगेगी, क्योंकि भाई एक जन्म हो चुका है और दूसरी तरफ अगली सुबह हो चुकी है। तो इस दिन को हम बहुत ही अच्छे से गीत के साथ में सेलिब्रेट करना चाहेंगे, और हमें जो है किसी भी

मौसम के आने जाने से फर्क तो पड़ता है, लेकिन उतना नहीं पड़ना चाहिए जितना हमारे मन को फर्क पड़ता है। तो अपने मन को समझाइए और मौसम के रंग में रंग जाइए, जैसा अभी है। और मुझे लगता है बहुत ही तेज बारिश होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो हम अपने मन में मान लेते हैं और गीतों के जरिए बारिश का इंतजार करें, बुलाएं या फिर क्या कहें, सुन लेते हैं इस गीत के साथ और गुनगुनाते भी हैं।

कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ बहुत मजा आया होगा आपको, क्योंकि अपने शब्दों में बुलाना किसी को, उसका आनंद ही कुछ और होता है। देखिए, हम जहाँ भी रहें, चाहे यहाँ रहें या आपके दिल में रहें या अपने दिल में आपको रखें, मतलब आप कहेंगे भाई ये तो एक मतलब क्या कहना चाहते, रहते तो हम सभी हैं एक दूसरे के दिल में। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक सोचा आपने। सुबह का समय है ना, मन उड़ान भरा है, इतना खुश है क्योंकि मौसम को देखकर बहुत अच्छा लगता है और मन भी अलग अलग तरह से उड़ान भरने लगता है। सोच जो है अलग अलग तरह से उड़ान भरती है। आप भी जहाँ बैठे होंगे सोच रहे होंगे आज क्या करना चाहिए, कल तो बहुत अच्छा दिन भी था, मौसम भी था, तो आज मौसम तो अच्छा हो गया लेकिन करना क्या चाहिए। भाई कुछ इस तरह के गीत गुनगुनाएं, अपने लिए नहीं, अपने सभी देशवासियों के लिए, अपने देश के लिए, जिससे कि आपको लगे हाँ कुछ अलग कुछ नया किया तो सही, लेकिन अपने लिए, अपनों के लिए, चाहे गीत में ही सही, गुनगुना लेते हैं अपने, आपसे प्यार कर रहे हैं, आपसे भी प्यार भरी बातें कर रहे हैं, अब देश के लिए हम प्यार भरा गीत भी सुन लेते हैं।

वाकई जब अपने देश से प्यार करने की कोई भी शब्द, कोई भी गीत, कोई भी बात आती है ना, तो एक मन में अलग ही उल्लास होता है, अलग ही खुशी मन में आ जाती है और एक बहुत ही बहुत अच्छा उत्साह मन में पैदा हो जाता है, जिससे कि ऐसा लगता है क्या करें क्या ना करें, उछलना कूदना, अपनी खुशी को जाहिर करना, मतलब ऐसा क्या कर दें कि हमें हम इस अपनी जो खुशी को जाहिर कर पाए। तो भाई इसको जाहिर करने के लिए हम वही एक ही तो हमारे पास रेमेडी है अभी, क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है गीतों भरी गुड मॉर्निंग, और गीतों भरी गुड मॉर्निंग में हम अपने आप को गीतों के साथ गुड मॉर्निंग में सराबोर कर रहे हैं और ऐसे ऐसे गीत सुन रहे हैं जिससे कि मन में वो सारी बातें आएं जो हम गीतों के जरिए कहना चाहते हैं, और गीत भी वही चला रहे हैं जो हम अपने मन की बात कर रहे हैं, मतलब रेसिप्रोकल कह सकते हैं, दोनों तरह से है गीत ही, है ना, हमारे शब्दों में, हमारी बातों में और हमारे काम में। तो चलिए कार्यक्रम का समय भी समाप्त हुआ जाता है आज के इस कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग से। दीजिए अपनी दोस्त कुसुम को इजाजत, लेकिन जाने से पहले छोड़े जाते हैं आपको हेमा सरदेसाई की आवाज में इस गीत के साथ, फिल्म जग दे से।

अंग्रेजी और उर्दू में समाचार का। तो बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। अभी आप सुन रहे थे गुड मॉर्निंग गीतों भरी, गुड मॉर्निंग जी हाँ। और अब सुनते हैं पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी और फिर उर्दू में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े सुरक्षा नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण अहमदाबाद में आज से शुरू और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने और चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
1: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल शाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की। श्री जोशी ने कहा कि शिक्षकों को बच्चों को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और उन्हें हर क्षेत्र में सक्षम बनाने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। पिछले 100 वर्ष में इस संस्थान ने कई विद्वान, पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली प्रतिभाओं को तैयार किया है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज चेन्नई इंडिया वॉल्व सम्मेलन में शामिल होंगे। यह हृदय से जुड़ी बीमारियों का उपचार बेहतर बनाने पर केंद्रित एक राष्ट्रीय शैक्षणिक सम्मेलन है। उपराष्ट्रपति गिंडी में इंडिया वॉल्व्स पंजिका का विमोचन भी करेंगे। सरकार ने ISO टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। इसके अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले ISO टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। आवेदन पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा और इसके साथ जरूरी तकनीकी और सुरक्षा दस्तावेज जमा कराने होंगे। मंत्रालय ने मसौदे पर 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। प्राप्त सुझावों पर विचार करने के बाद नियमों में बदलाव किया जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर सुरक्षा और तैयारियां की जा रही हैं। आज मोटर कारकेड का पूर्वाभ्यास किया जाएगा। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास सवेरे 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। यातायात पुलिस ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह दी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वॉर्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री रादोस्लाव सिरोस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
5: India believes that endless war.
6: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
0: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और उनके दामाद जेरेड कुशनर रूस और यूक्रेन का दौरा करेंगे। दोनों का उद्देश्य रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए शांति समझौते की कोशिश करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
7: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी expert@AIRNewsHindi और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की आशंका है। लखनऊ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में भी कई जिले बाढ़ से जूझ रहे हैं।
8: राज्य में अयोध्या, वाराणसी, आजमगढ़, बलिया, गोरखपुर, लखीमपुर खीरी, चित्रकूट और बाराबंकी सहित 26 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। बाढ़ राहत आयुक्त के मुताबिक लगभग 3.5 लाख से अधिक आबादी बाढ़ से प्रभावित होने के बावजूद राहत और बचाव तंत्र की सक्रियता से लगभग 72,000 बाढ़ राहत किट और 3.5 लाख से अधिक प्रभावितों को लंच पैकेट वितरित किए जा चुके हैं। इसके अलावा 17,000 से ज्यादा लोगों को बाढ़ शरणालयों सहित सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और निचले इलाकों में पानी भरा हुआ है।
9: आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार 8,50,000 से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। पशुपालन विभाग के अनुसार करीब 70,000 पशु भी प्रभावित हुए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों की सुविधा के लिए 700 नावों का परिचालन किया जा रहा है। वहीं बाढ़ राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घर भी संचालित किए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में गंगा और सोन नदियों के जलस्तर में कुछ कमी आने की संभावना है। हालांकि पटना में पुनपुन नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण गया पटना रेलखंड पर रेल परिचालन प्रभावित हुआ है। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व कल पूरे देश में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज महाराष्ट्र में धूमधाम से मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
10: मुंबई और आसपास के जिलों में दही हांडी भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा एक पारंपरिक उत्सव है। इसमें गोविंदा मानव पिरामिड बनाकर मिट्टी के हांडी फोड़ते हैं। इस उत्सव के दौरान कुछ गोविंदा कभी कभी चोटिल हो जाते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए बीएमसी ने अस्पतालों को पूरी तरह तैयार रहने और घायल गोविंदाओं को मुफ्त उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने 1,60,000 गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की है। अस्पताल में भर्ती होने, स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता की स्थिति में 1,00,000 से 10,00,000 रुपए तक का बीमा लाभ दिया जाएगा। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: विश्व तीरंदाजी पैरा श्रृंखला का तीसरा चरण आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू होगा। इसमें 19 देशों के 105 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। भारत पहली बार इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल शाम प्रतियोगिता का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि भारत आने वाले वर्षों में खेलों का प्रमुख केंद्र बनेगा।
11: 19 देशों से 108 से ज्यादा पैरा एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं उस वक्त कि अहमदाबाद, गुजरात और भारत आने वाले दिनों में खेल जगत के, चाहे वो ओलंपिक्स से जुड़े हुए खेल हो, सभी प्रकार के खेल का ये बहुत बड़ा सेंटर बनने वाला है।
0: एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। ये मैच दुबई में रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
12: धन्यवाद मुकेश। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन US उपग्रह के सफल प्रक्षेपण की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने लिखा है, इसरो ने अंतरिक्ष में स्थापित किया तीसरा नेत्र। जनसत्ता की सुर्खी है, देश के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण, इसरो की एक और कामयाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो और उद्योग जगत की साझेदारी को अंतरिक्ष क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया। कहा, हमारे देश के लिए गर्व का पल। दैनिक जागरण के अनुसार, प्रधानमंत्री जिस प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, उसकी 6 महीने तक होगी निगरानी। कुछ घटनाओं से सीख लेकर NHAI ने कार्यक्रमों की SOP में जोड़े नए दिशा निर्देश। दैनिक भास्कर ने शिक्षक दिवस पर विशेष सुर्खी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विशेष लेख साझा करते हुए लिखा है, विजेता होते हैं शिक्षक, लेकिन शिष्य से पराजित होने की शिक्षा उन्हें महान बनाती है। पंजाब केसरी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी के लेख पर विकसित भारत के सफर में शिक्षकों की भूमिका देते हुए लिखा है, ये दिन सिर्फ सराहना करने के दिन से कहीं ज्यादा मायने रखता है। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। मथुरा में रात 12 बजते ही हर तरफ उल्लास और हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की का उत्साह देखने को मिला। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, ब्रज में बाजे बधाई, नंद घर आई कन्हाई। नवभारत टाइम्स ने चमत्कार शीर्षक से दिया है, नेपाल में सुरंग से 9 दिन बाद 2 को जिंदा बचाया, जन्माष्टमी पर सुरक्षित निकाले गए। फोरमैन संजय शाह ने कहा, हरे कृष्ण महामंत्र जपता रहा। अमर उजाला की सुर्खी है, सुरंग में गूंजा जिंदगी का मंत्र। राजस्थान पत्रिका ने बदलेगी गैजेट की दुनिया देते हुए लिखा है, बेकार जाने वाली गर्मी से भी बनेगी काम की बिजली।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस पर शिक्षकों से प्रौद्योगिकी अपनाने और नवीन शिक्षण पद्धतियों को लागू करने का आग्रह किया। 48 शिक्षकों को आज राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में

0: राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल की अनुमति तथा कड़े नियमों का प्रस्ताव रखा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, भारत संघर्ष समाप्त करने में यूक्रेन और रूस के साथ निरंतर संपर्क में है। संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीका का सटीक आकार दर्शाने वाले नए विश्व मानचित्र को अपनाने के पक्ष में मतदान किया। और दुबई में महिला T20 एशिया कप क्रिकेट में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी।

0: The animal husbandry department, around 70,000 animals have also been affected. For the convenience of the people in the flood affected areas, 700 boats are being operated. According to the water resources department, the water levels of the Ganga and Son rivers are likely to recede somewhat over the next few days. However, in Patna, the rising water level of the Punpun river has affected train operations on the Gaya-Patna rail section. Savita Parikh, Akashvani News, Patna.
1: In Maharashtra, the Dahi Handi festival is being celebrated with great enthusiasm today. The festival is associated with Sri Krishna Janmashtami. On the occasion, young participants known as Govindas form tall human pyramids to reach and break an earthen pot filled with curd, milk or butter suspended high in the air, reenacting the childhood mischief of Lord Krishna. A report.
2: In Mumbai and some neighboring areas, Dahi Handi is a traditional celebration associated with the birth of Lord Krishna. The festival witnesses Govindas forming multi-tiered human pyramids to break earthen pots. In view of possible injuries, the BMC has directed its hospitals to remain fully prepared and provide free treatment to injured Govindas. Meanwhile, the Maharashtra government has announced insurance cover for 1,60,000 Govindas. Benefits ranging from 1 lakh to 10 lakh will be provided in case of hospitalization, permanent total or partial disability. Prarthana, Akashvani News, Mumbai.
1: On to sports now. The World Archery Para Series 2026 begins at Ahmedabad in Gujarat today. The event brings together 105 athletes from 19 countries. It is the first time India is hosting the World Archery Para Series. The third stage of the series is being held at the Sabarmati Riverfront in Ahmedabad and will continue till the 9th of this month. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah virtually inaugurated the event last evening. Addressing the gathering, Mr. Shah said India is moving towards becoming a global sporting hub.
3: More than 108 para-athletes from 19 countries are participating at this time. I am going to tell everyone that Ahmedabad, Gujarat and India in the coming days, whether it is a sports related to the Olympics, sports related to the Paralympics or other competitions, is going to become a very big center for all types of sports.
1: In women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian Standard Time. India have already secured a place in the semi-finals after recording a convincing victory over Thailand and Hong Kong in the previous two matches. Last night, host United Arab Emirates defeated Indonesia by 6 wickets at the Dubai International Stadium. The India Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeastern states, Bihar, Madhya Pradesh, Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, Sikkim, Bengal and Uttar Pradesh for the next 2 days. National capital received light to heavy rain in different parts yesterday. The weather department has predicted similar weather conditions today as well. And now, for a look at today's newspapers, it's over to Renu Kataria.
4: Thank you, Saira. GSLV successfully places advanced eye in the sky in orbit, writes the Statesman, while the Tribune headlines, India gets eye in the sky as ISRO launches first imaging satellite into orbit. The Asian Age headlines, Yogi warns against bids to harm India, flays opposition. The Pioneer writes about Manjeet Singh Bedi, who was arrested in Punjab. The headline says, FBI's most wanted fraudster arrested in Punjab. The Indian Express writes, Corps commander set to meet Chinese counterpart in Northeast. The Hindu reports, 2 rescued from Nepal tunnel after 9 days. The Asian Age carries a beautiful picture of Sri Krishna Janmasthan temple compound in Mathura, all lit up and devotees thronging the temple on Janmashtami. And finally, award for teacher who turned kids into tutors. The Times of India writes about geography teacher Rajesh Bordoloi, who gives his students, mostly first-generation tribal learners, a daily assignment that goes beyond textbook teaching methods to teach their mothers to read, make UPI payments, access online banking and navigate digital services. And with that, it's back to you, Saira.
1: Thanks, Renu. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu urges teachers to embrace technology and adopt innovative teaching methods on Teachers' Day. to confer national awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. Prime Minister Modi to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Government proposes 3-year permissions and tighter safety rules for importing and transporting petroleum in ISO tank containers. External Affairs Minister S. Jaishankar says, India in continuous touch with Ukraine and Russia to help end the conflict. UN votes to adopt new world map reflecting accurate size of Africa. Stage 3 of World Archery Para Series begins at Ahmedabad in Gujarat. And in women's cricket, India to take on arch rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the morning news. Have a great day.
5: Akashwani se pesh hai khabarnama. आदाब। खबरनामे के साथ मैं असदुल्ला। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असाज़ा से जोर देकर कहा है कि वो योम असाज़ा के मौके पर टेक्नोलॉजी को अपनाएं और तदरीसी के इख्तराई तौर पर इख्तियार करें। वो आज सुबह नई दिल्ली में स्कूल के 48 असाज़ा को कौमी अवार्ड अदा करेंगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात से खिताब करेंगे। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 साल इजाजत हासिल करने और सख्त हिफाजती जाब्तों की तजवीज रखी है। वजीर खारजा एस जयशंकर ने कहा है कि भारत तनाजे को खत्म करने में मदद देने के लिए लगातार यूक्रेन और रूस के राबते में है। अक्वामे मुत्तहिदा ने एक ऐसा नया आलमी नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है जिससे अफ्रीका के सही रकबे का पता चलता है। तीरंदाजी की आलमी पैरा सीरीज का तीसरा मरहला गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रहा है और खवातीन क्रिकेट में T20 एशियन कप के ग्रुप ए का फाइनल मुकाबला भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान के दरमियान होगा। ये मैच आज रात दुबई में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असातिज़ा और मुअल्लिमीन से कहा है कि वो अपनी मालूमात में लगातार इजाफा करते रहें, टेक्नोलॉजी से वाकफियत हासिल करते रहें और तदरीस के इख्तराई तरीके इख्तियार करते रहें। सदर जमहूरिया ने आज असातिज़ा के दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि असातिज़ा और मुअल्लिमीन अपनी रहनुमाई व सरपरस्ती से सलाहियतों की आबियारी और किरदार को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा करते रहें। उन्होंने कहा कि खुद को वक्फ कर देने और तलबा का ध्यान रखने वाले असातिज़ा उनकी मुनफरिद सलाहियतों को पहचान कर उन्हें तहरीक दे सकते हैं और महारत हासिल करने में उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं। एक रिपोर्ट।
6: यौम असातिज़ा हर साल 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर मनाया जाता है, जो एक मारूफ माहिर तालीम, मुसन्निफ, फलसफी और सदर जमहूरिया थे। इस मौके पर मुल्क की तामीर में असातिज़ा और मुअल्लिमीन के रोल की अहमियत को उजागर किया जाता है। इस मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में स्कूलों के 48 असातिज़ा को कौमी अवार्ड से नवाजेंगी। इस असातिज़ा को 27 रियासतों, मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम 7 इलाकों और मरकज़ी हुकूमत की 6 तंजीमों से मुंतखब किया गया है। सदर जमहूरिया आला तालीमी इदारों और पॉलीटेक्निक इदारों के 21 असातिज़ा और फैकल्टी अरकान को भी कौमी अवार्ड्स अता करेंगी। न्यूज डेस्क से खबरनामे के लिए मैं इरम नाज।
5: मरकजी वजीर तालीम प्रहलाद जोशी ने कल शाम असातिज़ा के कौमी अवार्ड्स याफ्तगान से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि असातिज़ा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए बच्चों को तैयार करें। उन्होंने कहा कि तलबा मुल्क का सबसे बड़ा सरमाया है और उन्हें हमा जह सलाहियत वाले अफराद के तौर पर परवान चढ़ाया जाना चाहिए। जनाब जोशी ने अवार्ड याफ्तगान के एजाज में एक इशाइये की मेजबानी की। इस मौके पर तालीम के वज़राए ममलकत जैन सिंह और डॉक्टर सुकांत मुजुमदार भी मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी इस मौके पर तकरीब से खिताब भी करेंगे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के तहत श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मुल्क का आला तालीम का एक मायानाज इदारा है। 1926 में मारूफ सनतकार और सामाजिक कारकुन सर श्री राम के जरिए कायम करदा इस कॉलेज ने गुज़िश्ता एक सदी के दौरान स्कॉलर्स, पेशावर अफराद, एडमिनिस्ट्रेटर्स, सनतकारों, पॉलिसी साजों और मुल्क के मेमारों की एक नस्ल को परवान चढ़ाया है। ये सालाना तकरीबात योम असाज़ा के मौके पर मुनाकिद की जा रही हैं, इसलिए ये मौका खास तौर पर नस्लों की परवरिश और माशरे की बुनियाद को मजबूत करने में असाज़ा और दरसो तदरीस से वाबस्ता अफराद के बेशबहा तआवुन का एतराफ़ करने के लिए

खास अहमियत का हामिल है। हुकूमत ने आईएसओ टैंक कंटेनर्स में पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्टेशन के लिए 3 साल तक की इजाजत देने और इस पर अमल करने के लिए कामकाज के 7 दिन वाले एक निजाम की तजवीज रखी है। ये तजवीज पेट्रोलियम से मुतालिक 2002 के जाब्तों में मुजवजा तरामीम का हिस्सा है। पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत ने जुमे को इस नोटिफिकेशन का मुसवदा जारी किया है, जिसमें पेट्रोलियम से मुतालिक जाब्तों में 2026 की तरमीम की तजवीज पेश की गई है। वजारत ने इस मसवदे पर एतराजात और तजावीज तलब की हैं, जिन पर गेजेट कॉपीज अवाम को दस्तियाब कराने की तारीख के 30 दिन पूरे हो जाने पर गौर खोज किया जाएगा। मुजवजा तब्दीलियों के तहत किसी को भी ये इजाजत नहीं होगी कि वो पेट्रोलियम से भरे हुए या भरे जाने वाले किसी आईएसओ टैंक कंटेनर को चीफ कंट्रोलर या कंट्रोलर की इजाजत के बगैर दरामद करे। ये दरख्वास्तें पेट्रोलियम और धमाका खेज मादनों से हिफाजत की तंजीम पीईएसओ के ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल के जरिए खुसूसी टेक्निकल और हिफाजती दस्तावेजात के साथ जमा करनी होंगी। इस सिलसिले में अगर कोई एतराजात या तजावीज हैं तो वो पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी MNVOR के नाम भेजी जा सकती हैं या इस ईमेल पते पर भी इरसाल की जा सकती हैं js.mkt.png@gov.in। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने इस माह की 9 और 10 तारीख को अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के UGC नेट जून 2026 के इम्तिहानात के लिए एडमिट कार्ड्स जारी कर दिए हैं। तलबा UGCnet.ta.nic.in पर लॉग इन करके अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। NTA ने सवालिया पर्चों में मुख्तलिफ गलतियों की शिकायत के बाद अंग्रेजी, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के UGC नेट इम्तिहानात दोबारा मुनक़द कराने का ऐलान किया था। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर खारजा डॉक्टर ए जयशंकर ने कहा है कि भारत लगातार यूक्रेन और रूस दोनों के राबते में है। उन्होंने कहा कि भारत ऐसे नजरियात और तजावीज की तलाश में है जिनसे तनाजे से निपटा जा सकता है या इसे खत्म किया जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने यह रायजनी कल वारसोवा में पोलैंड के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा रेड सोलो सिक्रोसिकी के साथ एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए की। वजीर खारजा ने एक बार फिर कहा कि भारत इस बात में यकीन रखता है कि इस न खत्म होने वाली जंग को खत्म करने का एक तरीका फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंगों में कोई फाते नहीं होता और इनसे मजीद हलाकतें, तबाही और आलमी सतह पर नुकसानात वाकई होते हैं। बाद में डॉक्टर जयशंकर ने पोलैंड के सदर कारोल नारोकोसी से भी मुलाकात की और दो तरफा दिफाई शराकतदारी पर बातचीत की। उन्होंने यूक्रेन तनाजे और मगरबी एशिया की सूरत हाल पर भी तबादले ख्याल किया। कीव में डॉक्टर जयशंकर ने कहा था कि भारत यूक्रेन रूस जंग के खात्मे के लिए किसी भी तरह की मदद के लिए तैयार है। उन्होंने सदर वोलादिमिर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के अपने हम मनसब एंद्री सियाभा से भी कीव में जुमेरात को मुलाकात की। उमूर खारजा की वजारत ने कहा है कि एक 5 साल बच्चे समेत मजीद 3 भारतीय शहरियों को नेपाल के सैलाब से मुतासिरा त्रिशूली बाजार इलाके से बहफाजत निकाल लिया गया है। इसके साथ ही नेपाल से निकाले गए भारतीयों की मजमूई तादाद 169 हो गई है। नई दिल्ली में कल मीडिया से खिताब करते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने भारतीय शहरियों की सलामती से मुतालिक ताजा सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय शहरी अब भी लापता हैं। उन्होंने कहा कि 1907 भारतीय शहरी चीन से बहफाजत नेपाल पहुंच चुके हैं। जनाब जायसवाल ने बताया कि काठमांडू में भारतीय सफारतखाना बहफाजत निकाले गए भारतीय शहरियों की वतन वापसी के लिए परवाजों का इंतजाम कर रहा है। तर्जुमान ने मजीद कहा कि भारत गुज़िश्ता माह की 26 तारीख को नेपाल में तबाहकुन सैलाब के बाद से अब तक 95 टन इमदादी सामान नेपाल को भेज चुका है। इस दौरान हिमालयाई मुल्क में सैलाब से मुतासर इलाकों से मजीद लाशें मिलने के बाद हलाकतों की तादाद बढ़कर 1295 हो गई है। तकरीबन 5000 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश और बचाव की कार्रवाइयां जारी हैं। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने रिवायती आलमी नक्शे की जगह एक ऐसा नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है जिससे अफ्रीका के रकबे का ज्यादा सही अंदाजा होता है। टोगो के तआवुन और अफ्रीकी यूनियन की हिमायत से एक करारदाद मंजूर की गई जिसका उनवान था नक्शे को ठीक करो। इस करारदाद के हक में 164 मुल्कों ने वोट दिया जिसमें फ्रांस और बरतानिया भी शामिल है। अमेरिका ऐसा वाहिद मुल्क था जिसने इस करारदाद के खिलाफ वोट दिया और 6 ममालिक गैर हाजिर रहे। अक़वामे मुत्तहिदा की इस वोट की अगरचे पाबंदी लाजमी नहीं है लेकिन इससे हुकूमतों और इदारों की हौसला अफजाई होगी कि वो रिवायती नक्शे को

0: इस्तेमाल करना बंद कर दें, चाहे उकूआ जाहिर करने वाला ये नक्शा 16वीं सदी से आम इस्तेमाल में है, लेकिन इस पर यह एतराज किया गया है कि इसमें अफ्रीका को ग्रीनलैंड के बराबर दिखाया गया है, जबकि ये ग्रीनलैंड से 14 गुना ज्यादा है। बिहार के 14 जिलों में, जिनमें रियासत की राजधानी पटना भी शामिल है, सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर तश्वीशनाक बनी हुई है। कई दरियाओं में पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है, जबकि नशीबे इलाके अब भी जेरे आब हैं। सैलाब ने कई इलाकों में मामूलात जिंदगी को मुतासिर किया है। इन मुतासर अजला में इमदादी और बचाव की कार्रवाइयां तेजी से जारी है। हुकाम सूरत हाल पर करीबी नजर रखे हुए हैं और मुतासर इलाकों के लोगों को इमदाद फराहम कर रहे हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: बिहार में सैलाब की सूरत हाल में अब तक कोई नुमायां बेहतरी नहीं है। राजधानी पटना के अलावा औरंगाबाद, भागलपुर, जहानाबाद, भोजपुर, नालंदा, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, बीगूसराय, खगड़िया और वैशाली में भी सैलाब की सूरत हाल अब भी बरकरार है। कुदरती आफात से निपटने के महकमे के मुताबिक 8,50,000 से ज़्यादा अफराद सैलाब से मुतासिर हुए हैं। मवेशी परवरी के महकमे के मुताबिक 70,000 जानवर भी इससे मुतासिर हुए हैं। सैलाब से मुतासर इलाकों में लोगों की सहूलत के लिए 700 कश्तियां चलाई जा रही हैं। सैलाब जदगान के लिए इमदादी कैंपों और इज्तिमाही तौर पर बावरची खाने भी कायम किए गए हैं। गुज़श्ता रात पुनपुन घाट पर रेलवे पुल नंबर 21 के नीचे ट्रैक में पानी दाखिल होने के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त को अगले अहकाम तक के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
0: महाराष्ट्र में दहीहंडी का त्यौहार आज बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। ये त्यौहार जन्माष्टमी के मौके पर मनाया जाता है। इस त्यौहार पर नौजवान, जिन्हें गोविंदा कहा जाता है, एक के ऊपर एक खड़े होकर ऊंचाई पर लटकी हुई मिट्टी की हांडी को तोड़ते हैं, जो दूध, दही और मक्खन से भरी हुई होती है, और भगवान श्री कृष्ण के बचपन की याद ताज़ा करते हैं। मुंबई में इस त्यौहार की तकरीबात जारी हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक रोजा दौरे पर होंगे। वो इंडिया वोल्व्स 2026 में शिरकत करेंगे। ये अमराज़ कल्ब के सुराखों और बनावट से मुतालिक जदीद इलाज पर मरकूज एक कौमी एकेडमिक मीटिंग होगी। भारतीय महकमे मौसमियात IMD ने मशरकी राजस्थान और मगरबी मध्य प्रदेश में आज शदीद से इंतहाई शदीद बारिश के पेशी नज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही शुमाल मशरकी रियासतों के मुख्तलिफ इलाकों, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिन तक शदीद बारिश का इम्कान है। आलमी तीर अंदाजी के पैरा सीरीज 2026 आज गुजरात के शहर अहमदाबाद में शुरू हो रही है। इन मुकाबलों में 19 मुल्कों के 105 एथलीट्स हिस्सा लेंगे। ऐसा पहली बार है कि भारत तीरंदाजी की इस आलमी पैरा सीरीज की मेजबानी कर रहा है। सीरीज का ये तीसरा मरहला अहमदाबाद में साबरमती दरिया के किनारे मुनाकिद किया जा रहा है, जो इस महीने की 9 तारीख तक जारी रहेगा। जनाब शाह ने कहा कि भारत खेलकूद की तरबियत और इससे मुतालिक सहूलियात और आलात की पैदावार का भी एक मरकज बनेगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत का मकसद न सिर्फ मजीद तमगे हासिल करना है, बल्कि ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, दौलत मुश्तरका खेलों और पुलिस खेल मुकाबलों को मुस्तहकम बनाना भी है। जनाब शाह ने कहा कि भूटान, बरतानिया, चीन, बांग्लादेश, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया और अमेरिका समेत 19 मुल्कों के एथलीट्स इन मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि 2030 के दौलत मुश्तरका खेल मुकाबले इन खेलों का 7 साला एडिशन होंगे। खवातीन के क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में आज भारत का मुकाबला उसकी रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबार के आईने के साथ हैं मोहम्मद शहजाद।
2: शुक्रिया असदुल्ला। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो के GSLV-F17 के जरिए EOS-5 की कामयाब लॉन्चिंग को शानदार कामयाबी करार देते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को सफे अव्वल पर शाये किया है कि इसरो और भारतीय सनत के दरमियान तालमेल से वसत और भारत के कुर्रे अर्ज के मुशाहदे की सलाहियतों में अहम इजाफा हुआ है। इसी अखबार की एक और खबर है कि वज़ीर-ए-आज़म योम असातिज़ा के मौके पर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 7 साला तकरीबात में शिरकत करेंगे और तलबा से तबादले ख्याल करेंगे। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत जरूरत के मुताबिक नेपाल को इमदाद फराहम करना जारी रखेगा।
0: और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने असातिज़ा से जोर देकर कहा है कि वो योम असातिज़ा के मौके पर टेक्नोलॉजी को अपनाएं और तदरीस के इख्तराई तौर तरीके इख्तियार करें। वो आज सुबह नई दिल्ली में स्कूल के 48 असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स अता करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली

0: में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की 100 साल तकरीबा से खिताब करेंगे। हुकूमत ने ISO टैंक कंटेनर्स में पेट्रोलियम की दरामद और ट्रांसपोर्ट के लिए 3 साल इजाजत हासिल करने और सख्त तर हिफाजती जाब्तों की तजवीज रखी है। वज़ीर ख़ारिजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत तनाज़े को खत्म करने में मदद देने के लिए लगातार यूक्रेन और रूस के राबते में है। अक़वामे मुत्तहिदा ने एक ऐसा नया आलमी नक्शा इख्तियार करने के हक में वोट दिया है जिससे अफ्रीका के सही रकबे का पता चलता है। और ख्वातीन क्रिकेट में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के फाइनल मुकाबला भारत और उसके देरीना हरीफ पाकिस्तान के दरमियान होगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। समय है स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत का, लीजिए सुनते हैं।
2: आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत। स्वीकार करिए अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। दोस्तों, हर साल 5 सितंबर को विश्व रीढ़ की हड्डी की चोट जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस पहल का उद्देश्य रीढ़ की हड्डी की चोट से पीड़ित मरीजों के जीवन को सुगम बनाना और उन्हें इसके बारे में जागरूक करना है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से रीढ़ की हड्डी की चोट की रोकथाम करना भी इसका उद्देश्य है। इस विशेष अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक भेंट वार्ता। विषय है रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के उपचार के लिए नवीनतम तकनीक। हमारे विशेषज्ञ हैं हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HS छाबरा। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। डॉक्टर छाबरा, बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी के स्टूडियो में।
3: नमस्कार, आपका धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए।
2: डॉक्टर साहब, रीढ़ की हड्डी, इसमें जो भी चोट लगती है या इसमें कोई समस्या आती है, कौन कौन सी ऐसी तकलीफें हैं जो किसी को हो सकती हैं रीढ़ की हड्डी से जो संबंधित हो?
3: एक तो पहले बताना चाहूंगा, ये बहुत कॉमन है प्रॉब्लम। जुकाम के बाद सबसे कॉमन एलिमेंट कमर का दर्द होता है। तो बट कमर का दर्द या गर्दन का दर्द खाली एक सिम्टम है, अंदर बीमारियां अलग हो सकती हैं। सबसे आम कारण है मैकेनिकल कॉजेस ना, अगर जैसे कि अगर मांसपेशी कमजोर हो जाते हैं या डिस्क की प्रॉब्लम हो, पर कई बार अंदर इन्फेक्शन भी हो सकती है, डिजेनरेटिव चेंजेस भी हो सकते हैं, कई बार ट्यूमर भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। तो ऐसे कई कारण हैं जिससे रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं।
2: डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये जो जितनी भी आपने तकलीफें बताई, क्या ये सारी क्योरेबल हैं आज की डेट में?
3: जनरली हम सारी मैनेज कर सकते हैं ना, कोई ऐसा इलाज नहीं होता कि ये किया आप जिंदगी में कभी भी नहीं होगा। जैसे जुकाम कभी भी हो सकता है, वैसे कमर का दर्द भी हो सकता है। हमें सिम्टम का इलाज करना और दोबारा बार बार तंग ना करे उसके लिए एक अच्छी जीवन शैली रखनी। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जैसे कि अगर चोट लग जाए स्पाइनल कॉर्ड को, तो स्पाइनल कॉर्ड के सेल्स रीजनरेट नहीं करते।
2: तो डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि इसकी ट्रीटमेंट की प्रक्रिया क्या रहती है?
3: मतलब पहले तो जैसे दर्द का उपचार तो ऑलमोस्ट कॉमन है, बट कारण क्या है उसका इलाज नहीं करेंगे तो फिर वो ठीक नहीं होगा। पर अगर कोई इन्फेक्शन है तो उसका उपचार एंटीबायोटिक से करना है, ज्यादा दबाव है तो कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है। उसी तरह अगर ट्यूमर है तो उसको देखना है, ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसका इलाज उस हिसाब से करना है। और अक्सर 95-97% में सारे इलाज कंजर्वेटिव मींस से ही किए जा सकते हैं, बट 3-5% में कई बार ऑपरेशन की भी जरूरत पड़ती है, तो कई बार ऑपरेट करके स्पाइन स्टेबलाइज करके दबाव हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है।
2: जी डॉक्टर साहब, ये भी बहुत आम धारणा है कि रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन एक बहुत ही मेजर ऑपरेशन है, बहुत ही मुश्किल ऑपरेशन है, और लोग कहते हैं कि नहीं कराया जाए। मतलब एक आम धारणा की मैं बात कर रही हूँ, ये ऐसी धारणा क्यों है?
3: देखिए, टाइम के साथ सारे उपचार डेवलप होते हैं। एक टाइम था जब टीबी का इलाज नहीं होता था, लोग टीबी के कारण मरते थे, है ना। तो अब साइंस मेडिसिन काफी डेवलप कर चुकी है, स्पाइन अपने आप में ही एक स्पेशलिटी बन गई है। पहले वो एक सुपर स्पेशलिटी थी ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोसर्जरी की, बट अब स्पाइन एक अलग से स्पेशलिटी है। रीढ़ की हड्डी का इलाज ठीक से किया जा सकता है अच्छे आउटकम्स के साथ, ये मैं बताना चाहूंगा। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं 3-4% में, कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है 1-8% में, पर जब ऑपरेशन की जरूरत हो तो ना करने के दुष्परिणाम कहीं ज्यादा हो सकते हैं ना कि करने के।

0: पहले बोलना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यहाँ पे बिल्कुल खरा उतरता है। तो वेलनेस पे जोर डालना, ना कि इलाज पे जोर डालना, ये एक बहुत बड़ी एडवांसमेंट है और इसके बारे अवेयरनेस फैलाई जा रही है। दूसरा, तकलीफ हो तो डायग्नोस्टिक्स बहुत एडवांस हो गई है, चाहे वो इमेजिंग मोडालिटीज हो, तरह तरह के MRI हैं जिसमें स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को भी असेस किया जा सकता है। उसी तरह जैसे अगर बोन्स वीक हैं तो डेक्सा स्कैन है, पेट स्कैन है, होल बॉडी CT स्कैन होता है, तो एक डायग्नोस्टिक्स में भी बहुत एडवांसमेंट हो गई है। फिर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत एडवांस टेक्निक्स आ गई हैं, नई दवाइयाँ, नए तरह के उपचार, रिहैबिलिटेशन के टेक्निक्स, वो भी बहुत एडवांस कर गए। जैसे बताया 3-5% में अगर सर्जरी की जरूरत पड़े तो वो भी, उसमें भी बहुत एडवांसमेंट्स हैं। न्यूरो मॉनिटरिंग में हम सर्जरी कर सकते हैं जिसमें जब ऑपरेशन होता है तो उस समय हर उसके पूरे दौरान हम स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन को मॉनिटर करते रहते हैं ताकि अगर कोई भी दिक्कत आ रही हो उसी समय उसको मैनेज किया जा सके। एडवांस्ड सर्जिकल टेक्निक्स आ गई हैं, आपकी नेविगेशन टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आप जब ऑपरेट करते हैं तो ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, आप उसको प्लान कर सकते हैं। ऑपरेशन के दौरान ही आप एक CT स्कैन कर सकते हैं, वो आराम से आप रोबोटिक टेक्नोलॉजी से बिल्कुल प्रिसिजन से डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सी एडवांस टेक्निक्स हैं। हाँ, जैसे कि बताया था, अगर चोट लगने से पैरालाइज हो जाते हैं स्पाइनल इंजरी से, तो उसमें भी प्री हॉस्पिटल केयर से लेके साइट पे एक्सीडेंट के क्या मैनेज करना है, एक्यूट मैनेजमेंट क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन, फिजिकल, साइकोसोशल, सेक्सुअल, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन क्या है, एडवांस टेक्निक्स हैं जैसे कि फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ब्रेन मशीन इंटरफेस, एपिड्यूरल स्टिमुलेशन, ऐसी कई एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। रोबोटिक्स रिहैबिलिटेशन में भी यूज होती हैं और कम्युनिटी में वापस लाने के लिए एडवांस्ड व्हील चेयर्स, मतलब कई डिवाइसेस जिससे पैरालाइज लोग भी साधारण जिंदगी में वापस आ सके। तो अब कहते हैं कि चाहे वो स्पाइनल इंजरी भी हो तो लाइफ आफ्टर अ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कैन बी हैप्पी, मीनिंगफुल एंड वर्थ लिविंग। तो ये एडवांसमेंट्स हम इस स्टेज पे ला सकते हैं।
1: जी जी डॉक्टर साहब, ये और साथ में बताइए कि जब इस तरह की सर्जरीज होती हैं तो उसके बाद कितना समय लगता है मरीज को रिकूप होने में?
0: अब तो जैसे हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी करते हैं तो शाम को ही खड़ा करके चला के डे केयर की तरह सर्जरी कर सकते हैं, उसी दिन घर भी भेज सकते हैं।
1: अच्छा,
0: है ना। अगर हमें ज्यादा बड़ी सर्जरी करनी पड़े ट्रेडिशनल टेक्निक से तो ज्यादा से ज्यादा 3-4 दिनों में उनको घर भी भेज देते हैं, ठीक है। बट अगर जैसे स्पाइनल इंजरी हो तो ना खाली सर्जरी जरूरी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन भी बहुत जरूरी होता है। और रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस, अगर इंडिविजुअल पैरालाइज्ड है तो किस लेवल की इंजरी है उसके हिसाब से 6 हफ्तों से लेके 3-6 महीने भी लग सकते हैं वो रिहैबिलिटेशन में, ताकि हम उनको, चाहे उनमें पैरालिसिस भी हो तो उनको हम एक सक्षम जिंदगी में, साकार जिंदगी में वापस ला सकते।
1: थैंक यू सर। रीढ़ की हड्डी की बीमारियों के उपचार के लिए नवीनतम तकनीकें, अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर HS छाबड़ा से। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। दोस्तों, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों का एक समूह हमारे दैनिक जीवन और हमारी आदतों के कारण उत्पन्न होता है। मधुमेह, हृदय रोग, मोटापा और उच्च रक्तचाप इनमें से कुछ बीमारियां हैं। गतिहीन जीवन शैली, खराब खान पान, धूम्रपान और अत्यधिक शराब का सेवन जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के मुख्य कारण है। योग सहित स्वस्थ जीवन शैली अपना कर इन विकारों से बचा जा सकता है और उन्हें नियंत्रित करने का ये एक कारगर तरीका भी है। आइए जानते हैं जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को कैसे योग से दूर किया जा सकता है। हमारी विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रीमा दादा। आप प्रोफेसर हैं एनाटॉमी विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में। आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स के स्तर पर योग के फायदे पर व्यापक शोध किया है। भेंट करता है रेणु श्रीवास्तव जौहरी।
2: डॉक्टर रीमा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
3: नमस्कार।
2: हमारे स्वास्थ्य में लाइफस्टाइल की क्या भूमिका है और

0: खराब लाइफस्टाइल के कारण हमारे शरीर पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है?
1: लाइफस्टाइल का हमारे हेल्थ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और आजकल देखा गया है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। तो ये लाइफस्टाइल डिजीजेस क्यों बढ़ गई हैं? क्योंकि ये हमारे गलत जीवन शैली, गलत रहन सहन के कारण ही बढ़ी हैं। तो ये देखा गया है कि अगर हम बहुत हाईली प्रोसेस्ड फूड खाएं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाएं, जो एक कैलोरी डेंस डाइट होती है,
0: जंक फूड जिसे कहते हैं,
1: जंक फूड, फास्ट फूड खाएं, ये न्यूट्रिशनली डिप्लीटेड होता है। न्यूट्रिशन कम होती है बट कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, जिससे मोटापा होता है। तो मोटापे के कारण, अनहेल्दी डाइट के कारण हम लोग ज्यादातर बैठे रहते हैं। सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, जिसको आजकल कहते हैं, ये एक नया स्मोकिंग है। मानसिक तनाव, स्मोकिंग, अल्कोहल कंजम्पशन बहुत बढ़ गई है। हमारा सोने का पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है। स्लीप हाइजीन बहुत पुअर है। रात को लेट सोते हैं, सुबह सूर्य चढ़ने के बाद उठते हैं और देखते हैं कि रात को बार बार उठ के फोन चेक करते हैं। इन सब के कारण देखा गया है, ये गलत जीवन शैली के कारण लाइफस्टाइल डिजीजेस बहुत बढ़ गई हैं। तो चाहे ये डायबिटीज हो, चाहे ये हार्ट डिजीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे ऑटो इम्यून डिजीज हो, चाहे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज हो, जैसे अनएक्सप्लेन इनफर्टिलिटी हो, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम हो, ये सभी, या अल्जाइमर्स डिजीज हो, जैसे डिमेंशिया की प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है,
0: की समस्या होती है।
1: ये सब डिसऑर्डर्स का लिंक हमारे जीवन शैली से है और ये गलत जीवन शैली के कारण देखा गया है कि हम एज भी फास्टर कर रहे हैं और ये डिजीजेस जो करीब 65-70 पे आती थी अब जल्दी आनी शुरू हो गई हैं।
0: जी बिल्कुल, आपने ठीक बताया। लेकिन इसके शुरुआती लक्षण जो कुछ दिखाई देते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज जो एकदम शुरू हो जाती है, तो वो क्या लक्षण है जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, अलर्ट हो जाना चाहिए?
1: इनमें देखो, इट डिपेंड्स कि कौन सी लाइफस्टाइल डिजीज आपको हुई है। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस में दोनों का रोल है, जीन्स का भी है और एनवायरमेंट का भी है। पर जितने भी हमारे जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं, ये हमारे रिस्क ऑफ डिजीज को बढ़ाते हैं पर कॉज नहीं करते, अनलेस कि वो म्यूटेशंस बहुत पेनिट्रेंट हो। तो जब हमें कोई हमारा गलत रहन सहन होता है तो ये प्रेसिपिटेट होती हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमें हाइपरटेंशन है तो सिर दर्द होना, चक्कर आना, ऐसा होगा। अगर हमें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, उसमें हम देखेंगे कि हमारा पीरियड्स इरेगुलर होंगे, हम मोटापे के शिकार होंगे, मेल हार्मोन बढ़ जाते हैं जिनके कारण चेहरे पे अनचाहे बाल होते हैं। तो अलग अलग डिसऑर्डर्स के अलग अलग सिम्टम्स होंगे, जो वार्निंग साइंस होंगे।
0: जी बिल्कुल। तो ये जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में आप बात कर रही हैं, तो क्या ये जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी या समस्या है क्या?
1: ये जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, आजकल इसे पॉलीएंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें देखा गया है मल्टीपल एंडोक्राइन सिस्टम्स इन्वॉल्वड हैं और इसमें बोथ जेनेटिक फैक्टर्स एंड लाइफस्टाइल इन्वॉल्वड है। तो इसमें देखा गया है कि जब हम गलत जीवन शैली, जैसे मोटापा, हाईली प्रोसेस्ड डाइट खा रहे हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो ये यूजली 70-80% इन गर्ल्स को ये होता है, वो मोटापे के शिकार होते हैं, ओबेसिटी होती है, और ये 1 in 8 गर्ल्स पाया गया है। तो डेफिनेटली इसका डायरेक्ट लिंक है हमारे लाइफस्टाइल के साथ, अनहेल्दी लाइफस्टाइल के साथ, सोशल हैबिट्स के साथ। तो इसमें देखा जाता है कि इनमें नॉट ओनली एक मेल हॉर्मोन्स बढ़ जाते हैं जिनके कारण बाल पतले हो जाते हैं, फेस पे एक्ने आ जाते हैं, चेहरे पे अनचाहे बाल आ जाते हैं, मेंस्ट्रुअल इरेगुलैरिटीज होती हैं, ओवरीज में सिस्ट होती है, एंड इन एडिशन टू दैट हम ये देखते हैं इनको इनफर्टिलिटी, और दूसरा इनमें इंसुलिन के लेवल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल, यही मैं अभी आपसे दूसरा सवाल यही पूछने वाली थी कि पुरुषों में जो इनफर्टिलिटी और स्पर्म डीएनए डैमेज की समस्या होती है, ये किस तरह से होती है और इसका समाधान क्या आप सुझाती हैं?
1: देखिए, अभी तक तो यही माना जाता था कि इनफर्टिलिटी एक फीमेल प्रॉब्लम है, केवल फीमेल्स में होती है, परंतु हमारे शोध ने दिखाया है और अब बहुत जगह से ये स्टडीज आ रही हैं कि आधे कारण इनफर्टिलिटी के आदमियों के कारण है, मेन के कारण है। और इनफर्टिलिटी जो आदमियों में होती है, उसके कई कारण होते हैं, जैसे कि टेस्टिस अनडिसेंडेड हो या वेरिकोसील हो, बहुत कारण है, परंतु एक कॉज है अनएक्सप्लेन्ड मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। ये वो मेन है जिनमें स्पर्म काउंट नॉर्मल है, सारे स्पर्म पैरामीटर्स नॉर्मल है, एंडोक्राइन पैरामीटर, हार्मोनल पैरामीटर नॉर्मल है, परंतु इन आदमियों में देखा गया है कि इनके स्पर्म में ऑक्सीडेटिव तनाव ज्यादा होता है और ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज ज्यादा होता है जिसके कारण इनका डीएनए नष्ट होता है और इस कारण ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये आदमी लोग इसके अवेयर हों कि इसका डायरेक्ट लिंक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से है. फॉर एग्जांपल हाईली प्रोसेस्ड डाइट, अगेन मोटापा, मानसिक तनाव, स्मोकिंग, एल्कोहल कंजम्पशन, सेल फोन ज्यादा यूज करना. और अब बहुत एक महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम लोग शादी

0: लेट कर रहे हैं और बच्चे और भी लेट पैदा करते हैं, जिसके कारण ऑक्सीडेटिव तनाव और ऑक्सीडेटिव डीएनए डैमेज ज्यादा बढ़ जाता है। और स्पर्म केवल एकमात्र ऐसा सेल है हमारे शरीर में जो अपने डीएनए को ठीक नहीं कर पाता। दूसरे सेल्स में जब ऑक्सीडेटिव तनाव होता है तो वो अपने एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ा लेते हैं, परंतु जो शुक्राणु है, जो स्पर्म है, वो अपने को बचा नहीं पाता, तो वो डीएनए डैमेज बढ़ता रहता है। और वो डीएनए डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और न्यूक्लियर डीएनए में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण जो एनर्जी बनती है वो कम होती है, ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल ज्यादा बनते हैं और डीएनए डैमेज होता है। और क्यों इम्पोर्टेंट है स्पर्म में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के समय जब बच्चा बनता है तो ये डीएनए फादर से मदर के अंडे में जाता है और वो फ्यूज होता है। तो अगर डीएनए की क्वालिटी पुअर हो तो उससे नॉट ओनली बांझपन का वो शिकार होते हैं, परंतु अगर वो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए जा रहे होंगे तो उसका सक्सेस रेट पुअर होगा, बार बार बच्चे गिरते हैं, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है, बच्चे में कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस होते हैं। और अब देखा गया है जैसे कई बच्चों में कैंसर्स पाए जाते हैं जो फादर के डीएनए के डैमेज के कारण होते हैं। और ये भी देखा गया है कई जेनेटिक एपिजेनेटिक डिजीजेस इसके कारण है। और दूसरा ये मल्टीपल जैसे न्यूरोसाइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर जो बच्चों में है, वो फादर के डीएनए डैमेज से अब देखा गया है, स्टडीज ने दिखाया है। और ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर अधिकतर फादर के स्पर्म डीएनए डैमेज से कोरिलेटेड होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट है कि नॉट ओनली ये आपके बच्चे को इफेक्ट कर रहा है, परंतु ये पीढ़ी दर पीढ़ी काफी जेनरेशन तक इसका असर रहता है।
1: जी बिल्कुल, तो ये जो जेनेटिक्स की वजह से भी जो बीमारियां बच्चों में लगती हैं वो तो आपने बताई ही, लेकिन बच्चों की लाइफस्टाइल भी काफी आजकल बदल चुकी है। बच्चों का बाहर आउटडोर गेम्स खेलना काफी हद तक कम हो गया है, तो आप हमें ये बताइए कि बच्चों में जो खराब लाइफस्टाइल के कारण जो बीमारियां आती हैं या परेशानियां आती हैं वो क्या हैं और उसका क्या समाधान आप सुझाएंगी?
0: मैम ये बहुत इम्पोर्टेंट और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये देखा गया है जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, जो होती थी 60-70 साल पे, अब वो बच्चों में देखी जा रही हैं। जैसे टाइप 2 डायबिटीज ही 30 साल पे होती थी, अब वो उससे भी कम उम्र में, 10 साल से छोटे बच्चों में अब देखा गया है कि उनको ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज जल्दी हो रहा है, मिडिल एज में देख रहे हैं हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, स्ट्रोक हो रहा है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम पेरेंट्स को भी अवेयर करें कि बच्चों का रहन सहन पे ध्यान दें, बच्चों को हर रोज खेलने जाना चाहिए। खेलने से नॉट ओनली उनकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होती है, उनकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, थोड़े एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, मानसिक तनाव कम होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि पेरेंट्स को अवेयर किया जाए। और कभी कभी चलो गाइडलाइंस आती हैं कि कोई जैसे कोविड में था बाहर नहीं जा सकते थे, या कभी कभी कहते हैं प्रदूषण बहुत है सुबह शाम ना निकलो, जब बहुत सुबह जैसे ठंड होती है, तो मैं तो कहती हूँ परिवार के साथ घर के अंदर योग कराएं। इससे नॉट ओनली बच्चे का फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगा, परंतु उससे बच्चे की पूरे मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगी। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि योग एक जीवन शैली है। ये वो ही नहीं है जो केवल एक आसनास आप एक मैट पे करते हो, परंतु आप क्या खाते हो, आप बच्चों को क्या खिला रहे हो, क्या एक हेल्दी डाइट है, होल प्लांट बेस्ड डाइट, मिनिमली प्रोसेस्ड हो, जो सीजन है उसके अनुसार हो, कितना खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, पेरेंट्स को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। पर आजकल हम देखते हैं पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, बच्चों को हम केवल ब्रेड जैम दे देते हैं, जूसेस दे देते हैं जो इतनी ज्यादा कैलोरीज होती हैं, शुगर होता है। तो अगर पेरेंट्स को भी ये सेंसिटिव होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए कि क्या एक हेल्दी डाइट है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे का घर का बना खाना खाएं। पहले तो हम खाना बाहर खाने जाते थे, अब घर पे खाना बाहर से आ जाता है, टेस्ट अच्छा होता है परंतु वो कितना पौष्टिक है, और इससे कारण बच्चे मोटापे के शिकार हो रहे हैं। और अब स्टडीज ने दिखाया है कि बच्चे जो स्कूल में परफॉर्म करते हैं, अगर एक बहुत कैलोरी डेंस डाइट खाते हैं, वेरी हाई फैट डाइट खाते हैं, तो स्कूल के स्कोर्स भी अफेक्ट हो रहे हैं। और हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि अगर ये बच्चों को स्कूल में योग कराया जाए, बच्चे घर पे योग करें, तो नॉट ओनली उनकी फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगी। आजकल हम देखते हैं बच्चों में ही डिप्रेशन होना शुरू हो गया है, बच्चों को ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। परंतु और भी अच्छा तो ये भी है कि क्यों हम वेट करें कि कुछ हो
1: जी।
0: अगर बच्चे ये करना शुरू करते हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन, उनकी अटेंशन, उनकी लर्निंग, उनकी मेमोरी बढ़ती है, उनका एक इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ता है, इमोशनल रिजिलियंस बढ़ता है। तो जैसे आजकल स्ट्रेसफुल टाइम्स हैं, चैलेंजिंग टाइम्स हैं, तो अगर बच्चे भी योग करना शुरू करें तो बच्चों में एक रिजिलियंस बढ़ेगी, कोपिंग मैकेनिज्म बढ़ेगा।
1: जी बिल्कुल सही आप कह रही हैं, योग करना

0: हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है और करना चाहिए हर किसी को, हर किसी उम्र के व्यक्ति को। लेकिन आप इस बारे में क्या बताएंगी, जो लोग रेडियो, टीवी या इंटरनेट को देख करके योग करना शुरू कर देते हैं, तो क्या ऐसा करना चाहिए या विशेषज्ञ की सलाह लेना और उनकी निगरानी में ही योग की शुरुआत करना आवश्यक है?
1: ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप योग करना शुरू करें तो जरूर एक योग थेरेपिस्ट से पहले कंसल्टेशन ले लें। पहले एक दो हफ्ते उनसे सीखें, फिर अपने आप करना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है, अगर आपको काला मोतिया है, वो आपको गाइड करेंगे कौन से आसन नहीं करने चाहिए जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। तो डेफिनेटली चाहे जब भी आप शुरू करें, आप एक योग थेरेपिस्ट को अपना बताएं क्या हेल्थ इश्यूज हैं और फिर उनकी कंसल्टेशन के बाद उनसे सीख के सही तरह करें। कई बार हम डायरेक्टली देख के करते हैं तो कई उसके जो स्मॉल पॉइंट्स होते हैं, कैसे उसको इफेक्टिवली करना है, कैसे डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग करनी है, हम वो कैच नहीं कर पाते। तो एटलीस्ट अगर एक योग थेरेपिस्ट के साथ करेंगे तो हमें, या योग इंस्ट्रक्टर के साथ करेंगे, वो हमें गाइड करेंगे कैसे सही करना है। तो ये बहुत जरूरी है कि डेफिनेटली गाइडेंस लेके करें।
0: जी बिल्कुल, योग करना भी जरूरी है और सही तरीके से भी योग करना जरूरी है। अच्छा, योग में आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये तीनों की भूमिका है, तो ये तीनों में कोई अंतर है क्या, ये और ये लाइफस्टाइल डिजीज़ में ये किस तरह से लाभदायक होते हैं?
1: सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि योग एक जीवन शैली है। जैसे मैंने कहा, ये केवल वो नहीं है जो हम आसनास कर लेते हैं, नहीं तो वो एक्सरसाइज होगी। जब भी हम योग, तीन चीजें आसना, प्राणायाम और ध्यान है, और जैसे हम कहते हैं 8 limbs होते हैं, योगा एक पूरी लाइफस्टाइल है कि कैसे हम अपने को कंडक्ट करते हैं, कैसे हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हम अपने सेंसेस को विड्रॉ करते हैं सो दैट हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा पाए। तो ये सस्टेनेबल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये समझने को है कि योग में आसना, प्राणायाम और ध्यान तीनों इसके कॉम्पोनेंट्स हैं। आसनास ये नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेटेड आसनास करने की जरूरत है। जैसे कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, जितना कर सको उतना करो। और आसन करने के बाद आसनास के साथ साथ रिलैक्सेशन पोजेस भी करने जरूरी हैं, क्योंकि इससे फिर वी अटेन डीप रिलैक्सेशन। पर उसके बाद प्राणायाम करना बहुत जरूरी है। तो आसनास हमारी बॉडी को एक परफेक्ट ज्योमेट्री में लाते हैं, जिसके कारण हम इफेक्टिवली प्राणायाम कर सकते हैं। और प्राणायाम अगर हम ठीक तरह करें तो उससे क्या होता है कि हम ऑटोमेटिकली एक स्टेट ऑफ ध्यान में पहुंचते हैं, विच इज नथिंग बट अ स्टेट ऑफ हाइटेंड अवेयरनेस, कि जो भी हम कर रहे हैं हम उसके बारे में अवेयर हैं और हम अपने प्रेजेंट मोमेंट में माइंडफुली प्रेजेंट हैं। तो ये तीन बहुत अभिन्न अंग हैं योग के। परंतु आजकल लोग केवल सोचते हैं कि योग एक आसनास है या पोस्चर्स है। नहीं, योग अगर आपने करना है तो आसना, प्राणायाम और ध्यान तीनों जरूरी हैं। इसके साथ सही अपना आहार होना चाहिए और पॉजिटिव थॉट्स, ये सारे योग ही हैं।
0: जी बिल्कुल, योग ही हैं। और योग को अच्छी तरह से जान समझ के अगर शुरू किया जाता है तो ये आपके जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर रीमा, एक सवाल बार बार मन में ये आता है कि योग और मेडिटेशन क्या उपचार के लिए पूरी तरह से कारगर है, और क्या जो है इससे हमारी बायोलॉजिकल एज जो है वो एक्चुअल एज से कम ये हो सकती है क्या, इस योग के माध्यम से या प्राणायाम, ध्यान और आसन के माध्यम से?
1: ये दो क्वेश्चंस हैं। पहले आपने बोला कि क्या इससे बिल्कुल हम ठीक हो सकते हैं, तो देखिए अगर हम इनको बचपन से ही करते हैं तो डिजीजेस होंगे ही नहीं। कई जेनेटिक डिजीजेस हैं तो वो तो होंगी, पर हमने देखा है कि कई डिसऑर्डर्स जिनका जेनेटिक बेसिस था उनमें भी देखा गया कि उसमें भी कोपिंग बेटर होती है। परंतु अगर हम योग करें पहले से, पूरी अपनी रहन सहन को ठीक रखें, योग करें, तो डिजीजेस होंगे नहीं। तो योग से डिजीज प्रिवेंशन और हेल्थ प्रमोशन होती है। और अगर हम इसको, अगर एक डिजीज हो गई है और इसको फिर इनकॉर्पोरेट करें, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम किस स्टेज पे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, अगर एक लड़की हमारे पास आती है 18-20 साल पे, हम उसको योग पे डाल सकते हैं और योग डालने से उसका धीरे धीरे ठीक होगा, बट इट टेक्स टाइम। परंतु अगर कोई हमारे पास आया 30-35 साल की उम्र पे, तो हम योग को एज एन एडजंक्ट थेरेपी देते हैं विद द मॉडर्न मेडिसिन। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कब इंसान आता है, क्या सिवेरिटी है ऑफ डिजीज है, उसको असेस करके हम कर सकते हैं। रिगार्डिंग एजिंग जो आपने बोला है, ये हमारी स्टडीज ने दिखाया है कि योग करने से है हमारी बायोलॉजिकल एज हमारे एक्चुअल एज से काफी कम हो सकती है।
0: अच्छा,
1: तो आपने देखा है कि लो करोड़ों रुपए आजकल रिसर्च पे खर्च हो रहा है कि कई नई चीजें आई जिससे, और कितना हम खर्चते हैं यंग लगने के लिए, कितना चेहरे पे चीजें लगाते हैं, परंतु योग करने से, आपकी उम्र चाहे 70 हो पर अगर आपने योग किया है तो एक्चुअल उम्र 45 या 50 ईयर्स होगी। और ये देखा गया है कि जो फंक्शनल डिक्लाइन होता है, जो

0: हमारे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के डैमेज के कारण होता है, जो एनर्जी कम बनती है जिसके कारण हर ऑर्गन सिस्टम फंक्शन कम हो जाता है, वो मेंटेन हो सकता है। दूसरा, ऑक्सीडेटिव तनाव कम होता है। तीसरा, देखा गया है कि एजिंग के साथ भूलने की प्रॉब्लम, जो डिमेंशिया होता है, बढ़ रहा है, वो भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि योग से। हमने देखा है कई ऐसे फैक्टर्स प्रोड्यूस होते हैं जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को नरिश करते हैं। तो जैसे कि ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोफिक फैक्टर्स, ये ब्रेन में एनाटॉमिकल चेंजेस लाता है, जो कई की सेंटर्स हैं जो मेमोरी हमारे लर्निंग के साथ एसोसिएटेड हैं, वो बढ़ते हैं और उनका साइज बढ़ता है, और जो स्ट्रेस का सेंटर है जैसे एमिग्डाला, उसका साइज कम होता है। तो योग से डेफिनेटली हम अपना रेट ऑफ एजिंग कम कर सकते हैं।
1: अच्छा डॉक्टर रीमा, आपने आणविक जीव विज्ञान यानी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स विषय पर शोध किया है, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए, और इस विषय पर शोध करने का विचार आपके मन में क्यों आया, और किन उद्देश्यों को लेकर आपने इसे शुरू किया था, और क्या ये शोध उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सका?
0: हमने ये सोचा कि आजकल हम देखते हैं हम कितनी दवाइयां लेते हैं, परंतु वो दवाइयां जीवन भर लेनी पड़ती हैं और फिर भी बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट हमने ये देखा कि चाहे हम लंबा जी रहे हैं, परंतु पिछले आखिरी हमारे जो 70-80 साल के बाद हमारे को इतनी बीमारियां हो जाती हैं, हम बेड रिडन होते हैं, डिमेंशिया हो जाता है, तो क्यों ना कुछ ऐसे अपनाया जाए या उस चीज पे रिसर्च की जाए जो हमें नॉट ओनली हमारी लाइफ स्पैन बढ़ाती है पर हमारा हेल्थ स्पैन भी बढ़ाए। इस कारण हमने ये स्टडीज योग पे शुरू करी थी, और जेनेटिक्स क्योंकि मैंने स्पेशलाइज किया है, तो हमने देखा कि नॉट ओनली जैसे पहले ये होता था कि हाँ योग से मानसिक तनाव कम होता है, स्ट्रेस एंजाइटी कम होता है, हाइपर ब्लड प्रेशर में सुधार होता है, परंतु अब हम ये मैकेनिस्टिक स्टडीज कर पाए हैं कि ये क्यों हो रहा है। हमने देखा है कि जीन्स के एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आते हैं, और योग से हमने देखा है कि हमारे जो एपिजीनोम है उस पे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, और वो जीन्स का एक्सप्रेशन बढ़ता है जो हमारे लिए फायदेमंद है, जैसे डीएनए रिपेयर, जो जीन्स डीएनए रिपेयर करा रही हैं, जो जीन्स इन्फ्लेमेशन कम करा रही हैं, ऑक्सीडेटिव तनाव कम कर रही हैं, उनका एक्सप्रेशन कम हो रहा है, जो रिपेयर करती हैं जैसे डीएनए रिपेयर, उनकी एक्सप्रेशन लेवल्स बढ़ रहा है।
1: जी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आपने शोध भी किया और इतना आप योग के क्षेत्र में काम कर रही हैं। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी?
0: मैं तो बस यही कहना चाहूंगी, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, पेरेंट्स, सभी लोगों को योग करना चाहिए। अगर वो दिन में 30 से 40 मिनट निकाल लेते हैं आसना प्राणायाम ध्यान करने में, फैमिली टुगेदर करें, ये बेस्ट क्वालिटी टाइम होगा, और इससे करने से आप नॉट ओनली कभी कोई डिजीज से जूझेंगे नहीं, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मानसिक सेहत अच्छी इंप्रूव होगी। सो योग से फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ इंप्रूव होती है, आप एक हाइटेंड स्टेट ऑफ अवेयरनेस में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात ये हमारे डीएनए तक पे एक्ट करता है, और हमारे नॉट ओनली जीनोम पे इसकी अच्छा असर होता है पर एपिजीनोम पे। सो जो भी असर तुम्हारे पे हो रहा है वो पीढ़ी दर पीढ़ी उसका अच्छा असर रहेगा।
1: जी बिल्कुल, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो यानी कि योग हमारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत अहम है हमारी जिंदगी के लिए। डॉक्टर रीमा, आप हमारे स्टूडियो में आई और आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू।
2: जीवन शैली जनित रोग और योग, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में एनाटॉमी विभाग की प्रोफेसर डॉक्टर रीमा दादा से। आपसे बात कर रही थी रेनू श्रीवास्तव जोहरी। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार।
3: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।
1: अभी आपने सुना स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत, और अब जो अगला कार्यक्रम आप सुनेंगे ठीक 9:15 पर, वो होगा धरती आकाश। 9:15 के बाद 9:30 पर सुनिएगा मिट्टी दी महक, और 10:10 पर होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम जिसका आपको रहता है बेसब्री से इंतजार। जी हाँ, फिल्म संगीत आपकी पसंद। जुड़िएगा हमसे और कीजिएगा बातें और सुनिएगा बहुत ही अच्छे अच्छे गीत। फिलहाल बढ़ते हैं अपने अगले कार्यक्रम की ओर, जो है धरती आकाश। बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़।

0: नमस्कार, धरती आकाश के इस अंक में आप सबका स्वागत है।
1: मैं रूपाली गायकवाड़ आज आपके साथ स्थिरता और हरित क्रांति के बारे में जानकारी दूंगी। पहली औद्योगिक क्रांति के बाद से ही एनर्जी यानी ऊर्जा ने दुनिया भर में लगातार विकास को आगे बढ़ाया है। 19वीं सदी के मध्य से हाइड्रोकार्बन ईंधन ने औद्योगिक क्रांति की रफ्तार को तेज किया है। हालांकि इनके साथ पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियां भी आई। कोयला और गैस एनर्जी के सबसे सस्ते पारंपरिक स्रोत है, लेकिन ये दोनों ही कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और जहरीले वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। ये ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं और हमारे वायुमंडल की रक्षा करने वाली ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो आर्थिक विकास सीधे तौर पर ऊर्जा के स्रोतों से जुड़ा है। अगर इन पर सही समय ध्यान न दिया जाए तो ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके अस्तित्व के लिए खतरा बनते हैं। हाइड्रोकार्बन ईंधन की जगह लेने के लिए ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा सबसे सस्ता विकल्प है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने से न केवल आयात पर निर्भरता कम होती है, बल्कि ऊर्जा की लागत और अर्थव्यवस्था में भी स्थिरता आती है। आज हरित उद्योग टिकाऊ आर्थिक विकास को बढ़ावा दे रही है। हालांकि इसके लिए हरित उद्योग के प्रति हमारे नजरिए में व्यापक बदलाव की जरूरत है। हमें ये समझना होगा कि ग्रीन इकोनॉमी पर्यावरण पर कम से कम बुरा असर डालते हुए इंसानों की भलाई को बेहतर बनाती है। इंसानी तरक्की को औद्योगिक क्रांति से पहले के दौर में वापस तो नहीं ले जा सकते। आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका यह है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना लगातार विकास के लिए साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान दिया जाए। इसलिए हमारा मुख्य मकसद कई तरह के साफ सुथरे ऊर्जा स्रोतों के साथ देश में टिकाऊ विकास करना है। इसे हासिल करने के लिए हमें प्रदूषण के अलग अलग स्रोतों को बेकाबू होने से पहले ही रोकना होगा। हरित उद्योग को ऐसे आर्थिक विकास की तलाश करनी चाहिए जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हो। इसका समाधान है सस्ती नवीकरणीय ऊर्जा के असीमित स्रोतों का इस्तेमाल करना, साथ ही मौजूदा संसाधनों को ज्यादा कुशल बनाना और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग करके सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना। ऐसी उत्पादन प्रक्रियाएं विकसित करना जिनसे कार्बन फुटप्रिंट यानी कार्बन पदचिन्ह कम हो, ऊर्जा की बचत हो और कचरा कम निकले। इसके अलावा समाधान प्राकृतिक सामग्रियों को अपनाने और पुनर्चक्रण व पुनः उपयोग के लिए क्लोज्ड लूप सप्लाई चेन बनाने में भी है। औद्योगिक क्षेत्र में टिकाऊपन की ओर बदलाव भारत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। फ्लाई ऐश का इस्तेमाल करने वाला ग्रीन सीमेंट क्लिंकर यानी धातुमल उत्सर्जन को कम कर रहा है। सरकार तेजी से नीतियां लागू कर रही है और नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है और उसे अनिवार्य बना रही है। तेल और प्राकृतिक गैस क्षेत्र भी ग्रीन हाइड्रोजन और बायोब्लेंडेड फॉसिल फ्यूल के जरिए नेट जीरो का लक्ष्य बना रहा है। सरकार ने ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए रीस्किलिंग प्रोग्राम भी शुरू किए हैं। रीस्किलिंग प्रोग्राम अंतर्गत पर्यावरण के अनुकूल प्रोडक्शन के लिए मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स को नई स्किल सिखाने में कर्मचारियों को एनर्जी मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी के तरीकों और डिजिटल तरीके से वेस्ट कम करने का प्रशिक्षण देना शामिल है। इन प्रोग्राम्स का मकसद टेक्निकल और सिस्टम्स की समझ से जुड़ी स्किल्स को बेहतर बनाना है ताकि कर्मचारी कम कार्बन उत्सर्जन वाली मशीनें चला सके, सस्टेनेबल मटेरियल का इस्तेमाल कर सके और पर्यावरण से जुड़े नियमों का पालन कर सके। समस्या और संभावित समाधानों को देखने के बाद आइए अब कार्बन फुटप्रिंट को कम करने और जीरो कार्बन लक्ष्य या नेट जीरो उत्सर्जन तक पहुंचने की योजनाओं पर नजर डालें। आसान शब्दों में इसका मतलब है ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन और उन्हें कम करने के लिए उठाए गए कदमों के बीच सही संतुलन बनाए रखना। रणनीतिक स्तर पर यूएन 2035 तक उत्सर्जन में 55% की कटौती करने और 2050 तक वैश्विक स्तर पर नेट जीरो लक्ष्य तक पहुंचने का समर्थन करता है। पेरिस समझौते का नेट जीरो लक्ष्य ग्लोबल वार्मिंग यानी भूमंडलीय उष्मीकरण को प्री इंडस्ट्रियल स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक सीमित करना है। 130 से ज्यादा देशों ने नेट जीरो लक्ष्य अपनाए हैं, जिन्हें फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन को धीरे धीरे खत्म करके उसकी जगह सोलर और विंड जैसी नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके और साथ ही पेड़ पौधे लगाकर और पेड़ों की कटाई पर रोक लगाकर हासिल किया जाना है। इस रणनीति की सहायता करने के लिए नई नेट जीरो टेक्नोलॉजी विकसित करने की जरूरत है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। तेजी से आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण को भी भारी कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का प्रकल्प किया है। तब तक भारत में ज्यादातर आधुनिकीकरण का काम पूरा हो चुका होगा। एक अहम पड़ाव के तौर पर भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट की फॉसिल फ्यूल मुक्त ऊर्जा क्षमता हासिल करना है।

0: से अपनी ऊर्जा जरूरत का 50% हिस्सा रिन्यूएबल स्रोतों से पूरा किया जा सके। इसके लिए जिन क्षेत्रों पर काम करने की योजना है उनमें कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का विस्तार करना, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, पेड़ पौधे लगाना, कार्बन हटाने वाली टेक्नोलॉजी और तरीकों का इस्तेमाल करना और भारतीय रेलवे को नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने के लिए जोर शोर से प्रयास करना शामिल है। बेहतर और बड़े नतीजे पाने के लिए कई स्तरों पर और अलग अलग तरीकों से काम करना जरूरी है। इन कदमों में रणनीतिक स्तर पर नेट जीरो सरकारी नीतियां बनाना शामिल है। जमीनी स्तर पर शुरुआती शिक्षा के दौरान पर्यावरण के अनुकूल आदतें विकसित करने और उन्हें जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बनाने की जरूरत है। हमें फ्लेक्सी फ्यूल को अपनाना होगा और उसके हिसाब से ढलना होगा। फ्लेक्सी फ्यूल पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने की दिशा में एक कदम है। फ्लेक्सी फ्यूल को अपनाने के कई तरीके हैं। सबसे आम और तेजी से लोकप्रिय हो रहा तरीका है फॉसिल फ्यूल यानी जीवाश्म ईंधन, इसमें इथेनॉल या मिथेनॉल जैसे बायोफ्यूल मिलाना। हालांकि फ्लेक्सी फ्यूल का एक और विकल्प है हाइड्रोजन मिला हुआ ईंधन, चाहे वो पेट्रोल डीजल या CNG हो। मिश्रित ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन का इस्तेमाल करने के कई बड़े फायदे हैं। ये न सिर्फ ईंधन की खपत कम करता है बल्कि धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन भी घटाता है, कम ग्रीन हाउस गैस पैदा करता है और प्रदूषण को भी धीरे धीरे कम करता है। बायोफ्यूल को बढ़ावा देने से न सिर्फ कृषि क्षेत्र को मदद मिलेगी बल्कि आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता भी कम होगी। जाहिर है टिकाऊ नतीजे पाने और पीढ़ीगत बदलाव लाने के लिए नियमों को लागू करने और प्रोत्साहन देने के बीच सही संतुलन बनाना होगा। नेट जीरो हासिल करने के लिए दो सबसे अहम बातें हैं, उत्सर्जन को पहले कम करना और फिर पूरी तरह से खत्म करना। इन दोनों बुनियादी बातों पर हमेशा और हर बार सक्रिय रूप से ध्यान देने की जरूरत है ताकि ये पक्का किया जा सके कि नीतियां लचीली हो और ऊर्जा के रिन्यूएबल स्रोतों की और बढ़ने के अंतिम लक्ष्य के प्रति हमेशा सक्रिय रहे। हमें ये भी मानना होगा कि जैसे जैसे इंसान तरक्की कर रहा है प्रदूषण या कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने का कोई एक या स्थायी समाधान नहीं है। साथ ही हमें सावधान रहने की भी जरूरत है कि हम ईमानदारी से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाएं, न कि आज की समस्या को सिर्फ कल के लिए टाल दें। इसी के साथ मैं आप सभी से गुजारिश करती हूं कि हरित उद्योग को एक सफल कहानी बनाने में मदद करें और लगातार कोशिशों के जरिए नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करने के लिए हाथ मिलाएं, क्योंकि ये एक हमेशा जारी रहने वाली यानी वर्क इन प्रोग्रेस प्रक्रिया है।
1: मैं प्रदीप कुमार मुखर्जी दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिकी में सेवानिवृत्त प्रोफेसर हूँ। भारत में विंध्या सतपुड़ा से लेकर पश्चिमी और पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली पर्वत श्रृंखला न केवल भारत बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। लगभग 2 से 2.5 अरब वर्ष पुरानी इस पर्वत श्रृंखला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग यानी प्रोटेरोजोइक काल में प्राचीन विवर्तनिक यानी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने के कारण हुआ था। यह समय की बात है जब पृथ्वी पर महाद्वीप आकार ले रहे थे। अरावली पर्वत श्रृंखला हिमालय से भी कई अरब वर्ष पुरानी है। गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान हरियाणा से गुजरती हुई यह पर्वत श्रृंखला दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। असल में अरावली की पहाड़ियाँ गुजरात राजस्थान हरियाणा और दिल्ली के 4 राज्यों के कुल 37 जिलों में फैली है। इन पहाड़ियों का सबसे अधिक लगभग 80% हिस्सा राजस्थान में है। इन 37 जिलों में 11 जिले राजस्थान, 7 जिले हरियाणा, 5 जिले गुजरात और 4 जिले दिल्ली में हैं। दिल्ली में 4 जिले रिज क्षेत्र में आते हैं जो दक्षिणी दिल्ली, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, मध्य दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर राजस्थान के सिरोहा जिले में माउंट आबू में स्थित है। इस चोटी की ऊंचाई 1722 मीटर है। अरावली पहाड़ियों की औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है। अरावली असल में संस्कृत के आरा और वली शब्दों से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ है चोटियों की श्रृंखला। राजस्थान की स्थानीय भाषा में अरावली को आड़ावाली भी कहते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। यहाँ बहुमूल्य खनिजों का भंडार है, साथ ही ये पर्वत श्रृंखला जैव विविधता और पारिस्थितिकी का अद्भुत संगम है। लेकिन पिछले काफी समय से ही अवैध खनन और निर्माण एवं शहरीकरण संबंधी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप इसके अस्तित्व पर संकट के बादल मंडराने लगे। वैसे तो विगत काल में भी अरावली को लेकर कई कानूनी विवाद रहे हैं, लेकिन बीते वर्ष में 20 नवंबर 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर अरावली की इस परिभाषा को स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया कि जमीन से कम 100 मीटर ऊंचे हिस्से को ही अरावली पहाड़ियों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। लेकिन इस फैसले ने पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों में घोर असंतोष को जन्म दिया। पर्यावरण

0: वेदों का कहना था कि 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियां केवल 10% मात्र हैं और केवल इन्हीं पहाड़ियों को कानूनी संरक्षण प्राप्त होगा। अरावली की 90% पहाड़ियां कानूनी संरक्षण से बाहर होने के कारण खनन के लिए खुल जाएंगी। पर्यावरणविदों की मुख्य चिंता ये थी कि अवैध खनन के कारण अरावली की पहाड़ियां कमजोर पड़ जाएंगी। पर्यावरणविदों एवं स्थानीय लोगों के असंतोष और विरोध के फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर 2025 के अपने फैसले पर 29 दिसंबर 2025 को रोक लगा दी तथा 21 जनवरी 2026 को दोबारा सुनवाई के लिए कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उस दिन न्यायालय ने 29 दिसंबर 2025 के अपने अंतरिम आदेश को आगे करते हुए दोहराया कि अवैध खनन से अरावली की अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। उल्लेखनीय है कि ग्रेट ग्रीन वॉल के नाम से जाने जाने वाली अरावली जीवन रक्षक पर्वत श्रृंखला है, जो थार मरुस्थल की रेत को उत्तर भारत में फैलने से रोकने वाली प्राकृतिक हरित दीवार की तरह काम करती है। बिना अरावली के राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली ज्यादा शुष्क होते। ये मानसूनी हवाओं को प्रभावित कर वर्षा बढ़ाती है। इसके अलावा ये पर्वत श्रृंखला भौमजल पुनर्भरण, जैव विविधता संरक्षण और स्थानीय जलवायु संरक्षण में महती भूमिका निभाती है, जिसका प्रभाव केवल पहाड़ियों तक ही सीमित न रहकर उत्तर भारत की जलवायु, जल सुरक्षा और जीवन गुणवत्ता पर भी गुणात्मक रूप से पड़ता है। अरावली की पहाड़ियां अनेक मुख्य नदियों जैसे लूणी, बनास, साहिबी और साबरमती का उद्गम स्थल है। ये नदियां कृषि और पेयजल के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक रूप से अरावली जल चक्र में मदद करती है। वर्षा का जल इसकी चट्टानों से रिसता है और भौम जल में परिवर्तित होता है। एक तरह से अरावली प्राकृतिक स्पॉन्ज जैसी है, जो वर्षा जल को जमीन के नीचे भेजती है। अरावली का आर्थिक महत्व भी है, क्योंकि खनिजों से भरपूर है। यहाँ जस्ता, सीसा, तांबा, चांदी जैसी धातुएं, द सैंडस्टोन, चूना पत्थर, संगमरमर और ग्रेनाइट आदि प्रचुर परिमाण में पाए जाते हैं। अरावली में जैव विविधता और पारिस्थितिकी का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की नाना प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार अरावली एक पारिस्थितिकी हॉटस्पॉट के रूप में भी काम करती है। यहाँ पेड़ पौधों की 300 से अधिक प्रजातियां, 200 से अधिक देसी और प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां तथा 100 से अधिक तितलियों की प्रजातियां उपलब्ध है। पेड़ों में धौ या धौक, जिसका वैज्ञानिक नाम एनोजीसस पेंडुला है, नीम, बबूल, ढाक यानी पलाश, बेर एवं गुगुल आंवला जैसे औषधीय पौधे तथा जंतु जानवरों में तेंदुआ, लकड़बग्घा, नीलगाय, जंगली बिल्ली और चौसिंगा, मृग, सियाल, लोमड़ी आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा मॉनिटर लिजार्ड, नेवला, मकड़ी, मेंढक, सांप, बिच्छू आदि जीवों के समूह भी देखने को मिलते हैं। अरावली में अनेक अभयारण्य भी हैं, जो जैव विविधता संरक्षण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अरावली की पहाड़ियों को सन 1975 के बाद से बेतहाशा भूमि अधिग्रहण, अवैध खनन और गैर वाणिज्यिक कार्यों के कारण भारी नुकसान झेलना पड़ा है। वर्ष 1975 और 2019 के बीच अरावली पहाड़ियों का लगभग 8% यानी 5,773 वर्ग किलोमीटर हिस्सा या तो लुप्त हो गया है या अपना पहाड़ी स्वरूप होकर समतल हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि अरावली में खनन तेजी से हो रहे विकास के कारण इन पहाड़ियों में अब तक 12 दरारें खुल चुकी हैं, जो राजस्थान में अजमेर की मगरा पहाड़ियों से निकलकर झुंझुनू के खेतड़ी और माधोगढ़ होते हुए हरियाणा के महेंद्रगढ़ तक फैल गई है। इन दरारों की वजह से थार रेगिस्तान की धूल और रेत अब दिल्ली तक पहुंच रही है। इसके अलावा अधिक भौमजल के दोहन से हरियाणा और राजस्थान में जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। विभिन्न गतिविधियों के कारण गुरुग्राम, फरीदाबाद की अरावली पहाड़ी, जिसके वन क्षेत्र में 10,000 एकड़ की क्षति हुई है, के जंगलों में पानी की कम उपलब्धता के कारण अब जंगली जानवर कम देखे जा रहे हैं। नतीजतन मृदा क्षरण के साथ जैव विविधता तथा वनस्पति आवरण में कमी आई है। उल्लेखनीय है कि हरियाणा वन विभाग की ओर से वर्तमान वर्ष के आरंभ में नेशनल ग्रीड ट्रिब्यूनल यानी NGT में रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह जिलों के अरावली के जंगलों में अवैध खनन और अतिक्रमण के कारण जल निकायों, प्राकृतिक झरनों और तालाबों को बहुत क्षति पहुंची है। अरावली की पहाड़ियों पर अगर इसी तरह खतरा बना रहेगा तो इसका मरुस्थलीकरण प्रभाव भी तेज होगा तथा भूमिगत जल के पुनर्भरण होने की प्रक्रिया भी प्रभावित होगी। परिणाम स्वरूप जल संकट, प्रदूषण और तापमान तीनों में बढ़ोतरी होगी। इसका असर खेती, पानी, जलवायु, वन्य जीव और मानवों पर भी नकारात्मक रूप से पड़ेगा। अतः अरावली पर्वत श्रृंखला की उपयोगिता और महत्व को देखते हुए इसके संरक्षण तथा इसकी संपदा को उजड़ने और नष्ट होने से बचाने के प्रयास सक्रिय और बड़े पैमाने पर किए जाने चाहिए।
1: इसी के साथ धरती आकाश का ये अंक यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुत करता थे दिलीप झा।

0: जरूरी है कि गणित का सवाल किवें हल करना है, पर इस तो भी ज्यादा जरूरी है कि वह यह जाने कि जीवन की दरपेश समस्या का हल किवें लभना है। उसनू विज्ञान के नियम पता होने के नाल नाल मनुखता के नियम भी पता होने चाहिए हैं। उसनू अपने अधिकारों की जानकारी होवे, वह दूजियां दे अधिकारां दा सत्कार करना भी आवे। उसनू सफल होने की इच्छा होवे पर सफलता लई गलत रस्ता अपनाउण तों इनकार करन दी हिम्मत भी होवे। इत्थे अध्यापक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है। अध्यापक अपने विहार राही विद्यार्थियों नू इमानदारी, समय की पाबंदी, अनुशासन, सहयोग, सहनशीलता अते मनुखी संवेदना सिखाउंदा है। बच्चे साडियां गल्लां नालों ज़्यादा साडे विहार तो सिखते हैं। जे अध्यापक अपने विद्यार्थी की गल ध्यान नाल सुनदा है तो विद्यार्थी सुनना सिखता है। जे अध्यापक हर बच्चे नाल बराबरी का विहार करता है तो बच्चे विच बराबरी के भाव पैदा हुंदा है। जे अध्यापक गलती करन वाले बच्चे नू अपमानित करन दी बजाए सुधार का मौका दिंदा है तो बच्चा सिखता है कि गलती अंत नहीं बल्कि सीखण का एक पड़ा है। यही चरित्र निर्माण है। असी अक्सर कहते हैं कि अज दे बच्चे कल दे नागरिक हैं, पर असल विच ओ सिर्फ कल दे नागरिक नहीं, ओह अज ही साडे समाज दा हिस्सा हन अते कल दे समाज दी दिशा उन्होंने ही तय करनी है। अज क्लास विच बैठा एक बच्चा भविख विच डाक्टर, विज्ञानी, अध्यापक बन सकता है, जां ओह आधुनिक खेती करके देश दी खुराक समस्या विच भी योगदान पा सकता है। ओह कोई उद्योगपति बन के रुजगार भी पैदा कर सकता है, कोई कलाकार बन के समाज की संवेदना नूं आवाज दे सकता है। पर इन्हां सारियां संभावनावां दा पहला दरवाजा स्कूल विच खुलदा है अते उस दरवाजे की चाबी एक अध्यापक दे हथ हुंदी है। सिक्ख्या समाज विच बराबरी लियाउण दा सब तो प्रभावशाली साधन है। स्कूल दे क्लासरूम विच वख वख परिवारां, समाजिक पिछोकड़ां अते समर्था वाले बच्चे इकट्ठे बैठते हैं। अध्यापक का फर्ज है कि वह हर बच्चे नूं महसूस करावे कि वह महत्वपूर्ण है। जिस बच्चे कोल घर विच पढ़ाई लई सहूलतां घट हन, उह वी अध्यापक दे हां पक्खी रवैये अते एक दो मिंटां दी सही सेध नाल अगे वध सकदा है। जिस बच्चे नू अपनी योग्यता ते भरोसा नहीं, अध्यापक उसदा विश्वास बन सकदा है। जो बच्चा पिछे रह गया है उसनू सिर्फ कमजोर कहण दी बजाए अध्यापक हल्लाशेरी दे के बच्चे नू अगे लै आउंदा है। यही अध्यापक दी असली जिम्मेवारी है। अध्यापक जदों बच्चे नू उसदी मात भाषा जां होर भाषावां नाल जोड़दा है तो बच्चा केवल शब्द नहीं सीख रहा हुंदा, वह एक संसार नाल जुड़ रहा हुंदा है। एक संवेदनशील अध्यापक बच्चे नू अपनी भाषा नाल प्यार करना सिखाउंदा है अते नाल ही दूजियां भाषावां अते सभ्याचारां दा सत्कार करना भी सिखाउंदा है। यही सच्चा बहुभाषी अते बहु सभ्याचारक भारत है। अज असीं अजिहे समें विच रह रहे हां जिथे तकनालोजी ने सिक्ख्या दे ढंग नू बहुत बदल दिता है। समार्ट बोर्ड, डिजिटल समगरी, ऑनलाइन सिक्ख्या, सिख्यात्मक एप्लीकेशन अते हुण आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस, ये सब सिक्ख्या दे नवे साधन हन। पर इत्थे एक गल चेते रखिए, तकनालोजी अध्यापक दी थां नहीं लै सकती, क्योंकि एक मशीन जानकारी तां दे सकती है पर बच्चे दीआं अक्खां विच लुकी हुई उदासी नू पढ़ नहीं सकती। उस उदासी नू पढ़न लई अध्यापक दी लोड़ पैंदी है अते हमेशा पैंदी रहेगी। एक कंप्यूटर उत्तर दे सकदा है पर सही अते गलत विच नैतिक फर्क समझाउणा अध्यापक दा कम है। कृत्रिम बुद्धि जानकारी नू तेज करदी है पर मनुखी संवेदना, हमदर्दी अते रिश्ते दी थां नहीं लै सकदी। यूनैस्को ने भी मौजूदा आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे युग विच अध्यापक दी भूमिका नू महत्व दित्ता है अते कहा है कि अध्यापक ओह मनुखी संबंध बनाउंदे हन जिन्हां नू कोई मशीन जां तकनालोजी पूरी तरह बदल नहीं सकती। राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 विच जिथे अध्यापक नू सिखण सिखाउण दी प्रक्रिया दे केंद्र विच रख्या गया है, उत्थे ही अध्यापकां दे लगातार पेशेवर विकास, ज्ञान अते हुनर नू लगातार अपडेट करदे रहण दी ताकीद भी कीती गई है। इसदा अर्थ बहुत स्पष्ट है, अध्यापक आप सिखणा बंद कर देवे तो दूजियां नू सिखण लई प्रेरित नहीं कर सकता। एक चंगा अध्यापक हमेशा एक चंगा विद्यार्थी भी रहिंदा है। वह नवीं किताबां पढ़ता है, नवे तरीके सिखता है, अपनी क्लास की समीख्या करता है, विद्यार्थियों तो भी सिखता है अते अपनियां गलतियां नू भी मनण तो नहीं डरदा। यही असल पेशेवरता है। स्कूल विच असी अक्सर अजिहे बच्चे वेखदे हां जो पढ़ाई विच तां बहुत अगे हुंदे हन पर कुछ बच्चे अजे भी हुंदे हन जो चुप रहिंदे हन, पिछे बैठदे हन जां अपने आप नू दूजियां नालों हीणा समझदे हन। अजिहे बच्चे नू सिर्फ किताब नहीं चाहीदी बल्कि उसनू उम्मीद चाहीदी है, उसनू कोई पिठ थापड़न वाला चाहीदा है, ये कहण वाला चाहीदा है कि मैं तेरे ते विश्वास करदा हां। अध्यापक जिहा एक वाक बच्चे लिए पूरी जिंदगी की ताकत बन सकता है। अध्यापक वह व्यक्ति है जो बच्चे के वर्तमान देख के उसका भविख तय नहीं करता, बल्कि बच्चे के अंदर लुकी संभावना देखता है। जे असी समाज में नशिया घटाना चाहते हाँ तो स्कूल मजबूत करना पवेगा। जे असी लिंग समानता चाहते हाँ तो क्लासरूम समानता का विहार करना पवेगा। जे असी वातावरण बचाना चाहते हाँ तो बच्चे सिर्फ वातावरण दिवस से भाषण नहीं सगों रोजाना के जीवन में कुदरत नाल जिम्मेवार विहार सिखाना पवेगा। जे असी संविधानिक मुल्लां मजबूत करना चाहते हाँ तो बच्चों न्याय आजादी समानता अते भाईचारे दे मुल जीवन विच अमल करके दिखाने पैणगे। अते एक काम सिर्फ किताब नाल नहीं होवेगा, एक काम अध्यापक दे विहार नाल होवेगा। इसलिए अध्यापक एक क्लास दा ही नहीं पूरे समाज दा निर्माता है। असी हर साल 5 सितंबर नूं अध्यापक दिवस मनाउंदे हां। भारत विच ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण दे जन्म दिवस नाल जुड़िया होया है, पर अध्यापक दा सन्मान सिर्फ एक दिन दे फुल्लां शुभकामनावां अते समारोहां तक सीमित नहीं होना चाहिदा। अध्यापक दा असल सन्मान यह है कि उसनू सिक्ख्या दे काम लई लोड़ींदे साधन अते समां दित्ता जावे, उसदे पेशे दा सत्कार होवे, उसनू नवीं तकनालोजी अते नवीं सिक्ख्या प्रणाली नाल जोड़िया जावे। अध्यापक दा सन्मान केवल शब्दां नाल नहीं सगों एक मजबूत सिक्ख्या प्रणाली नाल होना चाहिदा है। अज बच्चे कोल जानकारी दी कोई घाट नहीं, उसदे हथ विच मोबाइल है, उस कोल इंटरनेट है, वह दुनिया दे किसी भी विषय बारे कुछ सकिंटा में जानकारी लभ सकता है। तो फिर अध्यापक की लोड़ क्यों है? क्योंकि जानकारी अते ज्ञान इको चीज नहीं हन। जानकारी यह दस सकती है कि की है, ज्ञान यह समझाता है कि क्यों है, अते विवेक यह सिखाता है कि इस ज्ञान की वरतों कदों अते किवें करनी है। अध्यापक बच्चे नूं जानकारी तो ज्ञान अते ज्ञान तो विवेक वल लैके जाता है। यही अध्यापक की असली ताकत है। एक चंगा अध्यापक ज्ञानवान होवे यह जरूरी है, पर सिर्फ ज्ञानवान होना काफी नहीं। वह संवेदनशील होवे, वह सुनने वाला होवे, वह बच्चों की वक्रता समझने वाला होवे, वह अपने विद्यार्थियों विच जिज्ञासा पैदा करे, वह बच्चे नूं सिर्फ उत्तर ना देवे सगों उत्तर लभण की कला सिखाए, वह अनुशासन सिखाए पर डर पैदा ना करे, वह आजादी देवे पर जिम्मेवारी भी समझाए, इस वह मुकाबले लिए तैयार करे पर मनुखता ना भुलाए, अते सब तो वध ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਬਜਟ, ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਧਿਆਪਕ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀ 2024 ਗਲੋਬਲ ਰਿਪੋਰਟ ਔਨ ਟੀਚਰ ਅਨੁਸਾਰ 2030 ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 44 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। यह आंकड़ा सानू एक गल याद करवाउंदा है, अध्यापक की लोड़ कदे खत्म नहीं हो सकती। एक अध्यापक एक विद्यार्थी नू बदलदा है, एक विद्यार्थी एक परिवार नू बदल सकता है, एक परिवार एक समाज नू बदल सकता है, एक बदलिया होया समाज एक राष्ट्र की दिशा बदल सकता है। इसलिए अध्यापक सिर्फ राष्ट्र का निर्माता नहीं, अध्यापक राष्ट्र के भविख का शिल्पकार है। साधन बदल सकते हैं, क्लासरूम बदल सकता है, किताबां बदल सकदियां हन, तकनोलॉजी बदल सकती है, पर बच्चे दे जीवन विच एक समर्पित संवेदनशील अते समर्थ अध्यापक दी लोड़ हमेशा बनी रहेगी।
1: हुणी तुसी सुन रहे सी वार्ता जिस दा विशा सी अध्यापक राष्ट्र दे निर्माता। वार्ताकार सन सुनील कुमार। आओ हुण सुनदे हां सुफियाना कलाम दी लड़ी विच सुरिंदर कौर दी आवाज विच बुल्ले शाह दी एक काफी।

कर जावा काबे नू, दिल लोचे तखत हजारे नू। सुरिंदर कौर दी आवाज विच बुले शाह दी ए काफी हुणे तुसी सुन रहे सी। आओ हुण सुनदे हां पूरन चंद वडाली ते साथियां दी आवाज विच ए सुफियाना कलाम।

लगी आंधी कदर न जाने ढोल मेरा परदेसी। पूरन चंद वडाली ते साथियां दी आवाज विच हुणे तुसी ए सुफियाना कलाम सुन रहे सी। आओ जांदे जांदे सुनदे हां जसबीर जस्सी दी आवाज विच बुल्ले शाह दी ए काफी।

सयो देव नि वधाई नि मैं वर पाया रांझा माही। जसबीर जस्सी दी आवाज वेच बुल्ले शाह दी काफी हुणी तुसी सुन रहे सी। आस करदे हां कि अज दा पंजाबी प्रोग्राम तुहानू चंगा लग्या होवेगा। इस दे नाल ही प्रोग्राम दा वेला हुण खत्म हुंदा है। बलविंदर नू इजाजत दिओ।

0: अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और श्रोताओं, अब सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे सबसे पहले हिंदी और फिर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया। राष्ट्रपति ने सभी समर्पित शिक्षकों के योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वो ऐसी पीढ़ियों का निर्माण करते रहें जो देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाएं। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महान शिक्षक बताया। शिक्षक दिवस हर वर्ष 5 सितंबर को डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्रशासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संस्थानों से चुने गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सा में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता।
2: इंडिया बिलीव्स दैट एंडलेस वॉर,
3: भारत का मानना है कि अंतहीन युद्ध समाप्त होना चाहिए और युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। हर अतिरिक्त दिन का अर्थ है अधिक मौतें, अधिक तबाही, दोनों देशों के लिए अधिक नुकसान और बाकी दुनिया के लिए अधिक लागत। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने इस चिंता को सार्वजनिक रूप से व्यक्त किया था। इसलिए हमारे प्रयास बातचीत और कूटनीति को बढ़ावा देने पर केंद्रित होने चाहिए।
2: प्रमोटिंग डायलॉग एंड डिप्लोमेसी,
1: विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से मुलाकात की। दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक सड़कों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। सरकार ने आईएसओ टैंक कंटेनरों में पेट्रोलियम के आयात और परिवहन के लिए 3 साल तक की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम संशोधन नियम 2026 का मसौदा जारी किया है। इसमें आवेदन प्राप्त होने पर 7 कार्य दिवस में मंजूरी देने का प्रस्ताव है। प्रस्ताव के अनुसार पेट्रोलियम से भरे या पेट्रोलियम के लिए इस्तेमाल होने वाले आईएसओ टैंक कंटेनरों को बिना अनुमति आयात नहीं किया जा सकेगा। केरलम के त्रिशूर जिले में एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसा कल रात केपामंगलम के पन्नाम्बिकन्नू में एक कार के हाईवे पर खड़े एक ट्रक से टकराने से हुआ। कार सवार सभी युवक तमिलनाडु के छात्र थे। स्थानीय लोगों, दमकल कर्मियों और पुलिस ने युवकों को कार से निकाला। उनके शवों को त्रिशूर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अफ्रीका का वास्तविक आकार बेहतर ढंग से दिखाने वाले नए विश्व मानचित्र के पक्ष में मतदान किया है। 164 देशों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि अमेरिका ने इसके विरुद्ध मतदान किया। 6 देश मतदान से अलग रहे। मर्केटर मानचित्र में अफ्रीका का आकार वास्तविकता से बहुत छोटा दिखाई देता है, जबकि अफ्रीका ग्रीनलैंड से लगभग 14 गुना बड़ा है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी अगले दो दिन तक तेज बारिश की आशंका है। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सायरा मुज्तबा। President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology, and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers' Day today, the President said that teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through their guidance and mentorship. She said, dedicated and caring teachers can recognize the unique potential of students, inspire them, and encourage them to strive for excellence. President Murmu also urged teachers to promote independent thinking and cultivate a spirit of inquiry among students. President Murmu also paid tribute to former President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. On the occasion, the President will confer the National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. The 48 selected teachers are from 27 states, 7 union territories, and 6 central government organizations. The President will also present national awards to 21 teachers and faculty members from higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics, and management. The government has proposed allowing up to 3-year permissions for importing and transporting petroleum in ISO tank containers and introducing a 7-working-day deemed approval mechanism for complete applications as part of proposed amendments to the Petroleum Rules 2002. The Ministry of Petroleum and Natural Gas issued a draft notification on Thursday proposing the Petroleum Amendment Rules 2026. The Ministry has invited objections and suggestions on the draft, which will be considered after the expiry of 30 days from the date the Gazette copies are made available to the public. External Affairs Minister Jay Shankar said India is in continuous touch with both Ukraine and Russia. He said New Delhi is exploring ideas and suggestions that could help mitigate or end the conflict. Dr. Jayashankar made the remarks while addressing a joint press conference with Poland's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Radoslaw Sikorski following their talks in Warsaw yesterday.
2: India believes that endless war must give way to an end to war. These are wars without winners. Every additional day means more death, more destruction, more loss to the parties themselves, and more cost to the rest of the world. This concern was voiced publicly by Prime Minister Modi recently. Our efforts must therefore focus on promoting dialogue and diplomacy.
4: The UN General Assembly has voted to replace the traditional world map with one that more accurately reflects the size of Africa. The Correct the Map resolution, sponsored by Togo and backed by African Union members, passed with the support of 164 nations, including France and the UK. The United States was the only nation to vote against it, while 6 countries abstained. The External Affairs Ministry has said 3 more internationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazaar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randhir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation has crossed 1,340, with 5,000 remain missing as search and rescue operations continue. The Inter Meteorological Department has issued an orange alert for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh today. Heavy rainfall is also expected over parts of northeastern states, Bihar, Madhya Pradesh, Haryana, Chandigarh, Uttarakhand, Sikkim, Bengal and Uttar Pradesh for the next 2 days. And in women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. Indian time. In badminton, Indian men's doubles pair Sattvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on the Malaysian duo of Noor Mohammad and Tan Wee Kyong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. And that is the end of this news bulletin.
0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 10:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, लीजिए 20 सेकंड और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपकी पसंद।
5: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे।

0: So easy.
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए. RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
3: फिल्म संगीत आपकी पसंद में स्वागत है आप सभी का. आपके साथ हैं आपके दो दोस्त कुसुम और
4: सुषमा.
3: जी हाँ, और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.
4: तो देखिए, प्रथम गुरु तो वैसे माँ होती है हमारी. सभी प्रथम गुरु के साथ साथ सभी जिनसे हमने आज तक सीखा. देखिए, मैंने तो कुसुम से भी बहुत कुछ सीखा है और वो भी मेरी गुरु है. तो आपको भी बहुत बहुत प्रणाम.
3: धन्यवाद आपका सुषमा. देखिए कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया अनवरत है जो जीवन भर चलती रहती है ना. कहीं ना कहीं मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखा और आपने मुझसे. तो आदरणीय है हम एक दूसरे के लिए.
4: बिल्कुल सही, क्योंकि हाँ, अक्सर जिंदगी में बहुत छोटे बच्चे से भी बहुत कुछ सीख
3: हाँ,
4: सकते हैं.
3: वही मैं कहने वाली थी कि जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनसे भी हम उनके संदेशों के द्वारा बहुत कुछ सीखते हैं. शब्दों का उतार चढ़ाव सीखते हैं, उनकी भावनाएं आदान प्रदान करना सीखते हैं. और फिर कह सकते हैं कि देखिए, कार्यक्रम की शुरुआत हुई नहीं कि हमने संदेशों के लिए कहा भी नहीं और संदेश आ भी चुका है. रोशन देवांगन है बिलाई छत्तीसगढ़ से. ये कहते हैं, गुरु सिर्फ पढ़ाते नहीं बल्कि जीवन जीने की कला सिखाते हैं. उनके लिए ज्ञान संस्कार हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है. सभी आदरणीय शिक्षक शिक्षिकाओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं.
4: तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं.
3: जी बिल्कुल, और हमारे सभी श्रोताओं को हम दोनों की तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं. और सबसे पहले उनके जो आदर्श हैं, माता पिता हैं, उनको इस दिवस की शुभकामनाएं. क्योंकि हमारे जीवन में हमारे जो गुरु होते हैं, जैसा कि सुषमा ने कहा, माँ होती है और माँ के साथ पिता, ये दोनों ही हमारे लिए एक गुरु की तरह सदैव और जीवन भर हमारे मार्गदर्शक बने रहते हैं. कोई भी घड़ी हो, कोई भी समय हो, कोई भी पल, हमेशा वो हर कदम पर हमारा मार्गदर्शन करते रहते हैं.
4: और कहा भी गया है ना कि सर्वप्रथम जो है वो सबसे पहले जो है प्रथम गुरु ही होता है. गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊपर है. तो गुरु को हमेशा जो कि हमें सिखाता है. और आजकल के गुरु जो है उनके पास भी बहुत सारे चैलेंजेस है.
3: जी बिल्कुल.
4: जी है ना, मॉडर्न एजुकेशन की बात करें, ऐसे तो हम देख रहे हैं कि हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं. तो इन सब चीजों को लेकर बात करेंगे. लेकिन उससे पहले श्रोताओं को बता दूं कि iprediodelhi@gmail.com ये हमारा मेल आईडी है. इस पर आप अपने संदेश हम तक पहुंचा सकते हैं और आप हमें बताएं कि आपके अपने जो गुरु हैं जिन्हें आप बहुत अच्छे बहुत सबसे ज्यादा मानते हैं वो कौन है. कौन है जो आपकी दिल में हमेशा जगह बनाए रखता है.
3: और आपका जो दिल दिमाग है हमेशा ये कहता है कि आज मैंने जो ये काम किया मेरे उस गुरु ने मुझे बताया था कि आपको ऐसे चलना है. मतलब हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में आपके दिलो दिमाग में छाए रहते हैं. आप कहते हैं कि नहीं, मुझे इससे अलग जाना ही नहीं है क्योंकि उन्होंने जो कहा वही सही है. तो आप बताएं, आज का हमारे पास आपके लिए प्रश्न है कि आपके जीवन में आपके पथ प्रदर्शक गाइड और गुरु, जो भी आदरणीय है, जितने भी आदरणीय शब्द है, सभी के साथ हम पूछना चाहेंगे किसे मानते हैं आप. आपके जीवन में पहले गुरु कौन रहे
4: और आप उन्हें कितना सम्मान करते हैं, कितना याद करते हैं. तो वही संदेश आप हमें आज तक बचाएं, यहाँ पर हमारी मेल आईडी पर पहुंचाएं. और जैसे हमने पहले भी कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवे महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः. तो एक बहुत ही खूबसूरत गीत है कुसुम, आप देख रही हैं. और सच में हम सभी अपने सभी गुरु जी को ये गीत जरूर सुनाएंगे. और इस गीत को ना मैं एक दावा करती हूँ, सारी पुरानी बातें आपकी ताजा.
3: हमारी बातें तो रुकने नहीं वाली, वही वाली बात है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए. तो भाई हमारी बातें चलती रहेंगी. आप हमारे साथ जुड़िए, अपने संदेश भेजिए और साथ में लेते हैं गीत का आनंद. मास्टर जी की आगे चिट्ठी है पद्मनी कोलापुरी और ये
4: शिवांगी जी, शिवांगी कोलापुरी
3: जी सुनते हैं.
4: हां जी, किताब फिल्म से एक गीत है, बहुत ही खूबसूरत.

0: कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगर

बैठा पानी ताक। अगर हो बत

0: का झाड़।
1: कुछ यादें ताज़ा हुई आपकी बचपन की कि बिल्ली और चूहे की कहानी? मुझे लगता है कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने अपनी जिंदगी में ना सुनी हो।
2: बिल्कुल सही, क्योंकि मास्टर जी कहानियों के जरिए ही बहुत अच्छी शिक्षाएं हमें सिखा देते हैं।
1: बिल्कुल, और जो बातें हमें किताबी ज्ञान से हम नहीं सीख पाते उनको अगर ड्रामेटिक फॉर्म में अगर आ जाती हैं तो हमें बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है। और आजकल की नई एजुकेशन पॉलिसी जो है उसका भी यही है कि बच्चों को एक कोई प्रेशर ना डाला जाए, बहुत प्यार से आसान तरीके से शिक्षा दी जाए।
2: बिल्कुल सही, और अक्सर हम देखते हैं कि अब कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए हैं सरकार के द्वारा, ऐसे प्रोग्राम्स शुरू किए गए हैं बच्चों के लिए ताकि उन्हें खेल खेल में ही चीजें सिखाई जाएं, उन्हें प्रेशर फील ना हो।
1: बिल्कुल,
2: ऐसी एक्टिविटीज हो चाहिए।
1: तो देखिए हमारी बातें तो खत्म नहीं होंगी सुषमा, क्यों ना हम संदेश ले लें अपने श्रोताओं की, किस किस ने हमारी बात सुनी और किस किस ने दिया जवाब
2: जी ना? और जैसे देखिए हमने कहा था ना कि हर किसी की अपनी अपनी यादें हैं, तो देखते हैं कि सबसे पहले लकी जो हमारा
1: रोशन देवांगन जी आ गए हैं,
2: वो तो आप ले ही चुके हैं क्योंकि इनका मैसेज आपने पढ़ लिया है। तो अब हमारा सबसे जो दूसरे नंबर का, सबसे दूसरे नंबर का जो मैसेज, आप पहला मैसेज एक तरह से कहीं गाने के बाद, तो ये है हमारे पास मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा का, और ये लिखते हैं कि दीदी की सबसे पहले तो हमारे गुरु माता पिता ही हैं जिनके कारण हम दुनिया में बहुत कुछ सीखते हैं और हमें वो सिखाते भी हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और ये हैं सीताराम कांगड़ा एकता कॉलोनी रोहतक से, बबीता बहुत, निखिल कांगड़ा और तन्वी बहुत हैं इनके साथ। अगला संदेश मिला है हमें
2: जी हाँ, ये हमारे साथी हैं एक धर्मेंद्र छींपा
1: भोपालगढ़ राजस्थान से, इनके साथ है कपिल, ईशान, पूजा, परिहार। कहते हैं आप दोनों बहनों को हार्दिक नमस्कार, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं, बेहतरीन नगमे सुनवा रहे हैं, बेहतरीन जानकारी भी आप दे रहे हैं। पहली गुरु तो माँ होती है, परंतु शिक्षा जिससे हमें मिलती है, स्कूल और कॉलेज के दिनों की याद करते हमारे गुरु ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताते हैं, हमें संघर्ष करना सिखाते हैं और सत्य की राह बताते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
2: उत्तम कुमार भक्त जी का भी संदेश आया है और इन्होंने झारखंड पाकुड़ से भेजा है, किशु, ताशु, अर्णव, आनंद, सत्यम और आनंद के साथ साथ ही बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से इन्होंने अपने साथी मुन्ना भगत और गुड्डी के साथ ये संदेश भेजा, अपनी पसंद की फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। शिक्षक दिवस पे जो हमने इनसे पूछा वो इन्होंने कुछ भी अपना विचार व्यक्त नहीं किया है। हमारे अगले साथी हैं
1: उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, इन्होंने भी कोई संदेश हमें नहीं भेजा। और ये हैं दीवाना रेडियो श्रोता क्लब बहलोल नगर, जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से, भाई प्रेम सिंह वड़वाल, सुखबीर, लखवीर, कृष्णा, श्रीमती छिंदो, प्रवीण, शीतल, नवीन, रंगीला, निशान, अनमोल, प्यारे बेटे चटकू मटकू
2: जी हाँ। और इन्होंने भी ज्यादा कुछ खास नहीं लिखा, बस ये लिखते हैं कि थोड़ी इन्होंने हमारे लिए ब्लेसिंग्स दी हैं, तो आपका, आपकी, आप ऐसे सुनते रहें हमारा ये प्रोग्राम, हमारे रेडियो स्टेशन के साथ हमेशा जुड़े रहें, हम यही दुआ करते हैं। और देखिए अगले जो श्रोता हैं ये हैं रविंद्र छावड़ा, ये लिखते हैं कि मेरी माँ मेरी गुरु हैं, क्योंकि जब मैं 6 साल का था मेरे पिताजी गुजर गए और मेरी माँ ने ही मुझे संभाला, पाला, पढ़ाया और इतना बड़ा किया है कि इस मायावी संसार में सांस ले सकूं। तो आपको भी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं,
1: शुभकामनाएं आपको। इनके साथ है इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा,
2: और नई दिल्ली से इन्होंने ये संदेश हम तक भेजा है, पहुंचाया है इन्होंने। ये अगला संदेश हम ले रहे हैं सोमदत्त जी का, ये भेज रहे हैं संदेश हमें पटियाला पंजाब से, कैरव ज्योति और गुरमंत कौर मनु के साथ। इसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी, एक बार हम लगता है कि अपना सवाल हमें रिपीट करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे साथी, तो हम ऐसे मेल्स को फिर शामिल नहीं करेंगे ना, हम चाहेंगे कि श्रोताओं आपसे हर बार कहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए, आज शिक्षक दिवस है और हमने पूछा कि आपका ऐसा गुरु जिसे आप बहुत आज दिन तक आपने याद रखा या किसे आप अपना गुरु सबसे पहला मानते हैं, तो वो आप हमें लिख कर भेजिए और क्यों आप उन्हें याद रखते हैं, ऐसा क्या सीख उन्हें उन्होंने आपको सिखाई, तो आप हमें जरूर लिखकर भेजें।
1: सुषमा, मुझे लगता है हमारे प्रश्न पूछने से पहले के ये सारे संदेश है, क्योंकि हमारे श्रोताओं को इतना प्यार है कार्यक्रम से और हमसे कि जैसे ही समय होता है संदेश भेजना शुरू कर देते हैं। हमने प्रश्न बाद में किया होगा तो कोई बात नहीं, आपने सुषमा ने प्रश्न को दोहरा दिया है। आप हमें संदेश भेजें, अपना जो भी एक्सपीरियंस है अपने लाइफ का या किसी एक समय का साझा करें कि किस गुरु की शिक्षा पर आज तक आप चलते हैं और कौन से वो गुरु हैं जिनका नाम कॉलेज में या स्कूल में या फिर अलग से आप बताना चाहेंगे कि नहीं मुझे वहाँ मेरे कोचिंग में मिले या फिर मुझे किसी कार्यस्थल पर मिले, तो बताएं कि आपने उनसे क्या सीखा और कौन सी ऐसी शिक्षा जो आपको बहुत अच्छी लगी और जिस पर आप आज तक चलते हैं।
2: बिल्कुल। और ये जो संदेश हम देख रहे हैं ये है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से। तो सिद्धार्थ गोडाने हैं, अर्चना प्रणय प्रसिद्धि और हीरा मन शेंडे के साथ इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है और काफी देर हो गई, अब गीत जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो क्यों ना एक पहले गीत सुनवा दें अपने साथियों को, फिर बिल्कुल, और बिल्कुल। संदेश शामिल करें।

0: तो मस्ती की जो पाठशाला है, पाठशाला जो है ना, ये मस्ती की पाठशाला चलती रहनी चाहिए और इसी पाठशाला के जरिए बच्चों को सिखाना चाहिए, आजकल बहुत जरूरी हो गया। अब वो गए जमाने जब डंडी से सुताई होती थी स्टूडेंट्स की। बताओ, आपने खाई है कभी मार अपने गुरुजी से?
1: नहीं भाई, अब तो वैसे भी आप मतलब ये वाला काम तो नहीं कर सकते सुषमा, ना ही आप सुनेंगे, क्योंकि अब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है हमारे इस तरह की चीजों पर। अब तो देखिए, संदेश जो है हम तो उसमें मुझे बहुत अच्छे अच्छे लग रहे हैं, हम बजाय अपनी बातों को आगे बढ़ाने के संदेश ले ले तो मेरे को लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
1: देखिए ना, लिखा है, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य भेदने का जिसने मार्ग दिखाया, जिस उस गुरु को शत शत प्रणाम। गुरु का योगदान हमारे जीवन में अनमोल होता है। इस शिक्षक दिवस पर हम

0: आपके ज्ञान और समर्पण को सम्मानित करते हैं। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये संदेश हमें भेजा था
1: आर्यन शर्मा,
0: हाँ, लेवई छत्तीसगढ़ से गुलाबदास मानिकपुरी, राजादास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी जी ने भी संदेश भेजा है
1: और ये भी शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। साथ ही लिखते हैं कि गुरु ज्ञान की ही नहीं अपितु तो जीवन जीने का कला सिखाती है। माँ तो जीवन में प्रथम गुरु होती है, बाद में हमारे जीवन में बहुत से गुरुओं का समावेश होता है। हम जिससे भी कुछ कहते सीखते हैं वो हमारा गुरु हो जाता है। और सभी गुरु और शिक्षकों को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। हमारे लिए रेडियो भी एक गुरु है जिससे बहुत कुछ सीखते हैं और हम बहुत सारा ज्ञान हम अर्जित करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा आपने लिखा, बहुत अच्छी बात कही। और अगला संदेश है ये खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा कहते हैं ये संदेश में, माता पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है हमारे लिए दीदी जी। क्या बात है, डुग्गू भाविक सिक्का भी है इनके साथ
1: जी। रोहतक कॉलोनी से इनके कुछ साथी हैं जिनके नाम इन्होंने लिख कर दिए थे। ये बबलेश पवार हैं, इनके इन्होंने भी संदेश भेजा गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से। डैनी पवार और मनीष के साथ इन्होंने संदेश भेजा, ये लिखते हैं कि मेरे गुरु माता पिता और स्कूल टीचर, मेरे इन गुरुओं ने मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर हमें ज्ञान का सही मार्ग दिखाया है। गुरु केवल हमें किताबी ज्ञान देते हैं बल्कि अच्छे संस्कार सिखाकर समाज और देश का निर्माण करते हैं। और मेरे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए गुरु हमें हमेशा प्रेरित करते हैं और हमेशा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। बहुत बढ़िया। और अगला संदेश है ये आया है हमारे पास
0: हरजिंदर सिंह भाटिया का, एंजल भाटिया, सोनू, तमन्ना भाटिया है, स्टेशन रोड जमशेदपुर से। कहते हैं मेरे गुरु मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे पाला पोसा और मार्गदर्शन दिया क्योंकि हमारे फादर हमारे बचपन में ही वो इस संसार में नहीं रहे थे। आपने अपने बड़े भाई को इतना सम्मान दिया, इतने आदर से देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, ये ऐसा ही होना चाहिए। आनंद पर्वत दिल्ली से लखपत राज, सूबेदार अमर सिंह, वेद प्रकाश चौहान लिखते हैं हमारे माता पिता हमें जीवन जीने की पहली सीख देते हैं, शिक्षक हमें ज्ञान का मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जीवन स्वयं हमें वह पाठ पढ़ाता है जिसे कोई किताब पूरी नहीं सिखा सकती। इसलिए कहा जा सकता है कि गुरु केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि हर वह अनुभव है जो हमें बेहतर इंसान बनने की राह दिखाए।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने, क्योंकि देखिए हर पल हर क्षण कोई ना कोई ऐसा इंसान हमारे जीवन में आता है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, जिसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। और हम सभी ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है, चाहे वो रेडियो, टीवी या आसपास कुछ भी हो। अब तो इंटरनेट सबसे अच्छा हो गया है, तो ऐसे बहुत
0: कह सकते हैं जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी पर हमें कुछ ना कुछ जानकारी और सीख मिलती रहती है।
1: जी जी जी। रोशन देवांगन जी ने भी का भी मैसेज आया था हमारे पास, उनका संदेश भी हमने शामिल किया है। और इसके साथ हमारे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं, जिनमें से देखिए तेली पारा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, गुणवंत श्रीवास, करुणा, आयुष, विवेक और आयुषी के साथ इन्होंने संदेश भेजा। और साथ ही साथ जाकिर हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा है हमें। और ये लिखते हैं कि हमारे पहले गुरु तो हमारे माँ बाप ही हैं जो हमें अच्छा बनने की प्रेरणा देते हैं और कदम कदम पर हमारा हौसला बढ़ाते हैं। शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।
0: और हीरामणि वर्मा जी का भी हमें संदेश मिला, सुदर्शन मुखी जी का भी संदेश मिला, अनीता मुखी, सिमरन ये हैं शांति नगर सोनीपत से, कहते हैं आदरणीय कुसुम और सुषमा जी सादर प्रणाम, शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, हमारे सबसे पहले और बड़े गुरु हैं हमारे माता पिता और फिर हमारे शिक्षक। वाकई आपका दिवस और जीवन बहुत शुभ हो और सुखद हो, कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का,
1: बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए जिस तरह से आप भी हमें बहुत प्रेरित करते हैं, हमारे लिए भी ये बहुत ही सुखद अनुभव होता है जब हम देखते हैं कि आपके इतने सारे संदेश आते हैं हमारे एक ही बात पर कहने पर कि आप हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़िए। देखिए कुसुम, देखिए बहुत बड़ी बात है, कितने लोगों ने अपना प्यार हम तक पहुंचाया अपने संदेशों के जरिए।
0: और ये देखिए अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा, संजय सोनी, अरुण कनौजिया, पवन यादव, संजीव वर्मा, सुनील जैन, रजन, रजक, लालू, सोना, मोना, हनी, यश और उनके मम्मी पापा। कार्यक्रम में यह गीत, ये गीत सुनना चाहते हैं लेकिन लिखा है जिंदगी की तन्हाइयां, तन्हाइयों के बीच में रहने का हर अंदाज, गुजरते हुए वक्त की एक ऐसी दास्तान।

0: का जिक्र करने लगता है जहाँ पर जिंदगी हर रंग बेनूर हो जाता है, लेकिन जब अपनों के बीच में अपनों का साथ मिलता है, प्यार का एहसास होता है, चाहत की दुनिया जिंदगी को संवारने में लग जाती है, तो महसूस होता है कि हर वक्त की हर दहलीज जिंदगी में कितने काम की होती है, कितनी महत्वपूर्ण होती है। चाहत का एहसास भी कुछ ऐसा होता है जहाँ पर तमाम गमों से बेखबर होकर एक नई खुशी का एहसास जगने लगता है।
1: तो हमने तो शिक्षक दिवस पर आपको कुछ लिखने के लिए कहा था, अपनी जिंदगी का फलसफा लिख के दे दिया
0: लेकिन चलिए कोई नहीं, देखिए कहने पर लिखा, ये भी बड़ी बात है
1: जी। शिवाजी चौक कटनी से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सुबह सुबह इतना समय निकाला है। हाँ। और शंकरलाल जायसवाल हैं, इन्होंने भी अपने साथियों के साथ संदेश पहुंचाया, जिसमें हैं इनके साथी गणेश लाल, शुभम, अर्णव, राखी, तृप्ति और दुर्गेश्वरी जायसवाल, सभी ने अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। और भी साथी हमारे बहुत सारे संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके सभी के संदेशों को शामिल करें। तो अब एक गीत सुनवा देते हैं, बाकी संदेशों को हम बाद में शामिल करते हैं। तो आप क्या कहती हैं कुसुम, आप बताएं।
0: हाँ बिल्कुल, पहले गीत और फिर बातें
1: जी। तो एक और बहुत ही खूबसूरत गीत कि ऑल इज वेल, ठीक है ना, बहुत ही सुंदर गीत।

0: जो हमने गीत चलाया ऑल इज वेल, है ना। और इसके साथ में संदेश हमें मिल चुका है दत्तरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से, हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल का, इन सभी ने संदेश भेजा, धन्यवाद। बिट्टू भाटिया संदेश भेज रहे हैं झज्जर हरियाणा से, इनके साथ है रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। अगला संदेश है सुषमा,
1: राघव बघेल का है संदेश और इन्होंने उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल के साथ अपने अन्य साथियों के साथ छत्तीसगढ़ पंढरिया से ये संदेश भेजा और शिक्षक दिवस की दोनों बहनों को बधाई दी है।
0: आपको भी शुभकामनाएं। और प्रकाश वर्मा जी संदेश भेज रहे हैं,
1: इसके साथ साथ
0: नाना मोहन जी संदेश भेज रहे हैं, और ये मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा बेरड़ी से, नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय हर्षिता लाम से जी ने संदेश भेजा। अनिल मोहन जी मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ हैं,
1: इन्होंने भी अपनी पसंद का गीत सुनना चाहा है। अनिल मोहन जी ने भी भेजा है संदेश, पहाड़गंज मुल्तानी ढाना से उषा मोहन, टीलू नायक और मधु नायक के साथ। इसके साथ साथ ही हम देख रहे हैं कि चरण दास हैं, इन्होंने भी संदेश भेजा है।
0: कहते हैं शिक्षक को देखकर मोहल्ले में खेलते हुए बच्चे घर में डर के मारे छुप जाते हैं, सामने नहीं बोलते हैं, आज तरह तरह के कानून है, खुद शिक्षक डरते हैं। राजू अग्रवाल, पंकज प्रीति चौधरी।
1: बिल्कुल, ये बात तो सही है ना,
0: समय बदल चुका है।
1: जी जी, ये कह सकते हैं, लेकिन पहले हम भी थे, हमारे गुरु दूर दिख जाते थे, बाजार में भी तो चुपके से छुप जाते थे, सामने ही नहीं आते थे, बिल्कुल भी नहीं।
0: सही बात है। और ये रवि कुमार राहुल जी हैं, ये शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामना झालावाड़ राजस्थान से, अनूप सिंह नाथावत,
1: रवि कुमार राहुल ने भी संदेश में जा, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका मन्नत और गुरकीरत राहुल के साथ अंबाला से, हरियाणा से। और इसके साथ साथ ही मुकेश कश्यप जी हैं, इन्होंने संदेश भेजा है हमें,
0: जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, इनके साथ है शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, मानवी, लक्ष्य, मोहिनी, सोनी, ऋतिक, बलबीर सिंह,
1: अनिल कोहले, अनिल कोहले, इन्होंने भी बंजारा नागपुर महाराष्ट्र से संदेश भेजा है, छाया और प्रियांश और के साथ। और ये लिखते हैं कि बेशक माता पिता ने हमें चलना सिखाया, मगर गुरु ने हमें संसार में चलना सिखाया।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: जी जी जी।
0: सतीश अनेजा जी ने संदेश भेजा, कहते हैं कि बार बार वही शामिल हो रहे मेल भाई, हमने आपका भी शामिल किया। और ये है, नमस्कार दोनों बहनों को शिक्षक दिवस की अग्री बहुत सारी शुभकामनाएं, मेरे मार्गदर्शक मेरे पिता माता हैं और उन्होंने अच्छे संस्कार दिए, जो दुनिया में नहीं है उन्हीं के दिए संस्कार पर काम कर रहे हैं, अच्छी जिंदगी बसर कर रहे हैं, स्कूल में अध्यापकों ने उन संस्कार रूपी पौधों में खाद का काम किया, उनको भी प्रणाम। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी, बहुत अच्छा संदेश।
1: हाँ जी, इन्होंने बहुत गहराई के साथ संदेश को लिखा है। अनिल जैन जी का संदेश मलियान सरधना मेरठ से है, इन्होंने अपने साथ संयम, मुस्कान, जिव्यम और जैन के साहब करके नाम लिख के दिया है। और ये लिखते हैं कि मेरे गुरु मेरे ताऊ जी थे, उन्होंने मेरा बहुत ध्यान रखा, अच्छे कॉलेज में पढ़ाई कराते, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए ये बहुत सही है ना, कि जरूरी नहीं है कि हमारे माता पिता ही, मतलब हमारे लिए वो तो होते ही हैं, लेकिन उसके अलावा हमारे घर में ही हमारे ताऊ बुआ, जो रिश्तों की भी अहमियत होती थी ना, हर कोई सोचता था घर के बच्चों के बारे में, तो कोई भेदभाव नहीं था कि कौन किसका बच्चा है कौन किसका नहीं है।
0: दत्तरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, इन सभी का संदेश मिला हमें। और हमारे गुरु पहले माता पिता हैं, उसके बाद दूसरे गुरु शिक्षक हैं, शिक्षक हमारे को समाज में कैसे रहना है उसकी शिक्षा देते हैं। मुकाम पोस्ट कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे यादव देशमुख, प्रशांत राजे यादव देशमुख, जगुताई राजे यादव देशमुख, कुमार संचित देशमुख, प्रथमेश सर्वत, कल्पना सानवी, प्रणाली देशमुख, समस्त राजे यादव परिवार और देशमुख परिवार। और संदीप मक्कर जी का

0: संदेश हमें मिला संदीप मकर जी क्या कहते हैं देख लेते हैं। इन्होंने लिखा, शिक्षक दिवस की दिल से मुबारकबाद आज संदीप मकर, ज्योति मन्नत मकर, भारत मकर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से। वली उल्लाह अंसारी जी ने संदेश भेजा हमें, कहते हैं,
1: लोग कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा गुरु जो है वो हमारा शिक्षक होता है, लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी थोड़ी अलग है। मुझे तो मेरे पड़ोसियों ने ही पाल पोस कर बड़ा किया। उन्होंने मुझे सिर्फ सहारा ही नहीं दिया, बल्कि जीवन के अच्छे बुरे समय में मेरा हाथ थाम कर बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए मेरे लिए मेरे पड़ोसी सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि मेरे जीवन के पहले शिक्षक और मेरे गुरु हैं। उनसे मिले संस्कार, प्यार और सीख को मैं जिंदगी भर अपने साथ लेकर चलूंगा। आज शिक्षक के अवसर पर मैं उन सभी पड़ोसियों को दिल से नमन करता हूं जिन्होंने मेरे जीवन को संवारने में अपना योगदान दिया। गुरु कोई भी हो सकता है, बस उसकी सीख सच्ची और निस्वार्थ होनी चाहिए। मेरे लिए मेरे पड़ोसी ही गुरु हैं। वाह, कितनी बढ़िया बात लिखी है इन्होंने।
0: वाकई दिल से सलाम आपको उमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी जी। आपने बहुत अच्छा और दिल को छूने वाला संदेश दिया कि हमारे आसपास जो है वो भी हमारे गुरु हैं, वो भी हमारा ध्यान रखते हैं और कुछ जरूरत से बढ़कर काम करते हैं।
1: और इससे एक मैसेज ये भी जाता है, जितनी असुरक्षा की भावना समाज में बढ़ती जा रही है, आप किसी पे विश्वास नहीं करते, तो अपने पड़ोसी भी हम विश्वास कर सकते हैं। अगर रिश्तों को अगर उनके साथ मजबूत करते हैं तो वो हमारा एक सहारा भी बन सकते हैं।
0: जी बिल्कुल। और देखिए ना, डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से, बालोद से संदेश मिला, देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर संदेश भेजा। मस्कीन दादा का संदेश ले लेते हैं, उन्होंने संदेश भेजा। पहले ही लेते हैं रुपेश संघई जी ने, परभणी महाराष्ट्र से है महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार। और ये संदेश मस्कीन जी का संदेश ले लेते हैं सुषमा, ये हैं, कहते हैं, सुषमा जी, कुसुम जी नमस्कार,
1: तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। हाँ,
0: इनके साथ है वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन चंडीगढ़ से, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव रिधान खुराना।
1: इन्होंने भी आज शिक्षक दिवस पर आपने मस्कीन जी कुछ लिख कर नहीं दिया खास, मुझे तो लगा था बढ़िया सा मैसेज टाइप करके देंगे।
0: लिसनर है और आप तो मतलब
1: धुरंधर है, धुरंधर है। और पंकज शर्मा जी का संदेश लिखते हैं कि दोनों को प्यार भरी नमस्कार, तो आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। लिखते हैं कि आज शिक्षक दिवस की बहुत बड़ी बधाई, हमारा नाना भी मास्टर सोमनाथ जी,
0: मास्टर सोमदत्त जी
1: हमें
0: सीधा ताहाजी गुड गुड गुड, मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं,
1: संदेश
0: भेजा। हाँ, प्रजापति किरण ठाकुर, देखिए संदेश में इन्होंने नाम लिए हैं, संदीप गुगलानी, सुधीर नूतन, कमल सा और ये राम राम जी और प्रोग्राम
1: इन्हें पसंद आ रहा है इसलिए लिख रहे हैं, बहुत गुड गुड गुड गुड गुड बाजे जा रहा है, तो बहुत बढ़िया, आप प्रोग्राम को ऐसे ही जो बाज रहा है इसको सुनते रहिए।
0: ज्योत प्रसाद जी का संदेश है, कहते हैं, जन्माष्टमी के दिन आप सभी को शुभकामनाएं, जा चुका है लेकिन जन्माष्टमी तो हो चुकी है, आपको भी शुभकामनाएं।
1: अभी पोस्ट ऑफिस,
0: हाँ, रोड बक्सर से मंजू गुप्ता, पूनम गुप्ता, कविता गुप्ता, संजना और सवी गुप्ता।
1: इसके साथ ही देखते हैं सुभाष योगी का संदेश हम तक पहुंचा, कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुशील योगी, डब्बू बब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी के साथ। और इसके साथ ही ताज मोहम्मद हैं, उन्होंने भी हमें संदेश भेजा है।
0: साथ ही कास्ट्रो का संदेश हमें मिला और ये लिखती हैं कि जनकपुरी सहारनपुर से, इनके साथ जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो, अगर समय हो तो हमारा संदेश ले। भाई देखिए हम तो आपका संदेश ले चुके।
1: हाँ जी, बिट्टू गगनेजा हैं, इनका भी संदेश आज
0: ले चुके हैं, इनका संदेश हम सुषमा। और ये हम पंकज शर्मा जी का संदेश, दीदी जी
1: ये भी हम ले चुके हैं अभी, गुड गुड गुड जो था जो
0: ये डोल राणा, ये स्पेशल एसपी गोयल, ये है,
1: ये दिल्ली से है रोहिणी से, रेनू गोयल के साथ इन्होंने संदेश भेजा और अपनी पसंद की फिल्म का गीत सुनना चाहा है।
0: मधु किरण, ये सबसे ऊपर हमें संदेश मिल रहा है एक, ये है डोल राणा, नमस्कार आप दोनों प्रस्तुतकर्ताओं को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं, माता पिता ही सबसे पहले गुरु होते हैं, शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं, सदा हमें सम्मान करना चाहिए, डी बी राणा, नेहरू विहार, दिल्ली से।
1: जी दिल्ली वाले भी जाग चुके हैं।

0: रवि ने कहते हैं, डियर मैम ग्रीटिंग्स टू बोथ ऑफ यू, थैंक्स फॉर सिलेक्शन दिस डे, आई स्टिल रिमेम्बर माय हिस्ट्री सर, ही वाज ग्रेट इन टीचिंग एंड गाइडिंग ऑल द स्टूडेंट फॉर होनेस्टी एंड डेडिकेशन, रिगार्ड्स प्रवीण कुमार शर्मा सूर्यनगर गाजियाबाद से। बहुत अच्छा संदेश दिया आपने, और एक सिद्धार्थ गोंडाने जी ने संदेश दिया, इनका ले चुके हैं,
1: हाँ इनका संदेश हम शामिल कर चुके हैं,
0: ले चुके हैं हम ये सभी संदेश। ये कहते हैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक, इन सभी का हमें संदेश मिला।
1: और साथ ही साथ हम जी एक गुप्ता करके संदेश भेजा है, ये है हमारे
0: हाँ। ग्राम गेंदा टोला बाजार चौक से 36 से वीरेंद्र कुमार गुप्ता, अंजलि गुप्ता, योगिता गुप्ता, गजेंद्र गुप्ता जी ने संदेश हमें भेजा। और इनके सिवा जो हमें संदेश मिला, और आर कुमार जी का संदेश मिला वडिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटू टोमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, और तुलसी मस्किन जी का ले चुके हैं, ज्योत जी का हम ले चुके हैं संदेश, मैक्सिमम संदेश हम ले चुके हैं सुषमा, मुझे ऐसा लगता
1: जी
0: है।
1: जी हाँ, हमने कोशिश की कि जितने भी संदेश हम तक पहुंचे हैं उन्हें हम जरूर शामिल करें अपने इस प्रोग्राम में। और मैं अभी हमारे पास कुछ ही मिनट्स बचे हैं कुसुम, हम देख रहे हैं।

0: कि घड़ी जो है वो बहुत जल्दी से भाग रही है और हमें पता ही नहीं चला कि कितनी जल्दी ये समय बीत गया अपने दोस्तों से बात करते करते।
1: अब वक्त है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन कुछ संदेश जो रह गए उनको देख लेते हैं हम।
0: अगर कोई हमारा साथी छूटा होगा तो हम जरूर उसे शामिल करना चाहेंगे।
1: संजय ढींगिया जी है, नमन ढींगिया जी, अपार ढींगिया जी का संदेश मिला
0: और इसके साथ साथ बाबू शिवा हैं, इनका संदेश भी हमारे पास आया था।
1: शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल, शिवांश, संगीता, लिपि गोप, दीपाली गोप का संदेश,
0: पश्चिम सिंह भूम चाईवासा झारखंड से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया।
1: नारायण खर्चे जी का संदेश हमें मिला और नारायण खर्चे जी एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से, इनके साथ ललिता खर्चे, गणेश, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमार लड्डू, देविका चौधरी, इन सभी का संदेश मिला। इनका
0: इसके अलावा हमारे पास जाकिर का संदेश आया था, फिर साथी रामेश्वर हैं, नासिर अली हैं, अनिल तामरकर हैं और साथी साथ
1: मोहनदास जी हैं जी, बिट्टू भाटिया, इन सभी के संदेश,
0: हिमानी वर्मा का भी संदेश हमारे पास आया है
1: जी।
0: और इन सभी साथियों ने अपनी पसंद के गीत सुनना चाहे हैं और साथियों हम हर बार आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी कोशिश करें कि जो विषय हो प्रोग्राम का उसके साथ जुड़ेंगे तो आपके संदेश कहते जल्दी जल्दी आएंगे। देखिए ज्ञान भूषण जी
1: संदेश मिला है और पीएस नामकर जी का हमें संदेश मिला, राजेश जैन, इनका संदेश हमें मिला और
0: बसंत अकीला अलीका जी का भी संदेश आया था हमारे पास।
1: विनायक बेंडे जी का संदेश मिला हमें, भाई मूसा शेख का और इनके अलावा और सभी के संदेश हम ले चुके हैं। धन्यवाद आप सभी का संदेश भेजने के लिए, यही कहेंगे और बने रहिए आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल से और जुड़े रहिए और कार्यक्रमों का मजा लेते रहिए। फिलहाल कुसुम और सुषमा को दीजिए इस कार्यक्रम से आज का कार्यक्रम यहीं तक, लेकिन छोड़े जाते हैं आपको एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ। क्यों सुषमा?
0: बिल्कुल सही, और एक बार फिर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और यही कहेंगे कि जिससे आप कुछ भी सीखें, चाहे छोटी सी छोटी बात हो, उसे हमेशा अच्छी बात जो सीखते हैं उसका शुक्रिया जरूर अदा करें। कहते ना शुक्र नहीं होना है, शुक्र जरूर अदा करें
1: जी बिल्कुल।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम आपके पसंद। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर 11 बजने को है। कुछ ही पलों में श्रोताओं आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। देश भर में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में इस मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा।
2: हो सकता है एकाध बच्चा शिक्षा में ठीक नहीं होगा, लेकिन परमात्मा ने हर एक को कोई कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग।
1: श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक

0: स्क्रीन समय पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, मैंने एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सके, और ऐसे में क्रिएटिविटी के तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि इसके प्रति लगातार जागरूकता फैलाने की जरूरत है, क्योंकि बच्चे अनजाने में ही इसकी चपेट में आ जाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस समाज में शिक्षकों के महत्वपूर्ण योगदान को सम्मान देने का अवसर है। ये भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देने का भी दिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों से अपना ज्ञान लगातार बढ़ाने, नई तकनीक अपनाने और पढ़ाने के नए तरीकों का उपयोग करने का आह्वान किया है। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति और शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि देते हुए महाशिक्षक बताया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर आज 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: हर वर्ष 5 सितंबर को पूरे भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के पूर्व राष्ट्रपति, प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और दार्शनिक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के उपलक्ष में मनाया जाता है। यह अवसर राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों और शिक्षाविदों की महत्वपूर्ण भूमिका का सम्मान करता है। शिक्षक विद्यार्थियों के जीवन को बदलते हैं, पीढ़ियों को दिशा देते हैं और समाज की नींव को मजबूत करते हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह नई दिल्ली में 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। चयनित 48 शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों से हैं। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का ये कॉलेज देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। इसकी स्थापना वर्ष 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का सम्मेलन कल शुरू हो गया। सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित रहेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए रूस और यूक्रेन के लगातार संपर्क में है। वार्सो में पोलैंड के विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की के साथ बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि युद्ध का कोई विजेता नहीं होता। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत संघर्ष समाप्त करने के लिए हर संभव मदद करने को तैयार है। इससे पहले उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की समेत शीर्ष नेताओं से बातचीत की। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय साइरा मुज्तबा। Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
1: अब जैसे ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा, ऐसा नहीं पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
3: This year, 82 teachers and educators have been selected for the National Teachers Awards from three departments. These include 48 teachers from the Department of School Education and Literacy, 21 teachers and faculty members from higher educational institutions and polytechnics, and 13 skilled trainers from the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. The awardees highlighted the experiences and innovations that have shaped their teaching journey. They shared several creative approaches adopted by them to make classroom learning more engaging and effective. The Prime Minister further underlined that Teachers' Day is about appreciating the strong contribution of teachers to our society and noted that it is also a day to pay homage to Bharat Ratna Dr. S. Radhakrishnan. President Draupadi Murmu has called upon teachers and educators to continually update their knowledge, embrace technology, and adopt innovative teaching methods. In her message on the occasion of Teachers' Day today, the President said that teachers and educators play a vital role in nurturing talent and strengthening character through their guidance and mentorship. President Murmu also paid tribute to former President Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. On the occasion, the President will confer National Teachers Awards on 48 school teachers in New Delhi this morning. Vice President C.P. Radhakrishnan and Home Minister Amit Shah have extended their greetings on the occasion of Teachers' Day. Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics, and management. The government has proposed allowing up to 3-year permissions for importing and transporting petroleum in ISO tank containers and introducing a 7-working-day deemed approval mechanism for complete applications as part of proposed amendments to the Petroleum Rules 2002. The Ministry of Petroleum and Natural Gas issued a draft notification on Thursday proposing the Petroleum Amendment Rules 2026. External Affairs Ministry has said 3 more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazaar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Ranthir Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. Meanwhile, death toll from the floods in the Himalayan nation has crossed 1,340, while 5,000 still remain missing. External Affairs Minister Jaishankar is set to address the annual high-level session of the UN General Assembly on the 26th of this month. Mr. Jaishankar will deliver India's national statement during the afternoon session of the general debate, which will be held from 22nd to 28th of this month. And in women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight at 8 p.m. Indian time. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 11:10 और पूरे हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 17 सेकंड, और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे अब सबरस। सबरस में आज आप सबसे पहले सुनेंगे भारती सिंह के स्वर में गीत, जगजीत सिंह जी की गाई गजल और साथ ही साथ रूमा लैला का एक तराना। साथ ही आप सुनेंगे पंजाबी गीत गुरदास मान की आवाज में।

0: अभी आप सुन रहे थे सबरस कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली है।
1: दिस इज दिल्ली, प्लीज स्टैंड बाय फॉर आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। दिस इज आकाशवाणी। वी नाउ ब्रिंग यू लाइव डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रेजेंटेशन सेरेमनी ऑफ द नेशनल अवार्ड टू टीचर्स बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators are Shoaisyar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
0: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको सुनवाते हैं नई दिल्ली के विज्ञान भवन से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण। विवरण दे रहे हैं शोएशियार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में। आइए विज्ञान भवन चलें।
2: सभी श्रोताओं को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

0: नमस्कार, मैं हूं शोएसियार खान और अंग्रेजी में आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मेरे साथ हैं कौशिक राय। आकाशवाणी के इस सीधे प्रसारण में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देश की राजधानी नई दिल्ली के विज्ञान भवन के भव्य प्लेनरी हॉल से आपके साथ सीधे जुड़े हुए हैं। अवसर है शिक्षक दिवस का और समारोह है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का। ये वो अवसर है जब राष्ट्र उन शिक्षकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने ज्ञान, समर्पण, नवाचार और सेवा भाव से विद्यार्थियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। आज भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश के 48 उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस गरिमापूर्ण समारोह का आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय एवं कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस समय विज्ञान भवन का प्लेनरी हॉल देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए शिक्षकों की उपस्थिति से विशेष रूप से गौरवपूर्ण दिखाई दे रहा है। इन शिक्षकों के चेहरों पर उत्साह है, गर्व है, वर्षों की मेहनत के बाद मिले इस राष्ट्रीय सम्मान की खुशी है। आज यहां उपस्थित प्रत्येक शिक्षक अपने साथ अपने विद्यालय की एक कहानी लेकर आया है। किसी के साथ ग्रामीण भारत की कहानी है, किसी के साथ दूर दराज के क्षेत्र में शिक्षा की अलख जगाने की कहानी है, किसी ने विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच विकसित की है तो किसी ने तकनीक और नवाचार के माध्यम से शिक्षा को नई दिशा दी है। आज इन सब प्रयासों को राष्ट्र की ओर से सम्मान मिलने जा रहा है। कौशिक।
1: गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। दिस एंशियंट मंत्र कैप्चर्ड द रिवरेंस दैट इंडिया हैज फॉर इट्स टीचर्स ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल टीचर्स डे। From the family of Akashvani and Prasar Bharati, we convey our best wishes to all the teachers of the country who are the builders of Viksit Bharat 2047. And as my colleague Shoaziar Khan mentioned that today we have 48 teachers who excel in their fields and who are building the next generation of India, the leaders of India's tomorrow, who will be guiding us towards Viksit Bharat at 2047. These teachers, as Shwez mentioned, come from far and distant places of India, but every one of them carry a success story. And it is indeed a great moment for all these teachers who will be receiving the National Teachers Award from the Honorable Rashtrapati Ji in just a short while from now. What a pride moment it is indeed for them. And yesterday, the Honorable Prime Minister also interacted with the teachers and he also took feedback from them about how today's children, especially in schools, are performing. And he also told them to pay attention to those students who spend more time on the screen. So screen time has to be reduced and this has to be channelized towards sports or other skilling activities. And as we know that Teachers' Day is celebrated on the 5th of September, which happens to be the birth anniversary of India's second president, the philosopher president of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, who was the president of India from 1962 to 1967. Dr. Radhakrishnan was an academic of repute, a philosopher, and he was also a statesman. Dr. Radhakrishnan was born on the 5th of September 1888 at Tiruthani of North Arcot District in erstwhile Madras Presidency. His family hailed from Sarvepalli village in Nellore district of Andhra Pradesh, and he spent his early years in Tiruthani and Tirupati. Dr. Radhakrishnan was awarded scholarships throughout his academic life and joined the Voorhees College in Vellore for his high school education. And he graduated from the Madras University at the age of 16. Dr. Radhakrishnan studied philosophy and he wished to study mathematics also. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan wrote his bachelor's degree thesis on the ethics of the Vedanta and its metaphysical presuppositions. Dr. Radhakrishnan became president of India. Some of his erstwhile students and friends requested him to allow them to celebrate his birthday. But he replied, instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if 5th of September is observed as Teachers' Day. Thus, his birthday has since been celebrated as Teachers' Day in India. And the Honorable Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu, will arrive at the plenary hall of Vigyan Bhavan in just a short while from now.
0: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, thodi hi der mein Vigyan Bhavan mein 48 skooli shikshakon ko Rashtriya Shikshak Puraskar pradan karenge. Is karyakram mein pratyek puraskar vijeta ke dwara kiye gaye अनुकरणीय कार्य को दर्शाने वाले लघु वृत्तचित्रों को भी प्रदर्शित किया जाएगा। श्रोताओं, 5 सितंबर भारत के लिए केवल एक तारीख रही। ये दिन है देश के महान दार्शनिक, शिक्षाविद और भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का। इसी कारण भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जीवन इस बात का उदाहरण था कि शिक्षा केवल रोजगार प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। शिक्षा व्यक्ति के विचारों को विकसित करती है, उसके चरित्र का निर्माण करती है और उसे समाज और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाती है। इसीलिए शिक्षक का स्थान केवल कक्षा तक सीमित नहीं है, शिक्षक भविष्य का निर्माण करता है। श्रोताओं, एक सुंदर विचार है, शिक्षक वो नहीं जो केवल पाठ पढ़ाए, शिक्षक वो है जो जीवन पढ़ना सिखाए। और वास्तव में एक शिक्षक विद्यार्थी को केवल ये नहीं बताता कि क्या पढ़ना है, वो उसे ये भी सिखाता है क्या सोचना है, कैसा सोचना है और सही तथा गलत में अंतर कैसे करना है। यही शिक्षा की वास्तविक शक्ति है। श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार देश के उत्कृष्ट स्कूली शिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। भारत सरकार के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन उत्कृष्ट शिक्षकों के योगदान को सम्मानित करना है जिन्होंने अपने समर्पण से विद्यार्थियों के जीवन को समृद्ध किया है और स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है। इस वर्ष 48 शिक्षकों का चयन किया गया है। इनमें 26 पुरुष और 22 महिला शिक्षक हैं। ये शिक्षक 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और 6 केंद्रीय सरकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका चयन राज्य, जिला, राष्ट्रीय स्तर की 3 स्तरीय प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। श्रोताओं, विज्ञान भवन का यह ऐतिहासिक सभागार उत्सुकता से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की प्रतीक्षा कर रहा है और अब मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी इस वक्त सभागार में पधार चुके हैं। उनके साथ शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी भी हैं। माननीय राष्ट्रपति के आगमन की सुगबुगाहट यहाँ पर अब बढ़ गई है, लोगों में उत्साह बढ़ गया है, कौतूहल बढ़ गया है और इस वक्त सबकी निगाहें हैं उस द्वार की तरफ जहाँ से माननीय राष्ट्रपति कुछ ही क्षणों में प्रवेश करेंगी और ये 2026 के राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार प्रदान करेंगे।
1: एंड ऑन द डेस वी कैन सी दैट द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन श्री प्रहलाद जोशी, द मिनिस्टर फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इंडिपेंडेंट चार्ज एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन श्री जयंत चौधरी, डॉक्टर सुकांत मजुमदार, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन एंड द ऑनरेबल President of India Srimati Draupadi Murmu has arrived at the plenary hall of the Vigyan Bhavan and she has been loudly cheered by all the awardees and the delegates who are present at the plenary hall.
0: Yatyant garimamay drishya hai Bharat ke rashtrapati is waqt aur

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के साथ ही इस समारोह का विधिवत शुभारंभ हो चुका है। माननीय राष्ट्रपति अपना स्थान ग्रहण करते हुए।
1: महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का शुभारंभ किया जाए।
0: और अब माननीय राष्ट्रपति से विधिवत अनुमति लेकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है।
2: गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
0: देश के अलग अलग हिस्सों से आए शिक्षक राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित है और पूरे सभागार में सम्मान और उत्साह का वातावरण दिखाई दे रहा है। सभागार में उपस्थित गणमान्य अतिथि और शिक्षकगण राष्ट्रपति का अभिवादन कर रहे हैं। सबकी निगाहें इस वक्त मंच की तरफ हैं और मंच पर आसीन है माननीय राष्ट्रपति के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी,
2: इस पुण्य अवसर
0: शिक्षा राज्य मंत्री
2: शिक्षकों
0: डॉक्टर
2: किया जा रहा है
0: सुकंता मजूमदार,
2: पहले 24 पुरस्कार विजेताओं पर हम एक
0: देवश्री मुखर्जी जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप में, इसके अलावा मिस दीप्ति गौड़ मुखर्जी जो कि हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सेक्रेटरी है, और श्री टी के अनिल कुमार सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन विद्यालय।
3: एंड नाउ शॉर्ट फिल्म ऑन द फर्स्ट लॉट ऑफ 24 नेशनल टीचर अवार्ड।
4: विज्ञान शिक्षा को नई दिशा दी उन्होंने वर्चुअल बायोलॉजी लेबोरेटरी, एआई इनेबल्ड बायोलॉजी एजुकेशन और क्यूआर आधारित ट्री टॉक जैसे नवाचारों से उन्नत स्टेम अधिगम को सुलभ बनाया, जिसके लिए डॉक्टर दिव्येंदु सेन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सुश्री अमुथा जेनी 22 वर्षों की सेवा में फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी FLN समावेशी एवं आनंदमय शिक्षा तथा युवा नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। कम लागत वाली शिक्षण सामग्री एवं KVS फोनिक्स वर्कबुक विकसित किए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री अमुथा जे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: पंजाब के पटियाला स्थित राजकीय विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में श्री दिनेश कुमार ने करीब 25 वर्षों से विज्ञान शिक्षा को समृद्ध बनाने में योगदान दिया है। उन्हें पंजाब स्टेट अवार्ड 2020 और टीचर ऑफ द ईयर ऑफ पंजाब अवार्ड 2022 से भी सम्मानित किया गया। विज्ञान शिक्षा में अपने समर्पित योगदान के लिए श्री दिनेश कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: सिक्किम की खूबसूरत पहाड़ियों में PM श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डिकलिंग में सुश्री सुषमा तमांग ने दूर दराज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें इंस्पायर मानक इंटरनेशनल YRE कंपटीशन और एशियाई सम्मेलनों में सफलता के लिए तैयार किया, जिसके लिए सुश्री सुषमा तमांग को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। झारखंड के बरमसिया स्थित मिडिल स्कूल बरमसिया में सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी ने कोयला खनन क्षेत्र के वंचित बच्चों के लिए कम लागत वाली फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी सामग्री, आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग और व्यवसायिक कौशल के अवसरों से बच्चों की सीखने की चुनौतियों को कम किया, जिसके लिए सुश्री मुनमुन भट्टाचार्य जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के झाड़ग्राम जिले के नया ग्राम स्थित गवर्नमेंट मॉडल स्कूल में श्री शांतनु पात्र ने वंचित आदिवासी विद्यार्थियों के लिए समावेशी, तकनीक सक्षम एवं अनुभवात्मक शिक्षा को नई दिशा दी। उन्होंने ARVR ब्लेंडेड लर्निंग, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग का प्रभावी उपयोग किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री शांतनु पात्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: चंडीगढ़ के मलोया कॉलोनी स्थित राजकीय मॉडल हाई स्कूल में श्री रवि जायसवाल ने विज्ञान शिक्षण को नवाचार, तकनीक और अनुभवात्मक अधिगम से समृद्ध किया। उन्होंने कम लागत में CV रमन डोम थिएटर, मोबाइल साइंस लैब तथा पुनर्चक्रित सामग्री से साइंस एंड नॉलेज पार्क विकसित किया। उनके तकनीक सक्षम एवं नवाचारी योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और बच्चों के लिए सीखने के नए अवसर तैयार करने में सुश्री लालनुन मावी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मिजोरम के लंगलेई स्थित गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक वेंग हाई स्कूल में उन्होंने इंटरैक्टिव आईसीटी टूल्स और फ्री रेमेडियल कोचिंग के जरिए विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता को मजबूत किया, सार्वजनिक शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के अवसर देने के लिए सुश्री लाल नुन मावी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री सुनीता यादव ने छत्तीसगढ़ के खिचड़ी स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट और मोबाइल आईसीटी उपकरणों से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किया। न्योता भोजन और घर घर पुस्तक वाचन जैसे प्रयासों से सुघर पढ़ैया प्लेटफॉर्म ग्रेड प्राप्त किया। ग्रामीण शिक्षा को नवाचार से सशक्त बनाने के लिए सुश्री सुनीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
5: हिमाचल प्रदेश के भालेट स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य सुश्री मंजरी वी महाजन ने शिक्षण को बढ़ावा देते हुए कचरा प्रबंधन, कंपोस्टिंग, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में प्रभावी पहल की। शिक्षा में नवाचार और नेतृत्व के उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री मंजरी वी महाजन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।

0: अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माया बंदर स्थित पीएम श्री जीएम एसएसएस में श्री जे प्रकाश राव ने बिल्डिंग एज लर्निंग एड अप्रोच के जरिए स्कूल को ही इंटरैक्टिव रिसोर्सेज में बदला। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, डिजिटल रिसोर्सेज, 21st सेंचुरी स्किल्स को मजबूत किया, जिसके लिए श्री जे प्रकाश राव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव ने नगर निगम विद्यालय को ARVR रोबोटिक्स असिस्टिव टेक्नोलॉजी एवं QR आधारित संसाधनों से युक्त आधुनिक शिक्षण केंद्र में परिवर्तित किया। उनके एजुकेशनल पेरेंटिंग अभियान से 150 से अधिक वंचित बालिकाओं को आर्थिक सहयोग मिला। समावेशी नवाचार, बालिका सशक्तिकरण, उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री कुंदा जयवंत बच्छाव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: बिहार के विदायदेह स्थित उर्दू प्राइमरी स्कूल में सुश्री खुशबू कुमारी ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कम लागत वाली शिक्षण सामग्री और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा को सरल, सहज और प्रभावी बनाया। सुश्री खुशबू कुमारी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित PHEL के शासकीय महात्मा गांधी सांदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में डॉक्टर अर्चना शुक्ला ने 15 वर्षों में विज्ञान को प्रयोग, पर्यावरण और खोज से जोड़ा। उन्होंने 1000 से अधिक गौरैया घर, 102 प्रजातियों के पेड़ों का डिजिटल मानचित्रण और प्लांट इमोशन जैसे नवाचार किए, जिसके लिए डॉक्टर अर्चना शुक्ला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर में डॉक्टर रेणु त्रिपाठी ने 60 गांव के ड्रॉप आउट और स्कूल से बाहर बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ते हुए उन्होंने स्टेम, अटल टिंकरिंग लैब और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री के माध्यम से समस्या समाधान को बढ़ावा दिया, जिसके लिए डॉक्टर रेणु त्रिपाठी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री भवानी बोमपेल्ली ने नवाचारी शिक्षण के माध्यम से प्री प्राइमरी शिक्षा का विस्तार कर खेल आधारित एवं डिजिटल अधिगम वातावरण विकसित किया तथा कंक्रीट पिक्टोरियल एब्स्ट्रैक्ट पद्धति और कम लागत वाली शिक्षण सामग्री से गणित एवं भाषा सीखने को सरल बनाया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री भवानी बोमपेल्ली को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: सुश्री सुमन गोयल ने दिल्ली के पोर्ट कला स्थित राजकीय सर्वोदय कन्या विद्यालय में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिजिटल टूल्स और स्वयं निर्मित कम लागत वाली टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स के माध्यम से सीखने को रोचक और अनुभवात्मक बनाया। बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा, विद्यालय में स्थिरता और शैक्षणिक प्रगति बढ़ी, जिसके लिए सुश्री सुमन गोयल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के अली पिंगल स्थित राजकीय उच्च विद्यालय में श्री पदराज उमाकांत नायक के मार्गदर्शन में 50 से अधिक प्रोटोटाइप विकसित हुए, जिनमें कम लागत वाली ऑटोमेटिक प्लेट वॉशिंग मशीन भी शामिल है, जिसके लिए एक विद्यार्थी को भारत सरकार का पेटेंट मिला। वैज्ञानिक सोच, नवाचार और सामुदायिक भागीदारी से ग्रामीण शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए श्री पदराज उमाकांत नायक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री एस गणेशन भौतिकी शिक्षक ने साइंस थिएटर, अनुभवात्मक स्टेम एवं AI सक्षम शिक्षण के माध्यम से विज्ञान शिक्षा में उल्लेखनीय नवाचार किया। उनके साइंस थिएटर इंटीग्रेशन मॉडल ने नाटक, कहानी एवं प्रदर्शन के माध्यम से जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया, जिसके लिए श्री एस गणेशन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गोवा के एक्सएम स्थित गुजराती समाज स्पेशल स्कूल में श्री महादेव हनुमंत शिंदे ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षण को नई दिशा दी। उन्होंने 14 गतिविधि आधारित स्रोत पुस्तिकाएं तथा टैबलेट आधारित डिजिटल संसाधन विकसित किए। उनके प्रशिक्षित खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अम्भारत का गौरव बढ़ाया है। श्री महादेव हनुमंत शिंदे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: मणिपुर के

0: खुंबा माखा स्थित लाइको अपर प्राइमरी स्कूल में श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह ने एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कहानी और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के माध्यम से बच्चों की सीखने की क्षमता और भागीदारी को मजबूत किया, जिसके लिए श्री वांगलिम्बम गोविंद सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के सतारा स्थित सैनिक स्कूल में श्री शिव

0: राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवसर हासिल किए। श्री शिव प्रसाद अरविंद सिंगारे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के ईदगाह हिल स्थित सेंट जोसेफ कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सुश्री संगीता यादव ने गणितोत्सव, क्वेस्ट फॉर मैथमेटिक्स, मैथ ई माइंड एंड मैथमेटिक्स जैसी पहलों के जरिए गणित को बनाया रचनात्मक और विद्यार्थियों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित की, जिसके लिए सुश्री संगीता यादव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के करंजिया स्थित ईएमआरएस में मोहम्मद जफर आलम ने आदिवासी बच्चों की शिक्षा में आधुनिक तकनीक, खेल और अनुभवात्मक शिक्षण के साथ आदिवासी संस्कृति और विरासत को भी शिक्षा का हिस्सा बनाए रखा, जिसके लिए मोहम्मद जफर आलम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। और अब हमारी विनती है माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे कि
1: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स 2026 ऑन 24 ऑफ द टीचर्स ऑन टेलीफिल्म वॉज प्लेड एट विज्ञान भवन एंड वी कैन सी दैट द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी, the Union Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Union Ministers of State for Education, Shri Jayant Chaudhary, and Dr. Sukanta Majumdar, and other dignitaries are on the dais. And now the first teacher to receive the award is Shri Divyendu Sen from Rajasthan's Mahatma Gandhi Government School, Pachpahar.
2: And now he has come, which was expected of all. The National Teacher Award 2026 पुरस्कार वितरण शुरू हो चुका है।
3: दिनेश कुमार पंजाब
2: विजेताओं के नाम पुकारे जा रहे हैं।
1: श्री दिनेश कुमार फ्रॉम पंजाब विल रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
3: सुषमा तमांग सिक्किम।
2: मंच पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। एक एक करके सब शिक्षक
1: सुषमा तमांग ऑफ सिक्किम।
3: मुनमुन भट्टाचार्य जी झारखंड।
1: Munmun Bhattacharya, a teacher from Jharkhand, a really proud moment for these nation builders of India to receive the National Teacher Award 2026.
3: Shantanu Patra, West Bengal.
2: और अब पश्चिम बंगाल के शांतनु जी को ये शिक्षक पुरस्कार दिया जा रहा है। 48 शिक्षकों को आज सम्मानित किया जा रहा है।
3: रवि जायसवाल चंडीगढ़।
2: और अब चंडीगढ़ के रवि जायसवाल माननीय राष्ट्रपति से सम्मान ग्रहण करते हुए।
3: ललनुन मोई मिजोरम।
1: फ्रॉम मिजोरम मिस ललनुन मोई एंड व्हाट अ प्राउड मोमेंट इट इज इंडीड फॉर दीज टीचर्स टू रिसीव द नेशनल टीचर्स अवार्ड।
3: सुनीता यादव छत्तीसगढ़।
1: राष्ट्रपति जी एंड सुनीता यादव जी फ्रॉम छत्तीसगढ़ विल बी रिसीविंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी।
3: मंजरी वी महाजन हिमाचल प्रदेश।
2: और अब हिमाचल प्रदेश की मंजरी जी महाजन माननीय राष्ट्रपति के समक्ष अपना पुरस्कार लेने के लिए बड़े उत्साह और गर्व के साथ आगे बढ़ती हुई माननीय राष्ट्रपति
3: जय प्रकाश राव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
2: और अब अंडमान निकोबार आइलैंड से आए शिक्षक जो कि दिव्यांग है वो माननीय राष्ट्रपति की आए हल्के हल्के छड़ी के सहारे मरते हुए
1: receiving the award. What a proud moment it is indeed for Jay Prakash Rao, the teacher from Andaman and Nicobar Islands. And this is indeed a very proud moment for all the teachers who are here at the
3: Kunda Jaivan Bachao, Maharashtra.
1: And Ms. Kunda Jaivan Bachao of Maharashtra is now receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
3: Khushbu Kumari, Bihar.
2: और अब बिहार की खुशबू कुमारी माननीय राष्ट्रपति से अपना ये सम्मान ग्रहण करते हुए
3: अर्चना शुक्ला मध्य प्रदेश
2: समारोह के पुरस्कार
1: फ्रॉम मध्य प्रदेश मिस अर्चना शुक्ला एंड शी रिसीव दिस अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी फॉर वर्क स्पेशली ऑन इनोवेशन।
3: रेणु त्रिपाठी उत्तर प्रदेश।

0: Ms. Renu Tripathi from Uttar Pradesh is Ghaziabad, and she is working for especially school dropouts, STEM and automation among
1: Bhavani her students.
0: Bhavani Bompelli,
1: Telangana.
0: From Telangana, Ms. Bhavani Bompelli, and she focuses on innovation for pre-primary students. What a proud moment it is indeed.
1: Suman Goel, Delhi.
0: To receive the award from the Honorable Rashtrapati ji, and now Ms. Suman Goel from Delhi, and she specializes on ICT and digital tools in education.
1: Umakant Nayak, Orissa.
2: Rashtrapati ke haathon samman prapt karte hue shikshakon ke chehre pe ek prasannta spasht dikhai de rahi hai. Ye keval ek padak ya pramaan nahi, ye unke pure jeevan ki mehnat rashtriya star par pehchan.
0: From Puducherry, Mr. Ganeshan S is receiving the National Teachers Award 2026 from the Honorable President of India.
1: Mahadev Hanumant Shinde, Goa.
2: गोवा से महादेव हनुमंत शिंदे माननीय राष्ट्रपति से अपना सम्मान ग्रहण करते हुए
1: वांगलेमबाम गोविंद सिंह मणिपुर
0: एंड फ्रॉम द लैंड ऑफ ज्वेल्स मणिपुर इज वांगलेमबाम गोविंद सिंह
1: शिव प्रसाद अरविंद टिंगारे सैनिक स्कूल
0: फ्रॉम सैनिक स्कूल शिव प्रसाद अरविंद शिंगारे रिसीव्स द नेशनल टीचर्स अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल
1: संगीता यादव सेंट्रल बोर्ड ऑफ Secondary Education.
2: CBSE की संगीता यादव माननीय राष्ट्रपति के आगे उपस्थित होकर अपना सम्मान ग्रहण कर रही
1: हैं। मोहम्मद जफर आलम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल
2: और अब श्री जफर आलम अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं ये राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार माननीय
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदय
0: एंड नाउ द ऑनरेबल President of India, Srimati Draupadi Murmu, is being escorted to the dais along with the Minister for Education, Shri Prahlad Joshi, and the Ministers of State for Education, Shri Jayan Chaudhary and Dr. Shukanta Majumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, the Secretary, Department of Higher Education, and the Secretary, Department of Skill Development and Entrepreneurship.
2: 24 शिक्षकों को माननीय राष्ट्रपति के हाथों सम्मानित किया गया और अब माननीय राष्ट्रपति गणमान्य व्यक्तियों के साथ अपना स्थान ग्रहण करते हुए
3: महाराष्ट्र के कैच थारो रोड स्थित सानेगुरुजी निवासी माध्यमिक विद्यालय डॉक्टर नरसिंह राव गित्ते को 29 वर्षों से गन्ना श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने का काम किया है बाल रक्षक और शिक्षण अपल्यादारी जैसे अभियानों से उन्होंने बच्चों तक शिक्षा पहुंचाई उन्होंने बच्चों को उच्च शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ाया जिसके लिए डॉक्टर कविता नरसिंह राव गित्ते को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है गुजरात के रंगपुर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में श्री नितिन कुमार महेंद्र कुमार पाठक ने सीमित संसाधनों वाले आदिवासी विद्यालय को डिजिटल एवं अनुभवात्मक शिक्षा के केंद्र में बदल दिया उन्होंने 7D VR AR लैब और आर न्यूज जैसी सुविधाएं विकसित की उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस एवं इसरो प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त की उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है
4: लद्दाख के कारगिल स्थित शासकीय मॉडल मिडिल स्कूल में मोहम्मद मुस्तफा कमाल ने सीमित संसाधनों के बीच बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान को अनुभव और स्थानीय जीवन से जोड़कर रोचक बनाया 1000 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षित कर संदर्भ आधारित शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए मोहम्मद मुस्तफा कमाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है केरलम के श्री सुनील कुमार केपी ने नवाचारी एवं आईसीटी सक्षम भाषा शिक्षण के माध्यम से मलयालम भाषा में पठन संचार एवं रचनात्मक अभिव्यक्ति को बढ़ावा दिया विद्यार्थी मार्गदर्शन एवं समग्र विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री सुनील कुमार केपी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है
3: सुश्री याको तामे ने अरुणाचल प्रदेश के नाहरलागुन स्थित गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जी सेक्टर में विशेषकर बालिकाओं को विद्यालय से जोड़ा और एक जर्जर विद्यालय को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, साइंस और मैथमेटिक्स लेबोरेटरीज से सुसज्जित संस्थान में बदला। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान हासिल किए, जिसके लिए सुश्री याको तामे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: आंध्र प्रदेश के श्री राजेश कोलुरी ने एआई सक्षम एफएलएन डिजिटल शिक्षा एवं ग्रामीण विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में उल्लेखनीय योगदान दिया। राज क्लासरूम के माध्यम से डिजिटल शिक्षण को व्यापक बनाया तथा शिक्षकों की डिजिटल क्षमता वृद्धि में योगदान दिया। श्री राजेश कोलुरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: श्री गबर सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड के मेहरा स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्या खांड में 35 वर्षों तक ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा दूरदर्शन उत्तराखंड के शैक्षिक मॉड्यूल से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दूर दराज के विद्यार्थियों तक पहुँचाई। उनके नवाचार, ICT आधारित शिक्षण एवं समर्पित योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: असम के रंगिया स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय NFR में डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल ने समावेशी शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के लिए निरंतर काम किया है। मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने असम के हजारों शिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया, जिसके लिए डॉक्टर मनीषा खेत्रपाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के वार्ड नंबर 30 स्थित श्री रामकृष्ण शारदा विद्यापीठ प्राइमरी स्कूल में श्री पलाश चौधरी ने सुबह की भूख के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सो का लोर पुष्टि पहल शुरू की, जिससे बच्चों की उपस्थिति और विद्यालय में नामांकन 3 गुना हुआ। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक सशक्तिकरण से जोड़ा, जिसके लिए श्री पलाश चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। बिहार के कुचाईकोटे स्थित मिडिल स्कूल कुचाईकोटे कन्या में सुश्री पुष्पा प्रसाद ने कम लागत वाली सामग्री, डिजिटल टूल्स और ग्रुप वर्क के जरिए विद्यार्थियों को सीखने के नए अवसर दिए। उन्होंने ड्रॉप आउट बच्चों को दोबारा शिक्षा से जोड़ा और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की भागीदारी बढ़ाई। उन्होंने प्लांटेशन, वाटर सेग्रीगेशन और प्लास्टिक फ्री स्कूल जैसे प्रयासों को भी बढ़ावा दिया। सुश्री पुष्पा प्रसाद को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। 18 वर्षों से शिक्षा के प्रति समर्पित सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल ने दादरा एवं नगर हवेली के दलवाड़ा स्थित गवर्नमेंट हाई स्कूल में विज्ञान परियोजनाओं तथा शिक्षक प्रशिक्षण में योगदान देकर उन्होंने समावेशी शिक्षा, सामुदायिक सहभागिता और विद्यार्थियों के समग्र विकास को सशक्त किया। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सुश्री पूर्णिमा मोहनलाल पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के जगदीशपुर स्थित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में श्री इफ्तिखार खान ने निःशुल्क रविवार कला कक्षाओं के माध्यम से रचनात्मक एवं अनुभवात्मक अधिगम को बढ़ावा दिया। उन्होंने कला के माध्यम से सड़क सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक जागरूकता को भी बढ़ावा दिया। कला शिक्षा, प्रतिभा संवर्धन एवं सामाजिक जागरूकता में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए श्री इफ्तिखार खान को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के होनेबेल स्थित गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल समतगरु में सुश्री रत्ना कुमारी एस ने टॉय बेस्ड पेडागॉजी, अबैकस मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स के जरिए सीखने को आनंददायक और समावेशी बनाया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण विद्यार्थियों ने प्रतिभा करंजी जैसे स्टेट कल्चरल प्लेटफॉर्म्स और इंस्पायर जैसे नेशनल साइंस प्लेटफॉर्म्स पर सफलता हासिल की, जिसके लिए सुश्री रत्ना कुमारी एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
4: जम्मू कश्मीर में डलहौरी के HSS डलहौरी में मोहम्मद अयाज रैना ने कंप्यूटर लैब से लेकर स्मार्ट बोर्ड और इंटरैक्टिव ई कंटेंट को शिक्षण का हिस्सा बनाया। शिक्षक विहीन विद्यालयों के विद्यार्थियों को ऑनलाइन बॉटनी शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित की। विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए मोहम्मद अयाज रैना को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
3: रोहतक हरियाणा के राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सांघी में श्री अनिल कौशिक ने गणित को रोचक और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 40 से अधिक शिक्षण मॉडलों से सुसज्जित मैथ्स लैब, इंटरैक्टिव हरबंस पजल और वर्चुअल मैथ्स लैब विकसित की, जिसके लिए श्री अनिल कौशिक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2000

0: ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। त्रिपुरा के साबरूम स्थित पीएम श्री साबरूम गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में श्री रंजन देवनाथ ने स्मार्ट क्लासरूम्स, एक्सपीरियंशियल प्रोजेक्ट्स और इको क्लब एक्टिविटीज के जरिए लर्निंग बाय डूइंग को बढ़ावा दिया। उनके मार्गदर्शन में ग्रामीण आदिवासी छात्राओं ने स्टेट बोर्ड में शीर्ष स्थान और चीफ मिनिस्टर्स एक्सलेंस अवार्ड हासिल किए, जिसके लिए श्री रंजन देवनाथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तर प्रदेश के कोयलहा स्थित कंपोजिट स्कूल रसूलाबाद में सुश्री शालिनी कुशवाहा ने कला आधारित गतिविधियों, डिजिटल संसाधनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स के जरिए पढ़ाई को सहज और आनंदमय बनाया, जिससे विद्यालय को निपुण विद्यालय की पहचान मिली, जिसके लिए सुश्री शालिनी कुशवाहा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के पुलियमपट्टी स्थित पंचायत यूनियन प्राइमरी स्कूल में श्री थंगाराज एम ने बच्चों के लिए शिक्षा को समावेशी, आनंददायक और उनके जीवन से जुड़ा बनाया है। उन्होंने ग्रामीण स्कूलों में टॉयलेट, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरैक्टिव बोर्ड, टॉय लाइब्रेरीज और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने में योगदान दिया, जिसके लिए श्री थंगाराज एम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के जयपुर चाकसू स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक बालिका विद्यालय तुमली का बास में डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने मूंगफली से बीज गणित और पतंगों से ज्यामिति समझाने के साथ प्रश्नों से विज्ञान पहल के जरिए रटने की जगह विद्यार्थियों में जिज्ञासा और खोज की भावना विकसित की। डॉक्टर वर्तिका गुलाटी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: श्री आर रोनल्ड मेरो ने नागालैंड के सिक्चू स्थित जीएचएसएस सिक्चू सुक्सा में समुदाय संपर्क व्यक्तिगत मार्गदर्शन के जरिए बच्चों को विद्यालय से जोड़े रखा और ड्रॉप आउट कम, आईसीटी आधारित शिक्षण के साथ शैक्षिक भ्रमण, वाद विवाद और सांस्कृतिक गतिविधियों से उन्होंने सीखने को जीवन से जोड़ा। शिक्षा के प्रति उनके समर्पण के लिए श्री आर रोनल्ड मेरो को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कंजवार स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह ने जन भागीदारी एवं समावेशी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय को सामुदायिक विकास का केंद्र बनाया। उनके प्रयासों से नामांकन 69 से बढ़कर 202, उपस्थिति 44% से बढ़कर 96% हुई और ड्रॉपआउट समाप्त हुए। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी ने महाराष्ट्र के लातूर स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में खिलौनों, कला और वास्तविक जीवन की समस्याओं के माध्यम से जटिल गणितीय अवधारणाओं को सरल और रोचक बनाया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण गणितीय सामग्री देश भर के विद्यार्थियों तक पहुंचाई, जिसके लिए श्री वैभव वसंतराव कुलकर्णी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: असम के जनजातीय क्षेत्र में श्री राजेश बरदोलोई ने प्रथम पीढ़ी के मिशिंग जनजातीय विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आधारित आईसीटी सक्षम एवं बहुभाषी शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों एवं दीक्षाई कंटेंट के विकास में योगदान दिया। जनजातीय शिक्षा, बहुभाषी शिक्षण, डिजिटल सशक्तिकरण एवं सामाजिक नेतृत्व में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। सुश्री राधा राजेश ने माध्यमिक विज्ञान शिक्षा में नवाचारों एवं एआई सक्षम शिक्षण को प्रभावी बनाया। उन्होंने फील्ड आधारित अधिगम, प्रयोगात्मक गतिविधियों और जैव नैतिक चर्चाओं के माध्यम से जीव विज्ञान को अनुभवात्मक एवं जीवन केंद्रित बनाया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तथा इसरो यूआरएससी नेशनल साइंस डे में 4 बार विजेता रहे। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: और अब हम माननीय राष्ट्रपति महोदया आपसे विनम्र विनती करते हैं कि
3: प्लेनरी हॉल में पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित लघु वृत्त चित्र दिखाया गया। इन फिल्मों के माध्यम से हम जान पाए कि देश के विभिन्न हिस्सों में शिक्षक किस प्रकार शिक्षा के क्षेत्र में नए प्रयोग कर रहे हैं, कहीं तकनीक का इस्तेमाल

0: कर रहे हैं कई स्थानीय संसाधनों के माध्यम से इस प्रक्रिया को विकसित कर रहे हैं सीखने की कई खेल
1: कविता
0: गतिविधियों को.
2: एंड नाउ द ऑनरेबल राष्ट्रपति विल कन्फर द नेशनल टीचर्स अवार्ड्स टू द फर्स्ट अवार्डी इन दिस सेशन इज कविता नरसिंह राव गिट्टे फ्रॉम महाराष्ट्र. And what a proud moment it is indeed for this teacher.
1: Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, Gujarat.
2: From Gujarat, Nitin Kumar Mahendra Kumar Pathak, and he is known for his innovations, 7 DVR Labs, ICT and Children's Science Congress, and
1: Mohammed
2: also his
1: Mustafa
2: student
1: Kamal
2: participated
1: Ladakh.
2: In ISRO competition.
0: दूसरे चरण में अब माननीय राष्ट्रपति बाकी 24 शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान कर रही हैं.
2: मोहम्मद मुस्तफा कमाल ऑफ लद्दाख. He is a social science teacher and he has trained 1,000 teachers. He is also a master trainer. And now from Kerala, Sunil Kumar KP, who has used Malayalam ICT and digital tools. And the next winner is from Arunachal Pradesh, Yakun Tame, who has worked for bettering the infrastructure of the school. From Andhra Pradesh, Rajesh Koluri, who has used Raj classrooms and digital ICT tools
1: Gabbar
2: for
1: Singh
2: education.
1: Bisht, Uttarakhand.
2: From Uttarakhand, Gabbar Singh Bisht, who uses education and also is known for his Doordarshan education
1: Manisha
2: module.
1: Manisha Khetrapal, Kendriya Vidyalaya Sangathan.
2: From Kendriya Vidyalaya Sangathan, Manisha Khetrapal, who is also a master trainer of teachers.
1: Palash Chaudhary, West Bengal.
2: From West Bengal, Palash Chaudhary, and he has worked on education and strengthening society, especially for his
1: Pushpa
2: food
1: Prasad,
2: for education.
1: Pushpa Prasad, Bihar.
0: And now, Bihar se Pushpa Prasad apna pushkar praapt karne, maaniye Rashtrapati ke samaksh, pure utsah aur
1: Patel Purnima Mohanlal, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli.
2: Daman Diu, Dadra and Nagar Haveli, Purnima Patel. Receives the award from the Honorable President
1: Dr.
2: of India.
1: Dr. Iftikhar Khan, Uttar Pradesh.
0: Uttar Pradesh se Dr. Iftikhar Khan apna puraskar praapt kar rahe hain. Mananiya Rashtrapati Shrimati Draupadi Murmu.
1: Ratna Kumari S, Karnataka.
2: From Karnataka, Ratna Kumari S, and she has used toy-based pedagogy for education
1: Mohammed
2: of Ayaz children.
1: Mohammad Ayaz Raina, Jammu and Kashmir.
0: Aur ab Jammu and Kashmir se Mohammad एयाज रैना अपना पुरस्कार प्राप्त करने माननीय राष्ट्रपति के समक्ष.
1: अनिल कौशिक हरियाणा.
2: अनिल कौशिक ऑफ हरियाणा. ही हैज 40 मॉडल्स इन हिज मैथमेटिक्स लैब एंड इज नाउ रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी.
1: रंजन देवनाथ त्रिपुरा.
0: और अब त्रिपुरा से श्री रंजन देवनाथ अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं. तालियों के बीच सभी उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं.
1: शालिनी कुशवाहा उत्तर प्रदेश.
0: उत्तर प्रदेश से शालिनी कुशवाहा को ये पुरस्कार दिया गया है उनके शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य और अद्भुत कार्य के लिए.
1: थंगराज एम तमिलनाडु.
2: फ्रॉम तमिलनाडु थंगराज एम इज रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन एंजॉयबल एंड रिलेटेबल एजुकेशन.
1: वर्तिका गुलाटी राजस्थान.
0: राजस्थान से वर्तिका गुलाटी माननीय राष्ट्रपति से उन्होंने नमस्कार किया झुककर माननीय राष्ट्रपति ने अभिवादन स्वीकार किया और अब माननीय राष्ट्रपति से वो पुरस्कार ग्रहण कर रही है. शिक्षा के क्षेत्र में
1: आर रोनाल्ड मेरू नागालैंड.
2: फ्रॉम नागालैंड आर रोनाल्ड मेरू विल बी रिसीविंग द अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति जी एंड ही हैज वर्क्ड एक्सटेंसिवली ऑन इंटरएक्टिव एजुकेशन. हियर इज रिसीविंग
1: शैलेंद्र प्रताप सिंह मध्य प्रदेश.
2: प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. फ्रॉम मध्य प्रदेश शैलेंद्र प्रताप सिंह विल रिसीव द अवार्ड एंड ही हैज वर्क टू से दैट देयर इज नो ड्रॉप आउट फ्रॉम हिज स्कूल.
1: वैभव बसंत राव कुलकर्णी नवोदय विद्यालय समिति.
2: एनरोलमेंट हैज बीन देयर इन हिज स्कूल. फ्रॉम महाराष्ट्र वैभव बसंत राव कुलकर्णी हु हैज वर्क एक्सटेंसिवली ऑन लाइवली एजुकेशन रिसीव हिज अवार्ड फ्रॉम द ऑनरेबल राष्ट्रपति.
1: राजेश बाजलोई असम.
0: असम से राजेश बाजलोई अपना पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं. इन सभी शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में
1: राधा राजेश इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन.
0: सेकेंडरी एजुकेशन कर्नाटका से इस वक्त उसका प्राप्त कर रहे हैं राधा राकेश.
1: कोटि कोटि धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति.

0: The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, the Minister for Education, Sri Prahlad Joshi, the Minister of State for Education, Sri Jayant Chaudhary, and the Minister of State for Education, Dr. Sukanto Mujumdar, and the Secretary, Department of School Education and Literacy, Sri T.K. Anil Kumar, the Secretary, Department of Higher Education, Shrimati Deepthi Gaur Mukherjee, and the Secretary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Dr. Devashish Mukherjee, have now taken their seats on the dais. And the Honorable President will also confer awards to teachers and to the institutes who have worked in higher education. And now,
1: ने आर्किटेक्चर शिक्षा को सस्टेनेबल डिजाइन और रियल वर्ल्ड लर्निंग से जोड़ा है. ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़कर वे विद्यार्थियों को आवास, स्कूल अवसंरचना की वास्तविक चुनौतियों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं. वास्तुकला शिक्षण के लिए प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. तेलंगाना के हैदराबाद स्थित आईआईटी हैदराबाद में प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू ने शोध, शिक्षण और अकादमिक नेतृत्व के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. विज्ञान और शोध को भविष्य की मौसम संबंधी चुनौतियों से जोड़ने और विद्यार्थियों को शोध के लिए प्रेरित करने के लिए प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है.
2: राजस्थान के पिलानी स्थित बिट्स पिलानी के डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डॉक्टर विनय चमोला ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ड्रोन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में नए पाठ्यक्रम और हैंड्स ऑन आईओटी टिंकरिंग लैब्स के जरिए मेट सुपरविजन और एआईओटी ब्लॉक्स जैसे वेंचर्स के जरिए विद्यार्थियों को अपने विचारों को समाधान में बदलने के लिए प्रेरित किया. तकनीकी उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर विनय चमोला को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. ओडिशा के भुवनेश्वर स्थित आईआईटी भुवनेश्वर में डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी मेटलर्जी और मटेरियल साइंसेस के शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं. कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस और एक्सपीरियंशियल लर्निंग के जरिए वे विद्यार्थियों की तकनीकी समझ को मजबूत करते हैं. शिक्षा, कौशल और सामाजिक जरूरतों से जुड़ी रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर श्रीकांत गुल्लापुड़ी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. गुजरात के गांधीनगर स्थित आईआईटी गांधीनगर में विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच और नए समाधानों की क्षमता विकसित करने वाले शिक्षक हैं डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण. वे इंजीनियरिंग, साइंसेस और फाइनेंस जैसे अलग अलग क्षेत्रों की अवधारणाओं को जोड़कर विद्यार्थियों को नए और अनजाने सवालों पर सोचने के लिए प्रेरित करते हैं. मौलिक सोच और समस्या समाधान का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए डॉक्टर मिथुन राधाकृष्ण को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. मध्य प्रदेश के भोपाल स्थित IISER भोपाल में प्रोफेसर सौरभ दत्ता ने प्लांट बायोलॉजी के शिक्षण, शोध और आउटरीच के जरिए विद्यार्थियों को नई सोच और शोध की दिशा दी है. वो एम्पैथेटिक मेंटोरशिप और इंक्लूसिव लर्निंग इकोसिस्टम के जरिए विद्यार्थियों को सशक्त करते हैं. शिक्षण, शोध और समाज के प्रति अपने योगदान के लिए प्रोफेसर सौरभ दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. मुंबई के आईआईटी बॉम्बे के डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंसेज में प्रोफेसर विक्रम विशाल ने भू विज्ञान और जलवायु से जुड़े जटिल विषयों को शोध, प्रयोग और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों के जरिए समझने का नया तरीका विकसित किया. भारत की पहली कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज फील्ड लेबोरेटरी स्थापित की. भू विज्ञान और जलवायु समाधान में शिक्षा, शोध और नवाचार को आगे बढ़ाने के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. गुजरात के गांधीनगर स्थित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया ने शिक्षा, शोध और उद्योग के बीच एक मजबूत सेतु तैयार किया है. उन्होंने फॉरेंसिक फार्मेसी, फूड फॉरेंसिक्स और मेडिकल डिवाइसेस जैसे तीन विशिष्ट क्षेत्रों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. शिक्षा, शोध और इनोवेशन को रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट से जोड़ने के लिए प्रोफेसर जयराज सिंह सरवैया को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है. उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर के डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ ने रसायन विज्ञान में शोध, शिक्षण और विद्यार्थियों के मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके स्वयं NPTEL पाठ्यक्रम ने उच्च शिक्षा में उनकी विशेषज्ञता को व्यापक बनाया। विद्यार्थियों की प्रतिभा और करियर को संवारने के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर मनीषा निगम ने बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई को प्रयोग, समस्या समाधान और वास्तविक जीवन के उदाहरणों से अधिक प्रभावी बनाया। शिक्षा, शोध और सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने के लिए डॉक्टर मनीषा निगम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के वर्धा स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज DMIHER में डॉक्टर अमर मोहन राव तकसांडे ने बाल चिकित्सा शिक्षा, शोध और मरीजों की देखभाल में उत्कृष्ट योगदान दिया है। उन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड मेडिकल एजुकेशन और पीडियाट्रिक एकोकार्डियोग्राफी के माध्यम से चिकित्सा प्रशिक्षण को मजबूत किया। डॉक्टर अमर तकसांडे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। आंध्र प्रदेश के मंगलगिरी स्थित एम्स मंगलगिरी में डॉक्टर अरुण बाबू ने पीडियाट्रिक्स के शिक्षण, शोध और चिकित्सा शिक्षा में नवाचार को आगे बढ़ाया है। 400 से अधिक साइंटिफिक पब्लिकेशन और अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के साथ चिकित्सा शिक्षा और नवाचार को सशक्त बनाने के लिए डॉक्टर अरुण बाबू को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मणिपुर के इम्फाल स्थित मणिपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ डांस एंड म्यूजिक में डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी ने 15 वर्षों से अधिक समय में नृत्य, संगीत और शोध के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मणिपुर स्टेट कला अकादमी के यंग टैलेंट अवार्ड और प्रसार भारती के मणिपुरी डांस में टॉप ग्रेड से सम्मानित डॉक्टर पुखराम बम लीलावती देवी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: वाराणसी की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज में प्रोफेसर आशुतोष मोहन ने 25 वर्षों से अधिक समय में मैनेजमेंट शिक्षा, शोध और अकादमिक नेतृत्व में उल्लेखनीय योगदान दिया है। मार्केटिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में विशेषज्ञता के साथ उन्होंने 50 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित किए। प्रोफेसर आशुतोष मोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के गुवाहाटी स्थित गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में प्रोफेसर अंकुरन दत्ता ने 2 दशकों से अधिक समय में शिक्षा, मीडिया और सामुदायिक संवाद को इसी सोच के साथ आगे बढ़ाया। नॉर्थ ईस्ट भारत के पहले कम्युनिटी और वेब रेडियो स्टेशन की स्थापना कर सामुदायिक संचार, स्थानीय ज्ञान और सांस्कृतिक जुड़ाव को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर अंकुरन दत्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित कर्नाटका संस्कृत यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शिवानी वी ने संस्कृत के पारंपरिक अध्ययन को आधुनिक तकनीक और शोध से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। संस्कृत को आधुनिक, सुलभ और नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाने के लिए प्रोफेसर शिवानी वी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर राजीव चौधरी ने फिजिकल एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षण, शोध और विद्यार्थी कल्याण को नई दिशा दी है। डिजिटल पेडागोजी और अवेयर इंक्लूजन अफेक्शन AIA मॉडल के जरिए उन्होंने विद्यार्थियों में केवल याद करने की बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और रिसर्च स्किल्स को विकसित किया। शिक्षा, शोध और विद्यार्थी कल्याण को सशक्त बनाने के लिए प्रोफेसर राजीव चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित MEI पॉलिटेक्निक में डॉक्टर विश्वनाथ एजेस पिछले 32 वर्षों से सिविल इंजीनियरिंग शिक्षा में इनोवेशन, टेक्नोलॉजी और प्रैक्टिकल लर्निंग को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज, डिजिटल लर्निंग और स्टूडेंट सेंट्रिक टीचिंग को बढ़ावा दिया। तकनीक आधारित और रोजगार से जुड़ी शिक्षा को मजबूत करने के लिए डॉक्टर विश्वनाथ एजेस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के कोयंबटूर स्थित बीएसजी पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर शशि कलायस डिप्लोमा इंजीनियरिंग एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और आउटकम बेस्ड लर्निंग को आगे बढ़ा रही है। 110 से अधिक इंडस्ट्री अलाइंड एक्सपेरिमेंट्स और 11 इंडस्ट्री एमओयू

0: जरिए उन्होंने विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल लर्निंग के अवसर दिए। विद्यार्थियों के कौशल और अवसरों को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शशिकला एस को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। तमिलनाडु के इरोड स्थित शक्ति पॉलिटेक्निक कॉलेज में डॉक्टर कन्नन रथिनम ने पॉलिटेक्निक शिक्षा में सीखने का एक व्यावहारिक मॉडल विकसित किया। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप सैद्धांतिक अवधारणाओं को पीयर लर्निंग के माध्यम से समझने योग्य बनाया। पॉलिटेक्निक शिक्षा में नवाचार, शोध और अनुभवात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर कन्नन रत्नम को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के सोलापुर स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और टेलीकम्युनिकेशंस की शिक्षा को टेक्नोलॉजी इनेबल्ड और एक्सपीरियंशियल लर्निंग से मजबूत किया है। उनकी टीचिंग लर्निंग अप्रोच से 5000 से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिला है। शिक्षण, शोध और संस्थागत विकास में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर संदीपन प्रल्हाद नारोटे को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। केरल के आईटीआई अरीकोड में श्री हरीश ए ने इलेक्ट्रिकल स्किल्स ट्रेनिंग को नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। उनकी सबसे खास पहल कैंडेला एलईडी बल्ब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जिसे उन्होंने आईटीआई विद्यार्थियों के साथ स्थापित कर स्किल लर्निंग को वास्तविक उत्पादन और एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़ा और उद्यमिता के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्री हरीश ए को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के मंडी स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फिटर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री जगमोहन ने कौशल प्रशिक्षण को गुणवत्ता, उद्योग की जरूरतों और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ा है। कोविड-19 के दौरान मास्टर ट्रेनर के रूप में उन्होंने ट्रेनीज को ऑक्सीजन प्लांट्स के संचालन का प्रशिक्षण देकर कौशल को एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवा से भी जोड़ा। श्री जगमोहन को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। महाराष्ट्र के धाराशिव स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में श्री किरण प्रकाश झरकर ने कौशल प्रशिक्षण को पुस्तकों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्यावहारिक संसाधनों के एक जुड़े हुए लर्निंग इकोसिस्टम में बदला है। उनकी पेटेंट प्राप्त स्किल बुक कनेक्टिंग ट्रेनीज टू स्किल्स और स्किल बुक मोबाइल एप्लीकेशन ने प्रैक्टिकल लर्निंग और एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड रिसोर्सेज से जोड़ा, जिसके लिए श्री किरण प्रकाश झरकर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट आईटीआई टॉलीगंज में वेल्डर ट्रेड के इंस्ट्रक्टर श्री संदीप बनर्जी ने कौशल प्रशिक्षण को आधुनिक तकनीक और व्यावहारिक सीखने से जोड़ा है। 300 से अधिक ट्रेनीज को कॉम्पिटेंसी बेस्ड और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देने के साथ उन्होंने नए वेल्डर इंस्ट्रक्टर्स के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में भी योगदान दिया है। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री संदीप बनर्जी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। गुजरात के बिलीमोरा स्थित इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ऑटोमोबाइल ग्रुप के सुपरवाइजर इंस्ट्रक्टर श्री राजेश कुमार एम पटेल ने वाहन तकनीक के प्रशिक्षण को नवाचार और रोजगार से जोड़ा है। ट्राइसिकल ईवी विद स्टीयरिंग जनरेशन ने क्षेत्रीय स्किल कंपटीशन में तीसरा स्थान हासिल किया। ऑटोमोबाइल स्किल्स और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्री राजेश कुमार एम पटेल को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। राजस्थान के चौमू में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के सीनियर इंस्ट्रक्टर श्री हीरालाल शर्मा ने उनके विकसित किए गए स्प्लिट एसी और डीप फ्रीजर फॉल्ट सिमुलेटर्स के जरिए विद्यार्थी तकनीकी खराबियों की पहचान और ट्रबल शूटिंग का व्यावहारिक अभ्यास करते हैं, जिसके लिए श्री हीरालाल शर्मा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
1: महाराष्ट्र के नासिक स्थित गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट त्रिंबकेश्वर आदिवासी में फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी की क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर श्रीमती अर्चना राकेश जाधव ने आदिवासी और ग्रामीण युवाओं को फैशन और अपैरल स्किल्स के माध्यम से रोजगार और उद्यमिता से जोड़ा है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए श्रीमती अर्चना राकेश जाधव को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित गवर्नमेंट डिविजनल ITI में COPA HIVI की ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती रीना गुप्ता ने प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से वे विद्यार्थियों को कंप्यूटर ऑपरेशन और बेसिक प्रोग्रामिंग जैसे कौशलों में प्रशिक्षित करती हैं। दिव्यांग युवाओं को डिजिटल कौशल और आत्मनिर्भरता से सशक्त बनाने के लिए श्रीमती रीना गुप्ता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित गवर्नमेंट ITI टॉलीगंज में श्री सौमेन पंडित ने नई तकनीकों के कौशल प्रशिक्षण को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने 160 से अधिक लर्नर्स को ड्रोन टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित किया। नई तकनीकों और भविष्य के रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए श्री सौमेन पंडित को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। असम के नॉर्थ ईस्ट स्किल सेंटर असम स्किल डेवलपमेंट मिशन में श्रीमती तुलिका कलिता ने अपने 20 वर्षों के अनुभव से युवाओं को वैश्विक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तैयार किया है। उन्होंने 1400 से अधिक लर्नर्स को वर्कप्लेस रेडिनेस, कम्युनिकेशन एटिकेट और प्रोफेशनल सर्विस स्किल्स से प्रशिक्षित किया, जिसके लिए श्रीमती तुलिका कलिता को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। पंजाब के लुधियाना स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मशीनिस्ट ट्रेड के ट्रेनिंग ऑफिसर श्री संजय कुमार ने प्रिसिशन मशीनिंग और एडवांस्ड टेक्निकल स्किल्स के माध्यम से युवाओं को उच्च स्तरीय करियर के लिए तैयार किया है। उनके विद्यार्थी DRDO, ISRO, BAR और इंडियन रेलवेज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों तक पहुँचे हैं। श्री संजय कुमार को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है। मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विमेन में ट्रेनिंग ऑफिसर श्रीमती ज्योति बाला राठौर ने उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय परीक्षाओं और स्किल कॉम्पिटिशन्स में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। कौशल और रोजगार के अवसरों के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए श्रीमती ज्योति बाला राठौर को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर स्थित सेंट्रल टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर में इंजीनियर ट्रेनिंग श्री प्रणब कुमार चौधरी ने कौशल विकास को बड़े स्तर पर प्रशिक्षण, गुणवत्ता और इंडस्ट्री रेडी लर्निंग से जोड़ा है। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप व्यापक स्तर तक पहुंचाया। कौशल, गुणवत्ता और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने के लिए श्री प्रणब कुमार चौधरी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाता है।
2: ये और शिक्षक शिक्षा
3: माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस 2026 के अवसर पर उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षकों या संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान करेंगी। माननीय राष्ट्रपति अब अपने स्थान से खड़े होकर पुरस्कार देने के लिए आगे आते हुए आपको बता दें, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आमंत्रित किए गए थे, जिनमें जन भागीदारी के तहत इसमें
4: प्रोफेसर अवलोकिता अग्रवाल
3: आईआईटी रुड़की की प्रोफेसर अग्रवाल अपना पुरस्कार ग्रहण करने माननीय राष्ट्रपति के सामने आ रही हैं। इन्होंने
5: प्रोफेसर कीर्ति चंद्र साहू, and he works on chemical engineering and has trained many students.
4: Dr. Vinay Chamola
3: aur Professor Vinay Chamola jinhone electrical aur electronics engineering ke kshetra mein kaam kiya hai, BSc Plani se.
4: Dr. Srikant Gulapudi IIT Bhubaneswar.
5: From IIT Bhubaneswar, Dr. Srikant Gulapudi, who works in metallurgical engineering, received
3: Dr. Mithun Radhakrishnan IIT Gandhinagar, जो कि केमिकल इंजीनियर है, इस क्षेत्र में इनको पुरस्कार दिया जा रहा है IIT।
4: प्रोफेसर सौरभ दत्ता IISER भोपाल।
5: फ्रॉम IISER भोपाल प्रोफेसर सौरभ दत्ता रिसीव्स द अवार्ड फ्रॉम ऑनरेबल राष्ट्रपति जी।
4: प्रोफेसर विक्रम विशाल IIT बॉम्बे।
3: पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य के लिए प्रोफेसर विक्रम विशाल को पुरस्कार दिया जा रहा है, बॉम्बे महाराष्ट्र से है।
4: डॉक्टर जयराज सिंह सरवैया NFSU गांधीनगर।
5: For his work in forensic sciences, Dr. Jairaj Sarvaiya of the National Forensic Science Laboratory,
4: Professor
5: University,
4: Gujarat. Shankar Prasad Rath, IIT Kanpur.
3: रसायनिक विज्ञान क्षेत्र के लिए प्रोफेसर शंकर प्रसाद रथ को पुरस्कार दिया जा रहा है, जो IIT कानपुर उत्तर प्रदेश से

0: and the Ministers of State for Education, Shri Jayant Chaudhary and Shri Sukanta Majumdar, and the Secretaries in the Department of Education, Literacy, School Education and Literacy, and Skill Development and Entrepreneurship, and the Secretary, Department of Higher Education.
1: और अब समय आ गया है जब माननीय राष्ट्रपति ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिक्षकों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले लाखों शिक्षकों के लिए प्रेरणादायी संदेश होगा। श्रोताओं, सभी शिक्षकों ने तालियों के साथ माननीय राष्ट्रपति
0: एंड स्टैंडिंग ओवेशन फॉर द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नाउ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट विल एड्रेस द गैदरिंग।
2: इस समारोह में उपस्थित केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी जी, राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी एवं डॉक्टर सुकांत मजूमदार जी, मंचासीन सभी सचिवगण, सभी शिक्षकगण, देवियों और स्वजन सभी को नमस्कार। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित आज के सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूं। साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूं। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूं, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है। देवियों और स्वजन, सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यार्थियों की स्थापना की थी, विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन क्रांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्री बाई फुले की स्मृति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ। इस सभागार में लद्दाख से लेकर अंडमान निकोबार आइलैंड तक तथा अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक पूरे देश में शिक्षण के श्रेष्ठ प्रतिमान स्थापित करने वाले शिक्षक उपस्थित है। ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं

अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ और उपलब्धियाँ उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियों पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते। आज पुरस्कृत सभी शिक्षकों के समान रूप से प्रभावशाली और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, लेकिन समय के सीमा के कारण मैं केवल एक उदाहरण का उल्लेख करना चाहूंगी। हम सब ने देखा कि राजस्थान के झालावाड़ जिले के एक गांव के स्कूलों में अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में बच्चे अत्यंत आधुनिक माध्यमों के सहायता से जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सोच के बल पर छोटे से छोटे स्थान पर प्रबुद्ध शिक्षक और जिज्ञासु विद्यार्थी उच्च स्तरीय पाठन पठन का आधुनिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता होती है कि ये सभागार में उपस्थित शिक्षकों ने ऐसे प्रेरक प्रयासों से शिक्षण कार्यों को नए आयाम दिए हैं। शिक्षा मंत्रालय द्वारा स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों एवं पॉलिटेक्निक्स में अध्यापन करने वाले श्रेष्ठ शिक्षकों तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा चुने गए सुयोग्य प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है। यहाँ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पुरस्कृत आचार्यगण उपस्थित है। उनके लिए तथा तो पूरे देश के आचार्यों के लिए उच्च शिक्षा में भारत का गौरवशाली इतिहास लक्ष्य भी प्रस्तुत करना है और कसौटी भी। हुएंगसान ने लिखा है कि नालंदा विक्रमशिला में पढ़ाने वाले आचार्यों का यश दूर दूर के देशों तक फैल चुका था। उनका चरित्र पूर्णतः निर्मल और अनिंदनीय था। आचार्यगण जानते थे कि समुद्रों और पर्वतों के को पार करके अनेक कष्ट सहन करके विदेशों के छात्र अनेक उनके पास आते थे और ज्ञान पिपासा लेकर वो अपने आप को संतुष्ट लाभ करते थे। भारत के विश्वविख्यात आचार्यों की परंपरा को नोबेल पुरस्कार विजेता आचार्य सी वी रमन जैसे शिक्षकों ने आधुनिक युग में आगे बढ़ाया है। ये अपने विद्यार्थियों के साथ खूब घुल मिलकर मॉडर्न फिजिक्स के विभिन्न विषयों पर चर्चा करते थे। जो विद्यार्थी उनसे कोई अच्छा प्रश्न करते थे तो वे पुस्तकों से हटकर अपने विलक्षण अध्यापन से ऐसे जिज्ञासा जागृत करते थे कि उनके विद्यार्थी उन प्रश्नों के माध्यम से विश्व के महान वैज्ञानिकों के मूल ग्रंथों में अवगहन करने जानते थे। देवी और स्वजन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठा नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रम भले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं। अनेक विद्यार्थी आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिसरों से आते हैं,

0: में रखा जाता है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व तो होना चाहिए। संस्कृत भाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।
1: अपने संबोधन में शिक्षा और शिक्षा की भूमिका के महत्व को रेखांकित किया माननीय राष्ट्रपति।
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी अनुमति हो तो समारोह का समापन किया जाए।
1: और अब राष्ट्रगान
3: के लिए निवेदन है, राष्ट्रगीत तथा राष्ट्रगान को सम्मान देने के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

0: the Honorable President of India doing namaskar to all the awardees and other dignitaries who are present at the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And the Honorable President of India is now departing from the plenary hall of Vigyan Bhavan, and the Minister for Education, the Ministers of State for Education, and the Departmental Secretaries of the Department of School Education and Literacy, the Department of Higher Education, and the Department of Skill and Entrepreneurship, now escorting the Honorable Rashtrapati ji towards from the plenary hall of the Vigyan Bhavan. And as the Honorable Rashtrapati ji in her address said, that the society which respects teachers is indeed a progressive one, and she congratulated all the winners of the awards. She said that teachers from Ladakh to the Andaman and Nicobar Islands and from Arunachal Pradesh to Gujarat are all playing a pivotal role in furthering education and nurturing our students. She hailed the efforts of the Department of School Education, Higher Education and Skills and Entrepreneurship. She expressed the confidence that India will emerge as a knowledge economy and also the skill capital of the world. She mentioned about the reputation of the teachers of India's ancient Nalanda University, which spread far and wide and attracted students from all over the world. And she said that in the last 12 years, the primary school dropout rate has come down to almost nil.
1: आज के समारोह में हमें एक महत्वपूर्ण संदेश मिलता है, राष्ट्र निर्माण केवल बड़ी परियोजनाओं से नहीं होता, राष्ट्र निर्माण कक्षा में होता है। श्रोताओं, अब समारोह अपने समापन की ओर बढ़ रहा है। आज का ये आयोजन हमें एक बार फिर याद दिलाता है कि शिक्षक केवल भविष्य देश के नागरिक नहीं बनाते, वे भविष्य भारत का निर्माण भी करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किए गए सभी शिक्षक हमारे लिए प्रेरणा है। उनके विद्यालयों को बधाई, उनके विद्यार्थियों को बधाई, उनके परिवारों को बधाई, और भारत के प्रत्येक शिक्षक को हमारा सादर नमन। इसी भावना के साथ विज्ञान भवन नई दिल्ली से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 का ये विशेष प्रसारण संपन्न होता है। इस प्रसारण को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया अशोक कुमार मिश्रा और बाबूलाल मीणा ने। हमारे ओबी इंचार्ज थे वीके तोमर और प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार। मैं शोएसियार खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलता हूं। नमस्कार।
2: अभी आप नई दिल्ली के विज्ञान भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में शिक्षा

0: शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किए राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे शोएज़ यार खान हिंदी में और कौशिक रॉय अंग्रेजी में.
1: You were listening to a live broadcast of the presentation ceremony of the National Award to Teachers organized by the Ministry of Education, Government of India, in the gracious presence of Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, at Vigyan Bhavan, New Delhi. Our commentators were Shoaiz Yar Khan in Hindi and Kaushik Roy in English.
2: विदेश मंत्री डॉक्टर एस

0: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टुडे सेड दैट अ विकसित भारत विल ओनली बी पॉसिबल विद क्वालिटी एजुकेशन। एड्रेसिंग द नेशनल टीचर्स अवार्ड 2026 इन न्यू दिल्ली, द प्रेसिडेंट सेड दैट अ सोसाइटी दैट रिस्पेक्ट्स देयर टीचर्स इज अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी इन राइट टर्म्स।
1: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
0: President Draupadi Murmu today presented the National Teachers Awards in New Delhi. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to teachers for 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
2: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
0: Highlighting key health and social issues, Mr. Modi expressed concern over excessive screen time among children and suggested encouraging sports, outdoor activities and creative pursuits as effective ways to reduce screen addiction.
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम। अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में

0: विचार आता है, या तो वो बच्चा खेलकूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेलकूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता। और ऐसे में क्रिएटिविटी के तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Sri Ram College of Commerce, part of the University of Delhi, is one of India's premier institutions of higher education. It is a distinguished center of learning in commerce, economics and management. The External Affairs Ministry has said 3 more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. Sharing broader updates on the safety of Indian nationals while briefing media in New Delhi yesterday, MEA spokesperson Randeep Jaiswal said 275 Indian nationals remain missing. He noted that 1,907 Indians have safely crossed over to Nepal from China. Mr. Jaiswal said that the Indian Embassy in Kathmandu is facilitating the return of Indian evacuees on flights back home. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation rose to 1,344 after rescue workers recovered more bodies from affected areas. The rising water levels of major rivers in Bihar, including Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. According to the Water Resources Department, the Ganga River in Patna is flowing nearly 2 meters above the danger mark. In women's cricket, India will take on arch-rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at Dubai International Stadium at 8 p.m. Indian Standard Time tonight. In badminton, Indian men's doubles pair Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty will take on Malaysian duo of Noor Mohammad Azreen Ayub and Tan Wee Kyong in the semi-final of the China Masters in Shenzhen today. And that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपकी अपनी सुनिधि। और आज का हमारा सफर है हिंदी सिनेमा के उस दौर की ओर, जब फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं होती थी बल्कि अपने साथ भावनाओं, रिश्तों, इंसानियत और संगीत की एक पूरी दुनिया लेकर आती थी। स्वागत है आपका कार्यक्रम एक ही फिल्म से। मैं तो आज हम बात करेंगे वर्ष 1980 की एक ऐसी फिल्म की जिसमें एक तरफ थे हिंदी सिनेमा के शोमैन राज कपूर और दूसरी तरफ संजय खान, जीनत अमान, संजीव कुमार, परवीन बॉबी और डैनी डेंजोगप्पा जैसे सितारे। तो फिल्म का नाम है अब्दुल्ला। एक ऐसी कहानी जिसमें रेगिस्तान की गर्म रेत, रिश्तों की गर्माहट, संघर्ष है, इंसानियत है और सबसे बढ़कर है एक आम इंसान का अपने आसपास की दुनिया के लिए खड़े होने का जज्बा। और जब ऐसी कहानी को संगीत मिले राहुल देव वर्मन यानी पंचम दा का और शब्द मिले आनंद बख्शी के, तो फिर संगीत की महफिल अपने आप खास हो जाती है। तो आइए आज सुनते हैं फिल्म अब्दुल्ला की कहानी, उसके सितारों की बातें और उसके सदाबहार गीत। फिल्म के संगीत की शुरुआत ही हमें एक अलग भावलोक में ले जाती है। तो दोस्तों, ये गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मैंने पूछा चांद से। इस गीत की खासियत है इसकी सरलता, चांद से सवाल करने का अंदाज और जवाब की तलाश। इसे रफ़ी साहब ने जिस खूबसूरती से आवाज़ दी है वह आज भी सुनने वाले को रोक नहीं पाती। संगीत दिया है आरडी बर्मन ने, गीत है आनंद बख्शी का और आवाज दी है मोहम्मद रफी ने। तो लीजिए सुनते हैं फिल्म अब्दुल्ला का बेहद लोकप्रिय गीत, मैंने पूछा चांद से।

क्या बात है, रवि साहब की आवाज में एक ऐसी मासूमियत थी कि साधारण से शब्द भी दिल की बात बन जाते थे। और इस गीत से जुड़ा एक दिलचस्प तथ्य

0: तथ्य ये भी है कि बताया जाता है कि ये गीत मूल रूप से एसडी बर्मन ने रफी साहब के साथ काफी पहले रिकॉर्ड किया था, लेकिन उस समय इसका इस्तेमाल नहीं हो सका। बाद में संजय खान ने इसे आरडी बर्मन के यहाँ सुना और फिल्म में इस्तेमाल करने की इच्छा जताई। पंचमदा ने इसमें बदलाव किए और फिर ये गीत अब्दुल्ला का हिस्सा बन गया। यानी इस गीत की कहानी भी अपने आप में एक फिल्म की कहानी है। श्रोताओं, अब्दुल्ला का निर्देशन किया था संजय खान ने। संजय खान सिर्फ इस फिल्म के निर्देशक ही नहीं थे, बल्कि फिल्म में मुख्य भूमिका में भी नजर आए। उनके साथ थी खूबसूरत और प्रतिभाशाली जीनत अमान और फिर फिल्म में मौजूद थे राज कपूर। राज कपूर का नाम आते ही हिंदी सिनेमा का एक पूरा युग आंखों के सामने आ जाता है। आवारा, श्री 420, जिस देश में गंगा बहती है, इन फिल्मों के जरिए राज कपूर ने भारतीय सिनेमा में अपनी ऐसी पहचान बनाई जिसे भुलाया नहीं जा सकता। अब्दुल्ला में भी राज कपूर का व्यक्तित्व फिल्म की महत्वपूर्ण ताकतों में से एक था। फिल्म की स्टारकास्ट काफी बड़ी थी। संजीव कुमार, परवीन बॉबी, डैनी डेंजोअप्पा, महमूद, कादर खान, नासिर हुसैन, हेलेन, ओम प्रकाश और कई अन्य कलाकार इसमें दिखाई दिए। यानी उस दौर के कई बड़े नाम एक ही फिल्म में थे। आपसे बात करते रहेंगे फिलहाल इस अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे?
2: So easy.
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अब्दुल्ला की, तो अब बारी है उस गीत की जिसमें उत्सव का माहौल है, महफिल है और है जिंदा दिली। आशा भोसले की आवाज में जश्न बहारा महफिल यारा। आशा जी की आवाज में चंचलता और नजाकत का जो मेल मिलता है वो इस गीत को खास बनाता है। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी बर्मन ने मिलकर इस गीत को फिल्म के रंगीन हिस्सों में एक अलग चमक दी है और इस गीत में हेलेन की मौजूदगी भी इसे और यादगार बनाती है। तो आइए महफिल सजाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, अब्दुल्ला के संगीत की चर्चा हो और आरडी बर्मन का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। पंचमदा की सबसे बड़ी खूबियों में से एक थी कि वे कहानी और परिस्थिति के हिसाब से संगीत को अलग अलग रंग दे सकते थे। एक तरफ रफी साहब की रोमांटिक आवाज, दूसरी तरफ किशोर कुमार की दर्द भरी पुकार और तीसरी तरफ आशा भोसले की चंचलता और फिर मन्ना डे तथा लता मंगेशकर जैसी आवाजें। फिल्म के गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे और यही वजह है कि अब्दुल्ला का संगीत एक ही रंग का नहीं है। इसमें प्रेम है, दर्द है, दुआ है, उत्सव है और भक्ति भी है। तो आइए अब सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसमें दर्द भी है और एक गहरी आध्यात्मिक भावना भी। किशोर कुमार की आवाज में ए खुदा हर फैसला तेरा।

दोस्तों, किशोरदा की आवाज में वो ठहराव, दर्द सचमुच दिल को छू जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फिल्म अब्दुल्ला की। तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के नटराज स्टूडियो, आरके स्टूडियो, मोहन स्टूडियो और एसएल स्टूडियो में हुई थी। एक और दिलचस्प बात यह है कि संजय खान ने इस फिल्म के लिए दाढ़ी बढ़ाई थी और बताया जाता है कि उन्होंने इस लुक को लगभग 10 साल तक बरकरार रखा। फिल्म 26 सितंबर 1980 को रिलीज हुई थी और सबसे दिलचस्प बातों में से एक ये है कि फिल्म की विदेशों में भी लोकप्रियता हुई। राज कपूर की सोवियत संघ में जबरदस्त लोकप्रियता थी और अब्दुल्ला को भी वहां शानदार दर्शक मिले। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 1983 में सोवियत संघ में इसे लगभग 3.19 करोड़ दर्शकों ने देखा। यानी हिंदुस्तान से हजारों किलोमीटर दूर भी राज कपूर का जादू कायम था। चलिए अब सुनते हैं फिल्म का एक ऐसा गीत जो अपने नाम से ही भावनाओं की एक पूरी दुनिया सामने रखता है। मन्ना डे की आवाज में लल्ला अल्लाह तेरा निगेबान। मन्ना डे की आवाज में प्रार्थना और दर्द का जो सम्मिश्रण है वो इस गीत को खास बना देता है और फिल्म में राज कपूर की उपस्थिति इस गीत को और भी भावनात्मक बना देती है। तो चलिए सुनते हैं मन्ना डे की आवाज में ये गीत।

दोस्तों, एक बार फिर महसूस हुआ कि मन्ना डे साहब को सिर्फ एक गायक कहना उनके साथ न्याय नहीं होगा। वो अपनी आवाज से पूरा दृश्य रच देते थे। तो दोस्तों, अब माहौल थोड़ा बदलते हैं। रोमांस, आकर्षण और चंचलता से भरा गीत सुनते हैं। भीगा बदन जलने लगा, आशा भोसले की आवाज में। इस गीत में पंचमदा का संगीत और आशा जी की आवाज मिलकर एक बिल्कुल अलग मूड तैयार करते हैं। गीतकार आनंद बख्शी के शब्दों में प्रेम की बेचैनी और मौसम का असर दोनों महसूस होता है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही फिल्म से, और आपने सुना फिल्म अब्दुल्ला जो कि प्रदर्शित हुई थी 1980 में। तो अब समय है आपसे विदा लेने का। मैं सुनिधि गुप्ता आपसे विदा लेती हूं और अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल और ये कार्यक्रम।

0: ਅਮਰਜੀਤ ਹੁਣ ਸੁਣੋ ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी है। खबरें इस पोर्टल है, मैं अमन देव। पहला चुनाव खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यापक दिवस के मौके पर नई दिल्ली राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का टीचा नारी शिक्षा तो बिना हासिल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यापकों को पाठ पुस्तकों को अगे बढ़ाया कि विद्यार्थियों का जीवन बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाने का संकल्प दिया। श्री मोदी आज नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने दस कि नेपाल छाड़ प्रभावित इलाके तो तीन होर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचाया गया। क्रिकेट में ट्वेंटी ट्वेंटी एशिया कप क्रिकेट के आखिरी मैच में आज रात भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित भारत का टीचा नारी शिक्षा तो बिना हासिल नहीं किया जा सकता। नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार समारोह में संबोधन करते हुए कहा कि जो समाज अपने अध्यापकों का सत्कार करता है वह सही मायने में प्रगतिशील समाज होता है।
2: राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार स्थाई राज्य सात केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्र सरकार के छह संगठनों को चुने गए 28 स्कूल अध्यापकों ने दिए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों के पॉलिटेक्निक के 21 अध्यापकों के सोसायटी मेंबरों ने राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय शिक्षा संस्थानों के 12, राज यूनिवर्सिटी के कॉलेजों के 5 और पॉलिटेक्निक के 4 अध्यापक शामिल ने। सरकारी विक्टोरिया गर्ल्स सीनियर सैकेंडरी स्कूल पटियाला के अध्यापक श्री दिनेश कुमार ने भी शरणार्थी अध्यापकों में शामिल है, जिन्होंने शिक्षा क्षेत्र में मिसाली योगदान के बकाये राष्ट्रीय अध्यापक अवार्ड जीतकर पंजाब का नाम रोशन किया है।
2: करते हैं माननीय राष्ट्रपति महोदय आपसे की कृपया ये पुरस्कार अपने कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदान करने की कृपा करें। दिनेश कुमार, पंजाब।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यापक दिवस के मौके पर देश भर के अध्यापकों को नमन किया है। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा सिर्फ एक अकादमिक ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं, सगो एक वड्डी जिम्मेवारी है जो व्यक्ति के राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इस संबंधी एक अंग्रेजी अखबार में एक लेख लिखा है। राष्ट्रपति ने लखों विद्यार्थियों ज्ञान हुनर कदर कीमतों की प्रेरणा प्रदान करने के अध्यापकों का धन्यवाद किया। सबक राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की विरासत याद करते हुए कहा कि एक विद्वान लेखक और राजनेता वजह अपनी बहुत सारिया प्राप्तियों के बावजूद डॉ राधाकृष्णन एक अध्यापक की भूमिका में सब तो महत्वपूर्ण मानते सन। राष्ट्रपति ने सबक राष्ट्रपति डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की उन्होंने एक अध्यापक में याद किए जाने की इच्छा याद किया। अपने अनुभव साझे करते हुए कहा कि समर्पित और प्यार करने वाले अध्यापकों के मार्गदर्शन ने उन्होंने आत्मविश्वास हिम्मत और स्वयंबोध की भावना विकसित करने में मदद की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यापकों को पाठ पुस्तकों को अगे बढ़ाने के विद्यार्थियों के जीवन में बेहतर बनाने और उनके बचपन में सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाने का सद्दा दिया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार से सम्मानित अध्यापकों से गलबात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में चर्चा साझा करदे श्री मोदी ने कहा कि अध्यापकों को यह यकीन बनाना चाहिए कि हर विद्यार्थी के अंदर बचपन ही जिंदा रहे। अजय कर रहे अध्यापकों को अपने अंदर बच्चों को भी जिंदा रखना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों के असल बदलाव लेने अध्यापकों को उनके जीवन का हिस्सा बनना पड़ेगा तो सिर्फ पाठ्यक्रम तक ही सीमित नहीं रहना होगा। श्री मोदी ने बच्चों के बहुत ज्यादा सक्रिय टाइम की चिंता प्रकट की।
3: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अधिक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेल कूद मतलब वीडियो गेम नहीं है, एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी की तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
1: थोड़े नशीले पदार्थों के सेवन के वध रहे खतरे बारे भी चिंता प्रगट की थी। क्या इस बारे लगातार जागरूकता फैलाने की लोड़ है क्योंकि बच्चे अनजाने में इसका शिकार हो सकते हैं।
3: ट्रस्ट का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा से नहीं किसी को कहा है कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं क्या अवेयरनेस उसके कारण क्या भय है माइनोरिटी ऑब्जर्व करने में कोई किसी बच्चे में बदलाव नहीं आ रहा है। तो ऐसे में कोई शिक्षा जगत से ये कहना चाहते हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर का है।
1: इस मौके पुरस्कार देते अध्यापकों ने भी अपने अध्यापन अनुभव साझे किए। उन्होंने क्लासरूम शिक्षा को और दिलचस्प और प्रभावशाली बनाने लिए अपनाए गए कई रचनात्मक तरीकों बारे गलबात की। खबर आकाशवाणी को सुन दो साढ़े एक साढ़े एट द रेट यानी आर एम जलंधर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नई दिल्ली में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस मौके समारोह में संबोधन भी करेंगे। SRCC जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्सा है देश के प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थानों में एक है। इस कॉमर्स अर्थशास्त्र और मैनेजमेंट की पढ़ाई कराई जाती है। कॉलेज की स्थापना 1926 के परोपकारी सर श्री रामपुरी की गई थी। पिछले 100 साल में संस्था ने बहुत सारे विद्वान पेशेवर और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाले प्रतिभा पैदा की। विदेश मंत्रालय ने दस कि नेपाल के हड़ प्रभावित त्रिशूली बसार इलाके में 3 होर भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर कढ़ा गया जिन्होंने 5 साल का एक बच्चा भी शामिल है। इस साल सुरक्षित कढ़े गए लोगों की गिनती 170 हो गई है। विदेश मंत्रालय के बुलारी रणजीत जायसवाल ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा बारे वेरवे सहित जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 273 भारतीय नागरिक अजे भी लापता ने। श्री जायसवाल ने कहा कि 1907 भारतीय चीन तो सुरक्षित नेपाल पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि काठमांडू में भारतीय दूतघर भारतीयों को हवाई जहाज में ले जाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बत खुद मुख्तार इलाके में कोई भी भारतीय यात्री फंसे हुए नहीं है। बुलारी ने कहा कि 26 अगस्त में भयानक हड़ों के बाद भारतीय नेपाल ने लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि

सरकार दो लोड़ानुसार सहायता प्रदान करता रहेगा। इस तरह नेपाल में चुनाव कार्य में आने वाली गिनती 1344 हो गई है। नेपाल पुलिस अनुसार 843 नशे बरामद की गई है, जिनमें 758 बालक के 85 बच्चे शामिल हैं। गंगा गंडक के कुछ नदियों में पानी का पद्धर लगातार बढ़ रहा है। फिलहाल 16 जिले प्रभावित हो रहे हैं, जबकि पटना समेत 14 जिलों में हालत नाजुक बनी हुई है। औरतों ने क्रिकेट में 2020 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में चली पा रही मुकाबला पाकिस्तान होगा। यह मैच दुबई अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत ने थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में अपनी थाप पक्की कर ली है। भारत को पाकिस्तान को हराकर अपनी लगातार तीजी जीत करना चाहेगा। बैडमिंटन में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी के चिराग शेट्टी ने पुरुष जोड़ी आज शेनजन में चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरान अयूब और टैनवी क्यों की जोड़ी खास खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किंग स्ट्रोप और एंडर्स स्कारूप रामस वसैन को हराया। केरल त्रिशूर जिले में एक भयानक सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस अनुसार यह हादसा बीती रात कैपन नगर के पलांडे कोने विखे वापरिया। हादसा उदो वापरिया जदों नौजवानों को लेकर जा रही कार हाईवे से खड़े एक ट्रक नाल टकरा गई। अंत में चोर में खबरें खास कर सुन लो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज अध्यापक दिवस के मौके पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यापक पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का टीचर न्यारी शिक्षा के बिना हासिल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अध्यापकों ने पाठ पुस्तकों पर जोर देने के विद्यार्थियों के जीवन में बेहतर बनाने के हर संपन्न बनने का संदेश दिया। श्री मोदी इस तरह जिले के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के स्थापना समारोह में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल के हर प्रभावित इलाके से 3 करोड़ भारतीय नागरिकों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकसित भारत सिर्फ मेयारी तालीम से ही मुमकिन हो सकता है। सदर जमहूरिया ने 48 स्कूली असातिज़ा को कौमी अवार्ड्स अता किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने असातिज़ा पर जोर दिया है कि वो तलबा की जिंदगी को संवारने के लिए सिर्फ निसाबी किताबों तक महदूद न रहें। वज़ीर-ए-आज़म ने बच्चों में जरूरत से ज्यादा मोबाइल के इस्तेमाल को कम करने के लिए खेलों और मैदानी सरगर्मियों को फरोग देने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की सदसाला तकरीबात से खिताब करेंगे। बिहार के 14 जिलों में सैलाब की सूरत हाल बदस्तूर संगीन है, राहत और बचाव कार्रवाइयां जारी हैं। भारत ने सैलाब से मुतासर नेपाल को 95 टन इमदादी सामान भेजा है। मजीद इमदादी सामान और बेले ब्रिज भेजे जाएंगे। बैडमिंटन में शेंजेन में चाइना मास्टर्स के सेमीफाइनल में आज शाम सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल भारत की जोड़ी का सामना मलेशिया की जोड़ी से होगा। और खवातीन क्रिकेट में आज रात दुबई में T20 एशिया कप के ग्रुप ए के आखिरी मैच में भारत का सामना रिवायती हरीफ पाकिस्तान से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि विकसित भारत मियारी तालीम के जरिए ही मुमकिन हो सकेगा। आज नई दिल्ली में असातिज़ा के कौमी इनामात 2026 की तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि अपने असातिज़ा का एहतराम करने वाला माशरा ही सही मानों में तरक्की पसंद माशरा होता है।
1: आम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित न हो।
0: सदर जमहूरिया ने मजीद कहा कि तालीमी महारत, हुनरमंदी का फरोग और एंटरप्रेन्योरशिप मुल्क की तरक्की में अहम रोल निभाते हैं। सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत को दुनिया में हुनरमंदी की राजधानी के तौर पर कायम करना और साथ ही इल्म का मरकज बनाना मुल्क की तरजीह है।

0: that as the campaign enters its 9th edition, the nation is renewing its commitment to a cleaner and healthier India. He urged citizens to come forward, participate wholeheartedly in the campaign and make Swachhata Hi Seva a true Jan Andolan. The Swachhata Hi Seva 2026 campaign will be observed from 17th of this month to the 2nd of October. The India Meteorological Department has issued orange colour warning for heavy to very heavy rainfall in East Rajasthan and West Madhya Pradesh for today. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu says, Viksit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers. Prime Minister Narendra Modi urges teachers to go beyond textbooks while shaping lives of students, also calls for less screen time, more sports activities for children. Prime Minister to address centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce in New Delhi this evening. Bihar flood situation remains critical in 14 districts. Relief and rescue operations underway. India delivers 95 tons of relief material to flood-hit Nepal to send more supplies and Bailey bridges. In badminton, Indian men's doubles pair of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Malaysian duo in Chinese Masters semi-final in Shenzhen this evening. And in women's cricket, India to take on arch-rivals Pakistan in final Group A clash of T20 Asia Cup in Dubai tonight. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता हैं।
2: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है वो समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को ये पुरस्कार दिए गए। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों और संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। इनमें केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के 12, राज्य विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के 5 तथा पॉलिटेक्निक के 4 शिक्षक और संकाय सदस्य शामिल हैं।

0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में देशभर के शिक्षकों को उनकी निस्वार्थ सेवा और भारत के भविष्य को आकार देने में उनके योगदान के लिए नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में मुलाकात की झलकियां साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना होगा। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई।
1: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा। खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकते। और ऐसे में क्रिएटिविटी के तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों को आदत बनानी चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: प्रधानमंत्री ने स्तन कैंसर के प्रति जागरूकता का भी उल्लेख किया।
1: मैं काशी का सांसद हूँ, तो मैंने वहाँ एक अभियान लिया ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का, और मुझे खुशी है कि इन दिनों महिलाएं सामने से आकर के अपने विषय में चेकअप करा, पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। दूसरा एक अच्छा अनुभव आया, अभी तो एक दिन में मैक्सिमम लोगों का चेकिंग करने का ग्रीनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने रजिस्टर किया।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर जोर दिया। गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देशवासियों और शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि शिक्षक पीढ़ियों से विद्यार्थियों को ज्ञान की राह दिखा रहे हैं और देश की निरंतर प्रगति में योगदान दे रहे हैं। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक वीडियो संदेश में कहा कि शिक्षक ज्ञान, कौशल और आत्मविश्वास के साथ छात्रों के भविष्य को सशक्त बनाते हैं।
2: इन शिक्षकों ने अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग तरीकों से महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। किसी ने शिक्षण में नया प्रयोग किया है, किसी ने तकनीक का प्रभावी उपयोग किया है, किसी ने वंचित और कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों के लिए काम किया, तो किसी ने विज्ञान, खेल, कला और कौशल के माध्यम से विद्यार्थियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने का काम किया है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
3: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए एक्स पर @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर वे समारोह को संबोधित भी करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय का श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स देश के प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों में से एक है। यहाँ वाणिज्य, अर्थशास्त्र और प्रबंधन की पढ़ाई होती है। कॉलेज की स्थापना 1926 में उद्योगपति और समाजसेवी सर श्रीराम ने की थी। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 11 से 13 सितंबर तक ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस कड़ी में ब्रिक्स देशों के मुख्य न्यायाधीशों का 3 दिन का मंच कल शुरू हो गया। शिखर सम्मेलन के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां और सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। आज मोटर कारकेट का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है। दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार पूर्वाभ्यास शाम 4 बजे तक चलेगा। इस दौरान भारत मंडपम और आसपास के क्षेत्रों में 35 से अधिक मार्गों पर यातायात नियंत्रित

0: रहेगा। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस महीने की 26 तारीख को संयुक्त राष्ट्र महासभा के वार्षिक उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। 22 से 28 सितंबर तक चलने वाले इस सत्र में वे भारत का पक्ष रखेंगे। ये उच्च स्तरीय सत्र ऐसे समय हो रहा है जब दुनिया कई भू राजनीतिक संघर्षों और बढ़ते आर्थिक दबावों का सामना कर रही है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यवधान के कारण खाद्य और ईंधन की बढ़ती कीमतें भी चिंता का विषय बनी हुई हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशूली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में संवाददाताओं को भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 275 भारतीय नागरिक अभी भी लापता हैं, वहीं 1907 भारतीय चीन से सुरक्षित नेपाल पहुंच चुके हैं। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास इन शरणार्थियों को हवाई मार्ग से वापस लाने में सहायता कर रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में कोई भी भारतीय यात्री फंसा हुआ नहीं है। प्रवक्ता ने बताया कि 26 अगस्त को विनाशकारी बाढ़ के बाद से भारत ने नेपाल को लगभग 95 टन राहत सामग्री भेजी है। उन्होंने कहा कि भारत नेपाल सरकार की आवश्यकताओं के अनुसार सहायता जारी रखेगा। आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। बेली ब्रिज पूर्व निर्मित और मॉड्यूलर स्टील पुल होता है, जिसे कम समय में और बिना भारी मशीनों के आसानी से जोड़ा या स्थापित किया जा सकता है। इस बीच नेपाल में बाढ़ से मरने वालों की संख्या कर 1344 हो गई है। खोज और बचाव अभियान जारी है। लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में डॉक्टर त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का उल्लेख करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी।
2: जो कुछ झारखंड में तथ्य प्रकाश में आया है उसने यह साफ किया है कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि पेपर लूट है, और इस लूट की छूट कौन दे रहा है ये कम से कम राहुल गांधी जी को बताना चाहिए। परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जितने भी राजनीतिक दल दिल्ली में परीक्षा के विषय को लेकर दहाड़ और चिंगाड़ रहे थे, झारखंड के मुद्दे के ऊपर तीन बंदर हो गए हैं।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने यूजीसी नेट जून 2026 के अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषय की पुनर्परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। वाणिज्य की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक होगी। समाजशास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इन तीनों विषयों की परीक्षा पेपर में कुछ गलतियों की शिकायतों के बाद दोबारा आयोजित की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं है। लगातार नदियों के उफान पर रहने से नए क्षेत्रों में बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा है। एक रिपोर्ट।
3: बिहार में गंगा, गंडक, कोसी समेत प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। नदियों में उफान से 16 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। पटना समेत 14 जिलों में हालात गंभीर बने हुए हैं। जल संसाधन विभाग के अनुसार पटना में गंगा नदी खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर बह रही है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि इसके गांधी घाट गेज स्थल पर नया उच्च जलस्तर सृजित होने की आशंका है। इसके चलते नदी के प्रवाह क्षेत्र विशेषकर दियारा क्षेत्रों में दबाव बढ़ सकता है। विभाग ने संबंधित जिलों को आपदा के मद्देनजर सभी जरूरी एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सविता पारीख, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज राष्ट्रीय राजधानी के अलग अलग हिस्सों में हल्की से तेज बारिश हुई। और अब बात खेलों की। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी आज शेंजन में मेंस डबल्स सेमीफाइनल में मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी कियोंग से खेलेगी। भारतीय जोड़ी ने कल क्वार्टर फाइनल में डेनमार्क के किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कारूप रास्मुसेन को हराया था। एशिया कप महिला टी20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। महाराष्ट्र में श्री कृष्ण

0: जन्माष्टमी से जुड़ा दही हांडी उत्सव आज धूमधाम से मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: मुंबई और आसपास के जिलों में भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा पारंपरिक उत्सव दही हांडी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस आयोजन में युवा प्रतिभागी मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई पर लटके दही, दूध या मक्खन से भरी मटकी फोड़ते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 160,000 गोविंदाओं के बीमा कवरेज की व्यवस्था भी की है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, विकसित भारत का सपना शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार से ही साकार होगा। उन्होंने 48 स्कूली शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। प्रधानमंत्री आज शाम नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को 95 टन राहत सामग्री भेजी और अधिक राहत सामग्री के साथ बेली ब्रिज भेजे जाएंगे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा। और T20 महिला क्रिकेट एशिया कप के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज रात भारत और पाकिस्तान होंगे आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, एक ही कलाकार।

जी हाँ दोस्तों, हमारे आज के कलाकार से अच्छा कौन है। जी हाँ, ये तो आपको पता चल ही जाएगा थोड़ी ही देर में कि आज के हमारे कलाकार कौन है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज मैं हूँ आपके साथ, आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार।

1965 में आई फिल्म जानवर से आप ये गीत सुन रहे हैं मोहम्मद रफी साहब की आवाज में, और शम्मी कपूर स्टारर इस म्यूजिकल हिट फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, और इस फिल्म के निर्देशक थे आज के हमारे कलाकार भप्पी सोनी।

दोस्तों, बप्पी सोनी हिंदी सिनेमा के एक बेहद लोकप्रिय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। उन्होंने गाने तो स्वयं कंपोज नहीं किए, लेकिन उनके द्वारा जो फिल्में निर्देशित की गईं या निर्मित की गईं, उन फिल्मों के गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। शम्मी कपूर, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना जैसे दिग्गज सितारों के साथ बनाई गई उनकी फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और लता मंगेशकर जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा सुनवाते हैं आपको कि मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ए कविता।

1969 में आई फिल्म प्यार ही प्यार, और इस फिल्म में कलाकार थे धर्मेंद्र और वैजयंती माला, और इस फिल्म के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे, जो अभी आप सुन रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। और फिल्म प्यार ही प्यार के निर्देशक थे हमारे आज के कलाकार भप्पी सोनी।

हैप्पी सोनी का जन्म 31 जुलाई 1928 को हुआ था और वो एक जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक थी और उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्मों का निर्देशन किया, जैसे कि 1968 में आई फिल्म ब्रह्मचारी, 1965 में आई जानवर, एक फूल चार कांटे 1960 में आई थी और प्यार ही प्यार 1969 में इसी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे हैं।

दोस्तों, ब्रह्मचारी ये एक फिल्म 1968 में आई थी। शम्मी कपूर और मुमताज अभिनीत यह फिल्म उनके करियर की सबसे बड़ी सुपर डुपर हिट फिल्मों में से एक है और इस फिल्म के गाने आज भी लोगों को बेहद पसंद आते हैं। तो क्यों ना आगे बढ़ने से पहले आपको मोहम्मद रफी साहब की आवाज में सुनवाते हैं ब्रह्मचारी फिल्म से ही ये गीत, और इस गीत को लिखा है हसरत जयपुरी ने।

और इसी बीच आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा और पूजा परिहार का संदेश आया है और इन्होंने लिखा है कि आदरणीय अरुणेश जी नमस्कार जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और हम आपके इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं जिसमें आप निर्माता निर्देशक भप्पी सोनी के बारे में बेहतरीन जानकारी दे रहे हैं और उनकी फिल्मों के गाने सुनवा रहे हैं और ये हमें बेहद पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

एक और संदेश आया है हमारी ये नियमित श्रोता हैं बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी वीना और चंडीगढ़ से राहुल खुराना रचित खुराना किशोरी धान खुराना डब्बू सम्राट और इन्होंने लिखा है कि हम आपके इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपके जो गाने आप प्रस्तुत कर रहे हैं ये बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का संदेश आया है। सोनीपत शांतिनगर के रहने वाले हैं ये, सोनीपत ज़िले से, और इन्होंने लिखा है कि हम आपके कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं और जो गाने आप 60s और 70s एरा के सुना रहे हैं वो हमें बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।

दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है एक ही कलाकार। आज मैं हूं आपके साथ, आपका रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी। और आज के हमारे कलाकार हैं जो कि जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक रहे हैं अपने समय के, और उनका नाम है भप्पी सोनी। और अगर उनकी पहली फिल्म के बारे में बात करें तो 1960 में आई एक फूल चार कांटे, इसी फिल्म के जरिए उन्होंने बतौर निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की। और इसके बाद तुम हसीन मैं जवान 1970 में आई थी, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी के साथ उन्होंने एक बेहद ही मनोरंजक और रोमांटिक फिल्म बनाई थी। वहीं 1973 में धर्मेंद्र और मुमताज अभिनीत एक और भावुक कर देने वाली फिल्म आई थी, झील के उस पार। निर्देशन के अलावा उन्होंने अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत कई फिल्मों का निर्माण भी किया, जिसमें कि बड़े दिलवाला और निश्चय जैसी फिल्में शामिल हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक और गाना आपको मैं सुनवाता हूँ लता जी की आवाज में।

किशोर कुमार साहब और लता मंगेशकर की आवाज में आप सुन रहे हैं 1983 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म बड़े दिलवाला, और इस फिल्म के निर्देशक थे हमारे आज के कलाकार भप्पी सोनी साहब।

और इसी बीच एक और संदेश ले लेते हैं जो कि जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से आया है। शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि और दीपाली का। इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे हैं और जो गाने और जानकारी आप दे रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ऐसे ही हमारे इस कार्यक्रम को सुनते रहिए।

1983 में आई फिल्म बड़े वाला बड़े दिल वाला से आप ये गाना सुन रहे थे। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे ऋषि कपूर, टीना मुनीम, प्राण और सारिका। संगीतकार थे आरडी बर्मन, जिन्हें हम प्यार से पंचम दा के नाम से भी जानते हैं, और गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और निर्देशक भप्पी सोनी, जो कि हमारे आज के कलाकार हैं। और इसी बीच कुछ और संदेश ले लेते हैं। ये मेरठ कैंट से कविता गौड़ और दिग्दर्शन जी का मैसेज आया है, और इन्होंने लिखा है कि भप्पी सोनी जी पर केंद्रित ये कार्यक्रम सुनकर बेहद अच्छा लग रहा है। बेहतरीन जानकारी, दिलचस्प किस्से और दिल को छू जाने वाले गाने बेहद ही सुकून दे रहे हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम सुनते रहिए। इससे

ड्रामा फिल्म थी। और इस फिल्म के अलावा भी बहुत सारी फिल्मों में उन्होंने एक निर्देशक के तौर पर काम किया है, जैसे कि झील के उस पार। और उनकी फिल्म उनकी अगर करियर पर नज़र डालें तो सबसे सुपर डुपर हिट उनकी जो फिल्मों में से कई फिल्में हैं, जैसे कि ब्रह्मचारी, जानवर, एक फूल चार कांटे, प्यार ही प्यार, तुम हसीन मैं जवान और झील के उस पार। तो आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा गीत आपको सुनवाते हैं, उम्मीद है आपको बेहद पसंद आएगा।

गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी का मैसेज आया है और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम बहुत बढ़िया लग रहा है और जो गीत सुना रहे हैं वो भी पसंद आ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद।

फिल्म ब्रह्मचारी से आप ये गाना सुन रहे हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में। और इस फिल्म के डायरेक्टर हैं हमारे आज के कलाकार पप्पी सोनी जी।

नमस्कार जी, एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे हैं, बेहद पसंद आ रहा है, आप हमारी बधाई स्वीकार करें शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए। ये लिखा है पीटीआई संसद मार्ग नई दिल्ली से अनिल मोहन जी ने, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।

वो हमारे आज के कलाकार हैं भप्पी सोनी जी, और आज हम उनको इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। उनका निधन 5 सितंबर 2001 को हो गया था।

दोस्तों जाना तो हमें पड़ेगा ही, क्योंकि समय के साथ ही सबको चलना होता है। और अब इसी गीत के साथ अपने रेडियो साथी अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाजत। फिर किसी न किसी मोड़ पर होगी आपसे मुलाकात। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।

अभी आप एक ही कलाकार कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो आज विश्व विख्यात जन्माष्टमी महोत्सव नंदगांव में मनायो जा रहे है। बाकी हमारे सब श्रोता भैया बहनान को बहुत बहुत बधाई और आपके काजे भी शुभकामना।
1: चंपा जी आपको बहुत बहुत झूरी भर भर के बधाई, श्रोतान के ताई बहुत बहुत बधाई और नंद घर जो आनंद है रहे है वो भारत के हरेक घर में आनंद है रहे है, हमारे हरेक श्रोता के घर में आनंद है रहे है।
0: और नृत्य गोपाल जी देखो कितनी अचरज की बात है कि हमारे श्रोता भैया बहन आप सुन रहे होंगे कि सब जगह जन्माष्टमी कल रह गई है और ये कौन सी जन्माष्टमी की बात कर रहे हैं कि देखो नंदगांव में ना आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है और जो हमारे ब्रज के लोक जीवन का पौराणिक उल्लेख है द्वापर कालीन जो हमारी परंपराएं या को कह में खुर गिनती परंपरा।
1: जी हाँ चंपा जी आपने बहुत बढ़िया बात कही है और अपने श्रोतान के ताई बता दें कि ये जो खुर गिनती शब्द जो आयो और खुर गिनती ते जो मनावे की परंपरा है ये लोक की परंपरा है। जब पूर्णिमासी के बाद में यानी रक्षाबंधन के बाद जन्माष्टमी की तिथि में कोई परिवर्तन है जाए, कहूँ वृद्धि है जाए या कोई घट जाए,
0: हाँ,
1: जो की पंचांग की दृष्टि से
0: दिन गिनती जाती है,
1: तो अगर कोई तिथि को घटाव बढ़ाव है जाए तो नंदगांव में बहुत सीधो सो हिसाब है। ये ब्रज लोक की अपनी परंपरा है कि जा दिन ते परवाते गिनेंगे और जा दिन 8 दिन होंगे
0: जी,
1: वह 8वें दिन ही अष्टमी मनाई जाएगी और या प्रकार सो आज नंदगांव में या खुर गिनती परंपरा के अनुसार आज जन्माष्टमी नंदगांव में मनाई जा रही है।
0: और नृत्य गोपाल जी बड़ी विलक्षण परंपरा है, चाहे नंदगांव में कन्हैया को जन्म हो रो है या बरसाने में राधा रानी को, पर कुछ पदन को गायन ऐसो है कि वे कन्हैया के जन्मोत्सव पे भी उनको सस्वर वाचन हुएगो, बरसाने में जब राधा रानी को जन्मोत्सव है यानी कि राधा अष्टमी जो आई वे वारी है, तो कुछ पद ऐसे हैं धरती पे मई द्वे वड़े या तरीका के जन्म चाहे राधा को है चाहे कृष्ण को है, लेकिन वे पद यानी कि जो उनकी संयुक्त समाज बैठेगी उनको वाचन जरूर होएगो और वही परंपरा को निर्वाह करते हुए ना आज बामे नंदगांव और बरसाने दो जगह इनके जो सेवायत हैं गोस्वामी जन हैं वो गायन वादन उन पदन को ना जो जन्मोत्सव के पद हैं उनको कर रहे हैं।
1: तो चंपा जी आपको बता में कि हमारे वाणी कारण ने राग भोग और श्रृंगार
0: जी
1: यानी जो हम देख रहे हैं वाही को राग बद्ध कर रहे हैं और जो राग बद्ध है रहे है वाही के अनुसार श्रृंगार है रहे और वाही के अनुसार भोग रखे जाएंगे।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी,
1: और यही को हम समाज गायन के रूप में हो देखे हैं।
0: और नृत्य गोपाल जी जो आज जन्मोत्सव को पद है ना बाबो कितना बढ़िया जो वाचन है वो हो रहे हो है। देखो ना वृंद वृंद जुबती चली यो कह देत असीस मोहन जो अरु लाडली जीवो माई

0: प्यारी भैया बहनाओं, अभी आप ये कृष्ण जन्मोत्सव को मंगल गीत सुन रहे हते तो नृत्य गोपाल जी
1: जी चंपा जी,
0: देखो आज परंपरागत खुर गिनती परंपरा के अनुसार ना नंदगांव में जन्माष्टमी हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। यानी कि जो ब्रज के लोक जीवन में जन्माष्टमी को पर्व है ना, कल भी मनो और आज भी मन रहे हो, तो फिर कहूँ ऐसी व्यापक और विशद चर्चा की और अपने भैया बहनान को ले चले।
1: चंपा जी ले तो चलेंगे, पर अपने श्रोतान को यू बता दो कि आपने व्रत कल करो कि आज कर रही हो।
0: नृत्य गोपाल जी, हम तो दोनों दिन उपास ही है, भोजन तो हम रोज ही करें, पर या व्रत में देखो तरह तरह के पकवान है, मेवा है, मिंगी पाग है, मेवान के पाग है, तरह तरह के फल हैं, और उनकी प्रसादी मिलेगी तो फिर बढ़ते ये दो दिन करवे में बुरा ही कहा है।
1: हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक है।
0: हाँ
1: जी हाँ, श्रोता हो जो चंपा जी कह रही है कि ब्रज के लोक जीवन में जन्माष्टमी को कहा स्वरूप है कि ऊपर कछु सुनवाई भी की आप बात कर रहे हैं।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी जरूर, आपकी ही बात को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने भैया बहनान को सुनवाए रहे हैं ये परिचर्चा, जाको विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी परंपरागत और आधुनिक स्वरूप। या में प्रतिभागता कर रहे हैं डॉक्टर शिवम शर्मा, कृष्ण गोपाल शरण, नरेंद्र शर्मा, और यह परिचर्चा को संचालन कर रहे हैं नृत्य गोपाल जी।
1: श्रोताओ, आज हमारे संग स्टूडियो में विशेषज्ञ पधारे हैं और प्रतिभागी के रूप में जो आमंत्रित विद्वान हैं आदरणीय डॉक्टर शिवम शर्मा जी, कृष्ण गोपाल शरण जी और नरेंद्र शर्मा जी, आप तीनों को स्वागत है, अभिनंदन है।
2: राधे राधे
3: राधे राधे।
1: डॉक्टर शिवम शर्मा जी, ये जो कृष्ण जन्माष्टमी है और याको ब्रज में जो मनावे को तौर तरीका है, ऐसा मानो जाए कि वो पूरे भारत में या पूरे विश्व में मनावे वाली जो एक परंपरागत रीति रिवाज है उनमें ब्रज में कछु विशेषता है, खासियत है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये ब्रज में परंपरागत रूप में हम कृष्ण जन्माष्टमी को कैसे मनाएं?
2: जी, तो जैसे आपने कही कि जन्माष्टमी हम पूरे विश्व में मने, पूरे भारत में मने, लेकिन ब्रज में जो आनंद है जन्माष्टमी को वो अलग ही है, क्योंकि याके संग जो भाव जुड़ा है प्रत्येक जनमानस को, प्रत्येक ब्रजवासी को, वो अलग ही देखने को मिले। पहले रक्षाबंधन जैसे ही जाए, रक्षाबंधन के बाद तो ही जन्माष्टमी की तैयारी शुरू हो जाए, लोग अपने घरे ठीक करबो, साफ सफाई करबो शुरू कर दें कि त्योहार आएवे वारो है, मेरो नंद को लाला आएवे वारो है, भाव है कृष्ण के संग, क्योंकि ब्रज में कृष्ण आराध्य तो होते ही है जैसे सब जगह है
1: जी।
2: लेकिन वन के संग जो आत्मीयता जुड़ी है, जो भाव जुड़ो है कि जी मेरो लाला है, ये ब्रज में एक अलग ही देखने को मिले। प्रत्येक ब्रजवासी को कछु ना कछु रिश्तों में बना ही लेते हैं कृष्ण के संग।
1: जी हाँ डॉक्टर शिवम, ये बहुत अच्छी बात यही है, क्योंकि विशेषता यही है कि एक भाव ऐसे जुड़ो भयो कि अब हमारो लाला आ रो है, अब हमारो कन्हैया आ रो है। और आपने बहुत बढ़िया संकेत करो कि उत्सव तो हमारे यहाँ रक्षाबंधन हुए, लेकिन रक्षाबंधन के तुरंत पश्चात भाद्रपद लगते ही कि अब हमारो उत्सव आ रहे हो है। कृष्ण गोपाल शरण जी, ये जो भाव है कि हमारो सब आ रहे हो है, या के काजे विधिवत रूप में हम कहा का तैयारी करे हैं,
3: जाके लिया अपने पूजा घरन ने साफ करे हैं, बहुत अच्छे ढंग से जा काजे तैयार करें के लाला आवे तो आए बहुत सुखद महसूस होए, बाके लिया मिश्री को उबटन तैयार करो जाए है,
1: अपने कन्हैया के ताई एक ऐसा वातावरण बनाए देनो कि जो कन्हैया आ रहे हो तो वो आते ही बहुत आनंदित महसूस करे, हम सबको भाव रहे। नरेंद्र शर्मा जी, आप प्राय मैंने जैसे देखो है और आपते कई बार यह विषय पे चर्चा भई, जन्म उत्सव तो मने पूरे ब्रिज में पूरे भारत में, पर बरसानो जो कि किशोरी जी को स्थान है और जहाँ आप प्राय जानो कि आप तो किशोरी जी के परम भक्त हैं, तो ये जो किशोरी जी की लीला स्थली है यहाँ पे कन्हैया के आगमन की तैयारी आप कैसे करें हैं?
4: हमारे बरसाना में जैसे ही कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव शुरू होता है तो तैयारियां शुरू कर ली जाती हैं। तो उसमें हमारे यहाँ मोरकुटी है, गहवर कुंड है और मानसरोवर है।
1: नरेंद्र जी, आप मूलतः जो मैं जहां तक आपके संबंध में मैं अपने श्रोताओं को बताऊं कि आप बरसाना के निकट चिकसोली गांव जो कि चित्रा सखी को गांव है, और ये जो अष्ट सखीन के गामन में कृष्ण जन्माष्टमी मनाएवे को जो एक परंपरागत स्वरूप है, बाकी कछु अपनी भिन्नताएं हैं, विशेष विशेषता है?
4: हमारे यहाँ पे परंपरागत तरीके से रासलीलाएं करते हैं। गहवर कुंड में कृष्ण भगवान की लीलाएं होती हैं, मोरकुटी पे लीलाएं करते हैं और उसका बड़ा महत्व रहता है। लोग बाहर से बहुत दर्शन करने आते हैं और उनकी लीलाएं रचाते हैं और सारी सखियां, अष्ट सखियां, बरसाना, नंदगांव, गाजीपुर, मानपुर, चिकसौली, चित्रा, सारी सखियां मिलके महाउत्सव का आनंद लेती हैं।
1: जी हाँ नरेंद्र जी, ये जो अष्ट सखिन के गांव हैं और इन अष्ट सखिन के गांवन में कृष्ण जन्मोत्सव का जो अपना तौर तरीका है याकी हु बात अद्भुत है। डॉक्टर शिवम जी, कृष्ण आ रहे हैं भाव की बात आपने कही, ये भाव के संग हम जब देखें ना कि कन्हैया को जन्मोत्सव हमें मनाना है तो प्रातः काल ते हमारी अपनी परंपरागत क्रिया कहाँ रहे?
2: तो सबसे पहले तो वो जो ऊर्जा है कि नंद के आनंद भयो, वो सबेर ते ही लग जाए सब कामन में।
1: हाँ।
2: तो भैया आज जो है कृष्ण जन्मोत्सव है, कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारी करनी है तो अलग अलग बाकी चूल्हा चौका की अलग विधाएं हैं, वे अलग हुए, फिर घर की तैयारी बालकन ने करनी है, मंदिर कैसे सजानो है, पालकी कैसे बनेगी, झांकी कैसे सजेगी, ये सब की तैयारी अलग अलग आदमी सबन के जिम्मे काम है और सब नंद के आनंद केत केत आबा आनंद में ऐसे सराबो रह जाए कि सब अपने अपने काम ने सब जो भटको है वही लग जाए।
1: यानी कि अगर का वो बंधनवार बनाने तो वो बंधनवार ही बना के ला रहे है।
2: हाँ।
1: कहूं तो आम के पत्ता ला रहे हैं, कहूं तो जामुन के पत्ता ला रहे हैं, अशोक के पत्ता ला रहे हैं और बंधनवार बनाए जा रहे हैं। फिर बाकी पश्चात भीतर मंदिर में जो हमारी जिम्मेदारी बालकन के ताई तो यही जाए कि फूल तोड़ना।
2: बिल्कुल
1: है,
2: बिल्कुल।
1: और गए बगीचा में ते फूल तोड़ला है। कृष्ण गोपाल जी, हमारी यहाँ सब बालकन व्रत की आदत कृष्ण जन्माष्टमी ते है जाए तो ये जो एक परंपरागत तरीका में भाव के संग ये व्रत या वाके अवसर पे जो भोज पदार्थ हैं या को का स्वरूप है जी?
3: ब्रिज में सभी जगह धनिये की पंजीरी बनाई जाए है, दही मिष्ठी दही जमाई जाए है, रात को ही हल्को सो मिश्री मिलाए के दूध में बाते दही जमा में मिट्टी के बर्तन में और एक बिल्कुल शुद्ध भाव ऐसो रहे है कि कन्हैया ही मेरे आए पाएंगे। जैसे कि रामचरित मानस में आवे है अमित रूप प्रगटे ते ही काला, याही भाव को अनुसरण करते भय सभी ब्रजवासी ऐसो भाव रखे हैं कि कन्हैया मेरे ही घर आएंगे या मारे या ताई। मिश्री में इतनी ज्यादा पवित्रता रखी जाए है, दूध दही में इतनी पवित्रता रखी जाए है, हफ्तों पहले ते माखन इकट्ठो करो जाए है कि मैं मेरे कन्हैयाए माखन मिश्री खवाऊंगी। छाछ इकट्ठी करी जाए है, जो भाव ब्रज के पदन में गायो है कि छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। कन्हैया तो बाद में नाचे है, पहले तो ब्रजवासी ही गली गली में नाचते घूमे हैं। वे वह उत्सव के आनंद में इतने मगन है जाए हैं कि कोई खवानो कहा चाहे कन्हैयाए और खवा कछ दे। कई कई गोपी तो जा भाव में पहुंच जाए हैं के वो दूध दही ले लियो ऐसो ना कहे हैं, वो कहे गोविंद ले लियो, गोपाल ले लियो, कन्हैया ले लियो, नंदलाल ले लियो। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय को कीर्तन करे हैं।
1: नरेंद्र जी, या अवसर पे पूरे भारत ते विदेशन ते इतने श्रद्धालु इतने भक्त यहाँ ब्रिज में पधारे हैं, स्थानीय स्तर पे इन श्रद्धालुओं के ताई भारतीय आए भय जो भक्त गण है इनके ताई स्थानीय जो लोग हैं वे लोग कहा तैयारी करें कि काउ को असुविधा ना हो?
4: हमारे यहाँ बरसाना में तैयारी करते हैं जैसे राजा रानी पे मोर कुटी पे, उन व्यवस्थाओं को पूरी तरह से लोगों तक पहुंचाते हैं मीडिया के माध्यम से और रास्तों पे बोर्ड लगा दिए जाते हैं और कृष्ण भगवान के मंदिर को जाने के लिए पूरे रास्तों को डाइवर्ट कर दिया जाता है प्रशासन की तरफ से और वहाँ पे लीलाएं होती हैं और कृष्ण भगवान को लेके गांव में घूमते हैं। उसको देखने के लिए लोग बाहर से बहुत लोग आते हैं और वो पूरी तरह से कृष्ण भगवान लीन हो जाते हैं और वहाँ पे सारे बोर्ड साइन बोर्ड लगा दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से मंदिर पे जाने का बाहर आने का और टीवी के माध्यम से भी प्रसारण चल रहा है आजकल।
1: डॉक्टर शिवम जी, जो नरेंद्र जी ने बात और संकेत करे है बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रशासनिक व्यवस्था और लोक व्यवस्था इन दोनों की महत्ता बहुत ज्यादा है तो ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं इनको कहाँ स्वरूप है और कैसे लोगों के दाई के जो बाहर से आए हैं कोई असुविधा ना हो कहाँ का करें
2: जी? तो यहाँ में शासन एकदम पूरे मन ते व्यवस्था भक्तन के काजे करें क्योंकि इतनो भक्त जो है ब्रज में जन्माष्टमी के काजे आए वो चाहो तो है कि सब हम जो है वही उपस्थिति अपनी दर्ज करावे, वही चले जावे कैसे हूँ कृष्ण के ठोरे। अब यहाँ में प्रशासन की अलग जिम्मेदारी बढ़ जाए

0: भाई कैसे हम भक्तन ने निकास कहाते हो गो आंगे कहाते, हर मंदिर की अपनी अपनी एक अलग बुआ है। तो यातायात की सुविधाओं देखनी है, बिन्ने आयबे जायबे को भीड़ भड़का नहीं हो, कहूं भगदड़ नहीं है जाए, अनेक जिम्मेदारी है। या में एम्बुलेंस और मेडिकल की व्यवस्था देखनी है कि काऊ अगर तीर्थयात्री है, काऊ भक्त है, अगर कोई समस्या है गई तो कहाँ जावेगो, कैसे क्या होगा। तो या की पूरी व्यवस्था प्रशासन करके चले, और एटीएम की जगह जगह सुविधा, और ऐसी सुविधा के भाई काऊ भक्त है, कोई समस्या काऊ तरीके की नहीं आवे, तो प्रशासन या मामले में अपनी व्यवस्था पूरी करके चले, क्योंकि इतना भक्त आवे जन्माष्टमी वाले दिना, बातें आगे पीछे एक दो चार दिना मान लो के पूरी व्यवस्था भाई हिसाब से बनाए के चलनी पड़े।
1: जी हाँ डॉक्टर शिवम, ये जो व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि बाहर से आवे वाले इनके ताई इन सब चीज़न को बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि 2 दिन पहले आए गए, 2 दिन बाद में उनके रुकवे की व्यवस्था है, और एक जो विशेष जो चीज़ है कि कहीं अस्वच्छता ना रहे, स्वच्छता के वातावरण की बहुत बड़ी भूमिका है, वायु को बहुत ध्यान रखे जाए है। कृष्ण गोपाल जी, अभी डॉक्टर शिवम शर्मा जी ने जो बात कही है कि ये जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा में है। ये जो आज सोशल मीडिया का दौर है, या सोशल मीडिया के दौर में पूरे महोत्सव को कहा स्वरूप विकसित है रहे हो है, तनिक या के ऊपर हमारे श्रोताओं को बता में।
2: जी डॉक्टर नृत्योपाल जी, डॉक्टर शिवम जी ने जैसा कि बताया, वही तरीका थे सोशल मीडिया के माध्यम से जो जो तैयारी होती जाए है उनको अपडेट 10 दिन 15 दिन पहले थे सोशल मीडिया पे होने लगे है। यूट्यूब के नए नए जो नवाचार हैं, बाके माध्यम से ये बात वीडियो में दिखाई जानी शुरू है जाए है कि जा मंदिर में दर्शन के ताई, यहाँ ते आनो, यहाँ ते जानो, यहाँ खाने की व्यवस्था अच्छी, यहाँ ते कैश की व्यवस्था अच्छी, और सोशल मीडिया के माध्यम से कहाँ कब कैसे आना है जाना है। जो बाहर से पूरे भारत वर्ष से श्रद्धालु और भक्त आमे हैं उनके लिए कहाँ क्या व्यवस्था रहेगी, कब दर्शन होंगे और कैसे कैसे होंगे, कहाँ से टेलीविजन से दर्शन कर सके हैं, कहाँ बड़ी स्क्रीन पे देख सके हैं उन्हें, और कितने बजे अगर हम चले जाएं तो हमें अंदर भी दर्शन करने को मिल जाएंगे।
1: जी यानी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी की पूरी सूचना वहां दे दी जाए। जी हाँ कृष्ण गोपाल जी, ये जो सोशल मीडिया से जानकारी जो प्रसारित करी जाए, तो ये जो प्रचार प्रसार के जो माध्यम विकसित है गए हैं, और यहाँ में बहुत बड़ी भूमिका है जाए या चीज की कि कौन सी जगह पे लोक कलाकारन को कौन सा आयोजन है रहे हो, कौन कौन से हमारे लोक स्वांग हैं, नौटंकी हैं, भगत हैं, कौन से मंदिर में भजन संध्या है रही है, तो ये जो पूरे ब्रज की सांस्कृतिक धरोहर है वाको प्रदर्शन कैसे है रहे हो है, या की सूचना सोशल मीडिया के माध्यम से बड़ी जल्दी पहुंच जाए। नरेंद्र जी, ये इतने भक्त आ रहे हैं, इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, ब्रज ते ऐसी कौन सी चीज लेके जाए कि उन्हें उन्हें रह के बाद में एक तो भाव लेके जा रहे हैं, पर कछु अपने संग कोई ऐसी चीज जाते कि स्मृति रहे, या अपने घर जाए के बतावे कि हम ब्रज ते आए हैं, ऐसी क्या चीजें हैं आपको अगर ऐसो कछु लगे तो?
3: दर्शन के साथ साथ भावना भी लेके आ रहे हैं, वो वहां पे प्रेम लेके आ रहे हैं, तो उनके जैसे लड्डू गोपाल जी हैं, और पोशाके हैं, बंसी है, गेंद है, उसको अपने बच्चों के लिए ले जाते हैं, उसके माध्यम से रोजगार भी है, पेड़े ले जाते हैं, मथुरा का पेड़ा इतना प्रसिद्ध है कि जो उसको लोग प्रसाद के रूप में ले जाते हैं, मिश्री ले जाते हैं, सबसे बड़ा तो आशीर्वाद चंदन वो लेके जाते हैं, ब्रज रज लेके जाते हैं, और तुलसी की मालाएं लेके जाते हैं।
1: जी हाँ नरेंद्र जी, इतनी सारी चीज है जो जो लेके जाए श्रद्धालु अपने संग, और जाते स्मृति रहे कि हम वृंदावन गए, मथुरा गए, जन्मोत्सव पे गए, और ये सब चीज लेके आए और अपने घर में बड़े सार संभार के संग रखे। डॉक्टर शिवम मुस्कुराए रहे हैं, याद आ रही है कि उनके काजे जब छोटे होते तो जरूर बंसी आई होगी और गेंद आई होंगी। डॉक्टर शिवम, कोई ऐसी चीज के लोक और प्रशासन दोनों मिलके इन श्रद्धालु के ताई जो अपना दायित्व है वाको निर्वाह करें, ऐसी कोई बात हो? और अब घड़ी कह रही है कि समय है रहे हो, तो तनिक यह बात को हमें बता दें।
0: जी भाई साहब, जैसे आप बंसी की बात कर रहे तो मेरे मन में भी चल रहा है कि हाथी घोड़ा पालकी और जय कन्हैया लाल की, खिलौना लेके जा रहे हैं लाला। तो या मैं आप अभी आपने लोक और प्रशासन की बात करी, तो प्रशासन तो देखो अपनी व्यवस्था करे ही करे
1: जी,
0: लेकिन जो लोक को आतिथ्य सत्कार है ब्रज में वो अलग है। ये इतेक जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं, ये केवल प्रशासन की व्यवस्था से ना आ रहे
1: जी,
0: जिनने कृष्ण खेच रहे हैं, जिनने ब्रजवासी खेच रहे हैं कि ये देखो ये पूरी व्यवस्था हमारी हत है। तो जगह जगह भंडारे है रहे हैं कि जो जैसो कच्चो खावे बाकी का कच्चे की व्यवस्था है, जो पको खावे बाकी का पक्के की व्यवस्था है, जगह जगह खटिया बिछ रही है कि आओ बैठो
1: जी।
0: ये जो आतिथ्य सत्कार ब्रज को होता है, ब्रजवासी को।

0: ये सबने खींच ले अपनी ओर,
1: और जी जो मिल बांट के खाईवे को संदेश ब्रज में, ये जगह जगह जा रहा है, बाहर ते जो आ रहा है, बहु है बढ़िया भोजन पवानो, ये हमारे भाव में है, हमारे संस्कार में है। जगह जगह खटिया बिछे हैं, बिनमें लोग गायन चल रहा है, अलग अलग मंचन, जैसे नाटक के भाई साहब अभी बता ही रहे कि नाटक के मंचन है रहे हैं, झांकी निकल रही है काउंटे, तो ये पूरा जो ब्रज है ये जन्मोत्सव में कैसे लीन है जाए, कैसे एक एक आदमी, एक एक ब्रजवासी या मैं सम्मिलित है कि अपना भाव न्योछावर कर रहा है कि कहा मैं दे दूं, कहा श्रमते दे दूं, कहा मैं भोजन पवा दूं, कहा बना दूं लाला को, क्या तैयारी में कर दूं, ये को भाव ये देख ये अलग ही है।
2: ये जो यशोदा मैया को भाव है, ब्रजवासिन को भाव है, ये विशेषता है ब्रज की। यानी जो आ रहे हो वो ब्रजवास और अपने आप को ब्रजवासी माने, या भाव को विकास यदि कहूँ हो तो लोक में हो, एक गिलास छाछ पी ली, एक कुल्लड़ छाछ पी ली, लस्सी पी ली, तो वो ब्रज को जो भाव है, छचिया भर छाछ पे नाच नचा में, तो ये जो ब्रज को भाव और कन्हैया के उत्सव की बात आज हम अपने श्रोतान के ताई जो आपके आपके माध्यम से सुन रहे थे, आदरणीय डॉक्टर शिवम शर्मा जी, कृष्ण गोपाल शरण जी और नरेंद्र शर्मा जी, आप तीनों यहाँ पधारे स्टूडियो में और अपने कन्हैया के जो जो भाव हमारे भीतर है और जो लोक के भाव हैं आपने सब श्रोतान को बताए, आप तीनों पधारे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: राधे राधे
3: राधे राधे,
4: जय श्री राधे राधे।
5: प्यारे भैया बहनाओं, अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे हते जाको विषय हो श्री कृष्ण जन्माष्टमी परंपरागत और आधुनिक स्वरूप। यह परिचर्चा में भाग लेवे वाले प्रतिभागी है डॉक्टर शिवम शर्मा, कृष्ण गोपाल शरण और नरेंद्र शर्मा जी। संचालन कर रहे हते नृत्य गोपाल जी। तो नृत्य गोपाल जी,
2: जी चंपा जी,
5: देखो आपको बहुत बहुत आभार के आपने इन तीनों विशेषज्ञ प्रतिभागी ने बड़ी सुंदर चर्चा, जो पौराणिक स्वरूप है, जो परंपरागत स्वरूप है और जो वर्तमान में आधुनिक बदलाव आए हैं उनके बारे में ना विशद चर्चा इन विशेषज्ञ ने करी। तो देखो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी श्रोता भैया बहना या कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो बड़ी लाभान्वित होंगे के जो आधुनिक स्वरूप के तहत हमारे जो प्रतिभागी ने जानकारी दई है के ऐसे सुविधा है, ये यातायात की व्यवस्था है, ये आवास की व्यवस्था है, ये स्वास्थ्य की व्यवस्था है। तो हर कोई चाहे भक्त है, श्रद्धालु है, वो भारत भूमि के काऊ कोने में बैठा हुए अब यही सोचेगो के चलो भैया लोक को जीवन भी प्रशासन की तरह ही समृद्ध है, हम चलें और इन पर्वन को जो उल्लास है वहां में भी अपनी सहभागिता दर्ज कराएं।
2: जी हाँ चंपा जी, हमारे विशेषज्ञ ने हमारे श्रोतान के ताई है जो लोक की परंपरा है या की चर्चा दी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद।
5: नृत्य गोपाल जी, देखो
2: जी,
5: आप
2: जी।
5: परंपरा की बात कर रहे हो ना, तो आज है ना ब्रज में एक बहुत बड़ी परंपरा को निर्वाह भी ना वृंदावन की धरा में हो रहे हो।
2: तनिक बाबू को बता दो ना।
5: देखो नृत्य गोपाल जी, जो हमारे उत्तर भारत को प्रमुख मंदिर है ना श्री रंगनाथ जी को, जाकू सोने के खम्मा वारो मंदिर के में है,
2: लट्ठा वारो मंदिर,
5: हाँ, तो वा मंदिर में भी ना आज जो ऐतिहासिक लट्ठा को मेलो है वा को आयोजन हो रहे हो, शोभा यात्रा निकली है। और जब हमारे श्रोता ब्रज माधुरी कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो वहाँ पे ना परंपरागत जो लट्ठा को मेलो है चल रहे हो है, और यह मेले की बड़ी विशेषता ये है कि जो भगवान रंगनाथ है ना वो स्वयं दर्शन करवे के काजे या मेले के भारा में, या मेले में जो लट्ठा पे चढ़वे की परंपरा है तो वहाँ में जो प्रतिभागिता करें ब्रजवासी जन तो बिना भगवान रंगनाथ ते अनुमति ले रहे हैं, ये भाव आत्मसात हो रहा है कि हमने अब भगवान रंगनाथ ते अनुमति ले ली है, लट्ठा पे ऊपर चढ़ रहे हैं, कई मीटर बाकी ऊंचाई है,
2: या में रंगनाथ जी के आशीर्वाद की जो परंपरा है ये भारतीय ज्ञान परंपरा को अंग है।
5: हाँ,
2: और आपको याद हो तो आज तो 5 सितंबर है, आज तो एक और विशेष दिवस है चंपा जी।
5: अरे नृत्य गोपाल जी, आज शिक्षक दिवस जो है
2: जी
5: तो आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, हमारे सब श्रोता भैया बहनान को बधाई।
2: शिक्षा के महत्व को हमें जानना है, समझना है और शिक्षा से ही हम आगे बढ़ सके या भाव को धारण करते हुए हमारे विद्यार्थी, हमारे शोधार्थी आगे बढ़े।
5: नृत्य गोपाल जी, देखो आप आगे बढ़ावे की बात कह रहे हो तो एक विद्यार्थी के जीवन को आगे बढ़ावे में, बाकी मार्गदर्शन प्रदान करवे में तो बाकी गुरु की बड़ी महती भूमिका होवे है, और वही गुरु को वही शिक्षक को ना सम्मान देते भाई प्रति वर्ष ये जो 5 सितंबर को दिन है शिक्षक दिवस के रूप में मनायो जावे है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जन्म ना 5 सितंबर 1888 को भयो हो, तो उनके जयंती दिवस पे ही ना

0: उनको नमन वंदन करते हुए यह दिवस को पूरे भारत वर्ष में हर्षोल्लास के संग मनायो जावे है।
1: जी हाँ श्रोता, तो आप सबको यह शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, और या के महत्व को हम जाने समझे ऐसा भाव हम सबके मन में रहे। पर चंपा जी के मन में ये भाव ना आ रहे हो कि अब घड़ी कह रही है कि आज के ब्रजमाधुरी कार्यक्रम को अब यहीं विराम दे दियो जाए।
0: हाँ नृत्य गोपाल जी, देखो बात तो करवे के काज बहुत सारी है, पर समय को अनुशासन ऐसा है, बाकी संग चलनो पड़े व अनुशासन में हमें बंधनो पड़े। तो प्यारे भैया बहनाओं, इन्हीं प्यार भरी बातन के संग हमारो आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होवे है। मोय अपनी चंपा बहन यानी चंद्रवती शर्मा को
1: और मो नृत्य गोपाल को कार्यक्रम प्रस्तुत करता वीके तोमर के संग जाएवे की अनुमति प्रदान करें। नमस्कार।
2: अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम जो कि नाटक है, जिसका शीर्षक है सच्चा ज्ञान।
3: आइए सुनते हैं नाटक सच्चा ज्ञान, लेखिका दीक्षा शर्मा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी।
4: शांति
5: जी,
4: आर्यन ने पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन भविष्य में उसे क्या करना है ये निर्णय ही नहीं ले पा रहा। वो पूरी तरह से मोबाइल पे आश्रित है या दूसरों पर। क्या होगा इसका, मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूं।
5: आप चिंता ना करें जी, सब ठीक हो जाएगा।
4: अरे कैसे चिंता ना करूं, समय निकलता जा रहा है, एक एक दिन हाथ से फिसल रहा है, लेकिन आर्यन को तो भविष्य की कोई चिंता ही नहीं है। जब बात करने जाओ एक ही जवाब देता है, सब हो जाएगा, मैं सब ठीक कर लूंगा, पापा मेरे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा विकल्प मिल ही जाएगा।
5: हाँ जी, ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे खुद भी ऐसा लगने लगा है जैसे मोबाइल के आगे आर्यन के लिए कोई चीज महत्व नहीं रख।
4: सच में
5: कभी हमारे पास बैठकर बात तक नहीं करता, उससे बात करना चाहे तो कहता है डिस्टर्ब मत करो।
4: हाँ।
5: कुछ सर्च कर रहा हूँ। इस मोबाइल में आर्यन सब कुछ भूलता जा रहा है। कभी मंदिर चलने के लिए कहती हूँ तो हंसता है, उसे ये सब वेस्ट ऑफ टाइम लगता है जी।
4: वही तो, अब तो हद होती जा रही है, हर वक्त मोबाइल में ही घुसा रहता है।
5: हाँ।
4: इसे कब समझ आएगी, कब ये कुछ सीखेगा, कैसे खुद से समझेगा।
5: ये बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी।
4: शांति
5: जी,
4: मैं एक बात सोच रहा हूँ।
5: क्या?
4: क्यों ना इसे कुछ दिन गुरुकुल ले जाए, वहाँ गुरुजी से कुछ तो सीखेगा।
5: गुरुकुल? आपको लगता है ये वहाँ जाएगा?
4: मैं आज इससे बात करता हूँ। आर्यन आ जाऊं मैं अंदर?
6: हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी पापा, हाँ जी हाँ जी।
4: क्या कर रहे हो बेटा?
6: अरे पापा वो मैं कुछ सीख रहा था।
4: मोबाइल?
6: हाँ हाँ मोबाइल से।
4: तुम्हें क्या लगता है आर्यन, तुम मोबाइल से सब कुछ सीख सकते हो?
6: अरे पापा दुनिया में कौन सी ऐसी चीज है जो हम मोबाइल से नहीं सीख सकते, आपको क्या लगता है कुछ ऐसा है?
4: हाँ मुझे लगता है कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हम मोबाइल से नहीं बल्कि अपनी दिनचर्या, अपनी जीवन की कुछ बातों से ही सीख सकते हैं।
6: पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है
4: ऐसा है आर्यन, लेकिन आजकल के बच्चों को तो लगता है कि हम सभी बातें, जीवन जीना मोबाइल से ही सीख लेंगे। हमारे जमाने में मोबाइल नहीं था, हमने जो कुछ भी सीखा खुद से सीखा, हमारे गुरु थे जो ज्ञान का भंडार थे, उनसे हमने जीवन की सच्चाई को जाना, जीवन जीने का सही तरीका सीखा। अच्छा तुम बताओ आज किस चीज की कमी है हमारे पास? गुरुजी के ज्ञान ने ही मुझ जैसे छोटे से गांव में रहने वाले लड़के को शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। बेटा एक बात याद रखना।
6: क्या पापा?
4: जब तक हम धरती से जुड़कर कोई काम नहीं करते हम कुछ नहीं सीख सकते, कुछ नहीं समझ सकते। गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता।
6: अरे पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं।

0: क्या पुराने जमाने की बात कर रहे हो आप?
1: अच्छा आर्यन, मैंने क्या तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी होने दी है?
0: नहीं पापा।
1: कभी किसी चीज के लिए मना किया है?
0: नहीं पापा, लेकिन आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं?
1: देखो आर्यन, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी करी, कितना समय हो गया?
0: हाँ हो गया।
1: तुम अपने भविष्य के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं कर पाए हो। जब भी कुछ पूछो तो बस टाल देते हो, पूरी तरह से मोबाइल और अपने दोस्तों पर निर्भर हो। हर बार तुम्हारा विचार बदल जाता है, कभी दोस्त के कहने पर, कभी मोबाइल में देखकर। पूरी तरह से इंटरनेट पर डिपेंडेंट हो गए हो बेटा।
0: पापा, आजकल सभी इसी पर डिपेंड रहते हैं, इसी से सीखते हैं, आप समझते क्यों नहीं है?
1: देखो आर्यन, तुम मेरे एक अच्छे बेटे हो, तुमने हमेशा बड़ों की इज्जत की, पढ़ाई में तुम हमेशा अव्वल रहे, लेकिन कुछ समय से मैं देख रहा हूँ मोबाइल के आगे तुम्हें कुछ नहीं भाता है। देखो, मैं चाहता हूँ तुम यथार्थ में रहकर कुछ सीखो, सब कुछ मोबाइल से ही नहीं सीखा जा सकता बेटा।
0: अरे पापा, तो आप चाहते क्या हैं?
1: मैं चाहता हूँ तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ गुरुजी के आश्रम चलो।
0: क्या?
1: हाँ, गुरुकुल में कुछ दिन रहो, इस मोबाइल से ज्यादा शायद तुम्हें वहां ज्ञान मिल जाए।
0: अरे पापा, आप कैसी बातें कर रहे हैं? उस गांव के गुरुकुल में जाकर मैं इस मोबाइल से ज्यादा सीखूंगा। सीरियसली? हाँ, ऐसा आपको लगता है पापा? लेकिन मुझे नहीं।
1: देखो आर्यन, मैं जानता हूं शायद तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई, मैं कौन सा तुम्हें वहां सारी उम्र रहने के लिए कह रहा हूं। हाँ
0: अब पापा प्लीज, मुझे नहीं जाना।
1: देखो आर्यन, तुमने मुझे खुद कहा था ना कि तुम थोड़े दिनों में अपने भविष्य के लिए खुद से कुछ निर्णय लेने वाले हो।
0: हाँ जी।
1: हाँ तो लेना, अपना निर्णय खुद लेना, लेकिन अभी कुछ समय तक तो तुम खाली हो ना खाली।
0: हाँ।
1: तो वो समय मुझे दे दो, अब मेरे साथ चलो बेटा, प्लीज आर्यन, मेरी बात मान लो बेटा। देखो, बस कुछ ही दिन तुमसे मांग रहा हूं, फिर आकर तुम्हें जो करना है वो करना, ठीक है? बस
0: ओके ठीक है पापा, मैं चलूंगा, पर पापा, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा, ठीक है?
1: हाँ, प्रॉमिस? ठीक है, प्रॉमिस। हाँ ठीक है, तो तुम तैयारी कर लो, हम कल सुबह ही निकलेंगे।
0: हाँ ठीक है पापा, ओके। मैं करता हूं।
1: मेरा अच्छा बेटा, मैं अभी तुम्हारी माँ को बताता हूँ। शांति शांति। देखा बेटा, कितना अच्छा माहौल है यहाँ पे। आओ आओ, गुरुजी के कमरे में चलते हैं।
0: यार इस तरफ?
1: हाँ, इधर।
0: अच्छा
1: गुरुजी, प्रणाम।
2: प्रणाम प्रणाम।
1: गुरुजी, मेरा बेटा आर्यन। गुरुजी को प्रणाम करो।
0: जी प्रणाम गुरुजी।
2: प्रणाम बेटा, प्रणाम।
1: गुरुजी, मैं इसे यहाँ जबरदस्ती लेकर आया हूँ, ये तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। गुरुजी, ये कॉलेज पास कर चुका है, लेकिन भविष्य में क्या करना है अब भी नहीं समझ पा रहा है।
0: अब गुरुजी, वो पापा ठीक ही कह रहे हैं, एक्चुअली मुझे ये जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं, कहते हैं कि आपके पास जीवन की सीख मिलेगी, लेकिन आप बुरा मत मानिए, मैं सच कहूं तो आजकल सारी जानकारी तो मोबाइल पर मिल ही जाती है।
1: आर्यन,
2: जानकारी तो मिल जाती है बेटा, लेकिन क्या समझ भी मिल जाती है? कोई बात नहीं, अब आ ही गए हो तो दो चार दिन गांव में रहकर देख लो, यहाँ की शुद्ध हवा खाओ।
0: ठीक है, अब आ ही गए हैं तो रह लेते हैं दो चार दिन, गांव भी घूम लेंगे।
1: तो ठीक है गुरुजी, अब आज्ञा दीजिए, मैं चलता हूँ।
2: आयुष्मान भव।
1: आर्यन।
0: जी पापा।
1: जो जो गुरुजी कहें बस उनकी बात मानते रहना, समझे?
0: हाँ जी पापा।
1: मैं चलता हूँ, ध्यान रखना अपना।
0: हाँ जी हाँ जी, हाँ जी।
1: गुरुजी की सुनना। हाँ चल,
0: आप ध्यान से जाना। प्रणाम गुरुजी।
2: प्रणाम प्रणाम। आओ आर्यन आओ, थोड़ी ठंडी हवा खाते हैं, गांव की सैर करते हैं।
0: जी
2: आओ
0: जी, आइए चलिए।
3: मर गई।
0: अरे गुरुजी, ये इतनी बूढ़ी हैं और इतनी भारी लकड़ियों का गट्ठर सिर पर उठाकर चल रही हैं। एक इनकी इनकी

0: वीडियो बाद में बनाना। देखो वो खड़ी हो गई हैं। शायद वो गट्ठर नीचे रखना चाहती हैं। जाओ पहले उनका बोझ कम करो।
1: ओके गुरुजी। अरे अम्मा मैं थोड़ी मदद करता हूँ आपकी। लाई मुझे दीजिए।
2: अरे अरे बहुत
1: भारी है ये तो।
3: अरे बेटा इतनी देर से देख रही थी, कोई मेरे सिर का बोझ उतरवा दे। बहुत थक गई थी। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें सुख दे बेटा, तुम्हें सुख दे।
0: चले आर्यन।
1: जी जी गुरुजी।
0: अच्छा आर्यन, इससे तुमने कुछ सीखा?
1: गुरुजी इससे मैं क्या सीखूंगा।
0: अब मोबाइल ने तुम्हें वीडियो बनाना सिखाया
1: जी,
0: लेकिन इंसान का दर्द समझना किसने समझाया?
1: अब
0: चलो आओ
1: जी।
0: गए
1: जी गुरुजी।
0: आर्यन
1: जी,
0: मुझे एक गिलास पानी दोगे?
1: जी जी मैं अभी लाया। ये लीजिए गुरुजी पानी।
0: इसमें एक चम्मच नमक डालो।
1: नमक?
0: और इसे पी लो।
1: अब जी ठीक है।

0: ये बहुत खारा है।
1: अच्छा अब एक चम्मच नमक वो उस बड़े मटके में डालो और उसका पानी पियो।
0: मटके में? ठीक है। ये तो बिल्कुल सामान्य है।
1: हाँ, मैं तुम्हें इसके जरिए ये बताना चाहता हूँ कि समस्याएं भी नमक की तरह ही होती हैं। अगर मन छोटा हो तो हर दुख कड़वा लगता है, और मन बड़ा हो तो कोई दुख हमें तोड़ नहीं पाता। जाओ अब तुम विश्राम करो।
0: जी गुरुजी।
1: जाओ।
0: शायद गुरुजी सही कह रहे हैं, जानकारी और बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। चलो कोई बात नहीं, कल देखते हैं गुरुजी क्या बताते हैं। आज तो बहुत थक गया मैं।

0: प्रणाम गुरुजी, प्रणाम।
1: प्रणाम प्रणाम। आर्यन
0: जी,
1: जैसे और शिष्य मेडिटेशन कर रहे हैं, तुम भी ध्यान लगाओ।
0: जी जी गुरुजी।
1: हाँ।
0: सुबह से पता नहीं किस किस के मैसेज आए होंगे, जरा देख लेता हूँ। किसके मैसेज है ये? ये किसने भेजा? अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके ओके। और ये
1: आर्यन?
0: जी जी जी गुरुजी। जी,
1: मन यहाँ बैठा है या मोबाइल में?
0: वो क्या है ना गुरुजी, कल आपने गांव में खूब घुमाया था ना, तो थक गया था और जल्दी सो गया, और सुबह सुबह आपने यहाँ बुला लिया, फोन बिल्कुल नहीं देख पाया। आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है गुरुजी, आपको नहीं पता, नहीं तो लोग भूल जाते हैं। जी।
1: तुम्हें क्या लगता है आर्यन
0: जी,
1: जो लोग तुम्हें एक दिन ऑनलाइन ना दिखने पर भूल जाएं, क्या वो सच में तुम्हारे अपने हैं?
0: क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी।
1: अच्छा चलो, जरा मेरे साथ बागीचे में चलो। आओ मेरे साथ चलो।
0: जी चलिए।
1: देखो आर्यन
0: जी, गुरुजी
1: यहाँ दो पौधे लगे हैं।
0: जी जी।
1: एक देखो कितना हरा भरा है, और ये दूसरा कितना मुरझाया हुआ है। बता सकते हो इनमें अंतर क्यों है?
0: ये तो ऑब्वियस है ना गुरुजी,

0: ये पहले वाले को पानी मिला होगा और दूसरे वाले को नहीं।
1: बिल्कुल ठीक। जिस चीज को रोज समय और ध्यान मिलता है वही बढ़ती है। तुम अपने मोबाइल को रोज 8 घंटे देते हो, लेकिन अपने माता पिता, अपने मन को कितना समय देते हो?
2: गुरुजी, मेरे पिताजी अस्पताल में हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है।
1: नहीं, रो मत बेटा। भगवान से प्रार्थना करो, वो तुम्हारे पिता को ठीक कर देंगे।
2: लेकिन मेरा डर और रोना बंद नहीं हो रहा, मैं क्या करूं?
0: सुनो। अरे देखो, रोते नहीं है। देखो, हम दोनों मिलकर गुरुजी के साथ प्रार्थना करेंगे, ठीक है? ताकि तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएं, ठीक है? चलो रोना बंद करो, शाबाश, चलो। गुरुजी, आज दरअसल पहली बार लगा कि दुख में किसी का हाथ पकड़ना उसकी फोटो लेने से ज्यादा अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल ठीक कहा। चलो शाम को मिलते हैं।
0: जी गुरुजी, प्रणाम।
3: प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम। अच्छा बच्चों, आज मैं तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ, एक एक करके बताना कि दुनिया में सबसे तेज क्या है?
2: गुरुजी, हवा।
4: ना गुरुजी, प्रकाश।
5: नहीं, गुरुजी, खाना।
6: विद्या गुरुजी, विद्या।
7: ज्ञान।
1: ठीक है। सबने अपनी अपनी बात कही, अब मेरी सुनो। दुनिया में सबसे तेज है जो भागता ही रहता है, और वो है मन। और आज के समय में तो मोबाइल उस मन को हर पल हर क्षण भटकाता है। हर 2-2 मिनट बाद मोबाइल को देखने का मन होता है। यही भटकाव है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने सारी दुनिया जीत ली। मन को काबू करके तो देखो। चलिए आज का पाठ यहीं संपन्न होता है।
8: प्रणाम।
0: ये छत पर ठंडी हवा में सोने का मजा ही अलग है। पहले कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और कितने खूबसूरत लग रहे हैं आसमान पर चारों ओर बिखरे ये तारे। लाखों स्क्रीन देखी, लेकिन आज पहली बार अपने अंदर की रोशनी को महसूस कर पा रहा हूं।
1: लगता है अब शिक्षा शब्दों से नहीं, अनुभव से तुम्हारे हृदय में उतर रही है।
0: जी गुरुजी।
1: चलो इस दृश्य को खूब देखो, अच्छी तरह देखो, निहारो।
0: जी गुरुजी।
1: सुबह मिलते हैं।
0: जी गुरुजी, प्रणाम। वाह, सुबह की ठंडी हवा। वाह, सचमुच आनंद आ गया। आज मैं जल्दी उठ गया, नहा धो भी लिया, और कितनी जल्दी सब कुछ हो गया। और सुबह ये ताजी हवा में सांस लेने का मजा ही कुछ और है। क्या बात है। अरे ये इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां एक साथ, और पीछे मीडिया की गाड़ियां भी हैं। क्या हो क्या रहा है ये? अब नीचे चलकर देखूं तो कौन आया है? अरे ये तो देश के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, और ये गुरुजी के पास क्या कर रहे हैं?
7: गुरुजी आशीर्वाद दीजिए।
0: अरे ये गुरुजी के पैर छू रहे हैं?
1: जीते रहो बेटा, सदा सुखी रहो।
7: गुरुजी आपकी सीख से, आपकी शिक्षा से मैं आज इस मुकाम पर हूं। आपकी दी हुई सीख और शिक्षा से और सूझबूझ से मैंने कारोबार आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुंच गया हूं। मेरी ओर से ये धनराशि आपके लिए गुरुजी।
1: बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, लेकिन मुझे इसकी आवश्यकता तो नहीं थी, फिर भी मैं आपसे ये स्वीकार करता हूँ।
7: धन्यवाद गुरुजी।
1: और अभी आश्रम के गरीब बच्चों की पढ़ाई और गांव के अस्पताल को दान भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: अरे इन्होंने नोटों से भरा बैग गुरुजी की ओर बढ़ाया और गुरुजी ने एक ही पल में वो सारे नोट दान कर दिए।
7: अच्छा गुरुजी, अब आज्ञा दीजिए।
1: सदा सुखी रहो बेटा, सदा सुखी रहो।
7: प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम
0: गुरुजी। प्रणाम।
1: प्रणाम
0: गुरुजी। इतने बड़े बिजनेसमैन को यहाँ आश्रम में देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई है।
1: हैरानी कैसी, वो मेरे शिष्य रह चुके हैं।
0: अच्छा।
1: हाँ।
0: अच्छा गुरुजी, मैं पूछना चाहता था कि उन्होंने आपको इतने सारे पैसे दिए और आपने आपने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ दान में दे दिया, ऐसा क्यों?
1: देखो आर्यन, हमेशा ये सीख याद रखो, जो अपने लिए जोड़ता है वो अमीर बन जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए बांटता है वो महान बन जाता है, सच्चा इंसान बन जाता है।
0: वाह गुरुजी, ये बात तो मोबाइल में भी आज तक कभी नहीं सुनी।
4: प्रणाम गुरुजी।
1: प्रणाम। प्रणाम
0: गुरुजी, आपने बुलाया?
1: हाँ। अच्छा आर्यन, ये देखो मेरे हाथ में क्या है।
0: ये हाँ, शायद धान के दो पौधे हैं आपके हाथ में।
1: शायद नहीं, ये धान के ही पौधे हैं, एक पका हुआ है और एक खाली है। ये देखो, जिसमें दाने भरे हैं, जो पका हुआ है वो झुका हुआ है और जो खाली है वो सीधा खड़ा है। इससे तुम्हें कुछ सीख मिलती है तो बताओ, कुछ समझ रहे हो?
0: गुरुजी माफ कीजिए, इससे सीख नहीं गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं गुरुजी।
1: देखो आर्यन, जिस तरह ये दो पौधे हैं, ज्ञान भी इसी तरह होता है। सच्चा ज्ञानी कभी घमंड नहीं करता, हमेशा जो जितना बड़ा होता है उतना ही विनम्र होता है।
0: गुरुजी मैं अब तक खुद को बहुत ज्ञानी समझता था, लेकिन आज पता चला कि मैं सीखने की शुरुआत भी नहीं कर पाया हूं अभी तक।
1: जिस दिन मनुष्य ये मान ले कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, उसी दिन उसका असली ज्ञान शुरू होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखना आर्यन।
0: जी जी गुरुजी।
1: देखो आर्यन, कल तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं।
0: जी गुरुजी।
1: अच्छा आर्यन, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी।
0: जी गुरुजी, बताइए।
1: मुझे आज रात कहीं बाहर जाना है।
0: जी।
1: सो तुम्हें एक जिम्मेदारी देना चाहता हूँ।
0: जी गुरुजी। जी दीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे।
1: देखो आर्यन, मैं ये जलता हुआ दीपक तुम्हें दे रहा हूं, इसे तुम्हें लेकर सारी रात आश्रम के रास्ते में घूमना है, लेकिन ध्यान रहे इसकी लौ बुझनी नहीं चाहिए। क्या ये कर सकोगे?
0: जी जी गुरुजी, बिल्कुल करूंगा। हाँ बिल्कुल करूंगा।
1: तो ये लो, ये जी दीपक है।
0: जी जी, जी
1: और ये
0: जी,
1: अब तुम्हारी जिम्मेदारी है।
0: जी गुरुजी।
1: इसे बुझने नहीं देना।
0: बिल्कुल नहीं गुरुजी। अरे गुरुजी ने मुझ पे जिम्मेदारी दी है और ये हवा भी आज इतनी तेज चलनी थी, अरे

0: आश्रम के रास्ते में तुमने किस किस को देखा?
1: खुर्शी क्षमा कीजिए, लेकिन मैं किसी को नहीं देख पाया क्योंकि मेरा पूरा ध्यान ही दीपक की लौ को बचाने में लगा हुआ था।
0: बस यही जीवन का रहस्य है आर्यन।
1: क्या मतलब गुरुजी?
0: अगर तुम्हारा ध्यान अपने लक्ष्य, अपने चरित्र और अपने ईश्वर पर रहेगा तो दुनिया की बेकार बातें अपने आप नजर आनी बंद हो जाएंगी।
1: जी गुरुजी, मैं समझ गया। मैं हर समय लोगों की राय, लाइक्स और तारीफों के पीछे भागता रहता था और इसलिए शायद मैं अपने जीवन का उद्देश्य भूल गया था। गुरुजी,
0: ज्ञान तुम्हें विनम्र बनाए, अहंकारी नहीं।
1: जी गुरुजी, मैं समझ गया। आज से मैं तकनीक का उपयोग करूंगा लेकिन अपना जीवन उसके हवाले नहीं करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं गुरुजी।
0: वादा मुझसे नहीं आर्यन, अपने आप से करो, अपने आप से प्रण लो। जिस दिन से मनुष्य अपने आप को जान लेता है उस दिन से उसका जीवन सफल होने लगता है। ज्ञान भी ऐसा ही होता है, सच्चा ज्ञानी कभी घमंड नहीं करता।
1: जी गुरुजी, मैं अब तक खुद को बहुत बड़ा समझता था लेकिन अब पता चला कि मैं तो सीखने की शुरुआत भी नहीं कर पाया था। गुरुजी,
0: बेटा आर्यन, जिस दिन मनुष्य ये मान ले कि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है उस दिन उसका असली ज्ञान शुरू होता है। अब जाओ आर्यन, आराम करो।
1: जी,
0: सुबह तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं।
1: जी गुरुजी। मैं समझ गया हूं कि असली ज्ञान चीजों को सीखकर उसे समझने में है।
2: शांति, देख रही हो हमारा बेटा कितना बदल गया है।
1: डिग्री हमें नौकरी दिलाती है, विनम्रता हमें इंसान बनाती है और समझ में आने लगा है मम्मा कि किसी भी चीज को पूरी तरह हम तभी समझ सकते हैं जब तक उसे अपने जीवन में दोहराए ना।
3: अरे वाह, मेरे आर्यन ने तो चंद दिनों में ही सब कुछ सीख लिया। वाह बेटा वाह।
1: पापा मामा, ये गुरुजी का ज्ञान है।
4: हाँ। अभी आप सुन रहे थे नाटक सच्चा ज्ञान। लेखिका थी दीक्षा शर्मा, निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। भाग लेने वाले कलाकार थे अनु शर्मा, गौरव देवगन, निखिल दीवान, उर्मिला और सुनील कुमार लोहिया।
5: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद यानी 4:10 पर आप सुन सकते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में जानकारी। परिक्रमा द्विभाषी मैगजीन बेस्ड प्रोग्राम आप सुन सकते हैं आज शाम 4:30। लोकरंजनी कार्यक्रम के प्रसारण का समय है शाम 5:10। वही हमारे दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी को आप सुन सकते हैं आज शाम 5:30।

ग्राम संसार इस कार्यक्रम का प्रसारण शाम 6:30 बजे किया जाएगा और 7:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम किसान वाणी।

0: फरमाइश। ये कार्यक्रम का प्रसारण समय है रात्रि 11:10 पर। तो ये थी हमारे आज के शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वो सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। इसके लिए शिक्षकों को अपने भीतर के बच्चे को भी जीवित रखना चाहिए। श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
3: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाया। झारखंड में प्रश्न पत्र लीक का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि ये सिर्फ प्रश्न पत्र लीक नहीं बल्कि प्रश्न पत्रों की लूट थी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा की जांच में अनियमितताएं सामने आई हैं, जिनमें स्ट्रांग रूम तोड़ना और प्रश्न पत्रों में छेड़छाड़ शामिल है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल के बाढ़ प्रभावित त्रिशुली बाजार क्षेत्र से 5 वर्षीय बच्चे सहित 3 और भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इससे शरणार्थियों की कुल संख्या 169 हो गई है। 275 भारतीय नागरिक अब भी लापता हैं। मंत्रालय ने बताया कि आने वाले दिनों में भारत नेपाल सरकार के अनुरोध पर अधिक फॉरेंसिक किट, बेली ब्रिज और अतिरिक्त सामग्री भेजने की योजना बना रहा है। इस बीच नेपाल में बाढ़ मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में उत्तर पूर्वी राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, सिक्किम, बंगाल और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भोपाल में बाढ़ और तेज बारिश की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने NDRF, SDRF और जिला प्रशासन की टीमों को पूरी तरह तैयार रहने का निर्देश दिया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज रात 8 बजे भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के डबल्स सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashwani. The news read by Lalema Aneja Dang. President Draupadi Murmu has said, "A Vikasit Bharat will only be possible with quality education." She said, "A society that respects their teachers is a progressive society in right terms." The president was addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers Day today.
2: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
4: President Murmu added that academic excellence, skill development and entrepreneurship plays a crucial role in the development of the nation. The president noted that establishing India as the skill capital of the world alongside becoming a knowledge power is the priority of the country. Stressing on the importance of knowledge as the greatest source of power, the president said, education empowers individuals to think independently, make informed decisions, and contribute meaningfully to the progress of the nation. The president said that dedicated teachers are the frontline nation builders. President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 selected school teachers from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The president also presented national awards to 21 teachers and faculties of higher education institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that, they should also preserve the child within themselves. He stressed that bringing about real change in children requires teachers to become a part of their lives rather than limiting themselves to the syllabus.
3: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
4: Prime Minister Narendra Modi will participate in the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce SRCC in New Delhi this evening. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The flood situation remains critical in Bihar, including in the state capital Patna. The rising water levels of major rivers in Bihar, including the Ganga, Gandak and Kosi, continue unabated. Flooding has affected 16 districts, while the situation remains serious in 14 districts, including Patna. Relief and rescue operations are underway in the affected districts. Madhya Pradesh Chief Minister Dr. Mohan Yadav reviewed the flood and heavy rain situation in Bhopal today. He visited the SDRF State Command Center and spoke to the officials. The Chief Minister reviewed the deployment of rescue teams and directed the NDRF, SDRF and district administration teams to remain fully prepared. The External Affairs Ministry has said 3 more Indian nationals, including a 5-year-old child, have been rescued from the flood-hit Trishuli Bazar area of Nepal, bringing the total count of Indian evacuees to 169. MEA spokesperson Randhir Jaiswal said yesterday that 275 Indian nationals remain missing. The spokesperson said India has supplied around 95 tons of relief material to Nepal since the devastating flash floods hit the country on the the 26th of last month. Meanwhile, the death toll from the floods in the Himalayan nation rose to 1,000.

अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका कार्यक्रम साहित्य भारती, ये आप सुन सकते हैं रात्रि 9:30 पर। और फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी

0: than 344 after rescue workers recovered more bodies from the affected areas. In women's cricket, India will take on arch rivals Pakistan in the final Group A clash of T20 Asia Cup at the Dubai International Stadium tonight. The match will begin at 8 p.m. IST. And that's the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब आपको गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना देते हैं। मदन मोहन जोशी, पुत्र गौणदत्त जोशी, निवासी बड़ावे मुसवारी, जिला पिथौरागढ़ उत्तराखंड से ये संदेश है। खोए हुए व्यक्ति का पूरा नाम है मदन मोहन जोशी। इन्हें आखिरी बार मंगोलिया सोसाइटी सेक्टर 42 गुरुग्राम में दिनांक 16 जून 2026 को दोपहर में देखा गया था। इनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। उम्र 40 वर्ष, कद 5 फुट 4 इंच के आसपास, शरीर की बनावट रंग सांवला, चेहरा गोल और सामान्य शरीर। अगर आप इनके बारे में कोई जानकारी देते हैं तो पुरस्कार स्वरूप आपको 2000 रुपए मिलेंगे। इनके बारे में पुलिस स्टेशन सुशांत लोक गाजियाबाद गुरुग्राम में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। और ये सोसाइटी में काम करके 16 जून को निकल गया था, लेकिन उसके पास अपने घर नहीं पहुंचा। और अगर इनके बारे में कोई आपको जानकारी मिलती है तो आप जांच अधिकारी पुलिस स्टेशन सुशांत लोक गुरुग्राम में संपर्क कर सकते हैं, या फिर इनके मोबाइल नंबर 9999981826 या फिर 9812219219 पर संपर्क कर सकते हैं। अगले खोए हुए व्यक्ति का नाम है मनीष और इनके पिता का नाम है नरेश कुमार। ये निवासी हैं खंदावली पुलिस स्टेशन खरखौदा मेरठ के। मोबाइल नंबर है इनका 9045969650। इनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है। और ये दिनांक 16 मई 2026 के से लापता है। नीली शर्ट पैंट और सैंडल पहने हुए हैं। इनके परिजनों ने रिश्तेदारी और आसपास के इलाकों में काफ़ी खोजबीन की है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल गई है। इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना इठौर जनपद मेरठ में दर्ज कराई गई है। अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। अगले खोए हुए व्यक्ति का नाम है श्रीमती समरीन, पत्नी मोहम्मद आरिफ, निवासी ही ग्राम सरसवा थाना दौराला जनपद मेरठ। इनके संरक्षक का नाम है मोहम्मद आरिफ, इनके पति का नाम है और ये निवासी हैं ग्राम सरसवा थाना दौराला जनपद मेरठ से। मोबाइल नंबर है 9837521031। उम्र लगभग 26 वर्ष, लंबाई 5 फुट 2 इंच, गोरा रंग है, आँख कान नाक औसत है, रंग गोरा है और आसमानी रंग का सूट और आसमानी रंग का सलवार पहनी है। और ये इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट ग्राम सरसवा थाना दौराला में दर्ज करा दी गई है। और ये 28 मई 2026 से लापता हैं। अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप प्रभारी निरीक्षक थाना दौराला जिला मेरठ से संपर्क कर सकते हैं। कमल किशोर उर्फ कल्लू, ये नाम है अगले खोए हुए व्यक्ति का। ये दिनांक 23 मई 2026 से लापता है। ये निवासी हैं ग्राम मऊखास, पुलिस स्टेशन मुंडाली, जनपद मेरठ के। उम्र इनकी 33 वर्ष है। सामान्य शरीर है, गेहुआ रंग है, गठीला बदन है, जीन्स और टी शर्ट पहने हुए हैं। उम्र 45 वर्ष है और इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना मंडाली जनपद मेरठ में दर्ज करा दी गई है। तो अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अगले खोए हुए व्यक्ति का नाम है तनु और अमित इनके परिजनों का नाम है। अटल विहार नालापट्टी थाना कौराना जनपद शामली के रहने वाले हैं और टी शर्ट काली सफेद रंग का पैंट पहने हुए हैं और गोरा रंग है। लंबे काले बाल हैं, सामान्य शरीर है, 5 फुट के आसपास इनकी लंबाई है और इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कैराना जनपद शामली में दर्ज करा दी गई है। अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं। एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है थाना मदन शामली में, कस्बा ग्राम रेडी रोड के पास और नीले रंग की शर्ट धारीदार पहने हुए हैं और उम्र लगभग 50 वर्ष बताई जा रही है। सामान्य शरीर है, गोल चेहरा है। इनकी गुमशुदगी या इनकी जो रिपोर्ट है वो थाना मरण शामली में दर्ज करा दी गई है। कोई जानकारी मिले तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। एक गुमशुदा व्यक्ति का नाम है अनस, इनके पिता का नाम है इनाम और ये रहने वाले हैं कैराना शामली के। 15 जून 2026 से लापता हैं। 22 वर्ष इनकी उम्र है। लंबाई लगभग 5 फुट 3 इंच है। काले रंग की टी शर्ट पहने हुए हैं और इकहरा बदन है, गेहुआ रंग है और इनके गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कैराना जनपद शामली में दर्ज करा दी गई है। अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप थाना कैराना के प्रभारी निरीक्षक या जांच अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। अगले खोए हुए व्यक्ति का नाम है मुस्कान, इनके पिता का नाम है नसीम। ये मामापुर रोड थाना कैराना जनपद शामली के रहने वाले हैं। 25 जून 2026 से ये कहीं लापता हैं। उम्र लगभग 19 वर्ष है, 5 फुट 2 इंच लंबाई है, सफ़ेद रंग का सूट और पहने हुए हैं और सामान्य शरीर है, गेहुआ रंग है और इनकी भी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाना कैराना जनपद शामली में दर्ज करा दी गई है। तो अगर आपको इनके बारे में कोई जानकारी मिलती है तो आप थाना कैराना जनपद शामली में संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।

0: 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 4:19:55 हुए हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज।
1: Welcome to Employment News, your ultimate gateway to career success. I am Lucy Gabriel and I'm here to guide you through the latest job vacancies across various sectors and government recruitment updates to help you navigate the competitive job market. We begin with Sahitya Academy, an autonomous organization under the Ministry of Culture, Government of India, and India's premier literary institution, invites applications for various posts on direct recruitment basis, including Deputy Secretary, General Administration 1, unreserved post, Assistant Editor 1, unreserved, Senior Library and Information Assistant 2, 1 OBC, 1 EWS, Junior Translation Officer 1, unreserved, Technical Assistant 1, OBC, Program Assistant 1, unreserved, Publication Assistant 5, 3 unreserved, 1 SC, 1 EWS, Proofreader cum General Assistant 2, 1 unreserved, 1 OBC, Stenographer Grade 2, 4 posts, 2 unreserved, 1 OBC, 1 EWS, Messenger cum Rider, 1 unreserved, Van Driver, 1 unreserved, Junior Clerk 4, 1 OBC, 1 SC, 1 ST, 1 EWS, and Multitasking Staff 6 vacancies, 3 for OBC and 3 for EWS. The post carry pay levels 11, 10, 6, 4, 2 and 1 as applicable as per the 7 CPC. With postings at the Academy's head office New Delhi and regional sub-offices in Mumbai, Kolkata, Bengaluru and Chennai. Detailed eligibility, qualifications, experience, reservations and location-wise vacancy details are available on the Academy's website. Applications must be submitted only in the prescribed performer available on the website within 30 days from the date of release of this advertisement in the Employment News. For details, kindly refer to the website at www.sahitya-academy.gov.in. National Council for Promotion of Sindhi Language, NCPSL, New Delhi, an autonomous organization under the Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India, invites online applications from Indian nationals for one post of translator Group B through deputation or direct recruitment. The post carries pay level 6 with one unreserved vacancy and the upper age limit is 30 years. The application window closes on 21st September 2026. The application fee is 500 rupees and 250 rupees for SC, ST, women and PWBD candidates are exempted. Applications must be submitted online through the recruitment section on the website. For detailed eligibility, qualifications and other conditions, kindly visit the website. That is at www.ncpsl.csu.co.in. I repeat, www.ncpsl.csu.co.in. Archaeological Survey of India, ASI, Ministry of Culture, Government of India, invites applications for one post of Additional Director General, Research and Training Capacity Building, Group A Gazetted Technical in Level 14 as per the 7 CPC on deputation including short-term contract basis. Eligible officers from central or state government, UTs, universities, recognized research institutions and statutory autonomous organizations should possess a doctorate in archaeology, ancient medieval Indian history, structural scientific conservation of ancient monuments or heritage buildings, with 15 years experience in training, capacity building or guiding research and published research papers, reports in relevant fields. The maximum age limit is 56 years as on the closing date. The selected officers will head ASI's research and training division and supervise training and capacity building activities. Applications in duplicate along with complete and updated ACRs and RPARs should be submitted through proper channel within 60 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. The initial place of posting is ASI Headquarters, Dharohar Bhavan, 24 Tilak Mark, New Delhi, 11001. And now we have the Employment News in Hindi.
2: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शारीरिक दिव्यांगजन संस्थान आमंत्रित करता है इन पदों के लिए आवेदन। व्यावसायिक चिकित्सक, ऑडियोलॉजिस्ट एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, विशेष शिक्षक श्रवण दिव्यांगता तथा नर्स। आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट pdunippd.nic.in। केंद्र, राज्य विश्वविद्यालयों, संस्थानों, केंद्रीय एवं राज्य सरकार के विभागों, अर्ध सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत कार्यरत इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों से रिक्त पदों के लिए स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर गैर शिक्षण पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। विस्तृत निर्देश, आवश्यक योग्यताएं, वेतनमान आदि की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mhu.ac.in। दूरसंचार विभाग में प्रतिनियुक्ति के आधार पर कुछ पदों को भरा जाना है, जिनका विवरण इस प्रकार है। आशुलिपिक ग्रेड 1, वरिष्ठ लेखाकार, कनिष्ठ लेखाकार, आशुलिपिक ग्रेड 2 तथा अवर श्रेणी लिपिक। नियम और शर्तें, आवेदन का प्रपत्र तथा अन्य पात्रता मानदंडों की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.cgca.gov.in। राष्ट्रीय पटसन बोर्ड में इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। कंसल्टेंट प्रशासन एवं स्थापना, कंसल्टेंट सिविल इंजीनियरिंग, कंसल्टेंट वित्त एवं आर्थिक सेवाएं, कंसल्टेंट मार्केट प्रमोशन और योजना कार्यान्वयन, यंग प्रोफेशनल वित्त एवं आर्थिक सेवाएं, यंग प्रोफेशनल मार्केट प्रमोशन और योजना कार्यान्वयन तथा यंग प्रोफेशनल प्रौद्योगिकी और तकनीक। आवेदकों से अनुरोध है कि वे अधिक जानकारी के लिए देखें राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की वेबसाइट jute.com। नेशनल हेल्थ सिस्टम्स रिसोर्स सेंटर नई दिल्ली योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित कर रहा है सीनियर कंसल्टेंट हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के पद को भरने के लिए। आवश्यक योग्यता और अनुभव के विवरण की जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.nhsrcindia.org। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रतिनियुक्ति आधार पर इन पदों को भरने के लिए भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित कर रहा है। महाप्रबंधक विधि, पदों की संख्या 2, महाप्रबंधक परिवहन योजनाकार 1 पद, महाप्रबंधक परिवहन अर्थशास्त्री 1 पद, महाप्रबंधक पर्यावरण 1 पद, महाप्रबंधक इलेक्ट्रॉनिक्स 1 पद तथा महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी 2 पद और उप महाप्रबंधक सूचना प्रौद्योगिकी 4 पद। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की वेबसाइट www.nhai.gov.in। राष्ट्रीय तटीय अनुसंधान केंद्र इन पदों के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 3 1 पद, परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 2 1 पद और परियोजना वैज्ञानिक ग्रेड 1 2 पद। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु में छूट, मासिक पारिश्रमिक, आरक्षण, आवेदन प्रक्रिया, सामान्य निर्देश और अन्य जानकारियों के लिए देखिए वेबसाइट www.nccr.gov.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं आज के

0: रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम व्यू 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 4:30 बजे हैं। आइए सुनते हैं हमारा न्यूज मैगजीन शो परिक्रमा।
2: कार्यक्रम परिक्रमा।
3: नमस्कार, दोपहर के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आज परिक्रमा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ बात करेंगे शिक्षक दिवस की, जो कि बेहद उत्साह के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर आज हम उन को भी नमन कर रहे हैं जो हमारे जीवन को ज्ञान से अलोकित करते हैं। और एक शिक्षक न केवल अक्षर का ज्ञान देता है बल्कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या खास रिपोर्ट्स हैं। खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी को एंकर लालिमा अनेजा डैंग। हेलो लालिमा।
4: हेलो करिश्मा, आपने बहुत सुंदर रूपरेखा बांधी और जैसे आपने शिक्षक डे के बारे में आज बताया, वेल लेट मी फर्स्ट फॉर्मली इंट्रोड्यूस माय फ्रेंड्स। वेल यस, यू आर ट्यून्ड इनटू परिक्रमा ऑन आकाशवाणी गोल्ड एट 100.1 मेगाहर्ट्ज़। एज करिश्मा मेंशनड, आई एम लालिमा अनेजा डैंग एंड वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट बिफोर वी गेट ऑन टू अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। सो लेट्स बिगिन विद द हेडलाइंस, शैल वी करिश्मा? ओके, हियर वी गो। President Draupadi Murmu says Vikasit Bharat will only be possible with quality education, confers national awards on 48 school teachers.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने की अपील की। उन्होंने बच्चों का स्क्रीन समय कम करने, खेलकूद और बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
4: प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस सेंटिनरी सेलिब्रेशंस ऑफ श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इन न्यू दिल्ली दिस इवनिंग।
3: बिहार के 14 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव अभियान जारी।
4: इंडिया डिलीवर्स 95 टन्स ऑफ रिलीफ मटेरियल टू फ्लड हिट नेपाल टू सेंड मोर सप्लाईज एंड बेली ब्रिजेस।
3: चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के सेमीफाइनल में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशियाई जोड़ी से होगा।
4: एंड इन वुमेन्स क्रिकेट, इंडिया टू टेक ऑन आर्च राइवल्स पाकिस्तान इन फाइनल ग्रुप ए क्लैश ऑफ T20 एशिया कप इन दुबई टुनाइट। And it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments taking place on the national or global level. Let's start with something very pertinent, very relevant today. And today being Teachers' Day, we'll know what it's all about. Well, someone very... But before that, yes, let's listen to somebody's voice, Karishma. Sorry, I forgot that. Very important. And whose voice it could be? Let's take a guess.
5: Education is the chief means by which we can transform our society. Through it, we can purge our minds of age-old prejudices and set our faces against the trivialities of life. Future depends on what we are in our thoughts and action. Indiscipline or disrespect for authority is the direct antithesis of democracy and social order. Students in particular have to realize the social consequences of their acts. Better relations between students and teachers will improve the general atmosphere in educational institutions. Teachers who occupy an important place in our society deserve to be treated well.
4: All right, someone nicely said, good teachers know how to bring out the best in students. That was said by Charles Kuralt. And the voice you just heard was of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, India's second president, independent India's second president, a philosopher, a teacher, a scholar who devoted a major part of his life to education. And friends, today is a day to celebrate people who teach us more than what's written in textbooks. Yes, teachers, it is Teachers Day right away.
3: बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसी के साथ श्रोताओं, आज हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो लगभग हर सफर का हिस्सा रहा है, जो हमें सिखाता है, राह दिखाता है, हमारी गलतियां सुधारता है और हमें प्रेरित भी करता है।
4: That's right, Karishma. Across the country, 5th of September is celebrated as Teachers Day. It's a very special day because that is the day when we recognize the contribution of our teachers, of our educators. And if I say that, well, for a child, the mother is the first teacher, it shouldn't be wrong because the child learns from the mother initially. But that apart, we have teachers in our schools around us. In fact, I sometimes say that life itself is the biggest MBA if you choose to learn from it. There's so much to learn. Every person teaches you. Anyway, on a more formal note, educators and teachers teach a lot and their sacrifices mean a lot to us. We have seen how many students were, you know, even in my case, I was very poor in maths and science, but I had very good teachers who handheld me. धीरे धीरे करके मुझे जैसे लेके बच्चे की तरह एक्स्ट्रा क्लासेस लेकर और मुझे ओरिएंट किया इन दोनों सब्जेक्ट्स में. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द टीचर्स हु वर देयर इन स्कूल एंड कॉलेज एंड शेप्ड माय पर्सनालिटी.
3: बिल्कुल आपने सही कहा, जिंदगी के हर एक पड़ाव पे कोई ना कोई हमें ऐसा जरूर मिलता है जो हमें बहुत सारी शिक्षाएं देता है. लेकिन इसके साथ ये जानना भी जरूरी है कि 5 सितंबर यानी आज ही के दिन को शिक्षक दिवस मनाने के पीछे बहुत बड़ी खास वजह क्या है. तो यह तारीख भारत के सबसे सम्मानित विद्वानों, दार्शनिक, शिक्षाविदों और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती का दिन है, जैसा कि आपने बताया, और इसीलिए ये दिन मनाया जाता है.
4: यस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाजंट जस्ट इंडियाज सेकंड प्रेसिडेंट, एज आई मेंशन ही वाज अ टीचर, फिलोसोफर एंड स्कॉलर. ही लेटर बिकेम इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड इन 1962 इट्स सेकंड प्रेसिडेंट. एंड आई ऑफन फील, करिश्मा, दैट वी डू टॉक अबाउट सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, बट देयर इज अनदर aspect to it and perspective to it, and that is of doing a bit of analysis. We spend very little percentage of our GDP in education. And when we talk about education growth, it means not just enrolling more students, it means teachers, growth of both the teachers and the students. So it's very important that we take care of our teachers too. Are they getting enough good time, spare time to be with their family? Are they happy? You know, there was once a survey done in Europe, Karishma, and they found out that 40% of European teachers are depressed. So I mean, it looks wo chamak damak to bahut achhi lagti hai western nation ki, but because no one talks to anybody there, so it was found, and that was a very alarming situation. You know, there is a ministry of loneliness in UK, I think. So it's very important that our educators, our teachers are in a healthy state of mind, so that what they teach us, we imbibe it better. And they create, it's not just about textbook education, it's about life skills. It's about observation, observe every child and see what is lacking where, and then hand hold the child to, you know, get out of it.
3: बिल्कुल सही कहा आपने. और जैसा कि हम बता रहे थे कि अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, तो उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के बजाय यह सुझाव दिया था कि इस दिन को शिक्षण पेशे के सम्मान में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए. और यह परंपरा 1962 में शुरू हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं लालिमा हमारा देश एक ऐसा देश है जहां पर गुरुओं को सर्वोपरि, सबसे ऊपर रखा जाता है.
4: बिल्कुल सही कहा आपने. जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू आर राइट. वी ऑलवेज से गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. दैट मींस वी रियली एलिवेट द गुरुज स्टेटस वेरी हाई, वेरी हाई. एंड प्रोबेबली दिस इज द ओनली कंट्री वेयर वी टेक देम टू सच अ हाई पेडेस्टल. एंड कमिंग बैक टू यू नो द टीचर्स डे एज इट्स बीइंग सेलिब्रेटेड, द कमीशन्स 1948-49 रिपोर्ट इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द important, I'm talking about the University Education Commission, which was formed in 1948. This commission's report is regarded as one of the important foundations for the development of a higher education in independent India, and its recommendations also contributed to the concept of institutions being recognized as quote-unquote deemed to be universities.
3: तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो हमारे आज के स्कूल और कॉलेज में यह जश्न कुछ अलग तरह से मनाया जाता है. छात्र अपने शिक्षकों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, खेल और विशेष गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं.
4: And I remember when I was small, this just after the Dashehra day, you know, small children are taken to their gurus, to the teachers. A thali is taken, rice is spread on the thali, and the children, the teacher holds the little child's hand and makes him write Om or whatever the auspicious symbol, Lord, which becomes, which means.

0: you are initiated into education formally by your guru or your teacher. Hmm. That is such a beautiful parampara we've had in our country, isn't it?
1: बिल्कुल सही कहा आपने. तो चाहे हमारे स्कूल के पहले टीचर हों, कॉलेज के प्रोफेसर हों, कोच हों, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हमें क्लासरूम के बाहर कोई जरूरी चीज सिखाई हो, हम जो बनते हैं उसे आकार देने में टीचर की हमेशा से खास भूमिका रही है.
0: एंड आस्क एनीबॉडी इन आवर कंट्री फॉर दैट मैटर, दे विल हैव सम फेवरेट टीचर for sure, you know, in school or in college who inspired them. Some role model, if teachers, a good teacher becomes a role model, I think half the job is done. Because if you have role models as, you know, I'm sorry to say, film stars and all those, then it's tough. How are you going to, you know, chart your course of life? What will the blueprint of your life be if you have Bollywood stars as your role models? But if you have a teacher as a role model, surely it's going to be way up. Your character will be strengthened, your hard work will bear fruit, because if your role models are good, you will follow the correct path. Don't you agree with me?
1: बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि एक बेहतरीन टीचर हमें सिर्फ जवाब नहीं देते बल्कि वे हमें खुद जवाब खोजना भी सिखाते हैं, जो कि आजकल की जिंदगी में और भी ज्यादा जरूरी है.
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल. लेट्स लिसन टू अ वेरी इंस्पिरेशनल डायलॉग फ्रॉम द फिल्म हिचकी इन द वॉइस ऑफ रानी मुखर्जी. लेट्स लिसन इन.
2: अपनी नोटबुक का आखिरी पेज खोलो, 10 मिनट लो और सोचो, किस चीज से डर लगता है, नफरत है अपने बारे में, उसे उस पेज में लिखो. कम ऑन, जब तक ये पेज किताब में है, तुम्हारे जिंदगी की किताब यहीं पे खुलेगी और यहीं पे रुक जाएगी. लेकिन अगर तुम उसे अपना बना लोगे तो वही सच तुम्हारे पंख बन जाएगी.
1: तो कभी कभी हमें एक टीचर की असली अहमियत कई सालों बाद समझ आती है. हम बड़े होते हैं, असल दुनिया में कदम रखते हैं और अचानक हमें टीचर की दी हुई वह सलाह भी याद आने लगती है.
0: Yes, absolutely. I remember one of my favorite teachers, she would never waste time. Of course, All India Radio taught me to be very punctual, Karishma, to be honest. We go by the seconds here. But when I was in school, I had a teacher who taught maths, and when she would enter the class, she would say, when I enter the class, your notebooks should be open so that we don't waste time and you know, we don't waste minutes opening the textbooks. So these are the small things which a good teacher tells you, and as I said, if those teachers become your role models, your life, your blueprint for your life is laid out, and life will be easy. Life will be easy.
1: बिल्कुल. तो आइए आज हम उन शिक्षकों को याद करें जिन्होंने हम पर भरोसा किया, हमारा हौसला बढ़ाया, हमारी गलतियां सुधारी और हमें वह इंसान बनने में मदद की जो आज हम हैं.
0: Absolutely. And moving ahead, well, Prime Minister Narendra Modi has called upon teachers to go beyond textbooks and play a greater role in preserving childhood while shaping the lives of students. He made these remarks while interacting with the National Teachers' Day Award winners in New Delhi yesterday. While sharing the glimpses of the interaction with teachers in a social media post, the Prime Minister emphasized that teachers must ensure that the child within every student remains alive, and for that they should also preserve the child within themselves.
3: मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा. बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते. टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अच्छी शिक्षा से ही विकसित भारत का सपना सच हो सकता है. उन्होंने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है, वही असल में प्रगतिशील समाज होता है. राष्ट्रपति आज नई दिल्ली में शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 समारोह को संबोधित कर रही थी.
4: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं. विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है. हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं. हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो.
1: बिल्कुल. और इसी के साथ लालिमा, अगर देखा जाए तो जश्न से परे शिक्षक दिवस हमें एक बहुत बड़ी बात ये भी याद दिलाता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है. इसका मतलब है अपनी क्षमता को पहचानना, सवाल पूछना, अच्छे संस्कार अपनाना और समाज का जिम्मेदार सदस्य बनना.
0: एब्सोल्युटली. आई रिमेम्बर द कोट ऑफ श्री अरबिंदो. ही सेड, यू यू कांट टीच अ चाइल्ड एवरीथिंग बट अ चाइल्ड कैन लर्न एवरीथिंग यू नो विच मीन्स आई रिमेंबर देयर वर स्मॉल चिल्ड्रन इन माई नेबरहुड एंड दे लर्न फ्रॉम अ टीचर हु वुड वुडंट से ये पढ़ो शी वुड से चलो आंख बंद करो और हम अब ये सुनते हैं और ये पढ़ते हैं तो चलो मिल के पढ़ते हैं व्हेन दैट इज द एटीट्यूड इट बिकम्स अ ग्रेट मूवमेंट द लर्निंग बिकम्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस रादर देन टीचिंग एंड लर्निंग यू नो सो इट्स नॉट अस एंड देम इट्स लाइक चलो मिलकर पढ़ते हैं ऑलराइट सो इनफ ऑन टीचर्स डे टुडे

0: मिलना आपके लिए कितना खास है, ये आपके लिए क्या मायने रखता है?
1: यह पुरस्कार मेरे लिए सिर्फ एक सम्मान नहीं, मेरे 29 वर्षों के संघर्ष की स्वीकृति है। यह पुरस्कार मेरा नहीं, भीड़ के उन उस्तोड़ कामगारों के बच्चों का है जो गन्ना के खेतों में काम करते हुए भी पढ़ने का सपना देखते हैं। युवा शिक्षकों के लिए मैं यह कहना चाहूंगी, शिक्षक बनना नौकरी पाना नहीं, एक तपस्या है।
0: छात्रों को एक्सपेरिमेंटल टीचिंग और मिलिट्री नजरिए से ढालने की खास कोशिशें करने वाले शिव प्रसाद अरविंद टिंगरे जी ने देश के युवा शिक्षकों और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे युवाओं को संदेश देते हुए कहा,
2: देश के सभी युवा और भावी शिक्षक साथियों से मैं दिल से बस एक ही बात कहना चाहता हूं, आप केवल शिक्षक नहीं बल्कि इस राष्ट्र के सच्चे दिशा निर्देशक है। आज के मोबाइल, इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में हमारे विद्यार्थी आभासी दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स के प्रभाव में आकर दिशाहीन न हो, यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम शिक्षकों के कंधों पर है।
0: म्यूनिसिपल स्कूल में नए और मजेदार टीचिंग तरीकों का इस्तेमाल करने वाली नासिक म्यूनिसिपल स्कूल की अध्यापक कुंदा बच्छाव जी ने शिक्षक दिवस के मौके पर देश के विद्यार्थियों से कहा,
3: आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे जैसी भी हो, आपके सपने बड़े है, परिस्थितियों से आगे है वो सपने। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, इसलिए हमेशा मेहनत, सातत्य, जिज्ञासा और सकारात्मक सोच को अपना साथी बनाइए।
0: शिक्षक दिलचस्पी से पढ़ाए तो छात्रों का मन भी पढ़ाई में लगा रहता है। कविता जी, वैभव जी, शिव प्रसाद जी और कुंदा जी जैसे शिक्षकों के हाथों में हमारे देश का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है, इसमें कोई संदेह नहीं। परिक्रमा के लिए मुंबई से प्रार्थना के साथ मैं माधुरी पांगे।
4: और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल।
5: जी जी जी, इन बैडमिंटन इंडियन मेंस डबल्स पेयर सात्विक साईराज रनकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी विल टेक ऑन द मलेशियन डुओ ऑफ नूर मोहम्मद अजरीन अयूब एंड टैन वी क्योंग इन द सेमीफाइनल ऑफ द चाइना मास्टर्स इन शेंजेन टुडे। द इंडियन पेयर डिफीटेड डेनमार्क्स किम एस्त्रप एंड एंडर्स स्कारप रास्मसन 21-13, 16-21, 21-18 इन द क्वार्टर फाइनल यस्टरडे। विद द विक्ट्री, सात्विक एंड चिराग रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ द चाइना मास्टर्स फॉर द फोर्थ कंसेक्यूटिव टाइम।
4: और इसके साथ ही एशिया कप महिला T20 क्रिकेट के ग्रुप ए के अंतिम मुकाबले में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच दुबई में रात 8 बजे से खेला जाएगा। और अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: जी,
6: Today is one of the most important days in Indian freedom struggle. On this day in 1920, the non-cooperation movement was agreed upon against the British rule to demand Swaraj. It was Gandhiji's first pan-India satyagraha, and the movement arose from the widespread outcry in India over the massacre at Jallianwala Bagh at Amritsar in April 1919, when the British-led troops killed 700 Indians. That anger was also compounded by indignation at the British failure to take adequate action against those responsible, especially General Dyer, who had commanded the troops involved in the massacre. With non-violent methods to be deployed during the Satyagraha, Gandhiji led the movement from the front, during which Indians resigned their titles, boycotted government educational institutions, courts, government service, foreign goods and elections, and refused to pay taxes. The British were perhaps for the first time confronted with such a united Indian front and were visibly shaken. However, a number of violent outbreaks broke the momentum of the non-violent movement. And after an angry mob murdered police officers in Chauri Chaura in Uttar Pradesh state in February 1922, Gandhiji himself called off the movement.
7: Even though the non-cooperation movement could not achieve its goal of Swarajya, the movement was a massive encouragement to millions of Indians and marked the transition of Indian nationalism from a middle class to a mass basis. It colored the country with national zeal, as during this time, many Indian schools and colleges were opened and Indian-made goods became highly popular. The great South Indian patriot and freedom fighter, the Tamil helmsman, Kapalottiye Tamilian, वी

0: She became the first female recipient and until 2003, the youngest recipient of Ashok Chakra, the highest peacetime gallantry award of India. She also received Tamghae Pakistan, fourth highest civilian award of Pakistan.
1: इसके साथ ही आज प्रसिद्ध चिकित्सक और हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अग्रवाल की जयंती है। विदेश के जाने माने चिकित्सक, हृदय रोग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य जागरूकता के प्रमुख समर्थकों में एक माने जाते थे। उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया और भारत में हृदय रोग के इलाज और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने में काफी उनका योगदान रहा था। डॉक्टर अग्रवाल को 2005 में डॉक्टर बीसी रॉय राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इसके अलावा चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में उन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया।
0: एंड लेट्स टॉक अबाउट सलील चौधरी, अनदर ग्रेट इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर, सॉन्ग राइटर, लिरिसिस्ट, राइटर एंड पोएट हु प्रेडोमिनेंटली कंपोज्ड फॉर बंगाली, हिंदी एंड मलयालम फिल्म्स। ही कंपोज्ड फॉर म्यूजिक फॉर फिल्म्स, ही कंपोज्ड म्यूजिक फॉर फिल्म्स इन 13 लैंग्वेजेस एंड व्हिच इंक्लूडेड 75 हिंदी फिल्म्स। जस्ट टू टेक यू बैक इनटू नॉस्टैल्जिया।

0: और श्रोताओं, अब समय हो चला है इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए करिश्मा और लालिमा को। नमस्कार।
1: अभी आप परिक्रमा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। अब समाचार सुनिए।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने ये बात कही।
3: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो।
2: राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वह सही मायनों में प्रगतिशील समाज होता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विद्यार्थी के भीतर का बचपन जीवंत रहे। श्री मोदी ने बच्चों में अत्याधुनिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
4: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है क्या। उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, प्रगति में पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
2: प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उल्लेख करते हुए बच्चों को कक्षा से बाहर ले जाने और उन्हें वास्तविक जीवन के कौशल तथा विभिन्न कार्यों से जोड़ने के महत्व पर बल दिया। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। उन्होंने घोषणा शिक्षक दिवस के अवसर पर की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय

0: न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों के कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉ. सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके अंतर्गत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा सकता है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में एक महिला मंत्री को हटाए जाने को अन्यायपूर्ण बताया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की चुप्पी पर सवाल उठाए। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने केरलम के त्रिशूर में कल रात एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले कॉलेज के 8 विद्यार्थियों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। तमिलनाडु के डिंडीगुल से आ रहे इन 8 विद्यार्थियों को ले जा रही एक कार सड़क निर्माण और यातायात डायवर्जन के काम के दौरान एक खड्डे ट्रैक से टकरा गई। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि घटना से पहले घटनास्थल पर व्यापक सुरक्षा उपाय और चेतावनी संकेत लगाए गए थे। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टेन वी क्योंग से होगा। वहीं महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today said a Vikasit Bharat will only be possible with quality education. Addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi, on the occasion of Teachers' Day, the President said a society that respects their teachers is a progressive society in the right terms. She asserted that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our constitution. She said the achievement of negligible primary school dropout rate has been made possible through the efforts of teachers.
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉपआउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉपआउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: President Murmu added that academic excellence, skill development and entrepreneurship plays a crucial role in the development of the nation. The President noted that establishing India as the skill capital of the world, alongside becoming a knowledge power, is the priority of the country. Highlighting the importance of knowledge as the greatest source of power, she said education empowers individuals to think independently, make informed decisions and contribute meaningfully to the progress of the nation. The President also recalled Savitribai Phule's pivotal role in advancing women's rights and education. President Murmu today conferred the National Teachers Awards. 48 school teachers selected from 27 states, 7 union territories and 6 organizations of the central government received the awards. The President also presented national awards to 21 teachers and faculties of higher educational institutions and polytechnics. Prime Minister Narendra Modi today shared an article written by President Draupadi Murmu on the occasion of Teachers' Day. In a social media post, Mr. Modi said the article highlights teaching as the sacred task of shaping humanity, encouraging independent thinking and curiosity. He said the President has called on teachers to guide students to be good human beings who uphold cultural heritage, a scientific outlook, the ideal of Antyodaya, environmental protection and nation first.

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: राम राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने श्रोताओं का मन पसंद कार्यक्रम लोक रंजनी लेकर के। और इस कार्यक्रम में हमारे जो श्रोता हैं भजन उपदेश लोकगीत रागनी सुनते हैं, साथ ही साथ किसी ना किसी विषय पर वो चर्चा भी सुनते हैं ताकि वो बातें उनके जीवन में काम आ सकें। बात करें हम, जो मनुष्य है कहीं ना कहीं उसको किसी दूसरे मनुष्य की सहायता की आवश्यकता होती होती है, यानी कि ये जो दुनिया है वो एक दूसरे के सहयोग से आगे बढ़ रही है।
1: मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आपसी संबंधों, प्रेम और सद्भाव का मानव जीवन में काफी महत्व है। आप दूसरों से जैसा व्यवहार करेंगे वैसी ही छवि सामने वाले के मन में आपके प्रति बनेगी।
0: बिल्कुल, इसीलिए दूसरों से प्रेम और सद्भावपूर्ण व्यवहार करना चाहिए जिससे कि जो आपकी छवि है वो अच्छी रहे और आप एक संस्कारी इंसान बन सके। बातें आगे भी श्रोताओं आपसे करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं एक उपदेश। कलाकार हैं योगेंद्र सिंह निमचाना।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे ये उपदेश, और कलाकार थे योगेंद्र सिंह निमचाना।
1: और आज के कार्यक्रम लोक रंजनी में हम बात कर रहे हैं आपसी सद्भाव की। श्रोताओं, जीवन में हम जब भी किसी से मिलें तो एक मुस्कान के साथ सामने वाले का स्वागत करना चाहिए। आपकी जो मुस्कुराहट होती है सामने वाले पर सकारात्मक प्रभाव डालती है।
0: बिल्कुल, और आपसी वार्तालाप के दौरान हमारी वाणी में मिठास होना चाहिए। मधुर और शिष्ट आवाज से सामने वाला भी प्रभावित होता है। कर्कश स्वर से मन खट्टा होता है और व्यक्ति सामने वाले से दूर होता चला जाता है।
1: बिल्कुल, व्यक्ति के आचरण में भी प्रेम और सद्भाव होना चाहिए। तो आप जब भी किसी से मिले मुस्कुरा करके मिले। तो नीलम बहन, आगे भी हम बातें करते रहेंगे आपसी सद्भाव की, प्रेम भाव की, लेकिन यहाँ पर एक और उपदेश अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं। कलाकार हैं भुल्लन त्यागी।

0: श्रोताओं, अभी आप भुल्लन त्यागी से ये उपदेश सुन रहे थे।
1: और श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं आपसी सद्भाव की।
0: बिल्कुल, समाज घर परिवार में सुख दुख आना जाना लगा रहता है। सुख यानी जन्मदिन, शादी ब्याह और खुशी के किसी भी पल में तो सभी आते जाते रहते हैं, पर व्यक्ति के दुख में सम्मिलित होना भी एक अच्छे व्यक्ति की पहचान है। सामाजिकता के नाते इसे उचित कदम कहा जाता है। किसी के दुख में सम्मिलित होकर दुखी परिवार को सांत्वना देना और ये कहना कि चिंता ना करो, ईश्वर और हम सब आपके साथ हैं, तो दुखी परिवार को काफी सांत्वना पहुंचती है।
1: बिल्कुल, मानव जीवन में आपसी प्रेम सद्भाव और आचरण का बड़ा महत्व है। तो नीलम है, ये तो बात रही आपसी सद्भाव प्रेम भाव की, और अब कार्यक्रम के आखिर में अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं उपेंद्र राणा से कृष्ण भजन।

0: श्रोताओं, आप सभी सुन रहे थे उपेंद्र राणा से ये कृष्ण भजन।
1: और इसी कृष्ण भजन के साथ आज का लोक रंजनी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आप सभी श्रोताओं को राम, राम।

0: अभी आप लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

0: खेल की दुनिया की हर नई खबर और हर बड़ी उपलब्धि के साथ मैं हूं प्रेरणा शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी
1: अभिनव कुमार झा। नमस्कार श्रोताओं,
0: आज शिक्षक दिवस के खास मौके पर खेल से मिलने वाली अनुशासन, मेहनत और टीम भावना की सीख के साथ शुरुआत करेंगे विमेंस T20 एशिया कप से, जहां भारत पाकिस्तान

अपने को लेकर करेंगे खास बातचीत और इंडोनेशिया यूएई मैच की भी करेंगे चर्चा। इसके बाद चाइना मास्टर्स बैडमिंटन, यूएस ओपन 2026, पीएसए लंदन क्लासिक्स और डायमंड लीग फाइनल्स की करेंगे बात। साथ ही हॉकी, सुब्रतो कप, एशियन गेम्स के सेपेक टेक्रो स्क्वाड और डब्ल्यूटीटी कंटेंडर अल्माटी की अहम अपडेट्स भी रहेंगे हमारे साथ। तो चलिए खेलों की इस दुनिया का सफर शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं विमेन्स टी20 एशिया कप की।

0: क्रिकेट में कुछ मुकाबले सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं खेले जाते, उनके साथ जुड़ी होती है उम्मीद, दबाव और जीत की एक अलग कहानी।
1: श्रोता हूँ, आज महिला एशिया कप 2026 में क्रिकेट का वही मुकाबला होने जा रहा है जिसका इंतजार सिर्फ दोनों टीमों के प्रशंसकों को ही नहीं बल्कि पूरे क्रिकेट जगत को रहता है।
0: शनिवार यानी आज दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान की महिला टीमें आमने सामने होंगी। एक तरफ हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम जो लगातार दो शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी है,
1: तो दूसरी ओर फातिमा सना की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम है जिसके लिए यह मुकाबला टूर्नामेंट में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिहाज से बेहद अहम है।
0: भारत ने अपने अभियान की शुरुआत थाईलैंड को 94 रन से हराकर की और इसके बाद हांगकांग को 137 रन से मात दी। अब भारतीय टीम की कोशिश लीग चरण का अंत लगातार तीसरी जीत के साथ करने की होगी।
1: पाकिस्तान ने भी अपने पिछले मुकाबले में थाईलैंड को हराया है, लेकिन उसके लिए आगे की राह अभी पूरी तरह साफ नहीं है। ग्रुप चरण में उसका एक मुकाबला हांगकांग चाइना के खिलाफ भी बाकी है।
0: भारत और पाकिस्तान के बीच महिला T20 एशिया कप में अब तक 6 मुकाबले खेले गए हैं, इनमें भारत ने 5 जबकि पाकिस्तान ने 1 मैच जीता है। पाकिस्तान की यह एकमात्र जीत 2022 में आई थी। दोनों टीमों के बीच कुल 17 महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 14 मैचों में बाजी भारत ने मारी है।
1: एशिया कप 2024 में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था, जबकि 2022 में पाकिस्तान ने भारत को 13 रन से मात दी थी। 2018 में भारत ने 7 विकेट और 2016 में 5 विकेट से जीत दर्ज की थी। 2012 में भारत ने ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था, जबकि उसी साल फाइनल में भारत ने 18 रन से जीत हासिल की थी।
0: भारतीय बल्लेबाजी की बात करें तो स्मृति मंधाना इस टूर्नामेंट में शानदार फॉर्म में है। हांगकांग के खिलाफ उन्होंने यादगार शतक लगाया और अब तक कुल 143 रन बना चुकी हैं। शिफाली वर्मा के नाम 92 रन हैं, जबकि प्रीतिका रावल 32 रन के साथ टीम की अगली प्रमुख स्कोरर हैं। हालांकि भारतीय मध्यक्रम से अभी बड़ी पारियों की उम्मीद बाकी है। थाईलैंड के खिलाफ अच्छी शुरुआत के बाद भारत ने सिर्फ 46 रन के भीतर अपने 8 विकेट गवा दिए थे। वहीं हांगकांग के खिलाफ नंबर 3 से नंबर 7 तक के बल्लेबाज मिलकर सिर्फ 34 रन ही बना सके। ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मध्यक्रम का प्रदर्शन काफी अहम रहने वाला है।
1: पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी टीम के लिए चिंता का विषय रही है। थाईलैंड के खिलाफ पावर प्ले में ही पाकिस्तान ने 3 विकेट गवा दिए और 20 ओवर में 9 विकेट पर 119 रन ही बना सकी। हालांकि टीम ने स्कोर का सफलतापूर्वक बचाव किया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी काफी हद तक मुनीबा अली और कप्तान फातिमा सना पर निर्भर करती है। हालांकि श्रीलंका के हालिया दौरे पर टीम ने धीमी पिचों पर 2 बार 170 से ज्यादा रन बनाकर ये जरूर दिखाया है कि मौका मिलने पर वे बड़ा स्कोर खड़ा कर सकती हैं।
0: भारत की गेंदबाजी में स्पिन विभाग अब तक सबसे मजबूत नजर आया है। दीप्ति शर्मा 6 विकेट के साथ टीम की सबसे सफल गेंदबाज हैं। श्री चरणी ने 4 जबकि प्रेमा रावत ने 2 विकेट लिए हैं। प्रेमा रावत ने थाईलैंड और हांगकांग के खिलाफ मिले मौकों का अच्छा फायदा उठाया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 विश्व कप में अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण करने के बाद उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले थे, लेकिन एशिया कप में उनके प्रदर्शन ने भारतीय टीम को एक और प्रभावी स्पिन विकल्प दिया है।
1: गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा की भूमिका एक बार फिर अहम रहने वाली है। टीम के अब तक के प्रदर्शन, पाकिस्तान के खिलाफ रणनीति और दुबई की परिस्थितियों को लेकर दीप्ति शर्मा ने क्या कहा, सुनिए उनकी बात।
2: देखिए, ऐसे तो पूरी टीम ही अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर आप बॉलिंग यूनिट देखो या बैटिंग यूनिट, आई थिंक दोनों चीजें बैलेंस्ड हैं, और जिसका अच्छा दिन चलता है उस टाइम वो कोशिश करता है कि और अच्छा करे और लंबा गेम को लेके जाए, और जो बाकी के उसके अराउंड होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि कैसे उनको पॉजिटिव चीजें बता सकते हैं जिससे कि वो और भी स्टेप इन करें अपने गेम में। देखिए, ऐसे एडवांटेज तो कुछ नहीं है, बस हाँ ये है कि जो हम अभी तक जीतते हुए आ रहे हैं उनके अगेंस्ट जितने भी चाहे एशिया कप खेले हों या जो भी मैचेस खेले हों, हम हमेशा एक स्टेप अहेड रहते हैं उनसे, और बस यही रहता है कि

0: जितना ज्यादा हम एज अ टीम अच्छा गेम अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं उनके अगेंस्ट उतना ही चाहते हैं हम लोग. बिल्कुल देखिए हमारी टीम भी अच्छी है और यू नो उनके बॉलर्स भी अच्छे हैं हमें भी पता है, लेकिन हमारे पास जो जितने अच्छे स्ट्रेंथ हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं और जैसा कि मैंने बोला कि अच्छा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहेंगे हम उसी पर फोकस कर रहे हैं.
1: दूसरी ओर पाकिस्तान के स्पिन विभाग में सादिया इकबाल, तुबा हसन और नशरा संधू पर नजर रहेगी. थाईलैंड के खिलाफ इन तीनों ने मिलकर पाकिस्तान के 8 में से 6 विकेट हासिल किए थे. खास तौर पर नशरा संधू का भारत के खिलाफ रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है. भारत के खिलाफ 7 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वो 6 विकेट ले चुकी हैं और उनकी इकोनॉमी 5.47 की रही है. स्मृति मंधाना ने नशरा संधू के खिलाफ 32 गेंदों में 30 रन बनाए हैं और 2 बार अपना विकेट गवाया है. वही हरमनप्रीत कौर ने उनके खिलाफ 34 गेंदों में 26 रन बनाए हैं और एक बार आउट भी हुई हैं. यानी भारत के शीर्ष बल्लेबाजों और पाकिस्तान की इस अनुभवी स्पिनर के बीच मुकाबला भी मैच की दिशा तय कर सकता है.
2: अब बात दुबई की परिस्थितियों की. यहाँ बल्लेबाजों को शुरुआत में पिच की गति और उछाल को समझने में थोड़ा समय लगता है. टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों में 6 मैच लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीते हैं. सिर्फ श्रीलंका ने यूएई के खिलाफ 78 रन का बचाव करते हुए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम की जीत दर्ज की. यहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमें शुरुआत में तेजी से रन बनाती हैं, लेकिन पारी आगे बढ़ने के साथ रन बनाना मुश्किल होता जाता है. अब तक भारत ही एकमात्र टीम है जिसने 150 से ज्यादा रन का स्कोर बनाया है.
1: दुबई की परिस्थितियों में स्पिन गेंदबाजों को भी खास मदद मिल रही है. टूर्नामेंट में अब तक स्पिनरों ने 71 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 5.1 रही है, जबकि तेज गेंदबाजों ने 31 विकेट लिए हैं और उनकी इकोनॉमी 6.18 रही है. ऐसे में टॉस, पावर प्ले की बल्लेबाजी और बीच के ओवरों में स्पिन के खिलाफ रन बनाने की क्षमता इस मुकाबले में निर्णायक साबित हो सकती है.
2: भारत के पास जीत की लय, बेहतर रिकॉर्ड और मजबूत स्पिन आक्रमण है. पाकिस्तान के लिए चुनौती बड़ी जरूर है, लेकिन ऐसे मुकाबलों में आंकड़े हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते. मैदान पर उस दिन कौन दबाव को बेहतर तरीके से संभालता है, कौन मौकों का फायदा उठाता है और किसकी रणनीति बेहतर साबित होती है, यही तय करेगा कि दुबई में बाजी किसके हाथ आती है.
1: भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बात तो हो गई, लेकिन एशिया कप में बाकी टीमों के बीच चल रहे सेमीफाइनल की जंग भी कम दिलचस्प नहीं है. इसी कड़ी में कल यूएई और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला खेला गया, जहां यूएई ने शानदार गेंदबाजी और सदी हुई बल्लेबाजी के दम पर 6 विकेट से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ मेजबान टीम ने सेमीफाइनल की अपनी उम्मीदों को बरकरार रखा. यूएई ने टॉस जीतकर इंडोनेशिया को पहले बल्लेबाजी के लिए भेजा और शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बना ली. पारी की पहली दो गेंदों पर 2 विकेट लेकर इंडोनेशिया को मुश्किल में डाल दिया. इसके बाद कप्तान ईशा ओजा ने भी गेंद से असर दिखाया. इंडोनेशिया के कप्तान नीपुतु आयुनंदा ने 52 गेंदों में 39 रन की पारी खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की. उन्होंने 4 चौके और 1 छक्के लगाए, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें ज्यादा साथ नहीं मिल सका. सुरक्षा ने 3 विकेट जबकि ईशा ओजा और हीना हॉटचंदानी ने 2-2 विकेट हासिल किए. वैष्णवी महेश ने भी 2 विकेट लेकर इंडोनेशिया की पारी को समेटने में अहम भूमिका निभाई. पूरी टीम 19.4 ओवर में 73 रन पर ऑल आउट हो गई. यूएई के सामने 74 रन का लक्ष्य था. रनचेज में तीर्थ सतीश 11 रन बनाकर 5वें ओवर में आउट हुई, लेकिन इसके बाद कप्तान ईशा ओजा और नीता राजित ने पारी को संभाल लिया. दोनों ने 45 रन की साझेदारी की. ईशा ने 29 गेंदों में 30 रन बनाए जबकि रिनीथा ने 24 गेंदों पर 22 रन जोड़े. एक समय यूएई का स्कोर 62 रन पर 1 विकेट था, लेकिन 6 रन के भीतर 3 विकेट गिरने से इंडोनेशिया को वापसी की उम्मीद जरूर जगी. हालांकि लक्ष्य छोटा था और यूएई ने दबाव को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया. टीम ने 11.5 ओवर में 4 विकेट खोकर 74 रन बना लिए. इस दौरान उनके पास 41 गेंदें बाकी थीं. यूएई की इस जीत ने उसे 2 अंक दिलाए और सेमीफाइनल की दौड़ को और दिलचस्प बना दिया. वहीं इंडोनेशिया के लिए टूर्नामेंट का आखिरी मुकाबला रहा और टीम अपने 3 मैच हार कर प्रतियोगिता से बाहर हो गई. अब यूएई के लिए अगली चुनौती 8 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ होगी. सेमीफाइनल की उम्मीदों को हकीकत में बदलने के लिए उसे यह मुकाबला जीतना होगा और साथ ही दूसरे मैचों के नतीजे भी उसके पक्ष में आने की जरूरत होगी. ऐसे में इंडोनेशिया के खिलाफ मिली यह जीत यूएई के अभियान के लिए बेहद अहम साबित हुई.

0: भारत की स्टार पुरुष युगल जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने शुक्रवार को डेनमार्क के किम एस्ट्रूप और एंड्रेस कारूप रासमुसेन को कड़े मुकाबले में हराकर चाइना मास्टर्स सुपर 750 के सेमीफाइनल में जगह बनाई। चौथी वरीय भारतीय जोड़ी ने 70 मिनट में 21-13, 16-21, 21-18 से जीत दर्ज की। सात्विक और चिराग ने आक्रामक शुरुआत करते हुए पहले गेम में 5-1 की बढ़त बनाई और लगातार शानदार विनर्स लगाकर 16-9 की बढ़त हासिल कर ली और आसानी से पहला गेम जीता। दूसरे गेम में डेनमार्क की जोड़ी ने 15-15 की बराबरी के बाद लगातार अंक जुटा मुकाबला निर्णायक गेम तक पहुंचा दिया। तीसरे गेम में दोनों जोड़ियों के बीच कड़ी टक्कर हुई और स्कोर 17-17 तक बराबर रहा। निर्णायक क्षणों में भारतीय खिलाड़ियों ने संयम दिखाते हुए लगातार 3 अंक हासिल किए और 20-17 की बढ़त बना ली। इसके बाद एक अंक गंवाने के बावजूद उन्होंने धैर्य बनाए रखा और मैच जीत लिया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना दुनिया की 29वें नंबर की मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अजरीन और तानवी कियोंग से होगा। इस बीच पूर्व विश्व नंबर 1 किदांबी श्रीकांत का अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया। 33 वर्षीय श्रीकांत को हांगकांग के दुनिया के 25वें नंबर के खिलाड़ी ली चेक यू ने 39 मिनट चले गेम में 21-16 से हराया। बात करें कुछ बड़े मुकाबलों की तो महिला एकल सेमीफाइनल में दुनिया की शीर्ष वरीयता प्राप्त दक्षिण कोरिया की अन से यंग ने तीसरी वरीयता प्राप्त जापान की अकाने यामागुची को सीधे गेमों में 21-13, 21-15 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जहां दुनिया की 9वीं वरीयता प्राप्त जापान की तोमोका मियाजाकी ने दूसरी वरीयता प्राप्त चीन की वांग झी को कड़े मुकाबले में 21-19, 23-21 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस तरह महिला एकल का खिताबी मुकाबला अनसे यंग और मियाजाकी के बीच खेला जाएगा। अनसे यंग के लिए यह लगातार तीसरा चाइना मास्टर्स खिताबी जीतने का मौका होगा, जबकि मियाजाकी पहली बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची है। वहीं पुरुष एकल के सेमीफाइनल मुकाबले में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला जहां हांगकांग के खिलाड़ी ली चेक यू ने दुनिया के दूसरे वरीयता प्राप्त फ्रांस के क्रिस्टो पपोव को 21-15, 21-19 से हराकर फाइनल में जगह बनाई है।
1: चलिए श्रोताओं, अब चलते हैं लंदन और बात करते हैं पीएसए स्क्वॉश टूर के लंदन स्क्वॉश क्लासिक की, जहां भारत की युवा स्क्वॉश खिलाड़ी अनाहत सिंह का शानदार सफर क्वार्टर फाइनल में जाकर थम गया। 18 वर्षीय अनाहत सिंह, जो इस समय वर्ल्ड नंबर 20 हैं, उनका क्वार्टर फाइनल में सामना मलेशिया की वर्ल्ड नंबर 5 शिवसांगरी सुब्रमण्यम से हुआ। तीसरी वरीयता प्राप्त शिवसांगरी ने मुकाबले की शुरुआत से ही अपना दबदबा बनाए रखा और अनाहत को सीधे गेमों में 11-4, 11-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। यह मुकाबला महज 17 मिनट में समाप्त हो गया। अनाहत के लिए यहां तक पहुंचना भी एक मजबूत प्रदर्शन रहा। क्वार्टर फाइनल से पहले उन्होंने बेल्जियम की वर्ल्ड नंबर 11 नेले गिलेस को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में हराकर अंतिम 8 में जगह बनाई थी, लेकिन शिवसांगरी के खिलाफ अनाहत अपनी पिछली लय को कायम नहीं रख सकी। मलेशियन खिलाड़ी ने शुरुआत से ही खेल की गति पर नियंत्रण रखा और दोनों गेम 11-4 के समान स्कोर से अपने नाम कर लिए। वहीं शिवसांगरी सुब्रमण्यम के लिए यह जीत उन्हें टूर्नामेंट के सेमीफाइनल तक ले गई है। अब उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त और मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन अमीना ओरफी से होगा, यानी महिला वर्ग में एक और वर्ल्ड नंबर 1 हानिया एल हमामी और इंग्लैंड की नंबर 1 जॉर्जिया कैनेडी आमने सामने होंगी, तो दूसरी सेमीफाइनल में शिवसांगरी और अमीना ओरफी की टक्कर होगी। क्वार्टर फाइनल्स में इंग्लैंड की जॉर्जिना कैनेडी ने चौथी वरीयता प्राप्त सातोमी वातानाबे को 12-10, 11-4 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। वहीं वर्ल्ड नंबर 1 हानिया एल हमामी को अमेरिका की अमांडा सोबी ने कड़ी चुनौती दी, लेकिन हानिया ने 13-11, 7-11, 11-6 से मुकाबला जीतकर अंतिम 4 में जगह बना ली। मेंस इवेंट की बात करें तो इंग्लैंड के नंबर 1 मारवान एल शोरबागी ने इजिप्ट के करीम एल टोर्की को एक रोमांचक मुकाबले में हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना दूसरी वरीयता प्राप्त विक्टर क्राउन से होगा। वहीं डिफेंडिंग चैंपियन पॉल कॉल भी सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। उन्हें अपने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मोहम्मद एल शोरबागी के रिटायर होने का फायदा मिला। मोहम्मद ने दूसरे गेम के दौरान चोट के कारण मैच छोड़ दिया। पॉल कॉल का अगला मुकाबला मलेशिया के वर्ल्ड नंबर 18 इयान यो एनजी से होगा, जिन्होंने वर्ल्ड नंबर 12 यूसुफ सोलेमान को हराकर अंतिम 4 में जगह बनाई है। अब वापस अनाहत सिंह की बात करें तो लंदन स्क्वॉश क्लासिक में उनका अभियान भले ही क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया हो, लेकिन एशियन गेम से पहले यह टूर्नामेंट उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण अनुभव रहा। अनाहत अब 12 सितंबर से शुरू होने वाले कतर क्लासिक में हिस्सा लेंगी। इसके बाद उनकी निगाहें जापान में होने वाले एशियन गेम्स पर होंगी, जिनकी शुरुआत 19 सितंबर से होगी। और एशियन गेम्स इस बार स्क्वॉश खिलाड़ियों के लिए इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि वुमेन स्क्वॉश का गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 2028 लॉस

0: एंजल्स ओलंपिक्स में जगह मिलेगी। स्क्वॉश पहली बार ओलंपिक्स का हिस्सा बनने जा रहा है।
1: श्रोताओं, अब आपको लिए चलते हैं लॉन टेनिस की ओर, जहां यूएस ओपन में तीसरे दौर के मुकाबलों ने रोमांच बढ़ा दिया है। पुरुष एकल में मौजूदा चैंपियन कार्लोस अल्कराज ने चीन के वू यीबिंग को 6-3, 6-4, 6-1 से हराकर चौथे दौर में जगह बनाई और इसी के साथ उनकी ग्रैंड स्लैम लगातार जीत का सिलसिला 17 मैच तक पहुंच गया। अब उनका सामना अमेरिका के टॉमी पॉल से होगा, जिन्होंने अलेक्जेंडर बुबलिक को 5 सेटों के संघर्ष में हराया। वहीं बेन शेल्टन ने डेनिस शापोवालोव को एक रोमांचक मैच में 7-6, 6-7, 6-3, 6-4 से मात देकर अंतिम 16 में प्रवेश किया। दानिल मेदवेदेव ने भी आर्थर रिंडर कनेख को 6-4, 6-4, 6-4 से हराकर 7वीं बार यूएस ओपन के चौथे दौर में जगह बनाई। वहीं बात करें महिला एकल की, तो आर्यना सबालेंका ने कामिला राखीमोवा को 6-3, 6-4 से हराया और लगातार 16वीं यूएस ओपन जीत दर्ज की। जेसिका पेगुला ने लेला फर्नांडेज के खिलाफ पहला सेट गंवाने के बाद शानदार वापसी करते हुए मुकाबला जीता, जबकि एमा नवारो ने 7वीं वरीयता प्राप्त कैरोलिना मुचोवा को 6-3, 7-5 से हराकर बाहर कर दिया। बात करें पुरुष युगल के पहले राउंड की, तो भारत के निकी कालियंदा पुनच्चा और इक्वेडोर के गोंजालो एस्कोबार की जोड़ी को ऑस्ट्रिया के नील ओबरलीथनर और चेक रिपब्लिक के पी नौजा ने 6-7, 7-6, 2-6 से मात दी। इसके साथ ही इस भारतीय और इक्वेडोर की जोड़ी का सफर यहीं समाप्त हुआ। पर महिला युगल में एक आकर्षक मुकाबला देखने को मिला, जिसमें सेरेना और वीनस विलियम्स की जोड़ी प्रतिस्पर्धा कर रही थी, जहां उन्हें माया जाइंट और चान हाउ चिंग ने कड़े मुकाबले में 3-6, 7-6, 6-7 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बात करें आज के मुकाबलों की, तो आज के प्रमुख मुकाबलों में टेलर फ्रिड्स, नाओमी ओसाका और अलेक्जेंडर जेवरेव जैसे बड़े नाम आकर्षण का केंद्र हैं। शाम के सत्र में अमांडा अनिसिमोवा बनाम अनास्तासिया पोटापोवा तथा अलेक्जेंडर ब्लॉक्स बनाम फ्लावियो कोबोली जैसे मुकाबले निर्धारित हैं। भारतीय दृष्टिकोण से भी आज का दिन महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत की चुनौती मुख्यतः पुरुष युगल में ही है। यूकी भामरी और माइकल वीनस की जोड़ी आज अपने पहले दौर का मुकाबला रायन सेगरमैन और पैट्रिक ट्रेहाक के साथ भारतीय समय अनुसार रात 8:30 बजे खेलेगी, और भारत के एकमात्र पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नांगल क्वालिफाइंग में ही बाहर हो चुके हैं। कुल मिलाकर आज का दिन तीसरे दौर के कारण बेहद अहम है, और इसके समाप्त होने के बाद रविवार से टूर्नामेंट अंतिम 16 के दौर में प्रवेश करेगा। और श्रोताओं, एक ताजा अपडेट आपको यूएस ओपन की देते चलते हैं कि श्रीराम बालाजी और इवान किंग ने शानदार वापसी करते हुए 6 मैच पॉइंट बचाए और डच जोड़ी सैंडर एरेंडस और डेविड पेल को हराकर दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की की। स्कोर 3-6, 7-6, 7-6, और अब उनका मुकाबला 2014 के फ्रेंच ओपन चैंपियन फ्रांस के रोजर वासलीन और मोनाको के हुगो नीस से होगा।
0: बात करते हैं एशियन गेम्स 2026 की, जो इस बार जापान के आइची नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक आयोजित होंगे। इस बार 45 कंट्रीज एंड रीजन्स हिस्सा लेंगे और 43 स्पोर्ट्स में मुकाबले होंगे। भारत की बात करें तो एशियन गेम्स में देश की नजरें अपने पिछले प्रदर्शन को और बेहतर करने पर होंगी। हांगझोउ 2023 में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 107 मेडल जीते थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल थे। अब आइची नगोया में भारतीय कंटिंजेंट की कोशिश इस प्रदर्शन को और आगे ले जाने की होगी। इस अभियान में सेपेक टेक्रो की भारतीय टीम्स भी अपनी चुनौती पेश करेंगी। स्पीड, बैलेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और टीम वर्क से भरपूर इस स्पोर्ट में भारत की मेंस और विमेन्स टीम अलग अलग इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। सबसे पहले बात करते हैं मेंस टीम की, जो मेंस टीम रिगू और मेंस क्वाड्रेंट में मुकाबला करेंगे। मेंस टीम रिगू में अरुण, जसवीर, आशी चुंडावत, श्याम सिंह, लोखोन सिंह एलांगबाम, बॉबी कुमार, अशोक सिंह मायांगबाम, राम कुमार शर्मा, ओ अमरजीत सिंघा, मलिंग नबा सिंह, सोरोख हेबम, हेनरी सिंह वाहिंगबाम और आकाश युमनाम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इनमें अरुण, लोखेन सिंह, बॉबी कुमार, ओ अमरजीत सिंघा, मनिंग नबा सिंह और आकाश युमनाम मेंस क्वाड्रेंट में भी उतरेंगे, यानी इन खिलाड़ियों के पास एक से ज्यादा इवेंट्स में भारत के लिए मेडल जीतने का मौका होगा। वहीं इंडियन विमेन्स टीम भी दो इवेंट्स में अपनी चुनौती पेश करेगी। विमेंस डबल में लेई रेंटोनबी देवी, प्रीति लैंगलो जाम और मिनेनु सुकरु भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विमेंस क्वाड्रेंट में माई पाक देवी, प्रिया देवी, शिल्पा इलांगबम, चाओबा देवी, सीए क्रिहिनो टेपा और मलिंग नबी युमनाम भारतीय टीम का हिस्सा होंगी। भारत ने 2023 एशियन गेम्स में 107 मेडल्स के साथ अपना अब तक का सबसे शानदार एशियन गेम्स कैंपेन पूरा किया था। अब आईची नगोया में भारतीय कंटिजेंट की कोशिश होगी कि उस प्रदर्शन को पीछे छोड़ते हुए देश के मेडल टैली को और मजबूत किया जाए। सिपेक टेक्रो की इंडियन टीम्स भी इसी बड़े मेडल कैंपेन का हिस्सा है। अब देखना होगा कि आईची नगोया में भारतीय मेन्स और विमेन्स टीम अपनी स्पीड, स्किल और टीम वर्क के दम पर किस तरह का प्रदर्शन करती है और भारत के मेडल काउंट में कितना इजाफा कर पाती हैं।
1: श्रोताओं, अब बात करते हैं हॉकी की। चीन के मौकी में 4 से 13 सितंबर तक आयोजित हो रहे AHF जूनियर एशिया कप हॉकी 2026 में भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमें अपने खिताब का बचाव कर रही हैं। भारत की जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने अपने खिताबी अभियान की शानदार शुरुआत करते हुए शनिवार को पूल ए के मुकाबले में इंडोनेशिया को 14-0 से करारी शिकस्त दी। 5 बार की चैंपियन भारत की ओर से प्रभदीप सिंह ने 5 गोल कर प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता, जबकि कप्तान अनमोल एका ने 4 और अजीत यादव ने हैट्रिक सहित 3 गोल किए। हरपाल और आशु मौर्य ने एक एक गोल किया। भारत ने 5वें मिनट में प्रभदीप के गोल से खाता खोला और पहले क्वार्टर के अंत तक 2-0 की बढ़त बना ली। दूसरे क्वार्टर में अनमोल, अजीत यादव और प्रभदीप के गोलों से भारत ने हाफ टाइम तक 6-0 की बढ़त हासिल की। तीसरे क्वार्टर में अनमोल ने 2 पेनल्टी कॉर्नर और प्रभदीप ने 1 गोल कर स्कोर 9-0 कर दिया। अंतिम क्वार्टर में अनमोल और प्रभदीप ने 1-1 गोल किया, जबकि यादव ने 2 और मौर्य ने 59वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर से गोल कर भारत की जीत 14-0 कर दी। भारत ने कुल 9 फील्ड गोल, 4 पेनल्टी कॉर्नर और 1 पेनल्टी स्ट्रोक के जरिए गोल किए। इस जीत के साथ भारत 3 अंकों के साथ पूल ए में गोल अंतर के आधार पर शीर्ष पर पहुंच गया, जबकि इंडोनेशिया की यह लगातार दूसरी हार है। अब भारत का अगला मुकाबला 6 सितंबर को जापान से होना है, जो उसके लिए अपेक्षाकृत कड़ी चुनौती माना जा रहा है। वहीं भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने शनिवार को खेले गए मुकाबले में दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर अपने खिताब बचाने के अभियान की शानदार शुरुआत की। पिछले 2 संस्करणों की चैंपियन भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ संयमित और प्रभावशाली प्रदर्शन किया। भारत की ओर से सानिका चंद्रकांत माने, पूर्णिमा यादव, पूजा साहू और मधु सिदार ने गोल किए। भारत ने मैच की शुरुआत आक्रामक इरादे के साथ की और पहले क्वार्टर में कई मौके बनाए। भारतीय टीम को 8वें मिनट में सफलता मिली, जब सानिका चंद्रकांत माने ने गोल कर भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद भी भारत ने दक्षिण कोरियाई डिफेंस पर दबाव बनाए रखा और पहले क्वार्टर में 2 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। इनमें से 1 14वें मिनट में मिला, लेकिन भारत दोनों मौकों को गोल में नहीं बदल सका। इसके बावजूद भारतीय टीम पहले क्वार्टर के अंत तक 1-0 से आगे रही। दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में भी भारत ने अपना आक्रामक खेल जारी रखा और शुरुआती 5 मिनट के भीतर एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। शुरुआती प्रयास के बाद भारत को री पेनल्टी कॉर्नर भी मिला, लेकिन टीम उसे भी गोल में तब्दील नहीं कर सकी। इस बीच दक्षिण कोरिया ने दबाव बढ़ाया और बराबरी की तलाश में 5 मिनट के अंतराल में लगातार 2 पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए। हालांकि भारतीय डिफेंस ने मजबूती से मुकाबला करते हुए कोरियाई आक्रमण को गोल करने से रोक दिया। दूसरे क्वार्टर के अंतिम क्षणों में भारत ने फिर से मैच पर नियंत्रण बनाया और एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। इस बार भारतीय टीम ने शानदार रणनीतिक बदलाव के साथ पेनल्टी कॉर्नर को अंजाम दिया और 30वें मिनट में पूर्णिमा यादव ने गोल कर भारत की बढ़त को 2-0 कर दिया। हाफ टाइम तक भारत इसी बढ़त के साथ रहा। तीसरे क्वार्टर में दक्षिण कोरिया ने वापसी की कोशिश करते हुए नए जोश के साथ शुरुआत की, लेकिन भारतीय डिफेंस ने दबाव के बीच मजबूती दिखाई। वहीं भारतीय फॉरवर्ड्स ने काउंटर अटैक के जरिए लगातार खतरा बनाए रखा। तीसरे क्वार्टर के अंतिम क्षणों में भारत ने एक और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और इस बार उसे गोल में बदल दिया। पूजा साहू ने गोल कर भारत की बढ़त को 3-0 कर दिया। 3 गोल की बढ़त के साथ भारतीय टीम ने अंतिम क्वार्टर में भी आक्रमण जारी रखा और एक और गोल की तलाश में रही। क्वार्टर के 7वें मिनट में भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन दक्षिण कोरियाई डिफेंस ने भारतीय आक्रमण को रोकने में सफलता हासिल की। भारत के एक और पेनल्टी कॉर्नर को भी कोरियाई डिफेंस ने क्लियर कर दिया। इसके बावजूद भारत ने गेंद पर कब्जा और मैदान पर अपना दबदबा बनाए रखा। भारतीय टीम का लगातार दबाव आखिरकार 91वें मिनट में रंग लाया, जब मधु सिदार ने गोल कर भारत की बढ़त को 4-0 कर दिया। दक्षिण कोरिया ने अंतिम सीटी तक संघर्ष जारी रखा और मैच समाप्त होने से 4 मिनट पहले 1 गोल वापस हासिल किया। एक और पेनल्टी कॉर्नर के बाद कोरियाई टीम ने एक रणनीतिक बदलाव का इस्तेमाल किया और 97वें मिनट में किल गेबिन ने गोल कर स्कोर 4-1 कर दिया। हालांकि भारतीय टीम ने अंतिम मिनटों में अपनी बढ़त को बरकरार रखा और 4-1 की शानदार जीत दर्ज करते हुए टूर्नामेंट में 3 अंक हासिल किए। भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम अब 6 सितंबर को अपने दूसरे मुकाबले में मलेशिया का सामना करेगी।
0: चलिए चलते हैं ब्रूस।

0: अमेरिकन रिकॉर्ड बेहतर किया और लगातार तीसरी बार डायमंड लीग ट्रॉफी अपने नाम की। वहीं मेंस लॉन्ग जंप में जमैका के तजय गेल ने आखिरी प्रयास में 8.46 मीटर की छलांग लगाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। ग्रीस के मिल्टियाडिस टेंक्टोग्लू 8.40 मीटर के साथ दूसरे और स्विट्जरलैंड के साइमन हैमर 8.23 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। ट्रैक इवेंट्स की बात करें तो मेंस 400 मीटर में बोत्सवाना के कोलिन केविनाथ शिपी ने 43.40 का समय निकालते हुए डायमंड लीग रिकॉर्ड बनाया। मेंस 800 मीटर में कीनिया के इमैन्युअल वैनयोनी ने 1:41.80 के साथ जीत दर्ज की। विमेंस 3000 मीटर में कीनिया की फेथ ने 8:51.61 में रेस जीतते हुए मीटिंग रिकॉर्ड बनाया। विमेंस 5000 मीटर में इथियोपिया की फ्रेंडवेनी हेलू ने 14:35.20 के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। मेंस 1500 मीटर में ऑस्ट्रेलिया के कैमरन मायर्स ने 3:30.14 के समय के साथ जीत दर्ज की। जमैका के ओब्लिक सेवेल ने मेंस 100 मीटर में 9:90 का शानदार समय निकाला, जबकि सेंट लूसिया की जुलेन एल्फ्रेंड ने विमेंस 200 मीटर में 21.79 के साथ बाजी मारी। मेंस 110 मीटर हर्डल्स में अमेरिका के जाकोबे थार्प ने 13.03 के समय के साथ खिताब अपने नाम किया। अब नजरें दूसरे दिन के मुकाबलों पर हैं। विमेंस 800 मीटर में स्विस स्टार ऑड्रे वेरो पर सबकी नजरें रहेंगी। मेंस 200 मीटर में बोत्सवाना के लेत्सिल तेबोगो और यूएसए के केने बेडनारे के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। तेबोगो का पर्सनल बेस्ट 19.46 है, जबकि बेडनारेक ने सीजन में 19.62 का सबसे तेज समय निकाला है। मेंस 400 मीटर हर्डल्स में एलिसन डॉस सैंटोस पर भी नजर रहेंगी। उन्होंने ज्यूरिक में 45.80 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वहीं विमेंस 100 मीटर हर्डल्स में मसाई रसेल अपनी वर्ल्ड रिकॉर्ड परफॉर्मेंस के बाद मैदान में उतरेंगी। उन्होंने ज्यूरिक में 12.09 का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था और अब उनकी नजर 12 सेकंड से कम समय निकालने वाली पहली महिला बनने पर होगी। और डे टू के बड़े मुकाबलों में मेंस पोल वॉल्ट भी शामिल है, यानी ब्रुसेल्स में डायमंड लीग फाइनल का पहला दिन जहां रिकॉर्ड्स और शानदार परफॉर्मेंसेस से भरा रहा, वहीं दूसरे दिन भी कई बड़े नाम और बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि कौन सा खिलाड़ी अपनी डायमंड लीग सीजन को ट्रॉफी के साथ खत्म करता है।
1: और अब श्रोताओं, बात करते हैं फुटबॉल की, जहां 65वें सुब्रतो कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के सब जूनियर बॉयज वर्ग में 4 सितंबर को 6 रोमांचक मुकाबले खेले गए। सभी मुकाबले सुब्रतो फुटबॉल ग्राउंड जल्लाहली बेंगलुरु में हुए। दिन की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने आईपीएससी को 4-0 से हराकर शानदार जीत के साथ की। इसके बाद सीबीएसई और मेघालय के बीच मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ, जबकि असम ने महाराष्ट्र को 2-0 से मात दी। शाम के मुकाबले में दिल्ली ने त्रिपुरा को 3-0 से हराकर अपना दबदबा कायम किया। उत्तराखंड ने श्रीलंका को भी 3-0 से शिकस्त दी, जबकि दिन का अंतिम मुकाबला गुजरात और केरल के बीच गोल रहित 0-0 ड्रॉ रहा।
0: और अब बात कर लेते हैं टेबल टेनिस की भी। हांगझोउ एशियन गेम्स की महिला डबल्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सुधीरता मुखर्जी और उभरती हुई स्टार सिंड्रेला दास ने शानदार प्रदर्शन करते हुए डब्ल्यूटीटी कंटेंडर अल्माटी के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने चित्ताली और यश्विनी घोरपड़े को 3-1 से हराया। सुधीरता और सिंड्रेला ने 11-6, 12-10, 8-11 और 11-6 से जीत दर्ज की। अब फाइनल में उनका सामना जापान की म्यू हिरोनो और म्यू किहारा की जोड़ी से होगा। खिताबी मुकाबला 6 सितंबर को सुबह 11:30 से शुरू होगा।
1: और अब श्रोताओं, घड़ी की सुई हमें इशारा दे रही है जाने का, तो मुझे अभिनव कुमार झा और मेरे साथी प्रेरणा शर्मा को हमारे प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है, वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
4: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। आप ये ड्रॉप आउट

0: ग्रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है। इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
2: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है क्या। उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
1: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम की सीएसएस शील्ड पहल का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये पहल कार्मिक मंत्रालय के उस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। त्रिपुरा में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। शुरुआती चरण में प्रशिक्षण और योजना तैयार करने का काम होगा। घर घर सत्यापन 15 सितंबर से 14 अक्टूबर तक किया जाएगा। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5000 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज शाम सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में मलेशिया के नूर मोहम्मद, अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। President Draupadi Murmu has said, "A Vikasit Bharat will only be possible with quality education." She said a society that respects their teachers is a progressive society in right terms. The President was addressing the National Teachers Award Ceremony 2026 in New Delhi on the occasion of Teachers Day today. The President stressed that education is the most effective means of realizing the ideal of equality of opportunity enshrined in our Constitution. She said the achievement of negligible primary school dropout rate has been made possible through the efforts of teachers.
0: हम सब देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
1: इस अंक में फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज द्वारा ब्रिक्स पॉलिसी डायलॉग का आयोजन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी और श्री राम कला केंद्र द्वारा आयोजित नृत्य नाटिका कृष्णा 31 अगस्त सोमवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर सभागार में FGS फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज ब्रिक्स पॉलिसी डायलॉग 2026 का आयोजन किया गया। इस आयोजन के संदर्भ में आकाशवाणी से विशेष साक्षात्कार में इस कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, निदेशक फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज ने बताया।
2: हमारी सीरीज है फोरम फॉर ग्लोबल स्टडीज की, हम प्रिविलेज्ड हैं कि इंडिया इस बार 12-13 सितंबर को ब्रिक्स चेयर से कर रहा है। हमने सोचा कि पहले हम एक ऐसा पॉलिसी डायलॉग कराए जो एक रिकमेंडेशन

0: के स्पेशली यूथ को लेकर के, यूथ की आवाज को लेकर के है। इस कॉन्टेक्स्ट में हमने फिर इस प्रोग्राम को प्लान किया। इस प्रोग्राम में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिक्स कंट्री के यूथ है वो वर्चुअली प्रोग्राम को ज्वाइन किया, एटलीस्ट 100 स्टूडेंट वर्चुअली, और सारे ये बच्चे जो है PhD के स्कॉलर है इंटरनेशनल रिलेशंस पर। दूसरा, इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के बच्चे इन पर्सन 100 स्टूडेंट यहाँ पर आए। तो ये अपने लिए एक बड़ी बात है कि हमने ब्रिक्स डायलॉग पर यूथ के वॉइस को एक सामने रखा। आदरणीय मोदी जी का जो स्लोगन है इस बार ब्रिक्स के थीम का, वो रेजिलियंस को लेकर के है, वो सस्टेनेबिलिटी को लेकर के है। तो कोऑपरेशन, रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन, ये चार हमारे स्लोगन है। इस पूरे प्रोग्राम में ये जो हमारे एक्सपर्ट आए हैं वो डाइवर्स वो पैनल है, पॉलिसी मेकर से, डिप्लोमेसी से, रशियन एम्बेसी कम्प्लीटली इन्वॉल्व है, कल्चरल डायमेंशन से भी डिफरेंट पार्ट के हैं, स्कूल के डायरेक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स के ओनर्स हैं, मेडिकल, एजुकेशन, इकोनॉमी, एनर्जी, हमने डाइवर्स पैनल बनाने की कोशिश की। आई एम श्योर कि आने वाले 12-13 तारीख हमारी जो ये डायलॉग है, ये डायलॉग एक शेप देगी कन्वर्सेशन को।
1: 4 सितंबर शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुआ। मंदिरों को विशेष ढंग से सजाया गया और विशेष पूजा अर्चना की गई।

29 अगस्त से 4 सितंबर तक कमानी सभागार में श्री राम भारती कला केंद्र द्वारा नृत्य नाटिका कृष्णा का मंचन किया गया। प्रस्तुत है नृत्य नाटिका के मुख्य संपादित अंश।

0: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 6:20 होने को हैं। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
2: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः जतिनः शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। गुणवत्तापूर्ण शिक्षयैव विकसित भारतस्य निर्माणं सम्भवेदिति राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः प्राख्यापयत्। अत्रावसरे सा 48 शिक्षकेभ्यः राष्ट्रीय पुरस्कारानपि प्रदत्तवती। छात्राणां जीवन संस्काराय पाठ्यपुस्तकेभ्यः परं गन्तुं शिक्षकान् प्राचोदयत् प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। सः बालकेषु पटल दर्शन व्यसनस्य न्यूनीकरणाय क्रीडा बहिरंग प्रवृत्तीनां च संवर्धनाय आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं नवदिल्ल्यां श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इत्यस्य शताब्दी समारोहं संबोधयिष्यति। भारतस्य प्रधान न्यायाधीशः सूर्यकांतः नवदिल्ल्यां जायमाने ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंचे स्वस्थ असहमतेः विमर्श संस्कृतेश्च महत्त्वं प्रतिपादितवान्। जलौघ प्रभाविताय नेपाल देशाय भारतेन 95 टन परिमिता सहायता सामग्री प्रेषिता। अपि च महिलानां एशिया चषक 20-20 प्रतिस्पर्धायाः ए वर्गस्य अंतिम रोमांचक द्वंद्वे अद्य रात्रौ दुबई नगरे चिर प्रतिद्वंद्विना पाकिस्तानेन सह योत्स्यते भारतम्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य उदघोषयत् यत् विकसित भारतस्य स्वप्नः तदैव सम्पत्स्यते यदा शिक्षा गुणवत्तापूर्णा सम्भविष्यति। शिक्षक दिवसावसरे नवदिल्ल्यां आयोजिते 26,000 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोहे संबोधयन्ती सा प्रावोचत् यत् यः समाजः शिक्षकानां आदरं विदधाति स एव वस्तुतः प्रगतिशीलः समाजः मन्यते। राष्ट्रपतिः प्रत्यपादयत् यत् अस्माकं संविधाने निहितस्य समानावसरस्य यथार्थ प्राप्तौ शिक्षैव सर्वोत्कृष्टं साधनं वर्तते। प्राथमिक विद्यालयेषु छात्राणां विद्यात्यागमानांकस्य दूरीकरणे शिक्षकाणां प्रयासाः एव हेतुभूताः सन्ति। सान्यरूपयत् यत् शैक्षिक उत्कृष्टता कौशल संवर्धनम् उद्यमिता च राष्ट्रस्य विकासे निर्णायकं योगदानम् आवहन्ति। भारतं ज्ञानशक्तिं विधाय जगति कौशलराजधानित्वेन प्रतिष्ठापयितुं देशस्य प्राथमिकता वर्तते। सा प्रतिपादितवती यत् ज्ञानं शक्त्याः महत्तरः स्रोतः अस्ति। यज्जनं स्वातन्त्र्येण चिन्तयितुं सुविज्ञातान् निर्णयान् ग्रहीतुं राष्ट्रविकासे सार्थकम् अवदानं दातुं च सामर्थ्यं प्रयच्छति। राष्ट्रपतिवर्या अवदत् यत् कर्तव्यनिष्ठाः शिक्षकाः राष्ट्रनिर्माणस्य अग्रिमपङ्क्तौ तिष्ठन्तः शिल्पिनः सन्ति।
3: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
2: राष्ट्रपतिना नारीणाम् अधिकार संरक्षणाय सावित्रीबाई फुले महोदयायाः पावन स्मृतिरपि सप्रश्रयं समुद्भाविता। अत्रावसरे राष्ट्रपति महोदया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारान् समर्पयत्। 27 राज्येभ्यः 7 केन्द्रशासित प्रदेशेभ्यः केन्द्रसर्वकारस्य 6 स्वायत्त संघटनेभ्यश्च चिताः 48 विद्यालयीयाः अध्यापकाः एतान् पुरस्कारान् प्राप्तवन्तः। सहैव राष्ट्रपतिः उच्च शिक्षण संस्थानानां अथ च पॉलिटेक्निक संस्थानानां 21 प्राध्यापकेभ्यः राष्ट्रिय सम्मानं प्रायच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यापकान् समाहूतवान् यत् ते केवलं पाठ्यपुस्तकेषु आत्मानं न बद्ध्वा छात्राणां जीवन संस्कारे बाल्यभावस्य सुरक्षायै महत्तरं दायित्वं निर्वहेयुः। गतदिने नवदिल्ल्यां राष्ट्रिय शिक्षक पुरस्कार विजेतृभिः सह संवादं कुर्वन् श्रीमोदी एतान् विचारान् न्यरूपयत्। सामाजिक संचारपटले अस्य संवादस्य कतिपयान् दृश्यक्षणान् संयोज्य प्रेषिते एकस्मिन् सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा विशेषतया बलं दत्तं यत् शिक्षकाः सुनिश्चिनुयुः यत् प्रत्येकस्मिन् छात्रे विद्यमानः बालकः सदा सजीवः तिष्ठेत्। तदर्थं शिक्षकाः स्वान्तर्गतमपि बाल्यभावं रक्षयेयुः। सः प्रत्यपादयत् यत् बालकेषु वास्तविकपरिवर्तनमानेतुं शिक्षकाः केवलं पाठ्यक्रमे सीमिताः न भूत्वा तेषां समग्रजीवनेन सह एकी भवेयुः।
4: मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
2: स्वास्थ्य सामाजिक प्रकरणेषु कथयन् श्रीमोदी बालकेषु प्रवर्धमानां पटलदर्शनव्यसनं प्रति गभीरां चिन्तां प्रकटितवान्। अस्य पटलव्यसनस्य उपशमनाय सः क्रीडाप्रोत्साहनं

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: तो नीलम बहन, हम हाजिर हैं अपने बहन भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम ग्राम संसार लेकर के। और बहन भाइयों, आज जैसा कि आप जानते हैं शनिवार है, तो आपको सुनने को मिलेगा लोक संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आज 5 सितंबर है और आज के दिन हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये दिन महान शिक्षाविद और भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उनका मानना था कि शिक्षा और शिक्षक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: बिल्कुल शशि भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर यानी आज ही के दिन 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तानी में हुआ था। वर्ष 1962 में जब वे भारत के राष्ट्रपति बने, तब उनके कुछ छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाना चाहा। उन्होंने कहा कि मेरे जन्मदिन की जगह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ये मेरे लिए गर्व की बात होगी। तब से हर साल ये दिन शिक्षकों के सम्मान में मनाया जाने लगा।
0: बिल्कुल, शिक्षा और दर्शन के क्षेत्र में उनके महान कार्यों के लिए वर्ष 1954 में उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो हम शत शत नमन करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को उनकी जन्म जयंती पर।
1: बिल्कुल, शिक्षक हमारे जीवन में सिर्फ पढ़ाई का ज्ञान देने का काम नहीं करते, बल्कि वो हमें सही और गलत के बीच अंतर समझाते हैं और वे हमारी गलतियों से सीखने, मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं।
0: एक शिक्षक का योगदान केवल कक्षा और खिताबों तक सीमित नहीं होता, वे हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा करते हैं और हमें एक बेहतर इंसान बनने की राह दिखाते हैं। कई बार शिक्षक की कही हुई एक छोटी सी बात भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
1: तो आइए इस शिक्षक दिवस पर हम अपने सभी शिक्षकों को धन्यवाद दें और उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लें।
0: नीलम बहन, बात शिक्षा की हो रही है तो भारत सरकार का भी एक अभियान चल रहा है शिक्षा को लेकर के, जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। ये भारत सरकार की एक प्रमुख केंद्र प्रायोजित योजना है। तो हम तो अपने सभी बहन भाइयों से कहना चाहेंगे कि आपके आसपास अगर ऐसे बच्चे हों जो पढ़ सकते हैं, तो उनको अपने आसपास जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर उनका दाखिला कराएं, ताकि वो भी जीवन में आगे बढ़े। तो नीलम बहन, ये तो बात रही समग्र शिक्षा अभियान की, और आइए अब शुरुआत करते हैं आज के फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार की। हेलो ग्राम संसार।
2: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं डॉक्टर सिदारे, बिहार के वैशाली जिले।
0: डॉक्टर साहब, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: जयवीर भाटी को।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: जी भाई जी, राम राम।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: इलाहाबाद दरंगा से घनश्याम बोल रहा हूँ।
0: घनश्याम भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: जयवीर भाटी जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: दो नाम ले लू?
0: हाँ बोल दीजिए। राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो शशि भाई, नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: ऋषिपाल नागर बोल रहा हूँ जी, दादूपुर दरकोर जिला गौतम बुद्ध नगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश।
0: बताइए आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज जयवीर भाटी जी को सुना देना जी। एक दो नाम है बच्चे के, मोहित नागर, रणबीर नागर, आयुष गुजर, अभी गुजर, अवनी और अदिति नागर जी। पूरे दादूपुर गाँव की तरफ से फरमाइश होगी जी।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
5: सर जी नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
5: सर दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा बोल रहा हूँ सर जी।
0: मेहरा जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: रणबीर भाटी को सुना देना सर जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: बच्चों के नाम है सर?
0: हाँ बोल दीजिए।
5: कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और कुणाल मेहरा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
6: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
6: मैं कैशराम दलाल निवासी ग्राम जयसरूर गाड़ी तहसील व जनपद बागपत उत्तर प्रदेश से बोल रहा जी।
0: काशीराम जी, आज किस कलाकार को सुन

0: चाहोगे?
1: अजी जय वीर भाजी को सुनवा दीजिए कोई अच्छी सी रागनी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम है?
0: हाँ बोल दीजिए।
1: बलदेव सिंह आर्य, अनु दलाल, अर्पित दलाल, नितिन दलाल, प्रियांश दलाल, निकिता चौधरी, अक्षय चौधरी, रिव कुमल, मठुमल, साहिल ठाकुर, सुरेश पाल, पहलवान दवास, दीप्ति चौधरी, लक्की चौधरी।
0: हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, सुशील भाई नमस्कार।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
2: मैं जी गाँव डोंगरा ही रहे, जिला महेंद्र हरियाणा से, पंडित राम पटवारी बोल रहा हूँ जी।
0: आज ये किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: कलाकार हैं जयवीर भाटी जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: पत्ता पोते के नाम भी हैं जी, सुहानी शर्मा है जी, भव्य शर्मा है, यश भारद्वाज।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो ग्राम संसार।
3: राम राम साहब।
0: राम राम जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: हवलदार जय प्रकाश, ग्राम पाचौता बुलंदशहर से बोल रहे हैं साहब।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: जयवीर भाटी को सुनवा दीजिए साहब, नाम नोट कर लो
0: जी। कराए
3: करण, खुशी, नंदनी, राधिका, प्रतिज्ञा, राम राम साहब।
0: राम राम जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर जयवीर सिंह भाटी से ये उपदेश।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो ग्राम सर, राम जी,
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: विनोद कुमार प्रजापत, गांव जोधो कला, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। आप
0: विनोद भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे? जरूर
1: दर्जपाल जी की आवाज में सुनवा दीजिए।
0: सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो सर जी, भाई को नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
2: महेंद्र सिंह बोला, जो पासपुरी गांव बढ़ाना जिला बुलंदशहर।
0: महेंद्र भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ब्रजपाल सरोरा को सुनवा देना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: और मेरे साथ यहाँ की भारतीय स्वास्थ्य मिसेज कर देंगी।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: मैं सोनू, गांव डोर चला, महेंद्र दा डेरा से बोला जी।
0: सोनू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज ब्रजपाल सरोरा को सुनना चाहिए।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: देखना है।
0: हाँ बोल दीजिए।
3: मेरे पिताजी अमन बाल मास है, मेरी मम्मी है फूलवती कोटा उठा। नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी। हेलो ग्राम संसार।
4: राम राम जी।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
4: बबली कुमार प्रजापति, मोहल्ला दौजवाला, शिकारपुर बुलंदशहर से बात कर रहा हूँ।
0: बबली भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: आज हमें ब्रजपाल सरोरा जी की आवाज में सुनवा दो।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: और हमारे परिवार वालों के नाम नोट कर लो सर जी।
0: हाँ कराएं।
4: पत्नी है पुष्पा देवी, लड़की डॉली कुमारी, लड़का मोनू कुमार, लड़की है पुजरानी, एक लड़का छोटा भीम, शीषपाल अकेला है और अनवर बिहारी जी हैं।
0: हेलो ग्राम संसार।
5: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
5: मैं ब्रजपाल बोल रहा हूँ सर, गांव राम सावला जी पठानपुर का।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
5: ब्रजपाल सरोरा को सुना दीजिए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
5: एक नाम लूंगा सर, हमारे बड़े भैया ने डेढ़ से बसे सर बता। राम राम जी।
0: राम राम जी। हेलो ग्राम संसार।
6: हेलो नमस्कार जी, मैं करमबीर सिंह दिलोड़ बोल रहा हूँ मुरादनगर से।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
6: आज ब्रजपाल सिंह चरोरा जी को सुनवा दीजिएगा। तो नाम लूंगा जी, सूरजमल दिलोड़, रोनिका दिलोड़ जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
7: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
7: इंद्रवीर तेवतिया, नथुगढ़ी डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ।
0: तेवतिया जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
7: ब्रजपाल चौरा की जाई हुई रागनी सुनवा देना। कुछ नाम लेने चाहूँगा
0: जी, बताएं।
7: सुमित तेवतिया, प्रत्यक्ष निष्कर्ष, छोटू प्रिंस, हमारी बुआ जी राजवीरी, गाँव मंडौना से विक्रम मुंशी जी और सुरेंद्र सिंह, गाँव खुशियालपुर से देव सिंह मोदी, पंडित रतन लाल।
0: कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ब्रजपाल चरोरा से ये रागनी, किस्सा रहेगा कृष्ण सुदामा का।

0: हेलो ग्राम संसार।
1: हेलो शशि भैया, नमस्कार।
0: नमस्ते जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
1: मैं गांव चौधरी अग्रवाल,
0: राजू भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: पाल खदाना बड़े अच्छे कलाकार है जी, उनको सुनना।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
2: हाँ जी, हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
2: महिपाल वाना बटोल से जी।
0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: आज के कलाकार है ऋषिपाल खदाना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
2: नाम है जी और भी?
0: हाँ बोल दीजिए।
2: डॉक्टर विनोद कुमार, अमित अंकुर, गांव बाटो, जिला सहारनपुर।
0: हेलो ग्राम संसार।
3: हेलो ग्राम संसार, शशि भाई राम राम।
0: राम राम जी। कौन भाई बोल रहे हैं?
3: चंद्र सोलंकी, गांव करकोरा, महाराजपुर, जिला बुलंदशहर से बोल रहे हैं जी।
0: आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: आज सुनना चाहेंगे जी ऋषिपाल खदाना को।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: नाम बोलूंगा जी, लकी संजना, अंशका, टिंकल, कन्नू, प्राची, वीर सोलंकी, पिताजी श्री मेघराज सिंह सोलंकी, माताजी श्रीमती निर्मला देवी, गांव करकोरा से गजेंद्र प्रधान जी, श्याम चौहान, सतवीर सिंह बैद जी।
0: हेलो ग्राम संसार।
4: हेलो ग्राम संसार।
0: कौन भाई बोल रहे हैं?
4: राजेंद्र जाटव, राम की पोस्ट, मोदी नगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं जी।
0: आज

0: किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
1: आज के कलाकार हैं ऋषि पाल खदाना।
0: जरूर सुनवाएंगे।
1: कुछ नाम है जी, महेंद्र शारदा, राम किशोर, शीला, सचिन, शिवम, अनुष्का, मानसी और ये पूरे आबिदुलकाम की फरमाइश होगी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी। हेलो ग्राम संसार।
2: हेलो ग्राम संसार, उसार से राजेंद्र सैनी बोल रहा हूँ। शशि जी।
0: सैनी जी, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
2: ऋषि पाल खदाना को सुनना चाहूंगा।
0: जरूर सुनवाएंगे। हेलो ग्राम संसार।
3: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
3: मास्टर प्रवीण नागर, ग्राम दुजाना, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश।
0: प्रवीण भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
3: ये ऋषिपाल खदाना जी को सुनवाइए जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
3: कुछ नाम है जी?
0: हाँ बोल दीजिए।
3: जयपाल सिंह अध्यक्ष, मास्टर ब्रह्म सिंह, जगदीश मोटा बादलपुर, मास्टर कुंदन सिंह, पवन कुमार, कृष्ण मुखिया, गर्व गुजर और आरव भाटी।
0: हेलो ग्राम संसार।
4: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी, कौन भाई बोल रहे हैं?
4: मैं जगदीश सिंडालिया बोल रहा हूँ जी, गाना निर्शान, जिला भिवानी जी।
0: जगदीश भाई, आज किस कलाकार को सुनना चाहोगे?
4: ऋषिपाल खजाना को सुना देना जी।
0: जरूर सुनवाएंगे।
4: बच्चों के भी नाम है जी, राजवीर सिंडालिया, सतीश सिंडालिया, ऋतिक सिंडालिया, केड़ा देवी जी। नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी। तो आइए सुनते हैं आप सभी भाइयों की पसंद पर ऋषिपाल खदाना और उनके साथियों से ये रागनी, खिस्सा रहेगा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का।

0: तो बहन भाइयों, ये था आज का फोन इन कार्यक्रम हेलो ग्राम संसार। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 1 बजे से 1:30 बजे तक फोन कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, फोन करने के लिए नंबर है 0112346731 और दूसरा नंबर है 0112346732। इन दोनों नंबरों पर आप फोन करके अपने पसंद के कलाकार को सुनने के लिए फरमाइश रिकॉर्ड करवा सकते हैं।
0: और बहन भाइयों, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। इसी के साथ कार्यक्रम ग्राम संसार के प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक शिव नंदन लाल के साथ दीजिए अनुमति। सभी बहन भाइयों को राम।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ग्राम संसार। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत संभव है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि जो समाज अपने शिक्षकों का सम्मान करता है वही सही मायने में प्रगतिशील समाज है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: इस अवसर पर 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों से चुने गए 48 स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षकों से पाठ्य

0: पुस्तकों से आगे बढ़कर विद्यार्थियों के जीवन को बेहतर बनाने और उनके बचपन को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत में श्री मोदी ने बच्चों में अत्यधिक स्क्रीन समय की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने नशीली दवाओं के बढ़ते खतरे पर भी चिंता व्यक्त की।
1: ड्रग्स का मामला बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा ऐसा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है? प्रकार से मैं पूरी शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकते।
0: सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। यह व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए एक नियमित मंच प्रदान करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉक्टर एस एल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है और अपनी विरासत को समझने के लिए अब किसी और की अनुमति का इंतजार नहीं करता। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सेवा नियमों को कर्मचारियों और उनके परिवारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने के निरंतर प्रयास करने का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय सेवा फोरम CSS की CSS शील्ड पहल के शुभारंभ करते हुए कहा कि यह पहल कार्मिक मंत्रालय के इस व्यापक प्रयास के अनुरूप है जिसके तहत सरकारी सेवा प्रणालियों को कर्मचारियों और उनके परिवारों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाया जा रहा है। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। प्रभावित 8 जिलों में बचाव अभियान जारी है जबकि लगभग 5000 लोग अभी भी लापता हैं। अब तक 13000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे। ये मैच दुबई में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत थाईलैंड और हांगकांग को हराकर पहले ही सेमीफाइनल में जगह बना चुका है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारतीय जोड़ी ने पहला गेम जीत लिया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुर्खियों में ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट।
1: नमस्कार, मैं हूँ निखिल कुमार। श्रोताओं, आज 5 सितंबर है यानी शिक्षक दिवस। आज इस अवसर पर नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के शिक्षकों को सम्मानित किया। इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए कुल 82 शिक्षकों और शिक्षाविदों का चयन किया गया था। इनमें 48 स्कूली शिक्षक, 21 उच्च शिक्षण संस्थानों और पॉलिटेक्निक के शिक्षक तथा 13 कौशल प्रशिक्षक शामिल हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक की भूमिका को व्यापक संदर्भ में रखने पर जोर दिया। राष्ट्रपति स्वयं भी शिक्षिका रह चुकी हैं और उन्होंने अपने शिक्षक जीवन की स्मृतियों को भी साझा किया। आइए सुनते हैं राष्ट्रपति को।
2: देश के

0: द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर हमारे देशवासी उनके प्रति एवं समस्त शिक्षक समुदाय के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है और समाज सही अर्थ में प्रगतिशील होता है। शिक्षक के बीच आकर मेरे अंदर विद्यमान विद्यार्थी और शिक्षक दोनों ही जीवंत हो जाता है। मुझे अपने शिक्षकों का सादर स्मरण होता है। उनके स्नेह और मार्गदर्शन के बल पर ही मैं अपने जीवन यात्रा में आगे आकर आपके सामने खड़ी हूँ। साथ ही मुझे अपने विद्यार्थी भी याद आते हैं, जिन्हें मैंने ओडिशा के रायरंगपुर में स्थित श्री अरबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाया था। मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बहुत कुछ सीखा है। उन विद्यार्थियों के प्यार को मैं अपने जीवन के बहुत बड़ी उपलब्धियां मानती हूँ। मैं भी कभी शिक्षक समुदाय की सदस्य रही हूँ, इससे मुझे विशेष सार्थकता का अनुभव होता है।
1: श्रोताओं, भारत में आधुनिक शिक्षा के विकास की यात्रा में कई ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिन्होंने शिक्षा को समाज में बदलाव का माध्यम बनाया। इनमें सावित्री बाई फुले का योगदान विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने ऐसे समय में लड़कियों और वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए काम किया जब महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज में अनेक बाधाएं थीं। इसी तरह रविन्द्रनाथ ठाकुर ने शिक्षा को केवल किताबों और कक्षा की सीमाओं तक नहीं देखा। शांति निकेतन के माध्यम से उन्होंने प्रकृति, कला, रचनात्मकता और स्वतंत्र सोच को शिक्षा का हिस्सा बनाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने संबोधन में शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे महान व्यक्तित्वों को याद किया। आइए सुनते हैं उनका ये महत्वपूर्ण संदेश।
0: सावित्रीबाई फुले आधुनिक युग में विद्यालय में पढ़ाने वाले भारत की पहली शिक्षिका के रूप में जाने जाती है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने क्रांतिकारी पहल की थी और 19वीं सदी में बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। आज के दिन कांति ज्योति स्वरूपा महान शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की मूर्ति को मैं सादर नमन करती हूँ। 20वीं सदी के आरंभ में पश्चिम बंगाल के बोलपुर जिले में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन की तथा ओडिशा के पुरी जिले में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी उत्कलमणि पंडित गोपबंधु दास ने वन विद्यालय यानी ओपन एयर स्कूल की स्थापना की थी। उन विद्यालयों की स्थापना के पीछे ये उदात्त विचार था कि प्रकृति की गोद में विद्यार्थियों का सहज विकास होता है। देश को बहुआयामी योगदान देने वाले यथा सर्वजनात्मक शिक्षा के प्रति विशेष रूप से समर्पित उन विभूतियों को मैं सादर नमन करती हूँ।
1: श्रोताओं, भारत अब ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ दुनिया की स्किल कैपिटल बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे में शिक्षा, कौशल और नवाचार को एक दूसरे से जोड़ना आवश्यक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षकों को भविष्य का निर्माता बताते हुए भारत को दुनिया की स्किल कैपिटल बनाने के लक्ष्य से शिक्षा को जोड़ने पर जोर दिया।
0: ये प्रसन्नता की बात है कि पुरस्कार विजेता में गांव के स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या अधिक है। मुझे आशा है कि इस वर्ष के पुरस्कार विजेताओं की अध्यापन एवं प्रशिक्षण पद्धतियाँ और उपलब्धियाँ उन शिक्षकों को भी शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करेगी। पुरस्कार विजेताओं के योगदान और उपलब्धियाँ पर केंद्रित फिल्मों को देखकर मेरा ये विश्वास और भी दृढ़ हुआ है कि निष्ठावान शिक्षक अग्रिम पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: श्रोताओं, बच्चे के जीवन के शुरुआती वर्ष उसके सीखने, व्यवहार और व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। राष्ट्रपति ने भी अपने संबोधन में कहा कि ज्ञान और कौशल जीवन में कभी भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन बचपन में अच्छे आचरण तथा मूल्यों को विकसित करना अधिक प्रभावी होता है। प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा, आइए सुनते हैं।
0: भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि बच्चों की देखभाल करना पौधों को जोर से सींचने जैसे बराबर है। स्कूल एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था का आधार है। ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षाओं में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं। विद्यार्थियों ही शिक्षकों की पहचान होते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों द्वारा पढ़ाया गया पाठ्यक्रमों भूले ही भूल जाए, लेकिन उनके व्यवहार को ये सदैव याद रखते हैं।
1: श्रोताओं, प्राथमिक शिक्षा मजबूत होने का अर्थ केवल ये नहीं कि ज्यादा बच्चे स्कूल पहुँचें, इसका मतलब ये भी है कि अलग अलग सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों से आने वाले बच्चों को आगे बढ़ने का समान अवसर मिले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा को संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को लागू करने का सबसे प्रभावी माध्यम बताते हुए शिक्षकों की जिम्मेदारी पर भी जोर दिया।
0: संस्कृतभाषा के शब्द उद्धार का अर्थ होता है खींचकर बाहर निकालना या नीचे से ऊपर ले जाना। विद्यार्थियों का उद्धार करने का पुनीत अवसर केवल शिक्षकों को ही उपलब्ध होता है। हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्श को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हम सभी देशवासी विकसित भारत के निर्माण के लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था के बल पर ही विकसित भारत का निर्माण संभव है। हमारे शिक्षक शिक्षा व्यवस्था में प्राणवायु का संचार करते हैं। हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हमारे देश में एक भी विद्यार्थी अच्छी शिक्षा के अवसर से वंचित ना हो। मैं चाहूंगी कि हमारे शिक्षक अपने स्नेह और समर्पण से सभी विद्यार्थियों में ज्ञान, प्रेरणा, नैतिकता और संवेदनशीलता का संचार करें।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ बातचीत की। उन्होंने इस बातचीत की झलकियां सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की। प्रधानमंत्री ने बातचीत में कहा कि शिक्षकों को केवल बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर नजर नहीं रखनी चाहिए, बल्कि उनके व्यवहार और रोजमर्रा के जीवन में होने वाले बदलावों को भी समझना चाहिए। बदलती पारिवारिक संरचना के बीच बच्चों के साथ शिक्षक का संवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बच्चों में नशे की समस्या को लेकर भी शिक्षकों की भूमिका पर जोर दिया। उनका कहना था कि बच्चों के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो शिक्षक को उसके कारणों को समझने और बच्चों की मदद करने का प्रयास करना चाहिए। श्रोताओं, आज एक और चुनौती बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम की है। मोबाइल और डिजिटल उपकरण शिक्षा में उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उनका अत्यधिक इस्तेमाल बच्चों के शारीरिक और रचनात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से अभिभावकों के साथ इस विषय पर बातचीत करने और बच्चों को खेल, शारीरिक गतिविधियों तथा रचनात्मक कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने का आह्वान किया। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षकों की बातचीत के कुछ अंश।
2: परमात्मा ने हरेक को कोई न कोई ताकत दी होती है, उसकी टैलेंट पहचानने के लिए कोई कोशिश करते हैं आप टीचर लोग?
3: बहुत सारी कोशिश करते हैं, इनफैक्ट वही हमारी कोशिश होती है। क्योंकि मेरा मानना है कि हमारे विद्यालय में या हमारी कक्षा में जितने बच्चे हैं उन सभी में अलग अलग खूबी है, अलग अलग टैलेंट है, अलग अलग चैलेंज है, और एक शिक्षक के नाते मैं उन सारे टैलेंट्स को आइडेंटिफाई करती हूँ और मैंने किया है।
4: आपने एकलव्य खोल करके एक स्कूल नहीं बनाया, बल्कि लगभग मेरे हिसाब से उतने गुने परिवार को जोड़ा। जो परिवार फर्स्ट जनरेशन लर्नर है आज के दिन में, वो कभी स्कूल नहीं देखे, उनके बच्चे आज हमारे यहाँ से आईआईटी का सपना देख रहे हैं, मेडिकल क्वालिफाई कर रहे हैं।
2: एक विषय है स्क्रीन टाइम, अब ये एक प्रकार का एडिक्शन है। मेरे मन में एक विचार आता है, या तो वो बच्चा खेल कूद के अंदर बहुत रुचि लेने लग जाएगा, खेल कूद मतलब वो वीडियो गेम नहीं, अरे एक्चुअली मैदान में वो खेलना, तो धीरे धीरे वो उसमें से बाहर आ सकता है। और ऐसे में क्रिएटिविटी के तरफ हम बच्चों को जितना ज्यादा जोड़ेंगे, और हमने ऐसे कुछ न कुछ कार्यक्रमों की रचना को आदत बनानी चाहिए। अब जैसे ड्रग्स का मामला, अभी कुछ बड़े शहरों में या यूनिवर्सिटी में रहा सा नहीं, पता ही नहीं किसी को क्या है, कोई आकर के दे देता है। क्या उस संबंध में लगातार आज के जो आप टीचर्स हैं, क्या अवेयरनेस, उसके कारण क्या भय है, क्या माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई किसी बच्चे में बदलाव तो नहीं आ रहा है? मैं बात तो आप लोगों से कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रकार से मैं पूरे शिक्षा जगत से ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत पहले से ज्यादा किताबों से बाहर निकल करके, सिलेबस से बाहर निकल करके बच्चों की जिंदगी में घुसना पड़ेगा। बचपन मरने नहीं देना चाहिए, और बचपन बनाए रखने का सबसे बड़ा काम टीचर कर सकता है। टीचर का काम है कि उसके भीतर का बचपन बना रहे।
1: श्रोताओं, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों की सूची पर नजर डालें तो अलग अलग हिस्सों से आने वाले शिक्षकों की कहानियों में एक समानता दिखाई देती है। उन्होंने अपनी कक्षा की जरूरत के हिसाब से पढ़ाने के नए नए तरीके तलाशे हैं। आइए पुरस्कार विजेताओं के योगदान को विस्तार से समझते हैं।
5: राजस्थान के सरकारी स्कूल के शिक्षक डॉक्टर दिव्येंदु सेन ने ग्रामीण विद्यार्थियों को अंतरिक्ष विज्ञान से जोड़ते हुए उनके क्षुद्र ग्रहों की पहचान और खोज से जुड़े कार्यक्रमों में प्रशिक्षित किया। उन्होंने कम लागत वाले तकनीकी समाधान भी विकसित किया।

0: ये जिनमें AI आधारित जीव विज्ञान शिक्षण मॉडल, डिजिटल बायोलॉजी लैब और पेड़ों के बारे में QR कोड आधारित सीखने की व्यवस्था शामिल है। हरियाणा के अनिल कौशिक ने गणित को आसान और रोचक बनाने के लिए आधुनिक मैथ्स लैब तैयार की। इसमें 40 से अधिक शिक्षण मॉडल और डिजिटल गणित प्रयोगशाला भी शामिल है। उन्होंने वैदिक गणित पर पाठ्यपुस्तकों में योगदान दिया और दीक्षा पोर्टल के लिए भी शिक्षण मॉड्यूल तैयार किए। इनके योगदान के लिए इन्हें मैथ विजार्ड के रूप में जाना जाता है। राजस्थान की डॉक्टर वर्तिका गुलाटी ने गणित और विज्ञान को रोजमर्रा की चीजों से जोड़ने का प्रयास किया। वे मूंगफली के जरिए बीज गणित और पतंगों के माध्यम से ज्यामिति जैसे विषयों को समझाती हैं। उनका प्रश्नों से विज्ञान मॉडल रटने की जगह बच्चों को सवाल पूछने और खुद उत्तर तलाशने के लिए प्रेरित करता है। ओडिशा के पदाराज उमाकांत नायक ने विद्यार्थियों को केवल पढ़ाने के बजाय उन्हें चीजें बनाने के लिए प्रेरित किया। उनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने 50 से अधिक प्रोटोटाइप तैयार किए, जिनमें कम लागत वाली स्वचालित प्लेट धोने की मशीन भी शामिल है, जिसे भारत सरकार से पेटेंट मिला। शिक्षा का असर केवल बच्चों तक सीमित नहीं रहता, इसका उदाहरण असम के शिक्षक राजेश बरदोलोई का काम भी है। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को घर जाकर अपनी उन माताओं को पढ़ाने का काम दिया जो पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। इसमें बुनियादी साक्षरता के साथ स्मार्टफोन और UPI के इस्तेमाल जैसी रोजमर्रा की जरूरतों को भी शामिल किया गया, यानी कक्षा की शिक्षा परिवार और समुदाय तक पहुंची। महाराष्ट्र की डॉक्टर कविता नरसिंह राव गिट्टे ने प्रवासी गन्ना मजदूरों के बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने के लिए लंबे समय तक काम किया। वहीं खेलों के क्षेत्र में भी उन्होंने विद्यार्थियों को आगे बढ़ाया। गोवा के महादेव हनुमंत शिंदे का काम विशेष जरूरतों वाले बच्चों और खेलों के बीच संबंध का उदाहरण है। उन्होंने विशेष ओलंपिक के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया और भारतीय फ्लोर हॉकी टीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हासिल की। लद्दाख के मोहम्मद मुस्तफा कुमाल ने भी सीमित संसाधनों के बीच शिक्षा को अनुभव आधारित बनाने का प्रयास किया। उनके काम में छोड़े गए सैन्य बंकरों को विज्ञान प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करना और कक्षा को मॉक पार्लियामेंट में बदलकर विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना शामिल है। समाचार कक्ष विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, शिक्षक हमारे जीवन में उन लोगों में शामिल होते हैं जिनका प्रभाव अक्सर कक्षा खत्म होने के बाद भी बना रहता है। कोई शिक्षक किसी बच्चे में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है, कोई उसे अपनी भाषा और संस्कृति से जोड़ता है, तो कोई मुश्किल परिस्थितियों के बीच उसे आगे बढ़ने का आत्मविश्वास देता है। शिक्षक दिवस हमें ऐसे ही योगदानों को याद करने और शिक्षा के बदलते स्वरूप को समझने का अवसर देता है। इसी के साथ आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने और तकनीकी सहयोग दिया अक्षत ममगाई ने। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289-09-40044।
3: सुर्खियों में

0: श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में।
1: नमस्ते। जवाब दे देते हैं नमस्ते का। नमस्ते। भारत के गौरव और अभिमान के प्रतीक माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, भारत के शिक्षा मंत्री श्री प्रहलाद जोशी, श्री अजय श्रीराम, श्री रजत शर्मा जी, प्रोफेसर सिमरत कौर, प्रोफेसर मलिका कुमार और एसआरसीसी को एसआरसीसी बनाने वाले जो यहाँ सारे बैठे हैं और जो यहाँ नहीं भी बैठे हैं, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं अपने युवा विद्यार्थियों का धन्यवाद भी करता हूँ कि आपने एसआरसीसी में एडमिशन लिया। आपको अपने इस निर्णय पर हमेशा गर्व रहेगा। ये एसआरसीसी की उपलब्धि है और एसआरसीसी की ताकत भी है, उसके लिए भी एसआरसीसी का बहुत बहुत आभार। आज शिक्षक दिवस है, उसके लिए भी मैं सभी का अभिनंदन करना चाहूँगा। जो शिक्षक केवल पोस्ट से नहीं होता, पोस्ट के बिना भी शिक्षक शिक्षक होता है, आप सभी को उसके लिए भी बहुत बहुत आभार। आज शताब्दी स्मृति दिवस का कार्यक्रम है, तो ये अचीवमेंट्स को याद करने का भी दिन है और अगले कुछ दशकों की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करने का भी दिन है। सबसे बड़ी प्रेरणा की और क्या बात हो सकती है, सबसे बड़ी प्रेरणा की और क्या बात हो सकती है कि स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री का आना हुआ है, जिन्होंने रात दिन केवल भारत को जिया है और भारत के लिए जिया है, भारत को जिया और भारत के लिए जिया है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प और उसके लिए किए जाने वाला परिश्रम, संकल्प एक बात है, उसके लिए किए जाने वाला परिश्रम राही मासूम रजा की कुछ पंक्तियां याद दिलाता है, जो मैं कहना चाहूंगा कि इस सफर में नींद ऐसी खो गई, हम न सोए रात थककर सो गई। आज के इस चुनौतियों से भरे विश्व में, जहां हर रोज एक नया संकट है, हर रोज एक नई चुनौती है, मेरे मन में एक भाव आ रहा है कि क्या आपने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं, देश के भविष्य के लिए निडरता से निर्णय लेने वाले, देश के लिए जीने वाले, इतनी मेहनत करने वाले, विकसित और सुरक्षित भारत के लिए दिन रात एक करने वाले, भारत के दर्द को और मर्म को समझने वाले, क्या आपने ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं? ये युवा भी हैं और युवाओं की तरह सोचते भी हैं। मेरे जैसे न जाने कितने भारतवासी जब कभी परेशान होते हैं, उन सोचते हैं तो प्रधानमंत्री जी की लगन, संघर्ष और परिश्रम से हम प्रेरणा लेते हैं कि जब इतना ज्यादा काम करने वाले प्रधानमंत्री हैं, हमारे पास तो कुछ ऐसा नहीं है, तो एक शक्ति का संचार हम सब में, भारत के लोगों में होता है। ये एक भारत के लिए, हमारे लिए बहुत ही शक्ति का पुंज है। तो फिर मैं वही बात पूछता हूं कि क्या ऐसे प्रधानमंत्री देखे हैं? एक और बात, दिल्ली विश्वविद्यालय का जो ध्येय वाक्य है, निष्ठा धृति सत्यम, समर्पण दृढ़ता और सत्य, एक दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के नाते इन्होंने जो अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट किया, साकार कर दिखाया है और उसको जीते हैं, इसके लिए भी दिल्ली विश्वविद्यालय गर्व करता है। ऐसे प्रधानमंत्री कहां मिलते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एसआरसीसी के 100 वर्ष में एसआरसीसी ने वो कर दिखाया जो संसार का हर इंस्टीट्यूशन करना चाहता है, जो सपना लेता है वो एसआरसीसी ने करके दिखाया। अगले 50 वर्ष में एसआरसीसी को विश्व में बहुत बड़ा बनना है। यह दिन ऐसा संकल्प लेने का भी दिन है कि हमको कैसे आगे जाना है, भारत को विकसित बनाने में अपना योगदान बढ़ाना है। एसआरसीसी को, ये इकोनॉमिक्स का, कॉमर्स का, बिजनेस का इंस्टीट्यूशन है, तो देश आपसे ज्यादा अपेक्षा करता है। इसे स्टार्टअप्स का कैपिटल बनाने का संकल्प लेने का भी दिन है। वो दिन भी आए कि कल को कोई इंस्टीट्यूशन कहे कि यदि स्टार्टअप कल्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाना है तो एसआरसीसी को विजिट करो, एसआरसीसी में देखो, यहां सक्सेस स्टोरीज भरी पड़ी हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, देश के हित में हमेशा अपना हित देखना, देश के हित में हमेशा अपना हित देखना, देश की चिंता करने का मन बनाए रखना, अपने देश में इतना सामर्थ्य है कि वे आपके हित की चिंता कर लेगा, उसकी चिंता करना। मैं एक बार पुनः भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से और आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं, और एसआरसीसी के सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं।
2: थैंक यू सर। वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस श्री प्रहलाद जोशी जी, ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली इंस्पायर द यंग

Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, dignitaries on the dais and off the dais, because dais pe bhi dignitary hai, samne bhi main dekh raha hu, bahut dignitaries baithe hue hain. I think this is the speciality of the SRCC. All my dear students and everyone present here, it is a great honor for all of us to welcome Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji today at Sri Rama College of Commerce. I think, as I have understood, Ajay ji, when Prime Minister came in 13, he was Chief Minister at that time. Today, as the Prime Minister of India, he has first time visited Sri Rama College of Commerce. फ्रेंड्स, आज शिक्षक दिवस भी है. इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों को हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं. आज एसआरसीसी का 100 साल पूरा हो रहा है इस बरस. किसी भी इंस्टीट्यूट को 100 साल तक चलाना और उसी रेपुटेशन के साथ चलाना, ये बहुत बड़ी बात है. इसके लिए बहुत लोग जो अलुमिनाज बैठे हैं और बाकी सब लोग इसके लिए त्याग और तपस्या किया है, उन सभी लोगों को इस लेवल पर लाने के लिए मैं सभी को शिक्षा मंत्री के नाते बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं और उनको नमन करता हूं. जैसे रजत जी उल्लेख कर रहे थे, जस्टिस नारिमन, जस्टिस सिकरी, अरुण जेटली और स्वयं रजत शर्मा जी के सहित बहुत लोग इससे जुड़े हुए हैं. फ्रेंड्स, इन 1926 एसआरसी एस्टैब्लिश हुआ. आफ्टर दैट मीन्स आफ्टर 1926, आफ्टर 21 ईयर्स वी गॉट फ्रीडम. टुडे Prime Minister has given us call that in coming 21 years, Bharat should become Viksit Bharat and Atmanirbhar Bharat. Usme aapke zimmedari bhi bahut hai. Usi ke saath, aap jo students baithe hai, you are the beneficiary of Viksit Bharat. Ye bhi main aapko nambrata se yaad dilana chahta hoon. Isi vision ke saath, माननीय प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्शन दिया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने के लिए. मुझे इसलिए भी आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं, एसआरसीसी ने इसका इंप्लीमेंटेशन ठीक ठाक किया है, इसलिए भी मैं आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं. मैं हायर एजुकेशन में जो हुआ है वो भी मैं एक ही सेंटेंस में आपको बताना चाहता हूं. हायर एजुकेशन में टोटल इस बार 4.5 करोड़ स्टूडेंट एडमिशन हुआ है. इन लास्ट 10 इयर्स इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1 करोड़. दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द 10 ऑलमोस्ट 12 इयर्स ऑफ श्री मोदी गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस इकोसिस्टम and Prime Minister's direction and inspirational leadership, aaj Bharat third largest startup ecosystem hai. And I would like to only tell you, before 2016, when Startup India was launched, that mission was launched, less than 400 startups were there. Today more than 2,30,000 startups are there in India. They are from Delhi to Bengaluru to Tier 2 cities. हमारे जो बच्चे हैं और उसमें स्टार्टअप में है, और एसआरसीसी का भी बहुत ही स्टूडेंट ये स्टार्टअप में है. आने वाले समय में भारत को, दुनिया को रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स की जरूरत है और हाई क्वालिटी सर्विसेज का भी जरूरत है. उसके लिए
स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस जो है उसका भी जरूरत है और उसका रिक्वायरमेंट भी तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल मार्केट में देयर इज ऑलरेडी ए सिग्निफिकेंट गैप एज फार एज स्किल ह्यूमन रिसोर्सेस कंसर्न। इंडिया के पास इस समय, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। तो ये अपॉर्चुनिटी क्यों है? बिकॉज इंडिया इज द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, हाईएस्ट यंग पॉपुलेशन इज इन इंडिया। और उसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने ये यंग इंडिया को स्किल बनाने में और स्किलिंग इकोसिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम में नयापन लाने के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया और स्किल एक्सपांशन के लिए बहुत कार्यक्रम किया है। इंडिया के इकोनॉमी भी आप देख सकते हैं, लास्ट क्वार्टर मीन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2026 7.8% हुआ है। एंड जब दुनिया में इतना प्रॉब्लम चल रहा है, क्राइसिस चल रहा है, और भारत द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड टुडे, दैट इज द एडवांटेज ऑफ इंडिया, दैट इज द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। आज भारत में जो उपयोग होते हैं, 99% मोबाइल आज भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसी के साथ एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। इसीलिए एजुकेशन, स्किलिंग और इकोनॉमिक ग्रोथ को साथ देखना जरूरी है। उसी विजन के साथ प्रधानमंत्री जी हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है तो ग्लोबल स्किलिंग हब भी हमको बनना है और इस दिशा में हमको काम करना है। फॉर दैट वी नीड एनर्जी। मैं आपको और एक आंकड़ा बता के मेरा वाणी को विराम देता हूं। व्हेन प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी जी टुक ओवर इन 2014, द टोटल जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी वॉज 249 गीगावाट। आज टुडे 552 गीगावाट ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड and that is also one of the reason for the manufacturing, jo manufacturing desh mein badh raha hai uska wo bhi ek karan hai. Usme within that 552, 302 is through non fossil sources and 165 gigawatt is through solar. Main is solar ke bare mein ek sentence batata hu sirf aur baad mein mera vaani ko viram karta hu. 2014 के बाद हमारे सोलार प्रोडक्शन और विंड प्रोडक्शन जो हुआ है, इससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कम हुआ है और पर्यावरण के भी पॉजिटिव परिणाम हुआ है पर्यावरण के ऊपर। बट मैं इतना ही आपको कहना चाहता हूं, 2014 से पहले भी सूरज था, सूरज में तेजी भी था, लेकिन उस एसयूएन सन में प्रधानमंत्री जी ने शक्ति को देखा। ही हैज रिकॉग्नाइज द एनर्जी इन द सन, एसयूएन सन। एंड इससे पहले भी जो थे, एट दैट टाइम इट वाज ओनली 2.6 गीगावाट सोलर एनर्जी एंड वी रीच टू 165 गीगावाट। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी एसयूएन सन का शक्ति का रिकॉग्नाइज किया और वो शक्ति को फॉलो किया और देश को, जनता को दिया। पहले वाले थे जो थे वो एसओएन सन के पीछे पड़ा और सन स्ट्रोक हो गया। इसीलिए देश आगे बढ़ रहा है, आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है। प्रधानमंत्री जी आए हैं, हम सबको एक बहुत बड़ा एनकरेज।

0: स्टेटमेंट मिलने वाला है। फिर एक बार मैं आपको और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद करते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: नमस्कार, थैंक यू सर फॉर योर मोटिवेटिंग एंड एनर्जाइजिंग वर्ड्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ वी अराइव एट द हिस्टोरिक मोमेंट एवरीवन हैज बीन वेटिंग फॉर। 13 years back, I was the anchor. It was my privilege. And today again, an honor for me to request our Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, a leader par excellence and inspiration for billion dreams, to please deliver the SRCC centenary address. Adarniya Pradhan Mantri ji, aapke aashirvachan ke liye हमारा विनम्र निवेदन।
2: केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी श्रीमान प्रहलाद जोशी जी, डीयू के वीसी योगेश सिंह जी, एसआरसीसी के प्रिंसिपल सिमरित कौर जी, अजय जी, मल्लिका जी, रजत जी, एसआरसीसी के जुड़े हुए सभी साथी, फैकल्टी, स्टाफ, एसआरसीसी अलमनाई और मेरे युवा साथी, मैं छठा खिलाड़ी हूं।

आज का ये अवसर श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के लिए बहुत ऐतिहासिक है। ये देश के शिक्षा जगत के लिए भी उतना ही अहम है। यहां एसआरसीसी का हिस्सा रही अनेक पीढ़ियां एक साथ जुटी हैं। मैं आप सभी को एसआरसीसी के इस शताब्दी समारोह के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं इसके संस्थापक सर श्री राम जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं, उनके विजन को नमन करता हूं। साथियों, जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपने 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा, और जो निकले वो गढ़े हुए निकले। इस कॉलेज की यात्रा दरियागंज की वहां एक छोटे से स्थान से शुरू हुई थी, और आज वही छोटा सा कॉलेज एक विशाल वृक्ष बन चुका है। एक ऐसा विशाल वृक्ष जिसे कई पीढ़ियों को छांव भी दी है और अपनी शीतलता से

युद्ध भी किया है। आज भी डीयू में जब कोई पूछता है कि कौन सा कॉलेज, तो एसआरसीसी कहना ही

जिन्होंने एसआरसीसी का नाम दुनिया भर में पहुंचाया, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक पहचान बनाई और रजत जी ने बड़ी लंबी सूची बताई थी और इनमें से कुछ के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। हमारे अरुण जेटली जी यहीं पढ़े थे, और मैं कह सकता हूं कि शायद हमारी कोई मुलाकात ऐसी नहीं होती थी को एसआरसीसी की कोई घटना न सुनाते हो। और कभी कभी मैं तंग आ जाता था कि एक ही घटना बार बार सुनाते थे। अभी मेरी टीम में भाई संजीव सन्याल भी यहीं से पड़े हुए हैं, बाकी भी काफी साथी हैं यहां मेरे। और ऐसा नहीं है कि यहां से सिर्फ अर्थ जगत के ही लोग निकले, इतने ही आर्टिस्ट से लेकर नेता, वकील, जस्टिस सब यहां से निकले। यानी एसआरसीसी के लोगों ने हर क्षेत्र में अपनी धूम मचाई है। धुरंधर ना हो लेकिन धूम तो मचाई है। साथियों, बीते कुछ दिनों से इस कार्यक्रम की बहुत चर्चा चल रही है, खासतौर पर लोग 2013 के मेरे संबोधन को याद कर रहे हैं। लोगों ने उसको फिर से सुना है, फिर से पढ़ा है। संभव है इस नई पीढ़ी के लोगों ने भी उसको रिविजिट किया होगा। उस स्पीच के एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि वेव बन गई थी, एक लहर सी चल पड़ी थी, और आज भी 13-14 साल बाद भी उस सभा का और उस संबोधन का प्रभाव बरकरार है। साथियों, तब आपकी जगह आपके सीनियर बैठे थे और मैं तब सीएम तो था, लेकिन मैं देश की मुख्य विपक्षी पार्टी का एक सदस्य भी था और संभवतः तब लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि मैं तब की केंद्र सरकार पर लंबे चौड़े अटैक करूंगा, आरोपों की झड़ी लगा दूंगा। लेकिन साथियों, विपक्ष में होने के बाद भी तत्कालीन सरकार का आलोचक होने के बावजूद मैंने इस मंच का वो उपयोग नहीं किया था। मैंने एक विजन रखा, सकारात्मक बातें कही। मैंने तब जो कुछ भी कहा वो मेरा कन्विक्शन था।

मैं उन बातों को, उन सपनों को हमेशा से जीता आया, उस रास्ते पर ही चलता रहा। देश के लिए जी जान से जुटना, देश के लिए जीने का जज्बा जो मेरे भीतर का भाव विश्व है, वो उस दिन 2013 में इसी मंच से मेरा वो भाव विश्व शब्दों की माला में एक एक करके प्रकट होता चला गया था। और मैं देर तक बोला था, फिर मैंने स्टूडेंट से पूछा कि मैं कंटिन्यू करूं, तो उन्होंने जोर से कहा हाँ कंटिन्यू कीजिए। साथियों, मैंने उस दिन पानी के ग्लास का एक उदाहरण दिया था और देश में उसकी खूब चर्चा भी हुई थी। मैंने बताया था कि पानी से आधे भरे ग्लास को देखने के तीन नजरिए क्या होते हैं। एक, जिनको ग्लास पानी से आधा भरा दिखता है। दूसरा, जिनको ग्लास आधा खाली दिखता है। और तीसरा, जिनको ग्लास पूरा भरा हुआ दिखता है। आधा पानी और आधा हवा से भरा। साथियों, ये वो समय था जब देश निराशा के दल दल में धंसा हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि मैं ग्लास को आधा नहीं देखता, अधूरा नहीं देखता, मैं ग्लास को पूरा भरा हुआ देखता हूं। आधा पानी से, आधा हवा से। और उस समय आप सब तो स्कूल में रहे होंगे, लेकिन आज इंटरनेट पर जाकर के 2023 और 2013 और उसके आसपास की खबरें अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज आएगा तब सिचुएशन क्या थी। और मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, नौजवानों से, कि जरा 2013 के उस कालखंड की तरफ इंटरनेट पर जाकर के नजर करिए। 2013 में मेरे उस भाषण के आसपास के कालखंड की उस समय जो हेडलाइंस हुआ करती थी, अखबारों की हो या टीवी चैनल्स की हो, मैं जरा आज उस हेडलाइंस में क्या क्या था उसकी एक झलक आपको दिखाना चाहता हूं। अब एक गैंग है जो क्या करेगी, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे खाते में डाल देगी। और इसमें पहले से आगाह करता हूं कि मैं जो बातें बता रहा हूं 2013 के उस कालखंड में मीडिया में क्या छाया रहता था। जैसे एलओसी पर भारतीय सैनिकों की हत्या, अभी इस पीढ़ी को जरा अजूबा लगता होगा, ऐसा भी होता था? होता था। वर्ल्ड बैंक ने जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाया, करंट अकाउंट डेफिसिट ऑल टाइम हाई, महंगाई दर करीब 10% पर, इंडस्ट्रियल सेक्टर मंदी की चपेट में,
हेलीकॉप्टर सौदे में घुसखोरी का पर्दाफाश, हैदराबाद में बम धमाके, ये सारी उस समय की हेडलाइन थी। मैं पक्का मानता हूं ये जो हमारे आज जो विद्यार्थी हैं उनको इन सारी बातों का पता नहीं होगा। ये सारी बातें बताती हैं कि तब देश की क्या हालत थी। ग्रोथ फर्श पर थी और महंगाई अर्श पर थी, घोटाले चरम पर थे और भ्रष्टाचारी बेखौफ घूमते थे, अर्थव्यवस्था बेहाल थी, चारों तरफ पॉलिसी पैरालिसिस की ही चर्चा थी। दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव में गिन रही थी, आतंकी बेलगाम थे और पाकिस्तान बेकाबू था। यानी तब निराशा और हताशा के अलावा कुछ नहीं था। साथियों, एक वो दिन था जब हर मोर्चे पर देश में स्ट्रगल ही स्ट्रगल था, और एक आज का दिन है। आज आतंकवाद फैलाने वाले पस्त पड़े हैं, पाकिस्तान कोई नापाक हरकत करता है तो भारत की सेनाएं घर में घुसकर मारती है। जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक शांति बड़ी है, माओवादी आतंक नक्सलवाद की कमर तोड़ दी गई है। जो दुनिया तब भारत में पॉलिसी पैरालिसिस से चिंतित थी, वो दुनिया आज भारत के पॉलिसी डायनामिज्म की चर्चा कर रही है। तब दुनिया भारत को फ्रेजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है, और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। और साथियों, ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है, जब ट्रेड से जुड़ी कई तरह की अड़चनें रही हैं। उस समय ऐसी ग्रोथ हासिल करना ये अपने आप में भारत के सामर्थ्य को दिखाता है। साथियों, मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, जो लोग भारत को फ्रेजाइल फाइव में धकेलने के लिए बदनाम रहे हैं उनको ये आंकड़े हजम नहीं हो रहे। लेकिन आप सभी आंकड़ों को गंभीरता से समझते हैं। अप्रैल से जून के बीच बिजली उत्पादन 9

50% बढ़ा, गाड़ियों की सेल में 20% से अधिक की वृद्धि हुई, इसमें भी टू व्हीलर में 20% और थ्री व्हीलर की बिक्री में करीब करीब 30% ग्रोथ रही है। यानी कंज्यूमर डिमांड भी चल रही है और कॉमर्शियल एक्टिविटी भी तगड़ी हो रही है। स्टील और सीमेंट कंजम्पशन की ग्रोथ में 8% की वृद्धि हुई है, यानी कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, ये सब बढ़ रहा है। यानी भारत ग्रो भी कर रहा है और रोजगार के नए अवसर भी बना रहा है। बावजूद इसके, जिन लोगों के लिए साल 2013 में ग्लास आधा खाली था, उनकी सोच आज भी वैसी ही है। उनके लिए ग्लास हमेशा आधा खाली रहेगा। मैं ग्लास की बात करता हूं, और कुछ खाली रहने की बात नहीं कर रहा हूं। साथियों, 2013 में यहां एसआरसीसी में बात करते हुए मैंने P2G2 यानी प्रो पीपल गुड गवर्नेंस की भी चर्चा की थी, जिन्होंने लंबे समय तक देश में सरकारें चलाई हैं। उनका एक स्टाइल था, जब आग लगे तभी नींद से जागो, जब सूखा पड़े तब जाकर कुआं खोदो। मैंने इसी अप्रोच को बदलने की बात कही थी और 2014 में सरकार बनने के बाद हमने ये करके दिखाया। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं साथियों। हाल में ही जनधन योजना को 12 साल पूरे हुए हैं। आज आप फिनटेक के अलग ही दौर में जी रहे हैं, लेकिन 2013 के वो दिन भी थे जब गांव या छोटे शहरों के स्टूडेंट्स को सेविंग बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए भी कई पापड़ बेलने पड़ते थे। उस समय हमारी आबादी 125 करोड़ के पार थी, लेकिन मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे, और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे, महिलाएं थी, माइग्रेंट लेबर थे, स्टूडेंट थे। इसलिए हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यही भारत की फिनटेक क्रांति का आधार बना है। साथियों, अब आप उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो करोड़ों लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने का भी विरोध कर रहे थे। दरअसल ऐसे लोगों को आधे भरे ग्लास में ही मजा आता है, ताकि देश के गरीब सामान्य नागरिक उनके आगे पीछे घूमते रहे। यही माई बाप कल्चर ये दशकों से चला रहे, लेकिन ये मोदी है, माई बाप कल्चर पसंद करने वालों के सामने वो चट्टान की तरह खड़ा है।
साथियों, पुरानी कहावत है सांच को आंच नहीं, मुझमें हिम्मत है इसलिए मैं उस दिन कही बातों को याद करा रहा हूं। अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आया हूं आपके पास। मैं जानता हूं सच की हुंकार के आगे झूठ की गुंज टिक नहीं सकेगी। साथियों, 2013 के उसी कार्यक्रम में जब मैंने कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर काम करना है, तो पुराने उस समय के इकोसिस्टम के लोगों को ये समझ नहीं आया था। उनको लगता था कि निराशा के उस दौर में मेड इन इंडिया संभव ही नहीं होगा। और उस सोच में पले बड़े लोग आज भी मेड इन इंडिया का मजाक करते हैं। लेकिन साथियों, आज आप मेक इन इंडिया की ब्रांड वैल्यू देख रहे हैं। आपसे मैं एक उदाहरण के साथ बात बताना चाहता हूं। आज हर हाथ में स्मार्टफोन है। दुनिया के बड़े से बड़े फोन ब्रांड आज भारत को अपना बेस बना रहे हैं। मेड इन इंडिया स्मार्टफोन दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है। 2014 में भारत अपने ज्यादातर मोबाइल फोन इंपोर्ट करता था। आज भारत 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल एक्सपोर्ट करता है। साथियों, मैं छोटे और आसान लक्ष्य लेकर चलने वाला व्यक्ति नहीं हूं। मैं देश के लिए बड़े लक्ष्य रखता हूं और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देता हूं। अब डिफेंस सेक्टर देखिए, पहले भारत की सेनाओं के लिए ज्यादातर चीजें बाहर से खरीदी जाती थी। मैंने आते ही डिफेंस वालों को कहा नेगेटिव लिस्ट बनाइए। पहले उन्होंने 500 नेगेटिव लिस्ट बनाई, बोले ये हम बाहर से नहीं लाएंगे। फिर 1000 बताई, फिर 3000 बनाई। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कई बार छोटे से किसी इक्विपमेंट के लिए भी महीनों इंतजार करना पड़ता। हमने देश की सेनाओं के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, चीजों की लिस्ट बनाई, फिर भारतीय कंपनियों को कहा कि ये सब बनाओ। और आज आप देखिए, देश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अपने ऑल टाइम हाई पर है। आज भारत करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहा है। 2013-14 में हम 600-700 करोड़ रुपए का डिफेंस एक्सपोर्ट करते थे। आज ये आंकड़ा करीब करीब 40,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। और ये अचीवमेंट इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आज देश में एक वाइब्रेंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बन रहा है। साथियों, मुझे देश पर भरोसा है, देश के सामर्थ्य पर भरोसा है, आप सब युवाओं पर मेरा भरोसा है। और इसी भरोसे के आधार पर मैं विकसित भारत की बात भी कहता हूं। मुझे विश्वास है हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भी बनाएंगे, आत्मनिर्भर भी बनाएंगे।

आने वाले समय में भारत मैन्युफैक्चरिंग का हब होगा। आने वाले समय में रिसर्च एंड इनोवेशन का हब हिंदुस्तान होगा। भारत एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की सुपर पावर होगा। मेरे नौजवान दोस्तों, भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा और वो दिन भी आप देख के गए। जब भारत एक दिन ऐसे ओलंपिक्स का आयोजन करेगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। और ये केवल बातें नहीं है, ये हमारे संकल्प है। और इन संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए देश में लगातार काम हो रहा है। साथियों, अभी तो आपकी जिंदगी एसआरसीसी मोड में चल रही है। को ऑप में चाय हो, या कोल्ड कॉफी पर होने वाली डिस्कशन हो, एग्जाम में लास्ट मिनट नोट्स और प्रिंट आउट के लिए भागदौड़ करना, या फिर क्रॉसरोड्स और बिजनेस क्रॉन के ऊपर भी कई मेहनत है। आप सब ने यहां के हर मोमेंट को अपने जीवन की एक मेमोरी बनाया है। लेकिन इस कैंपस के बाहर एक नई दुनिया आपको मिलेगी। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो पॉजिटिव तरीके से समाज की शक्ति को राष्ट्र की शक्ति में बदलते हैं। दूसरी प्रजाति उन लोगों की है जो कोई भी काम शुरू होने पर नाराज फूफा बन जाते हैं। उनका फेवरेट काम होता है हर काम का विरोध करना। इनका एक ही डायलॉग होता है, इसकी क्या जरूरत है। इसकी क्या जरूरत है, ये हर फूफा पर एक परमानेंट डायलॉग होता है। जब हम दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बना रहे थे तो फूफा जी ने कमर कस ली, कहा इसकी जरूरत ही क्या है। हमने हाई स्पीड ट्रेन पर काम शुरू किया तो फूफा जी फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हम यूपीआई लेकर आए तो यही फूफा लोगों को कहते थे वाह यूपीआई, यूपीआई की जरूरत ही क्या है। हमने चिप बनाने की बात की तो फिर कहा गया जरूरत ही क्या है। हमने नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई तो ये फिर बोले इसकी जरूरत ही क्या है। हमने देश के लिए मरने मिटने वाले सर्वश्रेष्ठ बलिदान देने वाले हमारे वीर सेना नायकों का मेमोरियल बनाया, फूफा फिर मैदान में आ गए इसकी क्या जरूरत थी। लेकिन भारत ने ऐसे सारे फूफाओं को जवाब दिया। जो देश के लिए जरूरी है वो भारत को करने से कोई रोक नहीं सकता। साथियों, आज भारत एक अलग मिजाज के साथ आगे बढ़ रहा है।

जो काम पहले दशकों में होता था अब वो कुछ वर्षों में ही हो रहा है। मैं पूरे फैक्ट के साथ एक और उदाहरण दूंगा। भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी, आपकी कॉलेज 1926 में शुरू हुई, इलेक्ट्रिक ट्रेन 1925 में चली थी। 1925 में चली थी ये ट्रेन। इसके बाद 2014 तक यानी 90 साल में सिर्फ 30% से भी कम काम हुआ। 30% से भी कम रेलवे लाइनों का इलेक्ट्रिफिकेशन हो पाया था। हमने सिर्फ 12 साल में रेलवे लाइनों का करीब करीब 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करके दिखा दिया। साथियों, भारत की नीति निर्णयों में आई ये गति दुनिया के बाकी देश भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए वो भारत के साथ अपनी पार्टनरशिप बढ़ा रहे हैं। बीते दशक में करीब 40 देशों के साथ व्यापार समझौते हुए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुए हैं। इसे लेदर हो, टेक्सटाइल हो, फ्रूट हो, वेजिटेबल हो, हमारा प्रोसेस्ड फूड हो, श्रिम्प हो, ऐसी हर चीज के लिए नए नए बाजार खुल रहे हैं। आपसे बेहतर कौन जानता है कि जब नए बाजार खुलते हैं, भारत के गुड्स और सर्विसेज के लिए टैरिफ कम होते हैं तो उसका मतलब क्या होता है। ये भारत के नौजवानों के लिए अवसरों का नया आसमान बन रहा है। साथियों, आज 2013 के मुकाबले देश आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कहीं अधिक सुरक्षित है, लेकिन ये देखकर कुछ लोगों की छटपटाहट बढ़ रही है, बौखलाहट बढ़ रही है। अभी 15 अगस्त का मेरा भाषण आपने सुना होगा। ऐसे लोगों के लिए मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी का डोज दिया था। होम्योपैथी की गोली, छोटी सी गोली दी थी लाल किले से। और आप जानते हैं, होम्योपैथी के कहते हैं कि स्वभाव ऐसा है कि होम्योपैथी की दवाई जब शुरू करते हैं तो शुरू के दौर में बीमारी एकदम से ज्यादा बढ़ जाती है। ये होम्योपैथी का स्वभाव है। तो मैंने लाल किले से एक होम्योपैथी की गोली दी थी दिमागी नक्सल। ये दिमागी नक्सल होम्योपैथी का इलाज, जैसा मैंने कहा, बीमारी को कुछ समय के लिए और उभार देता है, और उसके बाद उसका इलाज शुरू करता है। इसी तरह जैसे ही मैंने दिमागी नक्सल वाली होम्योपैथी की गोली दी, सारे दिमागी नक्सल निकल निकल के बाहर आने लगे। और जो इस बीमारी को बढ़ावा दे रहे हैं, अब जनता उनका भी असली रंग देख रही है। साथियों, मैंने इतनी सारी बातें बताई, कुछ लोगों को लग सकता है और ये क्या है भाई, 140 करोड़ का देश है, बहुत आसान था, मोदी ने क्या नया किया। लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान था? मैं आपको फिर एक बार पुराने दिनों में ले जाना चाहता हूं।

याद कीजिए, आप जब स्कूल में पढ़ते होंगे, 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी तो पूरी सरकार हिल गई थी। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। 2008 में बैंकों का संकट आया था तो तब की सरकार ने 2000 तक उस संकट के पीछे छुपने की कोशिश की थी, हाथ तक लगाने की हिम्मत नहीं की। भारत का पूरा बैंकिंग सिस्टम तबाह होने की कगार पर पहुंचा दिया गया था। 2008 में ही मुंबई में भयंकर आतंकी हमला हुआ था तो तब की सरकार पर बाहर से दबाव पड़ा और उसने पाकिस्तान को सबक सिखाने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। साथियों, पिछले 12 वर्षों में तो देश में कई सारी आपदाएं आई, इतने बड़े बड़े साइक्लोन हमने झेले हैं, लेकिन देश ने बहुत मजबूती से उनका सामना किया। पिछले 6 वर्षों में तो बहुत बड़े संकट आए, पहले कोरोना जैसी महामारी आई जिसने पूरी दुनिया को ठप कर दिया, फिर रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ गया, उसके बाद ट्रेड को, सप्लाई चेन को ही वेपनाइज करने का दौर शुरू हो गया, फिर वेस्ट एशिया का ये संकट आया। हर बार ये कहा गया कि अब तो भारत नहीं बचेगा, और जो मेरे ज्यादा ही प्रशंसक है वो ये सोचकर खुश थे कि अब तो मोदी फंसा, अब तो मोदी गिरा, अब तो उसे कुचल ही देंगे। लेकिन मेरे देश के लोगों के आशीर्वाद में इतना दम है, इतना दम है कि भारत का बुरा चाहने वालों की हर हसरत धरी की धरी रह जा रही है। दोस्तों, अब 21वीं सदी में नए अवसरों की दुनिया हमारे सामने है। मुझे खुशी है कि आप एम्बिशियस हैं, क्योंकि एम्बिशन किसी टेक्स्ट बुक से नहीं सिखाई जा सकती। एम्बिशंस उस माहौल से आती हैं जो आपके बड़े सपने देखने के लिए आपको प्रेरित करती है। आज हमारा नौजवान साथी कहता है कि अपना कुछ काम करूंगा, तो स्टार्टअप करूंगा, कंपनी बनाऊंगा तो यूनिकॉर्न बनाऊंगा, स्पेस और ड्रोन जैसे सेक्टर से जुड़ूंगा, कुछ बड़ा करूंगा, कटिंग एज एआई सॉल्यूशन बनाऊंगा, खेती में इनोवेशन करूंगा। 13 साल पहले आपके सीनियर ऐसे सपने नहीं देख पाते थे, लेकिन आज आप ये सपने भी देख रहे हैं, क्योंकि आज के भारत में उन सपनों को सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम भी बन गया है। साथियों, अब समय बड़े लक्ष्य बनाने और उन्हें प्राप्त करने का है। अभी मैंने लाल किले से कुछ बातें कही थी, मैं आपके बीच भी उन्हें दोहराना चाहूंगा। आप संकल्प लीजिए, भारत की ग्लोबल कंसल्टिंग फर्म्स क्यों नहीं हो सकती, हमारी अकाउंटिंग फर्म, हमारी लीगल फर्म, हमारी फाइनेंशियल फर्म, ये सब ग्लोबल लीडर्स क्यों नहीं बन सकती। हम गर्व से कहते हैं कि आज भारतीय
दुनिया की टॉप कंपनीज को लीड कर रहे हैं। अगर भारतीय दुनिया की टॉप कंपनियों को लीड कर रहे हैं तो भारतीयों की बनाई कंपनियां दुनिया को क्यों लीड ना करें। साथियों, ये सब संभव है। इसके लिए आपके पास नेटवर्क भी है और नॉलेज भी है। साथियों, हमारी आपकी प्रेरणा एसआरसीसी का ये कॉलेज क्रेस्ट भी है। इसमें दो सुंदर प्रतीक है, एक है उगता हुआ सूरज और दूसरा है समंदर में आगे बढ़ता हुआ जहाज। सूरज जो दिशा दिखाता है और जहाज जो दिशा में आगे बढ़ता है। हमें ऐसे नए रास्ते पर चलना है जिसमें सूरज हमारा हो, समंदर भी हमारा हो, नाव हमारी हो, नाविक भी हमारा हो, लहरों पर विजय लिखे वो हौसला हमारा हो, उड़ान हमारी हो, आसमान हमारा हो, तेज हवाओं से टकराएं वो जज्बा हमारा हो, सपना हमारा हो, संकल्प हमारा हो, आत्मनिर्भर भारत का परचम हमारा हो, विकसित भारत की राह में, विकसित भारत की राह में तेजी से उठता हर कदम हमारा हो। एक बार फिर इस विशेष अवसर पर एसआरसी से जुड़े सभी लोगों को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। वंदे मातरम।

श्रोताओं, अभी आप दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संबोधन सुन रहे थे।

0: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। 8:45 होने को हैं। अब से कुछ क्षणों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की जीडीपी वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। महाराष्ट्र के मेलशेत और पेंच बाघ अभयारण्य गिद्धों के लिए सबसे सफल पुनर्वास स्थल बना। उत्तरी उत्तर पूर्वी राज्यों, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, बिहार, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में सोमवार तक तेज बारिश के आसार। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की 7.8% की तिमाही वृद्धि आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत अवरोध से नीतिगत गतिशीलता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि SRCC ने वर्षों से छात्रों की कई पीढ़ियों को सीखने, आगे बढ़ने और समाज में बदलाव लाने का अवसर दिया है।
2: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का हो

0: जाता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में एसआरसीसी ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 14 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे। इससे पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने अपने भाषण में एसआरसीसी द्वारा वर्षों से उच्च स्तर बनाए रखने की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उन्होंने कहा कि वैश्विक बाजार में कुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता है। केंद्रीय मंत्री ने इसे युवा आबादी के लिए एक अवसर बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली मेट्रो से गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि शिक्षकों को सर्वोच्च सम्मान दिया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत को सीखने और नेतृत्व करने में मदद करते हैं। शिक्षक दिवस पर आज एक लेख साझा करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करना, उनकी जिज्ञासा को जगाना, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना और उनकी तर्क शक्ति तथा निर्णय क्षमता को निखारना शिक्षण के सबसे उपयोगी और फलदायी आयामों में से है। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रेरणा दायक शिक्षा से ही उद्यमियों, वैज्ञानिकों और रचनात्मक कलाकारों की पीढ़ियां तैयार की जा सकती हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉप आउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है।
2: हमारे संविधान में निहित अवसर की समानता के आदर्शों को कार्य रूप देने का सबसे प्रभावी माध्यम शिक्षा है। हमारे देश में प्राइमरी स्कूल ड्रॉप आउट रेट 12 वर्ष पहले लगभग 4.5% था। अब ये ड्रॉप आउट रेट नहीं के बराबर है। ये उपलब्धि शिक्षकों के प्रयासों से संभव हो सकी है। इस राष्ट्रीय सफलता के लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि भारत को विश्व की कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करना और साथ ही ज्ञान शक्ति बनना देश की प्राथमिकता है।
2: चुने गए सुयोग्यों प्रशिक्षकों के योगदान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दी गई है। देश के विकास में एकेडमिक एक्सेलेंस, स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत अधिक महत्व है। भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने के साथ साथ स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में स्थापित करना हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकता में से शामिल है।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं के अधिकारों और शिक्षा को आगे बढ़ाने में सावित्रीबाई फुले की महत्वपूर्ण भूमिका को भी याद कर उन्हें नमन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्कूली शिक्षा को शिक्षा प्रणाली का आधार बताया।
2: ज्ञान और कौशल तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु बचपन में ही सदाचार की शिक्षा देना अधिक प्रभावी सिद्ध होता है। आरंभिक कक्षा में बच्चों के बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक विकास पर निष्ठापूर्वक ध्यान देकर हमारे शिक्षक अच्छे विद्यार्थियों और कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों की भावी पीढ़ियां तैयार करते हैं।
1: राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षकों का ये दायित्व है कि वे कुछ विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों में आत्मविश्वास जगाएं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं, उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
1: समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कानून, न्याय और विधिक शिक्षा पर मासिक व्याख्यान श्रृंखला शुरू करने की घोषणा की। ये व्याख्यान श्रृंखला कानून, न्याय और समाज से संबंधित महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दों पर संवाद और विचारों के आदान प्रदान के लिए नियमित मंच प्रदान करेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिले में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने आज बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के स्याफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। 26 अगस्त को नेपाल तिब्बत सीमा के पास हिमस्खलन के कारण अचानक बाढ़ आई। इस आपदा ने उत्तरी और मध्य नेपाल में व्यापक तबाही मचाई जिससे घर, सड़कें, पुल और जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हुई। इस बीच विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या बढ़कर 1344 हो गई है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने आज स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधि मंडलों को संबोधित किया। एक रिपोर्ट।
6: न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने उचित न्याय सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने याद दिलाया कि नालंदा विश्वविद्यालय एक समय में सबसे प्रतिष्ठित शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था, जहां विश्व भर के विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को बिना किसी भेदभाव या बाधा के प्रवेश दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीवंत नालंदा विश्वविद्यालय के रूप में जाना जाना चाहिए। मध्यस्थता पर एक सत्र के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मध्यस्थता संस्थानों के बीच सहयोग को मजबूत करने, पेशेवर प्रशिक्षण, बहुभाषी क्षमता और न्यायाधीशों, मध्यस्थों, वकीलों और व्यवसायों के बीच संवाद को बढ़ावा देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मध्यस्थता को मजबूत किया जाना चाहिए ताकि संवाद कायम रह सके, व्यापार जारी रह सके और ब्रिक्स के सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ सके। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि भारत शिलालेखों और समुद्री व्यापार से लेकर गणित तक अपनी विरासत का अध्ययन करने और उसे दोबारा प्राप्त करने में पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरा हुआ है। नई दिल्ली में वार्षिक इतिहास पुरस्कार समारोह और डॉ एसएल भैरप्पा स्मृति व्याख्यान में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत अब आत्मनिर्भर है।
7: इंडिया टुडे इज सेल्फ अश्योर्ड।
8: हमने इस मामले में किसी और की अनुमति का इंतजार करना छोड़ दिया है और अब हम अपनी विरासत का अध्ययन खुद कर रहे हैं। हम शिलालेखों को पढ़ रहे हैं, अपने समुद्री व्यापार के इतिहास को समझ रहे हैं और गणित के जरिए कहानियों को पूरी प्रसन्नता और सटीकता के साथ सामने ला रहे हैं।
7: टेलिंग दीज स्टोरीज विद रियल प्लेजर।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
9: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 10 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें।

0: करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
1: ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र के मेलघाट और पेंच बाघ अभयारण्य बंदी प्रजनित गिद्धों के पुनर्वास के लिए भारत के सबसे सफल स्थलों के रूप में उभरे हैं, जहां जीवित रहने की उत्साहजनक दर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उधर बिहार के कई हिस्सों में बाढ़ के कारण जनजीवन प्रभावित है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने आज सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को 21-16, 18-21, 21-11 से हरा दिया। और महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पाकिस्तान ने 13 ओवर में 7 विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोहराया, वैश्विक अनिश्चितता के बीच 7.8% की GDP वृद्धि भारत की आर्थिक शक्ति को दर्शाती है। उन्होंने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के विद्यार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भावी पीढ़ी के उद्यमियों और वैज्ञानिकों में स्वतंत्र सोच को प्रोत्साहित करने में शिक्षकों की भूमिका पर बल दिया। नेपाल में अचानक आई बाढ़ से प्रभावित जल विद्युत परियोजना की सुरंगों में फंसे लोगों को बचाने के लिए भारत और नेपाल का संयुक्त अभियान जारी। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength. Addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropowered project tunnels in Nepal hit by flash floods. Melghat and Pench Tiger reserves in Maharashtra emerge as most successful reintroduction sites for vultures. Heavy rainfall forecast in northern, northeastern states, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, East Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh till Monday. And in China Masters Badminton, Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty enter the men's doubles final. Prime Minister Narendra Modi today said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy.
3: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनने से हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
2: द प्राइम मिनिस्टर सेड एसआरसीसी हैज गिवन जनरेशंस ऑफ स्टूडेंट्स द अपॉर्चुनिटी टू लर्न ग्रो एंड मेक अ डिफरेंस ओवर द इयर्स। मिस्टर मोदी सेड द कॉलेज हैज डिस्टिंग्विश्ड इटसेल्फ ओवर द इयर्स मेकिंग अ मार्क फॉर

0: East Rajasthan, Delhi, and Madhya Pradesh till Monday. Thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely over Jammu and Kashmir, Ladakh, Rajasthan, West Bengal, interior Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, and the Andaman and Nicobar Islands for the next 2 days. Floods continue to affect normal life in several parts of Bihar. The administration has intensified relief and rescue operations on a war footing to assist the affected people. More in this report.
1: The Ganga, Gandak, Kosi, Buhi Gandak, Punpun and Ghagra rivers are flowing above the danger mark at various locations. In Patna, the water level of the Ganga at Gandhi Ghat, Banka Ghat and Pandarak is flowing above the highest flood level. In Saran district, a 20-meter stretch of an embankment near Trilokchak along the Mahi River has been damaged. According to the Disaster Management Department, around 10 lakh people in 201 panchayats across 50 blocks in 11 districts have been affected by the floods. Meanwhile, 50 medical camps, 19 boat ambulances, 900 boats and 36 veterinary camps are being operated in the affected areas to ensure access to healthcare and safe transportation.
0: In badminton, India's Sattvik Sairaj, Ranki Reddy and Chirag Shetty continued their impressive performance at the China Masters today as they reached the men's doubles final. Now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi reiterates 7.8% GDP growth amid global uncertainty reflects India's economic strength, addresses SRCC students in New Delhi. President Draupadi Murmu stresses teachers' role in nurturing independent thinkers to create future entrepreneurs and scientists. India and Nepal continue joint operation to rescue people trapped inside hydropower project tunnels in Nepal hit by flash floods. That is all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ये बात दोहराई है कि आलमी गैर यकीनी की कैफियत के तनाजुर में जीडीपी की 7.8% की शरह तरक्की से भारत की इक्तसादी कुव्वत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में एसआरसीसी के तलबा से खिताब किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद और साइंसदान तैयार करने के लिए आजाद तर्ज फिक्र अख्तियार करने वालों में असातिज़ा के रोल को उजागर किया है। भारत और नेपाल अचानक सैलाब से मुतासिरा नेपाल में पनबिजली प्रोजेक्ट टनल्स के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व गिद्धों के लिए सबसे कामयाब महफूज मकामात के तौर पर उभरे हैं। शिमाल मशरकी रियासतों बिहार और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि आलमी गैर यकीनी की कैफियत के तनाजुर में जीडीपी की 7.8% की शरह तरक्की से भारत की इक्तसादी कुव्वत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी की 100 साला तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि भारत तवील सफर तय करते हुए पॉलिसी ठप पड़ जाने के दौर से बाहर निकलकर मुतहर्रिक और वलवला अंगेज पॉलिसी के दौर में दाखिल हो चुका है। जनाब मोदी ने कहा कि दुनिया ये देख रही है कि भारत सबसे तेज रफ्तार तरक्की करने वाली बड़ी मईशत बन गया है।
3: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। अभी हफ्ते भर में ही भारत की इकोनॉमी को लेकर कई सारी पॉजिटिव खबरें आई। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
2: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC ने नस्ल दर नस्ल तलबा को सीखने, संवरने और अपनी पहचान बनाने

0: का मौका दिया है। जनाब मोदी ने कहा कि इस कॉलेज ने तालीमी कारकर्दगी में शानदार मिसाल पेश करके अपनी एक मुमताज पहचान बनाई है। उन्होंने SRCC के साबिक तलबा को बहुत खास और द ओजीज करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि साबिक वज़ीर ख़ज़ाना अरुण जेटली भी SRCC के एक तालिब इल्म थे। जनाब मोदी ने कहा कि SRCC के साबिक तलबा ने आर्ट से लेकर सियासत तक हर शोबे में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ भारतीय मिलकर भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाएंगे।
1: जब कोई इंसान 100 वर्ष जीता है तो उसे अनुभवों का सागर माना जाता है, और जब कोई संस्थान 100 वर्ष का होता है तो वो उपलब्धियों और प्रेरणाओं का महासागर हो जाता है। अपनी 100 वर्षों की इस यात्रा में SRCC ने पीढ़ियों को गढ़ा है, उन्हें उज्जवल भविष्य से जोड़ा है। जो आए उन्होंने पढ़ा और जो निकले वो गढ़े हुए निकले।
0: उधर तालीम के वजीर प्रहलाद जोशी ने अपनी तकरीर में आला मेयार बरकरार रखने पर SRCC की सताइश की। उन्होंने कहा कि आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इको निजाम बन गया है। वजीर आजम मोदी ने कॉलेज के 100 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत के लिए SRCC जाते हुए दिल्ली मेट्रो में सफर किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने जोर देकर कहा है कि असातजा की पूरी इज्जत और एहतराम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि असातजा सीखने और सिखाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। आज यौम असातजा के मौके पर एक मजमून में सदर जमहूरिया ने कहा कि तलबा में आज़ाद अंदाज फिक्र की हौसला अफजाई और उनके तजस्सुस को कुव्वत बख्शने, सवाल पूछने के रुझान को बढ़ावा देने और बहस मुबाहसे और फैसला करने की उनकी सलाहियत को संवारना तदरीस के सबसे मुफीद और समरावर पहलुओं में शामिल हैं। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि इस तरह की बाईसे तरगीब तालीम के जरिए ही कारोबारी अफराद, साइंसदान और तख्लीकी फनकार तैयार हो सकते हैं। इससे कबल सदर जमहूरिया ने कहा कि म्यारी तालीम के जरिए ही विकसित भारत मुमकिन हो सकेगा। यौम असातजा के मौके पर नई दिल्ली में टीचर्स को अवार्ड दिए जाने की कौमी तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि जो मौशरा अपने असातजा का एहतराम करता है वो सही मायने में एक तरक्की पसंद मौशरा है। सदर जमहूरिया ने इस बात को उजागर किया कि बहुत से तलबा इक्तसादी एतबार से कमजोर कुनबों से आते हैं, जो नए सीखने वाले होते हैं या जो गांव के मामूली स्कूल से बड़े शहर के स्कूलों में आते हैं। उन्होंने कहा कि असातजा की यह खसूसी जिम्मेदारी है कि वह इन तलबा में एतमाद पैदा करें और इस तरह के सभी तलबा की हौसला अफजाई करें जो किसी भी वजह से एहसास कमतरी में मुब्तला हैं।
2: कुछ विद्यार्थी गांव के किसी सामान्य स्कूल से शहर के बड़े स्कूल में आते हैं और थोड़ा असहज हो जाते हैं। कुछ विद्यार्थी स्वभाव से ही संकुची होते हैं। कुछ विद्यार्थी में बहुत प्रतिभा होती है लेकिन उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारण से कोई भी कमी महसूस करते हैं उनमें आत्मविश्वास जगाना और उन्हें आगे बढ़ाना शिक्षकों का विशेष दायित्व होना चाहिए।
0: भारत और नेपाल की बचाव टीमें चिली में सुरंग में बचाव मिशन जारी रखे हुए हैं और सुरंग के अंदर से भारी मलबा, पानी और कीचड़ निकाल रही हैं। नेपाल में भारतीय सफीर नवीन श्रीवास्तव ने आज कहा कि सियाफ्रूबेसी के नजदीक सुरंग तक रसाई के लिए एक सड़क बनाने का काम भी जारी है ताकि बचाव कार्रवाई में सहूलत पैदा हो सके। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब श्रीवास्तव ने कहा कि दुश्वार गुजार और तंगवादी का इलाका होने की वजह से बड़े हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। इस मुश्तरका कोशिश से भारतीय माहिरीन और नेपाली दिफाई अफवाज के दरमियान सरहद के आर पार कुदरती आफत की सूरत में मदद और तकनीकी इश्तराक उजागर होता है। इस दौरान नेपाल में अचानक तबाहकुन सैलाब में हलाक होने वालों की तादाद बढ़कर 1,344 हो गई है। 8 मुतासर अजला में बचाव कार्रवाइयां जारी हैं जबकि तकरीबन 5,000 अफराद अब भी लापता हैं। 13,000 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया जा चुका है। बिहार के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से बदस्तूर मामूलात जिंदगी मुतासिर हैं। दरियाए गंगा और दीगर अहम दरिया मुख्तलिफ मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। इंतजामिया मुतासिर अफराद की मदद के लिए जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का रवैया अंजाम दे रही है। पेश एक रिपोर्ट।
3: गंगा, गंधक, कोसी, बूढ़ी गंधक, पुनपुन और घाघरा दरिया मुख्तलिफ मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। गांधी घाट, बांका घाट और पंडारक में दरियाए गंगा सैलाब की सबसे ऊंची सतह पर बह रहा है। सारण जिले में त्रिलोचक के नजदीक

0: ही दरिया पर 20 मीटर के हिस्से को नुकसान पहुंचा है। इस मकाम पर SDRF की टीम तैनात कर दी गई है। कुदरती आफत के बंदोबस्त के महकमे के मुताबिक 11 अजला में 50 ब्लॉक की 201 पंचायतों में तकरीबन 10 लाख लोग सैलाब से मुतासर हैं। सैलाब से मुतासर अफराद को मदद फराहम करने के लिए कम्युनिटी किचन के जरिए अब तक 1,20,000 से ज्यादा अफराद को खाना फराहम किया गया है। इस दौरान मुतासर इलाकों में 50 मेडिकल कैंप, 19 बोट एम्बुलेंसेस, 900 किश्तियां और मवेशियों के लिए 36 कैंप सरगर्म हैं ताकि सेहत की देखभाल तक रसाई और महफूज नकल हमल को यकीनी बनाया जा सके। पटना से सविता पारिक की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस सूर्यकांत ने बामायने इख्तलाफ राय और बहस मुबाहिसे के कल्चर की अहमियत पर जोर दिया है। नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के चीफ जस्टिस साहिबान के फोरम के हिस्से के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत ने ब्रिक्स के मेंबर मुल्कों और साझेदार मुल्कों के वफूद से खिताब किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि इंसाफ की बरवक्त और मुनासिब फराहमी जरूरी है। जस्टिस सूर्यकांत ने यह याद दिलाया कि नालंदा यूनिवर्सिटी किस तरह सबसे मुमताज तालीमी मरकज हुआ करता था, जहां दुनिया भर के तलबा और तहकीकारों को किसी तरह की तफरीक या बंदिशों के बगैर दाखिला मिल जाया करता था। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स को भी जीती जागती नालंदा यूनिवर्सिटी के तौर पर जाना जाना चाहिए। सेहत और खानदानी बहबूद की वजीर मुमलिकत अनुप्रिया पटेल ने आज कहा है कि जहनी सेहत मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती का एक लाजमी हिस्सा है और इसका जिंदगी में कारकर्दगी और क्वालिटी से करीबी ताल्लुक है। नई दिल्ली में एक न्यूज मैगजीन की जानिब से मुनक़िदा जहनी सेहत से मुतालिक नौजवान भारत कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नौजवान और बालिग अफराद भारत की आबादी का एक चौथाई हिस्सा है और उनकी अच्छी सेहत मुस्तकबिल में मुल्क की तरक्की की समत तय करेगी। मोहतरमा पटेल ने इस बात को उजागर किया कि इस आबादी में तेजी से बढ़ती हुई जहनी बीमारी तश्वीशनाक बात है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस चैलेंज से निमटने के लिए जहनी सेहत से मुतालिक कौमी प्रोग्राम में तेजी पैदा की है। वजीर मौसूफ ने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में जहनी सेहत से मुतालिक बेदारी और स्क्रीनिंग के लिए इंतजाम किए गए हैं। साइंसी और सनअती तहकीक के कौंसिल मरकजी सड़क तहकीकी इदारे CSIR CRRI ने आज नई दिल्ली में अवामी कामकाज के महकमे से वाबस्ता इंजीनियरों के लिए एक खसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया। साइंस और टेक्नोलॉजी की वजारत ने कहा है कि इस प्रोग्राम में हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन के मेयारी तरीक़ाकार पर तवज्जो मरकूज की गई ताकि कौमी राजधानी खित्ते में शहरी सड़कों को सरसब्ज बनाने की राह हमवार की जा सके। जगदलपुर में कौमी तहकीकाती एजेंसी की खसूसी अदालत ने मुख्तलिफ इल्जामात के तहत झीरम घाटी माओनवाज हमले के मामले में सभी 10 कसूरवारों को मुलजिम करार दिया है। इस मामले में कुल 11 अफराद पर मुकदमा चल रहा था, जिनमें से एक शख्स की इस दौरान मौत हो गई। अदालत ने 2 खवातीन समेत 29 में से सभी 10 मुलजिमों को कत्ल का कसूरवार करार दिया गया, जबकि दीगर 15 को इकदाम कत्ल का कसूरवार पाया गया। सजा की मुद्दत से मुतालिक फैसला 16 सितंबर तक महफूज रखा गया है। माहौलियात, जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के महकमे के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने माहौलियाती मुस्तकबिल को महफूज रखने की खातिर गिधों के तहफ्फुज़ की जरूरत पर जोर दिया है। आज गिधों के बारे में बेदारी पैदा करने से मुतालिक बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब यादव ने कहा कि गिद्ध माहौल को साफ रखने के लिए फितरत का एक हिस्सा है और ये माहौलियाती निज़ाम को साफ सुथरा रखने, बीमारियों को फैलने से रोकने और माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करते हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व गिद्धों को महफूज रखने के भारत के सबसे कामयाब मकामात के तौर पर उभरे हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के मुताबिक दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के दरमियान इन 2 मकामात पर 29 गिद्ध छोड़े गए थे और उनके जिंदा रहने की शरह 78% तक पहुंच गई। आज खबरों में कहा गया है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर 72 घंटे तक हमले रोके जाने का हुक्म दिया है। आज क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोफ ने कहा कि सदर पुतिन ने हुक्म दिया है कि आज आधी रात से आइंदा 3 दिनों तक कीव पर कोई हमला ना किया जाए। उन्होंने कहा कि अमन बातचीत के लिए अमरीकी एलचियों के कीव के दौरे के पेश नजर यह फैसला किया गया है। افریقی یونین کمیشن کے چیئر پرسن محمود علی یوسف نے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اس قرارداد کا خیر مقدم کیا ہے جس میں عالمی سطح پر نقشوں میں مساوی قرہ ارض سے متعلق نقشہ کھینچنے کے طریقے کو استعمال کرنے کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جو اب تک وسیع پیمانے پر استعمال کیے گئے مرکیٹر طریقہ کار کی جگہ لے گا، جس میں براعظموں کے رقبے کے سائز کی صحیح عکاسی نہیں ہوتی تھی۔

0: भारतीय महकमा मौसमियात ने पीर तक शुमाली और शुमाल मशरकी रियासतों जेली हिमालयाई मगरबी बंगाल बिहार मशरकी राजस्थान दिल्ली और मध्य प्रदेश में शदीद बारिश की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर लद्दाख राजस्थान मगरबी बंगाल अंदरूनी कर्नाटक तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकाल और अंडमान निकोबार जजायर में आइंदा दो रोज के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। बैडमिंटन में भारत के सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चाइना मास्टर्स टूर्नामेंट में अपनी शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों की जोड़ी मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। उन्होंने आज शेंजन में खेले गए सेमीफाइनल में नूर मोहम्मद अयूब और टैन वी क्योंग की मलेशिया की जोड़ी 21-16, 18-21 और 21-11 से हरा दिया। और खवातीन क्रिकेट में दुबई बैनुल अक्वामी क्रिकेट स्टेडियम में खवातीन एशिया कप 2026 के ग्रुप ए के मैच में पाकिस्तान ने भारत की जीत के लिए 56 रन का निशाना दिया है। और आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने यह बात दोहराई है कि आलमी गैर यकीनी की कैफियत के तनाजुर में GDP की 7.8% की शरह तरक्की से भारत की इक्तसादी कुव्वत की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में SRCC के तलबा से खिताब किया। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने मुस्तकबिल के कारोबारी अफराद और साइंसदान तैयार करने के लिए आज़ाद तर्ज फिक्र अख्तियार करने वालों में असातिज़ा के रोल को उजागर किया है। भारत और नेपाल अचानक सैलाब से मुतासिरा नेपाल में पनबिजली प्रोजेक्ट टनल्स के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए मुश्तरका कार्रवाई जारी रखे हुए हैं। महाराष्ट्र में मेलघाट और पेंच टाइगर रिजर्व गिद्धों के लिए सबसे कामयाब महफूज मकामात के तौर पर उभरे हैं। शिमाल मशरकी रियासतों बिहार और मशरकी राजस्थान में तेज बारिश का सिलसिला पीर तक जारी रहने की पेशगोई की गई है। और चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी की अखिल भारतीय साहित्यिक पत्रिका साहित्य भारती में आपका स्वागत है।
3: व्यक्ति और अन्य जीव जगत का जीवन दुख का दूसरा नाम है। अन्य जीवों के दुख उसकी अपनी परिधि से बाहर होते हैं, परंतु व्यक्ति के अधिकांश दुख उसके अपने ओढ़े हुए होते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, भय, कमियां, लालच, लालसा हर जीव के हृदय में स्थायी घर बनाकर रहते हैं। बड़े से बड़ा धनवान भी दुखों के इन मूल कारणों से बच नहीं सका है। कहने को ये सब विकार हैं, पर सांसारिक जीवन के लिए स्वीकार हैं। हर कोई जोगी या जोगिन बन नहीं सकता, पर हाँ, अगर कोई इन पीड़ाओं की साफ बयानी कर दे तो ये दुख कम हो जाते हैं। कहते हैं ना, दुख अगर किसी को बता दिया जाए तो आधा रह जाता है, और अगर उसमें दूसरे का दुख भी शामिल कर लिया जाए तो उसके बदले महज सुख ही नहीं मिलता, पद्म भूषण ज्ञानपीठ सरीखे बड़े पुरस्कार भी मिलते हैं। जी हाँ, छायावाद की प्रमुख लेखिका महादेवी वर्मा ने इस जीवन को दुख का सागर बताते हुए उस सत्य को पूरे सबूतों के साथ व्याख्यायित किया है। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। आइए महादेवी वर्मा के सुख दुख के इस संगम को विस्तृत रूप से समझने की चेष्टा करते हैं। वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह से।
4: महादेवी को दुख इतना अन्यतम और प्यारा नहीं था। कह सकते हैं कि महादेवी के जीवन में दुख था, लेकिन दुख के पहले सुख की अनुभूतियां थी, और उन सुखद अनुभूतियों को सामाजिक जीवन में टकराहट की स्थिति में दिखाई देने के कारण महादेवी ने दुख

वो गले लगाया था और यह दुख उनका केवल निजी दुख नहीं रह गया था बल्कि सार्वभौम दुख था और स्त्री के संदर्भ से देखें तो समस्त स्त्री जाति का दुख था। महादेवी जितनी मुखर गद्य के क्षेत्र में श्रृंखला की कड़ियां नामक पुस्तक में होती हैं और स्त्री के तथा समाज के जीवन पर सामाजिक संरचना पर जिस तरह से टिप्पणी करती हैं वहां से यह सूत्र प्राप्त किया जा सकता है कि महादेवी की रचनाओं में दुख का जो झीना आवरण है वह किन कारणों से है। क्या वे कारण महादेवी द्वारा स्वयं निर्मित किए हुए थे अथवा समाज की संरचना में ही कहीं न कहीं कोई दोष था और उस दोष के आधार के रूप में वे टिके हुए थे। एक उनकी कविता है और इस पूरी कविता में दुख और दुख की व्याप्ति साथ ही साथ सुख और सुख की कीमत यह झीने तौर पर दिखाई देती है। इस कविता में महादेवी अपने जीवन के स्वप्निल संसार में एक युवा किशोरी आंखें खोलती है और उसकी परिणति एक दुखात्मक पृष्ठभूमि में होती है। उस पूरी कहानी को महादेवी ने निजी और सार्वजनिक दोनों स्तर पर साझा किया है। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में, मिट गए पद चिन्ह जिन पर हार छालों ने लिखी थी, खो गए संकल्प जिन पर राख सपनों की बिछी थी। आज जिस आलोक ने सबको मुखर चित्रित किया है, जल उठा वह कौन सा दीपक बिना बाती नयन में। बांच ली मैंने व्यथा की बिन लिखी पाती नयन में। यह कैसी व्यथा थी और किसकी व्यथा थी जिसको बिन लिखे ही महादेवी ने किसी अन्य की आंखों में बांच लिया था। और आगे एक और कविता में कहती हैं, नयन की नीलम तुला पर मोतियों से प्यार तोला, कर रहा व्यापार कब से मृत्यु से यह प्राण भोला, साध हे तुम बन सघनतम सुरंग अब गुंठन उठा गिन आंसुओं की रेख लेते। ये कविता एक तरफ अपने प्रिय को संबोधित है कि साध हे तुम, प्रिय को प्रिय नहीं कह रही, साध कह रही है। साध यानी साधना का संसार यानी इच्छा। महादेवी की कविता में साध, स्वप्न, शून्य, क्षितिज जैसे शब्द बार बार आए हैं और साध की जो कीमत होती है यानी इच्छा रखने की, भाव रखने की, सामाजिक संबंधों के संदर्भ में सहज ही स्त्री के पक्ष से देखा जा सकता है कि वह कीमत कितनी भारी होती है। और महादेवी के लिए वह साध फिर एक सपना बन जाता है, लेकिन उस सपने को लेकर वे आगे बढ़ती हैं और कहती हैं, आंसू का तन विद्युत का मन, प्राणों में वरदानों का प्रण, धीर पदों से छोड़ चले घर, दुख पाथे संभाले। महादेवी ने दुख को अपना पाथे बना लिया और जब वो सुकुमार थी, कोमल थी, उनके भीतर रमणीय भाव था और वे चाहती थी कि उनको सुख मिले जैसे हर स्त्री की इच्छा होती है, और सुख ऐसा ना हो कि अपने सुख से किसी को दुख हो, तो महादेवी इस तरह का सुख चाहती थी। वे साफ कहती हैं, इन ललचाई पलकों पर पहरा था जब व्रीड़ा का साम्राज्य मुझे दे डाला उस चितवन ने पीड़ा का, उस सोने के सपने को देखे कितने दिन बीते, आंखों के कोश हुए हैं मोती बरसाकर रीते। अब आप देखिए यह जो भाव है कि वह सोने सा सपना कब का था, युवावस्था का, किशोरावस्था का, जब महादेवी सामाजिक संबंधों और संरचनाओं को जो घर के बाहर के समाज में व्याप्त था उसको उस तरह से नहीं समझ पाई थी और तब उन्होंने वह सुनहरा सोने जैसा स्वप्न देखा था, लेकिन उस सोने जैसे सपने को देखे हुए भी युग बीत गए और अब दुख का कोश भी मोती बरसा बरसा कर रीता हुआ है। इस दुख की व्याप्ति हो गई है। यह दुख निजी दुख से अब संसार के दुख के लिए सन्नद्ध कर चुका है और सांसारिक दुखों का एक बड़ा कारण समाज में स्त्री की स्थिति है जिस पर महादेवी की निगाह रही है। क्या अनुनय में मनुहारों में, क्या आंसू में उद्गारों में, आवाहन में अभिसारों में, जब मैंने अपने प्राणों में प्रिय की छांह छिपा ली। मैंने तो अपने प्रिय की छांह को यानी अपने लिए सुख के भाव को अपने भीतर ही समाहित कर लिया है, तो अब क्या अनुनय और क्या मनुहार, क्या आंसू और क्या उद्गार, क्या आवाहन और क्या अभिसार। अब मेरा सुख तो मेरे भीतर है और इसलिए मैं अब जो कुछ कहती हूँ संसार उसके बदले मुझे मतवाली कहता है। और महादेवी ने अपनी एक कविता के बंद में स्वयं को अपने सुने पन की मैं हूँ रानी मतवाली ये कहा है। और एक जगह और कहती हैं, भावे क्या अली अस्थिर मधुदिन, दो दिन का मृदु मधुकर गुंजन, पल भर का यह मधु मद वितरण, चिर वसंत है मेरे इस पतझर की डाली डाली, क्यों जग कहता मतवाली।
संसार के लिए

0: ये तो एक उलाहना है ही कि तुम मुझे मतवाली क्यों कहते हो। मैंने तो अपने पतझर की डाली डाली को ही बसंत का भाव दे दिया है, इसलिए मैं तो किसी से कुछ मांगती नहीं हूँ। मैंने तो अपने कष्ट को अपने लिए स्वयं चुना है और ना मुझे इसके लिए किसी से कोई इच्छा है, न प्रतिदान की अभिलाषा है। तो कहती हैं कि अब मेरे लिए अगर कोई संदेश है तो वो और क्या हो सकता है। अब कहो संदेश है क्या, अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या, अग्निपथ के पार चंदन चांदनी का देश है क्या, एक इंगित के लिए शतबार प्राण मचल चुका है। अब कहो संदेश है क्या, और ज्वाल विशेष है क्या। वे कहती हैं कि मेरी कोई इच्छा इस संसार से कुछ प्राप्त करने की नहीं है। जब इच्छा नहीं है तो दुख का कारण नहीं है। आगे कौन सा चंदन चांदनी का देश है जिसका मुझे कोई दर्शन करवा सकता है या प्राप्ति करवा सकता है। तो इसलिए कहती हैं, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। एक जगह और कहती हैं कि क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार, रहने दो हे देव ये मेरा मिटने का अधिकार। ये जो मर्त्य लोक है इसके बंधन से मुक्ति मैं नहीं चाहती, इसके दुखों से मुक्ति मैं नहीं चाहती, क्योंकि जब तक दुख समाप्त नहीं होते महादेवी का कार्यभार भी समाप्त नहीं होता। और ध्यान रखिएगा कि ये दुख महादेवी को क्यों है, ये तब तक पाठक को, श्रोताओं को समझ नहीं आ सकता जब तक वे ना समझें कि महादेवी का यह दुख केवल मनुष्य मात्र होने का दुख नहीं है, देह धरे को दंड नहीं है। महादेवी देह धरने को यानी संसार में आने को दंड नहीं मानती, देह से उन्हें अनुराग है, प्यार है। लेकिन वो कहती हैं, स्मित बनकर नाच रहा है अपना लघु सुख अधरों पर, अभिनय करता पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। सुख दुख की कैसी सुंदर अभिव्यक्ति है, इसे हम सहज ही यहाँ देख सकते हैं कि सुख है वह स्मित लाता है चेहरे पर, लेकिन दुख पीछा नहीं छोड़ता, वह भी साथ साथ आता है, वह अभिनय करता है पलकों में अपना दुख आंसू बनकर। इस तरह से सुख दुखात्मक जो भाव है महादेवी के यहाँ, वह युग्म रूप से साथ साथ चलते रहते हैं और कई बार बाइनरी अपोजिशन भी बनाते हैं। जब वे ही शब्द जो सुखात्मक भावों के लिए आते हैं कहीं कहीं दुखात्मक और बंजर अर्थों को ध्वनित करने लगते हैं कि मैं दिन को ढूंढ रही हूँ। देखिए कितना बड़ा कंट्राडिक्शन है, मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। हीरे के प्याली में सिकता की मांग हो रही है और महादेवी दिन के उजियाले में जुगनू को ढूंढ रही है। दोनों ही विरोधी स्थिति है, विरोधाभासी स्थिति है। और क्यों महादेवी की कविताओं में इस तरह की विरोधाभासी स्थितियों का वर्णन है। दुख स्थायी भाव की तरह दिखाई देता है, लेकिन दरअसल दुख के साथ उसके पृष्ठभूमि में सुख का एक गहरा झीना सोता भी बहता चलता है।
1: वो कहते हैं महादेवी तुम क्या लिखते हो, तुम ये सब क्या भूल जलूल बात देखते हो, सीधे बात देखो, लिखने आती नहीं थी उस समय भी नहीं आती थी। अब तो उसको शायद एमए पढ़ता विद्यार्थी, लेकिन तब तो आठवें दर्जे में पढ़ने वाले व्यक्ति की रचना थी, परंतु उसमें साफ बात नहीं कही है। और फिर उसके बाद थोड़ा दर्शन भी आया और भाव में संयम भी आया, भाषा भी दूसरी ही, निर्जा में जाके गीत का तत्व आ गया मुझे और मैंने मानव दिशा भी पा ली है। कभी कभी आश्चर्य होता है कि उस समय मैंने कैसे लिखा होगा। ये
0: है महादेवी और महादेवी की कविता में अभिव्यक्त दुख का गागर और सुख का सागर।
2: वरिष्ठ लेखिका और दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की अध्यक्ष वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर सुधा सिंह ने ठीक ही कहा है कि महादेवी वर्मा की कविताएं भले दुख से जन्मी हो मगर सुख दामन की तरह हरदम साथ चलता रहा और वो दुख नीर बनकर सुख के एक बड़े सागर में विलीन हो गया और साहित्य को संवेदनाओं के अनेक धरातल दे गया। अगर रचनाकार अपनी बात को तमाम हकीकियों से जोड़ते हुए समाज के सामने रखता है तो उसके परिणाम सदियों तक सचेत और आंदोलित करते हैं। दुष्यंत कुमार भी एक ऐसे ही रचनाकार रहे हैं। अपने बोझ से झुककर दोहरे हो चुके पसीने से तर बतर मेहनतकश इंसान के बेहद बदरंग चेहरे को बेहद खूबसूरती से उभारती उनकी गजलों ने जो बरगद खड़ा किया, उसके साये में धूप का कोई कतरा आज तक कहीं नजर नहीं आता। व्यवस्था के विरुद्ध इस सजग विद्रोह ने ही हिंदी गजल की मजबूत बुनियाद रखी। 27 सितंबर को

0: उनके जन्म दिवस पर उन्हें उन्हीं के स्वर में कहे इस शेर से याद कर सकते हैं।
1: हर सड़क पर इस कदर कीचड़ बिछी है, हर किसी का पांव घुटनों तक सना।
0: अनेक विवादों के बीच दुष्यंत कुमार ने अपनी भाषा, अपने कहन और अपनी बहर से हिंदी जगत को जो नया आकाश दिया वो बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल है। सुनते हैं एक बातचीत, दुष्यंत कुमार, अपनी बहर, सबकी गजल। प्रतिभागी हैं वरिष्ठ कवि, समीक्षक और प्राध्यापक डॉक्टर शिव नारायण और वरिष्ठ गजलकार और समीक्षक श्री मंगल नसीम।
2: दुष्यंत दोस्तों एक ऐसा नाम है जो हिंदी गजल और उर्दू गजल के बीच में एक पुल बनाता है। उनकी एक किताब है गजल के ऊपर, साये में धूप, जिसमें तकरीबन 54 गजलें संग्रहित हैं और उन्होंने जीवन के हर हिस्से पे लिखा है। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, या हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप कुछ कहें दुष्यंत जी के बारे में।
3: बहुत बहुत आभार आपका मंगल जी, आपने बहुत अच्छी परिचय दिया उनके बारे में। गजल तो मुख्यतः उर्दू फारसी की विधा है
2: जी,
3: लेकिन उस विधा को फॉर्मेट को लेकर हिंदी में उन्होंने जितना काम किया
2: जी,
3: कहना चाहिए कि हिंदी का जो मिजाज था प्रतिरोध, अपने समय के प्रतिरोध को उन्होंने उस गजल से जोड़ दिया
2: जी।
3: और हिंदी में गजल की परंपरा यूं तो बहुत पुरानी रही है
2: जी।
3: जितने बड़े बड़े कवि हुए सबने गजलें कही हैं, वो निराला हो, पुरानी अगर हम चले जाएं तो कबीर तक, यहाँ तक कि जितने प्रगतिशील कवि हुए उन सबने भी गजलें कही। अब शमशेर बहादुर सिंह हो, केदार जी हो, यहाँ तक कि अभी हाल में उनका निधन हुआ रामदरस मिश्र जी, उन्होंने भी गजलों में बहुत काम किया। लेकिन सन 70-75 के बीच दुष्यंत कुमार जब गजल लेकर आए, अच्छा गजलों को उन्होंने अपने जीवन के, एक तो ईश्वर ने यूं ही उनको बहुत कम समय दिया
2: जी,
3: लेकिन अंतिम समय में गजलें वो कह रहे थे
2: जी।
3: और उन्होंने जो समकालीन हिंदी कविता का मिजाज था, लगभग उसी मिजाज और तेवर के साथ वो हिंदी गजलों में आए
2: जी।
3: और जैसे वो कहते हैं कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, एकदम आम फहम भाषा में जिसे एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, उन्होंने गजलों को उससे जोड़ दिया। और जितने शेर कहे, जितनी गजलें उन्होंने कही, उसे लोगों ने अपने समय के साथ जोड़कर देखा, व्यवस्था के खिलाफ देखा, और वह जो उनका प्रतिरोध था वो हिंदी गजल की मुख्य आवाज

0: दरअसल क्या है डॉक्टर साहब, गजल का जो लुगती मानी, जो डिक्शनरी, जो
1: बिल्कुल
0: शब्द को इसका मतलब है गजल का, उसमें
1: जी
0: वो है औरत से बातचीत करना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुफ्तगू।
0: अब इस बात को भी मैं समझता हूँ कि ठीक से नहीं लिया गया, औरत से बातचीत करना, इसका क्या मतलब? तो इसको सपाट रूप से ले लिया गया, और तब के शायरों ने औरत से बातचीत करना, तेरी जुल्फे बहुत खूबसूरत है, तेरी आंखें बड़ी सुंदर हैं, तेरी पाजेब की झंका। लेकिन अब से कोई 25-30 साल पहले से आप हम देखें तो बहुत से कंटेंट उसमें शामिल हुए हैं गजल में जो श्रृंगार से अलग है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात कही नसीर जी। और जितने बड़े बड़े शायर, हालांकि तरक्की पसंद शायरों की कमी नहीं है
0: जी,
1: जिन्होंने मजदूरों की जबान को जो है और लोगों की जबान को भी जो है गजलों में लाया
0: जी,
1: लेकिन उर्दू गजल जो है वो पर्याय हो गया मोहब्बत के गुफ्तगू के लिए, श्रृंगार के लिए वो। लेकिन श्रृंगार तो संयोग पक्ष भी होता है, वियोग पक्ष भी होता है
0: जी, बिल्कुल।
1: पर दुष्यंत जिस समय हुए वो उबाल का समय था
0: जी, बिल्कुल।
1: लोग संतरस्त थे उस समय एक व्यवस्था से, और उसमें वो कोई परिवर्तन चाहते थे
0: जी।
1: इसलिए जब मतलब दुष्यंत कहते हैं उस समय वो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुमलाने लगे हैं, तो लोगों ने ऐसे नाजुक शेरों को भी जो है व्यवस्था परिवर्तन से जोड़ कर देखा। और बहुत सारे लोग प्रतिरोध का अर्थ विरोध समझते हैं
0: जी,
1: पर प्रतिरोध का जो वास्तविक अर्थ होता है वह होता है अपनी बातों को कह लेने की जिद। ऐसा लगता है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए कि वक्त ने उनको अपने लिए जो है चुना कि तुम शेर कहो, तुम गजलें हमारे लिए कहो, और जो परिस्थितियां थी उसको उन्होंने आम आदमी के जबान पर ला दिया।
0: जो एक रक्षा वाला भी समझता, और एक प्रोफेसर भी समझता, ये समझिए कि उनके जो प्रतीक और इस्तारे थे वो भी अलग थे। तू किसी रेल से गुजरती है,
1: हाँ,
0: मैं किसी पुल से थरथराता, अपने आप को पहचानना और दूसरे को और समझ के उसको शेर में ढालना।

0: देखिए ये हमेशा याद रखना पड़ेगा कि दुष्यंत के व्यक्तित्व, शायराना व्यक्तित्व का जो गठन है वो परिमल से हुआ
1: जी।
0: इलाहाबाद में उन्होंने पढ़ाई की थी और वो रहने वाले थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो ये जो टोन है उनके कहन कौशल का, ये इन दोनों जगहों का प्रभाव उस पर दिखाई पड़ता है
1: जी। जी
2: दुष्यंत कुमार जन्मे भले राजपुर नवादा बिजनौर में हो, शिक्षा इलाहाबाद में प्राप्त की हो और कार्य क्षेत्र आकाशवाणी दिल्ली और भोपाल रहा हो, पर उनकी भाषा में समूचे भारत की महक है। उनकी गजल का माध्यम भले हिंदी रहा हो मगर उर्दू जगत को भी उनकी भाषा अपनी सी लगी और खड़ी बोली वालों को भी। कुछ शब्द उन्होंने अपने भी गढ़े जो मुहावरे बनकर आज हिंदी के परचम को पूरी जगत में लहरा रहे हैं। हिंदी भाषा को आगे लाने में साहित्यकारों का ये योगदान सोने के अक्षरों में लिखा हुआ है। सुनते हैं एक वार्ता, हिंदी भाषा राजकाज से कामकाज तक। वार्ताकार हैं भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर गणेश शंकर श्रीवास्तव।
3: किसी भी साहित्य के विकास में भाव, संवेदना, कथ्य और शिल्प, इन सब से अधिक भाषा का योगदान रहता है। वह भाषा मातृभाषा भी हो सकती है और अनुवादित भी हो सकती है। अपनी भाषा के दर्द, पीड़ा, संवेदना और पक्ष ज्यादा हितकर इसलिए माने जाते हैं। आज भारतेंदु, निराला, प्रेमचंद, महादेवी, पंत, जयशंकर प्रसाद, बच्चन आदि की बदौलत हिंदी भाषा वैश्विक स्तर पर मान सम्मान को प्राप्त कर पा रही है और लगभग 145 देशों में अध्ययन अध्यापन का माध्यम बनी हुई है। साल का सितंबर महीना अस्तित्व में है और सरकारी महकमों में फाइलें हिंदी में रंगे जाने की कवायद जारी है। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत सरकार और उसके अधीन संगठनों में हिंदी की कई वर्कशॉप आयोजित कर प्रतिभागियों को सरल हिंदी का सरकारी कामकाज में प्रयोग कैसे करें के गुर सिखाए जा रहे हैं। सीख तो लोग रहे ही हैं और हर साल सीखते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनका प्रयोग वर्ष पर्यंत करते हैं अथवा हिंदी पखवाड़े या सितंबर माह तक ही यह जागरूकता रहती है। गौरतलब है कि हमारा कानून सरकारी दफ्तरों में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संगठन के चीफ या उच्चाधिकारी को सौंपता है। साथ ही राजभाषा से संबंधित कार्यों में सहयोग, मार्गदर्शन एवं मॉनिटरिंग के लिए राजभाषा अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। यदि इस ढांचे पर हम गौर फरमाएं तो पाते हैं कि हिंदी को लागू करने के लिए दो स्तरों पर प्रतिबद्धता अनिवार्य है। पहला वह जो राजभाषा क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है, यानी कि संगठन का प्रमुख उच्चाधिकारी या मुख्य प्रबंधक इत्यादि, और दूसरे वे जिन्हें हम मुख्य रूप से हिंदी ऑफिसर या हिंदी के अन्य पदाधिकारियों के रूप में जानते हैं। एक तीसरा पक्ष उन कार्मिकों का है जो व्यवहारिक रूप से हिंदी का कार्य करते हैं। यदि सरकारी कार्यालयों की व्यवहारिक स्थितियों का अवलोकन करें तो यह

0: तथ्य निकलकर आता है कि जहां उच्चाधिकारी या संगठन के प्रमुख के रूप में हिंदी के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी का प्रश्न है, वहां हमें उस संस्थान के प्रमुख की व्यक्तिगत अभिरुचियों और मिजाज की ओर ताकना पड़ता है। यदि संगठन का प्रमुख हिंदी भाषा के प्रति कुछ रचनात्मक लगाव रखता है तो वह इसके लिए प्रयास करता है, अन्यथा अधिकतर का रुख हिंदी के प्रति उपेक्षित ही रहता है। दुर्भाग्य की स्थिति तो तब बनती है जब ऐसे पदों पर हिंदी भाषी क्षेत्रों के ही लोग आसीन होते हैं, परंतु अपनी अंग्रेजियत की मानसिकता से वे मुक्त नहीं हो पाते। इसमें से कुछ अपने संगठनों में हिंदी को प्रोत्साहन की बात करते भी हैं, तो उनकी निगाह गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों पर गड़ी रहती है। हमें मानना होगा कि हिंदी का विकास तब तक नहीं होगा जब तक हम उसकी सेवा निस्वार्थ रूप से अपना पुनीत कर्तव्य समझकर न करें। यह समझना आवश्यक है कि राजभाषा हिंदी का प्रयोग केवल हिंदी अधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी और कर्मचारी का दायित्व है। यह भी देखना होगा कि हिंदी अधिकारियों को भी केवल अनुवाद की भूमिका तक सीमित न रखकर प्रशासनिक एवं राजभाषा संबंधी कार्यों में पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। हिंदी कार्यशालाएं भी केवल औपचारिकता न बने, बल्कि नोटशीट, पत्र, टिप्पणियां और कार्यालयी आदेश सरल एवं स्पष्ट हिंदी में तैयार करने का व्यवहारिक प्रशिक्षण दें। साथ ही सरकारी हिंदी को कठिन और कृत्रिम बनाने के बजाय सरल, सहज एवं प्रचलित हिंदी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह भी प्रायः देखा गया है कि हम अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करते हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि जो भी नीतिगत दस्तावेज बने वो मूलतः हिंदी में बने और बाद में उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो, तब निश्चित रूप से राजभाषा हिंदी के स्वर्णिम दिन प्रारंभ होंगे। अंततः हिंदी के प्रयोग को अतिरिक्त बोझ या दंडात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि सहज और जनोन्मुख प्रशासन के माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। जब वरिष्ठ अधिकारी नेतृत्व करेंगे, हिंदी अधिकारी प्रभावी मार्गदर्शन देंगे और प्रत्येक कर्मचारी इसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तभी राजभाषा का वास्तविक और प्रभावी क्रियान्वयन संभव होगा। हिंदी के राजकीय प्रयोग की दृष्टि से कार्य क्षेत्र स्वाभाविक रूप से सबसे मजबूत आधार प्रस्तुत करता है। इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल हैं। वहीं खास क्षेत्र में गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब तथा चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और द्वीप शामिल हैं। बस 2024-25 के वार्षिक कार्यक्रम में खास क्षेत्र से हिंदी में मूल पत्राचार के लिए अत्यंत ऊंचे लक्ष्य निर्धारित किए गए। गा से का क्षेत्र में 100%, खाद क्षेत्र को 100% तथा गा क्षेत्र को 100% तक हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य रखा गया। खाद क्षेत्र के लिए भी का क्षेत्र को 90% और गा क्षेत्र को 90% हिंदी पत्राचार का लक्ष्य निर्धारित था। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देने का लक्ष्य दोनों क्षेत्रों के लिए 100% तथा हिंदी में टिप्पण का लक्ष्य का क्षेत्र में 75% और खाद क्षेत्र में 50% था। हिंदी के राजकीय प्रयोग की तस्वीर को केवल का और खाद क्षेत्रों की उपलब्धियों से नहीं आंका जा सकता। गा क्षेत्र में भी हिंदी का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। राजभाषा विभाग के उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के गा क्षेत्र में हिंदी में पत्राचार का प्रतिशत कहीं 20-30% के आसपास है, तो कहीं 40-50% से ऊपर और कुछ मामलों में 60-70% से भी अधिक दर्ज किया गया है। उदाहरण के लिए विभिन्न मंत्रालयों के आंकड़ों में गा क्षेत्र में हिंदी पत्राचार 62%, 69% और 77% तक दर्ज हुआ है। यह स्थिति बताती है कि गा क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग अब केवल प्रतीकात्मक नहीं रह गया है, यह अनेक कार्यालयों में हिंदी पत्राचार, टिप्पण और अन्य कार्यालयीन कार्यों में उसका प्रयोग हो रहा है। फिर भी गा क्षेत्र में एकरूपता नहीं है, कहीं हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत मजबूत है तो कहीं अभी अंग्रेजी का वर्चस्व अधिक है। इसलिए हिंदी को राजभाषा से कामकाज की भाषा बनाने की अगली महत्वपूर्ण चुनौती गा क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को और व्यापक, सहज तथा नियमित बनाना है। यह आवश्यक है कि राजभाषा के प्रति हम सिर्फ एक औपचारिक दृष्टिकोण न रखते हुए अपितु उसे अपना कर्तव्य बोध मानकर उसके क्रियान्वयन का प्रयास अपने कार्यालयों में करें, तो निश्चित रूप से वह दिन दूर नहीं जब वास्तविक रूप से राजभाषा हिंदी हमारे सरकारी कामकाज में 100% रूप से व्यवहारिक धरातल पर उतर आएगी।
1: अगर अपनी भाषा है तो संस्कृति भी अपनी होगी, संस्कार भी अपने होंगे, दोस्त भी अपने होंगे, समाज भी अपना होगा और देश तो सदा अपना रहेगा ही रहेगा। अखंड

योगदान दिया। इन सब को नमन करते हुए आपसे यहीं विदा लेते हैं। वाचन स्वर नीलम मलकानिया, प्रस्तुति सहयोग वंदना, आलेख और प्रस्तुति

0: ये आकाशवाणी है। आज रात्रि के राष्ट्र संगीत कार्यक्रम में हम आपको विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा प्रस्तुत मृदंग लय विन्यासम सुनवा रहे हैं।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स ब्रॉडकास्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक। वी ब्रिंग यू ए मृदंगम लय विन्यासम बाय विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू।
0: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू आकाशवाणी हैदराबाद के प्रतिष्ठित टॉप ग्रेड मृदंगम कलाकार हैं। वे अपनी उत्कृष्ट कला और संगीत के प्रति गहरी संवेदनशीलता के लिए जाने जाते हैं। वे महान मृदंगम वादक एवं आंध्रमणि की उपाधि से सम्मानित स्वर्गीय श्री वाराणसी घंटया शास्त्री के पौत्र हैं। उन्होंने ये कला अपने पिता प्रसिद्ध मृदंगम विद्वान स्वर्गीय श्री वाराणसी वेंकटा सुब्बारामा शास्त्री से सीखी, जो आकाशवाणी हैदराबाद से रिटायर्ड हुए थे। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। आकाशवाणी हैदराबाद में 3 दशकों से अधिक समय तक समर्पित सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने अनेक प्रसिद्ध संगीतज्ञों के साथ संगत की है और भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध किया है। उनकी वादन शैली में शुद्धता, मधुर नाद, संयम और गहरी लयात्मक संवेदनशीलता का अद्भुत समन्वय दिखाई देता है। विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू को उनकी उत्कृष्ट संगीत साधना और विशिष्ट वादन शैली के लिए मृदंग सौख्य भास्कर तथा मृदंग कोमल वाधमणि जैसी प्रतिष्ठित उपाधियों से सम्मानित किया गया है। अपने मधुर, सहज और भावपूर्ण मृदंगम वादन के कारण श्री काली प्रसाद बाबू को स्नेहपूर्वक द विस्पर ऑफ द मृदंगम और मेलेडिक परक्यूशनिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वे गौरवशाली वाराणसी संगीत परंपरा के एक योग संवाहक हैं और दक्षिण भारतीय मृदंगम वादन की समृद्ध परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज रात्रि के इस मृदंगम वादन के कार्यक्रम में आपके साथ संगत करने वाली कलाकार हैं वायलिन पर सुश्री VSP गायत्री शिवानी।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू इज एन एमिनेंट टॉप ग्रेड मृदंगम आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी हैदराबाद, नोन फॉर हिज एक्सेप्शनल आर्टिस्ट्री एंड म्यूजिकल सेंसिटिविटी। He is the grandson of the late Sri Varanasi Gantaya Shastri, the legendary mridangam exponent honored with the title Andhramani. He mastered his art under his father, a renowned mridangam vidwan, late Sri Varanasi Venkata Subrama Shastri, who retired from Akashvani Hyderabad. With more than 3 decades of dedicated service in Akashvani Hyderabad, he has accompanied numerous eminent musicians and enriched Indian classical music. His artistry is distinguished by precision, tonal beauty, restraint, and profound rhythmic sensitivity. He has been honored with the prestigious titles Mridanga Saukhya Bhaskara and Mridanga Komala Vadyamani. Affectionately known as the Whisper of the Mridangam and Melodic Percussionist, he is celebrated for his soft, soulful, and graceful strokes. A proud torchbearer of the illustrious Varanasi musical lineage, he represents the rich South Indian mridangam tradition. In tonight's broadcast, Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu is supported on violin by VSP Gayatri Shivani.
0: Vidwan Shri Varanasi Kali Prasad Babu apne mridangam lay vinyas ka aarambh chaturashtra jati triput taal se kar rahe hain.
1: Vidwan Varanasi Kali Prasad Babu begins his mridanga lay vinyasam with chaturashtra jati triput taalam.

0: विद्वान श्री वाराणसी काली प्रसाद बाबू अपने मृतंगम लय विन्यास का समापन मिश्र चापू ताल से कर रहे हैं।
1: विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू कंक्लूड्स हिज मृदंग लय विन्यासम विद मिश्र चापू तालम।

0: इसी के साथ आज के इस राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम में विद्वान वाराणसी काली प्रसाद बाबू द्वारा मृदंग लय विन्यासम अब संपन्न होता है। उनके साथ वायलिन पर संगत कर रही थी सुश्री वीएसपी गायत्री शिवानी। ये राष्ट्रीय संगीत कार्यक्रम आकाशवाणी हैदराबाद के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: With that, we conclude the Mridanga Lai Vinyasam by Vidwan Sri Varanasi Kali Prasad Babu in the broadcast of National Program of Music. He was supported on violin by VSP Gayatri Shivani. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for National Program of Music and was brought to you from the Delhi station of Akashwani.
2: प्रस्तुत है संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में विठल कुमार राजपुरा का पखावज वादन। इंदौर की सांगीतिक माटी से जुड़े और प्रतिष्ठित नाना साहब पानसे घराने के होनहार पखावज वादक श्री विठल कुमार राजपुरा जी आकाशवाणी के ए ग्रेड कलाकार हैं। श्री राजपुरा जी ने पखावज वादन की गहन शिक्षा आकाशवाणी के ही टॉप ग्रेड कलाकार पंडित गोस्वामी श्री देवकी नंदन जी महाराज से प्राप्त की है। विठल जी की वादन शैली की सबसे बड़ी खूबी है उनके बोलों की स्पष्टता, तैयारी और छवि पढ़नों का अलौकिक वादन जो सीधे रसिकों के दिल में उतर जाता है। राष्ट्रीय युवा उत्सव में स्वर्ण पदक विजेता, कल के कलाकार और निमाड़ प्रतिभा अवार्ड जैसे कई सम्मानों से अलंकृत विठल जी ने देश के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेरा है। तानसेन समारोह के गमक उत्सव, कालिदास समारोह और चक्रधर संगीत समारोह जैसे अनेक राष्ट्रीय आयोजन में विठल जी ने अपने एकल वादन और जुगलबंदी से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया है। श्री विठल कुमार राजपुरा आज के कार्यक्रम में पखावज पर झपताल प्रस्तुत कर रहे हैं। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे हैं श्री जगदीश बारोट।
3: In the National Program of Music, we now present a Pakhavaj recital by Shri Vithal Kumar Rajpura. Deeply rooted in the musical soil of Indore, the promising Pakhavaj maestro of the prestigious Nana Sahib Panse Gharana, Shri Vithal Kumar Rajpura is an A-grade artist of Akashwani. Shri Rajpura has received rigorous training in Pakhavaj from the top-grade artist of Akashwani, Pandit Goswami Shri Devki Nandanji Maharaj. The hallmark of Vithalji's playing style is the absolute clarity of his syllables, his swift readiness, and the divine rendition of Chhabi Parno, which deeply touches the heart of music connoisseurs. A gold medalist at the National Youth Festival and adorned with honors such as Kalki Kalakar and the Nimad Pratibha Award, Vithalji has spread the magic of his art on prestigious stages across the country. In numerous national events like Gamak Utsav of Tansen Samaroh, Kalidas Samaroh and Chakradhar Sangeet Samaroh, Vithalji has mesmerized audiences with his solo performances and jugalbandis. In today's program, Shri Vithal Kumar Rajpura is presenting Jhap Taal on the Pakhavaj. He is accompanied on the Sarangi by Shri Jagdish Barot, providing the Lehra.

मनुष्य चक्रधार प्रस्तुत है ताकि

धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक कतक दुम करता धा करता धातक

सुनिए

फरमाइश चक्र था।

यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वर्ष पान दुराले लचकत फिरकत चलत पांक चित वन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जा वृष पान दुराले लचकत फिरकत चलत पांक चित वन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखीरा धारा धारा धा यमुना के तट मंद मंद गति चली जात वृष पान दुराले लचकत थिरकत चलत बांक चित वन अति प्यारी चंद्र चमक चपलासी चमकत चंद्र मुखीरा।

गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम, श्री गुरुदेव प्रणाम।

0: अभी आपने सुना श्री विट्ठल कुमार राजपुरा का पखावज पर बजाया झपताल। आपके साथ सारंगी पर लहरा दे रहे थे श्री जगदीश बारूट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसी के साथ आज का संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: यू जस्ट हर्ड झपताल प्लेड ऑन द पखावज बाय श्री विट्ठल कुमार राजपुरा। He was accompanied on the sarangi for the lehra by Shri Jagdish Barot. This program was a presentation of Akash.

0: 12 बजने को है, अब से कुछ ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के शताब्दी समारोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली मेट्रो से SRCC गए और कॉलेज के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। शिक्षक दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। समारोह में 27 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के 6 संगठनों के 48 चयनित स्कूल शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने उच्च शिक्षा संस्थानों और पॉलिटेक्निक के 21 शिक्षकों तथा संकाय सदस्यों को भी राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। ये नियुक्ति उनके पदभार संभालने की तारीख से प्रभावी होगी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉक्टर तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। भारत और नेपाल के बचाव दल का चिली में सुरंग में बचाव अभियान जारी है और सुरंग के भीतर से भारी मलबा, पानी तथा कीचड़ हटाया जा रहा है। नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने बताया कि बचाव अभियान को सुगम बनाने के लिए पास के सियाफ रुबेसी से सुरंग के प्रवेश द्वार तक एक पहुंच मार्ग का निर्माण भी चल रहा है। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद और में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चरनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच

आप सुन रहे हैं AI लाइव न्यूज 24x7। दोस्तों, कुछ लोग अपनी जिंदगी जीते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी को शब्दों में ढाल कर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ आवाजें समय के साथ धीमी पड़ जाती हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वक्त बीतने के बाद भी हमारे दिलों में वैसे ही गूंजते हैं। आज का हमारा ये सफर है ऐसे ही महान शायर, गीतकार और साहित्यकार के नाम, जिनकी लेखनी में जिंदगी की सच्चाई है, रिश्तों की गर्माहट है, अकेलेपन की खामोशी है और आम इंसान के जीवन की असाधारण सी कहानी है। आज हम जानेंगे उनके बारे में जिन्होंने करोड़ों दिलों को छुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निदा फाजली साहब की। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब हम चलेंगे लफ्जों के उस सफर पर जहाँ हर शब्द के पीछे एक कहानी है और हर कहानी में एक जिंदगी। इस सफर में आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा।

क्या बात है, निदा फाजली साहब की ये कहे लिखनी और जगदीश सिंह की आवाज़ बहुत ही शानदार। दोस्तों, निदा फाजली का असली नाम जो था वो था मुक्तदा हसन निदा फाजली। इनका जन्म हुआ था 12 अक्टूबर 1938 को और बचपन से ही साहित्य और शब्दों की दुनिया से इनका कह लीजिए एक तरह से गहरा रिश्ता रहा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इन्होंने ज़िंदगी को केवल किताबों में नहीं पढ़ा, उन्होंने ज़िंदगी को लोगों के बीच जाकर पढ़ा। उन्होंने गलियों को देखा, सड़कों को देखा, घर परिवार को देखा, माँ के प्यार को महसूस किया और इंसान के भीतर उस अकेलेपन को महसूस किया, उसे समझा। शायद यही कारण था कि उनकी शायरी किसी एक वर्ग के लिए नहीं थी, उसे पढ़ने वाला हर इंसान कहीं ना कहीं खुद को उसमें महसूस करता था। निदा फाजली साहब ने ये साबित किया कि शायरी बड़ी बड़ी बातों का नाम नहीं है, शायरी तो ज़िंदगी को खूबसूरत करने का नाम है।

सुरों का सफ़रनामा सुन रहे हैं आप। आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त ज्योति शर्मा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत पल कौन सा है? शायद बचपन, शायद माँ के हाथ का खाना, शायद स्कूल के दोस्त, या शायद कोई इंसान जो आज आपके पास नहीं है लेकिन उसकी याद हमेशा आपके साथ है ना। बस छोटी छोटी बातें ही तो ज़िंदगी हैं, और निदा फाजली जी की रचनाएं हमें इन्हीं पलों से जोड़ती है। चलिए एक और खूबसूरत सी पेशकश सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं आपके पास।

0: उनके शब्द और लता मंगेशकर की आवाज़, क्या बात क्या बात। अच्छा, जब हम शायरी की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारे दिमाग में मुश्किल शब्द आते हैं, लेकिन निदा फाजिल साहब की अगर बात करें तो उनकी शायरी को ना आम भाषा से हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनकी लेखनी में ना बनावट नहीं थी, उनकी बातों में दिखावा भी नहीं था। वे जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं को इतनी खूबसूरत से शब्द देते थे कि सुनने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता था। उनकी रचनाओं में आपको मिलेंगे रिश्ते, समय, अकेलापन, उम्मीद, संघर्ष, बचपन, माँ, इंसानियत और सबसे महत्वपूर्ण जिंदगी की सच्चाई। निदा फाजले जी की सोच थी कि जिंदगी को समझने के लिए बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं है। अपने आसपास देखिए, हर इंसान अपने भीतर एक कहानी लिए घूम रहा है। किसी के चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन किसी के दिल में दर्द है। किसी के पास सब कुछ है, पर सुकून नहीं है। और कोई कम साधनों में भी खुशियों से भरा हुआ है। शायद जिंदगी का यही विरोधाभास उनकी रचनाओं को इतना जीवंत बनाता है। दोस्तों, जिंदगी को समझना है तो लोगों की बातें कम और उनकी खामोशियां ज्यादा सुनिए, क्योंकि कई बार जो बात शब्द नहीं कह पाते हैं ना, वो खामोशी कह देती है। फिलहाल एक और प्यारी सी पेशकश सुनते हैं।
1: आईना देख के बोले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले।

12:36 और पूरे 14 सेकंड होने को है। शुरू का सफरनामा कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। दोस्तों, रिश्ते जो एक शब्द है ना, जिसके बिना ये कहें कि जिंदगी अधूरी लगती है। हमारे जीवन में बहुत से लोग आते हैं, हमारे साथ जिंदगी भर रहते हैं नहीं रहते हैं ये तो वक्त तय करता है, लेकिन हाँ, कुछ हमारे साथ हमारी जिंदगी तक रहते हैं और खूबसूरत यादें हमारे साथ बनाते चले जाते हैं, और कुछ बीच सफर में छोड़कर खूबसूरत यादें देकर चले जाते हैं। निदा फारसी जी की रचनाओं में ना रिश्तों का एक बेहद संवेदनशील रूप दिखाई देता है। उन्होंने रिश्तों को हमेशा आदर्श रूप में नहीं दिखाया है, क्योंकि असली रिश्तों में प्यार भी होता है, शिकायत भी होती है, दूरी भी होती है और इंतजार भी, लेकिन इसके बावजूद रिश्ते हमारी जिंदगी का खूबसूरत हिस्सा होते हैं। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में हम सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लेकिन क्या हमारे पास एक दूसरे के लिए समय है? कभी कभी हमें किसी रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ नहीं करना पड़ता, बस एक फोन, एक मुलाकात, एक मुस्कान या सिर्फ इतना कहना, कैसे हो, हम तुम्हें याद कर रहे थे। और शायद ये छोटी छोटी बातें ना जिंदगी भर हमारे जो रिश्ते होते हैं उन्हें मजबूत बनाए रखती हैं, है ना? क्यों, आपके क्या सोचना है इस बारे में? फिलहाल आप सोचिए और इस गीत को भी इंजॉय कीजिए।

वैसे आपने देखा है ना कि कभी कभी चुप रहना काफी बेहतर साबित होता है ना। कभी चुप रहना बेहतर साबित होता है और कभी चुप रहना बेहतर साबित नहीं होता। फिलहाल ये तो वक्त की नज़ाकत होती है और उसे हमें समझना होता है और उस हिसाब से हमें या तो बोलना होता है या चुप रहना होता है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि हम बात कर रहे हैं सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में निदा फारसी साहब की, और अब बात करते हैं उस सफर की जिसने उन्हें साहित्य की दुनिया के साथ साथ फिल्मी दुनिया में भी एक अलग पहचान दी। उन्होंने हिंदी फिल्मों के लिए कई यादगार गीत लिखे। उनके गीतों की सबसे खूबसूरत बात ये थी कि वह केवल गीत नहीं लगते थे, वे कविता की तरह महसूस होते थे। उनके शब्दों में गहराई थी लेकिन भाषा जो थी ना वो बिल्कुल सरल थी। उनके गीतों ने प्रेम को भी शब्द दिए और जिंदगी के अनुभवों को भी। उनके लिखे लोकप्रिय गीतों में शामिल है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, और ये गीत ना प्रेम इजहार का जो एक खूबसूरत उदाहरण पेश करता है ना, वाकई। बल्कि ये साथ साथ ये भी महसूस कराता है कि ये एक कविता है। और फिर जैसे कि हमने पहले एक गीत सुना था होश वालों को खबर क्या, है ना, वाकई वो भी बहुत ही कहें बेहतरीन बेहतरीन उनकी जो आप लिखनी कहें ना उसमें आपको दिखाई देती है। और इस गीत की जो भावना है ना वो हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। तो एक अच्छे गीत की पहचान ना यही तो होती है, और केवल कानों को अच्छी ना लगे बल्कि दिल में उतर जाए, ये होती है एक अच्छे गीत की पहचान। और निदा फारसी जी के गीत ना यही करते हैं। कभी कभी कोई गीत हमारी जिंदगी के किसी खास पल से जुड़ जाता है और फिर सालों बाद जब वही गीत सुनाई देता है तो ऐसे लगता है कि जैसे वक्त पीछे लौट गया हो। कोई चेहरा, कोई जगह, कोई रिश्ता, सब अचानक याद आने लगता है। यही तो है संगीत की ताकत और यही है खूबसूरती शब्दों की भी और लेखनी की भी, जो कि निदा फारसी साहब की थी। और फिलहाल एक और प्रस्तुति, जैसे कि हमने बात की थी कि प्रेम को बहुत ही बखूबी बयां किया उन्होंने इस गीत में।

प्यार का ये खूबसूरत सा एहसास अगर आप किसी के साथ महसूस करते हैं तो वाकई आप खुश नसीब हैं, क्योंकि अगर आज की दुनिया की बात करें, आज की भागती दौड़ती दुनिया की बात करें ना, तो हमारे पास बात करने के लिए बहुत से माध्यम है, लेकिन दिल से बात करने का समय जो है ना वो कम होते जा रहा है। हम हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं लेकिन कई बार खुद से ही कट जाते हैं। ऐसे दौर में निदा फारसी जी की रचनाएं हमें रुकने को कहती हैं, थोड़ा सोचने को कहती है और थोड़ा महसूस करने को कहती है। आज जब लोग सफलता की दौड़ में भाग रहे हैं, उनके शब्द हमें सिखाते हैं कि रास्ते में पीछे मुड़कर भी देख लेना चाहिए, शायद कोई तुम्हारा अपना इंतजार कर रहा हो। वैसे ना जिंदगी सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि केवल सफल होना ही जिंदगी का उद्देश्य नहीं है, बल्कि सफलता की यात्रा में हम अच्छे इंसान बने रहे, अपने रिश्तों को ना खोएं, ये भी बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपनी संवेदनाओं को भी ना भूलें, है ना, और अपने अंदर एक इंसान जो है वो जीवित ज़रूर रखें। और बात करें तो जो महान कलाकार होते हैं ना, वो कभी भी दुनिया से जाते नहीं हैं, वो अपनी कला में जीवित रहते हैं। निदा फारसी जी भी अपनी रचनाओं, गीतों और विचारों के माध्यम से हमारे बीच में हमेशा अमर रहेंगे। उनकी कहानी, उनकी लिखने की अगर बात करें तो उसकी सबसे बड़ी ताकत ये थी कि वो थी सादगी। उन्हें मुश्किल बातों को भी ना आसान शब्दों में कहना आता था, जो कि एक वाकई अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बात है। तो बात करते करते इनके बारे में हम कितनी जल्दी उस घड़ी की तरफ आ गए ना, जहाँ ये घड़ी सुई इशारा कर रही है कि हमें कार्यक्रम को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक बहुत ही बेहतरीन पेशकश जो है उनकी रचना में जो है वो आप सुनेंगे।

नीरा फासली उनका नाम केवल शायरी नहीं बल्कि ज़िंदगी को देखने का एक नज़रिया है। विदा लेने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी दोस्तों कि ज़िंदगी में बहुत कुछ पाने की कोशिश कीजिए, लेकिन रास्ते में मिलने वाले लोगों को मत खोइए। बहुत आगे बढ़िए लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलिए। सपने देखिए लेकिन अपनों के साथ मुस्कुराना मत भूलिए, क्योंकि आखिर में हमारे साथ हमारी उपलब्धियाँ नहीं, हमारे रिश्ते, हमारी यादें, हमारे एहसास रह जाते हैं। और इन खूबसूरत एहसासों के साथ मैं ये कहूँगी, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। फिलहाल इस गीत के साथ मैं इस कार्यक्रम को यहीं संपन्न करने की इजाज़त लेती हूँ। आप कहीं जाइए नहीं, जुड़ रहिए हमारे साथ।

0: इस भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रिय तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रजाइल फाइव बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के मौजूदा न्यायाधीश वल्लूरी कामेश्वर राव को पटना उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रविन्द्र वी घुग्गे कलकत्ता उच्च न्यायालय के प्रमुख होंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा और राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार अग्रवाल होंगे। बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अश्विनी कुमार मिश्रा होंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी बनाए गए हैं। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियोंग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid ग्लोबल अंस

जी हाँ बिल्कुल मेहरबाप, आ जाइए हमारे साथ और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे से गीत हैं इस वक्त आपके और हमारे साथ। और कहते हैं ना कि कभी कभी अपने आप को भी वक्त देना चाहिए, कभी कभी नहीं बल्कि रोज ऐसा एक वक्त का, आपको कहूँ कि एक छोटा सा टुकड़ा कहीं निकालना चाहिए जिसमें हम पूरी तरह से अपने आप को वक्त दे रहे हो, किसी और को नहीं, है ना। तो चलिए फिलहाल ये वक्त भी वही वक्त है जब आप प्यारे प्यारे गीत सुन रहे हो और हाँ अपने आप में ही कहीं खो रहे हो। इस खूबसूरत से गीतों के सफर पर आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा।

जिंदगी जो इम्तिहान लेती है ना, वो कभी कभी इतने मुश्किल होते हैं कि ऐसा लगता है कि हम इनमें से निकल ही नहीं पाएंगे, हम इसे पार ही नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा होता है हम हिम्मत खो देते हैं या हम ये सोचते हैं कि शायद अब इसके आगे कुछ नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि जब आगे कुछ नहीं है ना, वहाँ भी एक रास्ता बना होता है और उस रास्ते को हमें खोजना होता है कि उस रास्ते को खोजते खोजते खोजते खोजते फिर हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमें पहुँचना होता है, जहाँ हमारी मंजिल है। लेकिन हाँ, ये इतना आसान नहीं होता जितना कह देना आसान होता है। क्योंकि किसी भी बात के लिए मैं ये कहूँ, ज्ञान बांटना या कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन जब हम उस मुश्किल राह पर चल रहे होते हैं ना और हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता, तो हमें अपने आप को कैसे संभालना होता है ना, ये हमें पता है आपको वक्त भी सिखाता है, हम खुद से भी सीखते हैं और हमें

वक्त भी सिखाता है, और वो जो ईश्वर है ना, वो हमारी डोर थामे हुए है, वो कहीं ना कहीं हमें अपने साथ लेकर चल रहा होता है, हमें बस उस पर विश्वास करना होता है और अपने आप को एक मौका जरूर देना चाहिए अगर आप कितनी भी मुश्किल में घिर चुके हो, है ना। फिलहाल प्यारे प्यारे गीत है और ये खूबसूरत सा गीत आपका कर रहा है इंतजार।

हाथ हम बढ़ाएं, एक हाथ तुम बढ़ाओ, और ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कुछ भी हो सके वो करते चले जाओ, लेकिन हाँ उस कुछ भी

में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें कि हम किसी का दिल दुखाएं, है ना। दिल दुखा तो देते हैं कभी कभी हम गलती से, तो वो तो माफ किया जा सकता है, लेकिन जो ये हम जानबूझ के करते हैं किसी के साथ गलत, या हम ये सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि हमें ना वो ईश्वर देख रहा होता है और वो सब नोट कर रहा होता है कि हमने कहाँ कहाँ गड़बड़ की है, कहाँ कहाँ गलती की है। तो ये बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी ज़िंदगी में ना अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन हाँ, उस कोशिश में ये कहीं नहीं शामिल होना चाहिए कि हम किसी को चोट पहुंचाएं, किसी के दिल को दुखाएं, या कोई ऐसी बात करें जिससे किसी को कोई नुकसान पहुंचे, है ना। क्योंकि ज़िंदगी ना खूबसूरत होगी तभी जब आपकी ना सोच खूबसूरत होगी। क्योंकि हो सकता है कि आपने अपने आसपास देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ वो कहीं ना कहीं तरक्की कर रहे हैं। पर आप जानते हैं कहीं ना कहीं ये एक कुछ समय का ही फेर होता है, और ज़िंदगी में ना ऐसा कुछ होता है कि उनको उनकी किए की जो कहते हैं कि जो उनका किया हुआ होता है ना वो उनके सामने आता है ना। ऐसा आप मानते हैं नहीं मानते ये मानना ना मानना तो आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते हैं ना, तो आप जो देखेंगे ना कि आपकी सोच है ना वो भी अच्छी होती चली जाती है। और अच्छी सोच के लिए ना अच्छा करना ज़रूरी है, ये तो आप जानते हैं। और मैं जानती हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं और जिनकी सोच बहुत अच्छी है, और जो कभी कभी इधर उधर भटक जाते हैं ना, मैं उनसे यही कहूँगी कि भटकिए नहीं, एक राह जो है आसान सी उसको पकड़िए और अपने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाइए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों की ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाइए। क्योंकि ज़िंदगी जो है ना वो काफ़ी अनमोल है, एक बार मिलती है बार बार नहीं मिलती है ये तो सब जानते हैं ना। तो खूबसूरत गीत जो है ना वो इस ज़िंदगी में जब हम सुनते हैं ना, तो और ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है। और गीतों का ना हमारी ज़िंदगी से ऐसा नाता है कि मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने गीतों से प्यार ना किया हो, जिसे संगीत से प्यार ना हो, है ना। आपको है, चलिए फिलहाल ये गीत सुनते हैं।

धीरे मचल है दिले बेकरार। वैसे धीरे धीरे वक्त की रफ्तार के साथ ये जिंदगी की रफ्तार बढ़ती चली जा रही है, और कितने जो पल है ना हमने जिंदगी में बिता दिए, क्या कभी आपने नोट किया है? नहीं किया ना। दिन पल ये सब हिसाब तो हम नहीं लगा पाते हैं, लेकिन हाँ उम्र के हिसाब से हम ये हिसाब लगा पाते हैं कि हमने कितने जो है साल जी लिए हैं और कितने बाकी है, ये तो किसी को नहीं पता है। लेकिन हाँ, हम अपने हर पल को, हर आने वाले पल को कैसे बेहतर बना सकते हैं अपने हिसाब से, ये तो हम जानते हैं, तो हमें वो ज़रूर करना चाहिए। और फिलहाल मैं भी वही कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं और ये प्यारे गीत हमारे साथ हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और प्यारा सा खूबसूरत सा गीत।

गीत सुनहरे कार्यक्रम सुन रहे हैं आप मेरे यानी ज्योति शर्मा के साथ। और वैसे एक बात मुझे लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए, वो ये कि कभी कभी आपको लगता है ना कि आप किसी के साथ गलत कर रहे हैं या किसी के लिए गलत सोच रहे हैं या फिर किसी के लिए गलत भावना रख रहे हैं तो किसी को पता नहीं चलेगा। सबसे पहले तो आप अपने दिल से पूछिए, आपको तो पता है ना कि आप गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, है ना? और अगर गलत कर रहे हैं तो क्या ये गलत करना सही है? नहीं ना, तो फिर क्यों करना है गलत? मेरा ये सवाल रहता है कि क्यों करना है गलत किसी के साथ, क्योंकि आप सोचते हैं ना कि आपको कोई नहीं देख रहा, तो ईश्वर तो देख रहा है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन ईश्वर तो देख रहा है, और वो ही देख रहा है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वो सब हिसाब रख रहा है कि हमने क्या गलत किया है, हमने क्या क्या गड़बड़ी की है। तो अगली बार अगर गलती से भी, वैसे तो मुझे ये यकीन है कि हम कोशिश करते हैं, हम सभी कोशिश करते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने लिए अच्छा करें और साथ ही साथ अपने अपनों के लिए अच्छा करें, लेकिन कभी गलती से भी गलत भावना आती है या हम ये सोचते हैं कि वो इंसान गलत है, उसने ये गलत किया, उसने वो गलत किया, और उसके बारे में गलत सोचते हैं या कभी उसके बारे में गलत करने के बारे में सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि हमें अपने आप को रोकना चाहिए, समझना चाहिए कि अगर कोई गलत कर रहा है ना, तो सबसे पहली बात तो वो अपनी नज़र में गलत है, और दूसरी बात अगर वो गलत कर रहा है ना तो वो इंसान ही गलत हो गया। तो हमें गलत नहीं बनना है, हमें बनना है सही। और मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि हाँ ये सही बनने की दौड़ में हम अपनी ज़िंदगी जीना भूल जाए, नहीं, हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है, लेकिन ये ख्याल रखना है कि हम गलती से भी किसी के दिल को ना दुखाएं, किसी को चोट ना पहुंचाएं, कि जो चोट ऐसी चोट हो जो दिल को लगती है और जिसमें ये लगता है कि हाँ इसने मेरे साथ ये गलत किया, तो ये वाली बात जो है ना वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि कई बार मैं देखती हूँ कि रिश्ते इस तरह ही ख़राब हो जाते हैं कि कोई गलत भावना रखता है, और कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम अपने आप ही कुछ

सोच लेते हैं कि अच्छा उसने हमसे बात नहीं की तो शायद उसकी ये वजह होगी, अच्छा उसने अब मुझे फ़ोन नहीं किया, अच्छा अब उसने मुझे यहाँ नहीं बुलाया या ये बात नहीं की या ये नहीं बताया, और ना जाने क्या क्या सोच लेते हैं। तो ये जो सोच है ना, इसको हम कहीं ना कहीं अपने आप काबू में रख सकते हैं, तो वो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हम रख लेते हैं ना तो बहुत सी मुश्किलें जो है ना वो आसान हो जाती है। फिलहाल जो संगीत है ना वो भी हमारी मुश्किल आसान कर देता है, क्योंकि जब हम कश्मकश में डूबे होते हैं, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा होता, तो एक थोड़ा सा विराम देना चाहिए अपने आप को और अच्छा सा संगीत सुनना चाहिए जो आपकी पसंद का हो, जो आपको पसंद हो। और फिलहाल हमारी कोशिश रहती है कि हम आपके लिए अच्छे अच्छे गीत लाएँ और आप उन्हें सुनें, और हाँ आप भी गुम हो जाएँ इस संगीत की दुनिया में।

सोलियत लैला मजनू शिरी और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

एक धोखे भरी कहानी को किस तरह से इस फिल्म में पेश किया। वाकई बहुत ही अच्छी फिल्म थी उस समय की। और अब घड़ी की सुई जो है वो वक्त बता रही है 1:54 और पूरे 40 सेकंड, और कार्यक्रम जो है वो यही खत्म होने को है। लेकिन फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत है आपके लिए।

0: छोड़कर।
1: वाकई दिल कहाँ भरता है, दिल करता है कि अच्छे अच्छे गीत सुनते रहें, अच्छी अच्छी बातें करते रहें, सुनते रहें, और जो पल अच्छे हैं ना वो कभी ना जाए, ऐसा दिल करता है ना। कभी अच्छी जगह घूम कर आते हैं तो वहाँ की अच्छी अच्छी यादें बन जाती हैं, और उन यादों को याद करते हैं तो ऐसा लगता है कि ऐसी और याद

हम बनाते जाएं और ऐसी और यादों में हम डूबते जाएं। तो खैर, जिंदगी में आप अच्छी अच्छी यादें बनाइए, अच्छे अच्छे ये कहूँ कि आपकी ज़िंदगी में पल लाए, और आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, हमारे साथ भी बने रहें, और अपने लिए थोड़ा सा वक्त ज़रूर निकालें, रुक जाएं इस भागदौड़ वाली ज़िंदगी में, एक थोड़ा सा विराम अपने लिए दिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते रहिए। फिलहाल ये प्यारा सा गीत सुनिए।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 2 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 2:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता

0: ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है। और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्री राम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने स्वस्थ असहमति और विचार विमर्श की संस्कृति के महत्व पर जोर दिया। नई दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स मुख्य न्यायाधीश मंच के अंतर्गत भारत के मुख्य न्यायाधीश ने ब्रिक्स के सदस्य देशों और सहयोगी देशों के प्रतिनिधिमंडलों को संबोधित किया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉ. तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी क्योंग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। बाएं हाथ की स्पिनर श्री चर्नी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 रन देकर 3 विकेट लिए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Harpreet Kaur. Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said, "The world is watching India become the fastest growing major economy." Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 3 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं किरण शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। उन्होंने कहा कि भारत ने नीतिगत गतिरोध से नीतिगत सक्रियता तक का लंबा सफर तय किया है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
2: दुनिया भारत को फ्रजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी।

0: इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज और देश के शिक्षा क्षेत्र दोनों के लिए 100 साल के इस अहम पड़ाव के महत्व पर प्रकाश डाला और संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री

0: सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक मंडल की सिफारिश के बाद 8 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर दी गई है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उप मंत्री डॉक्टर तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुल 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने सेमीफाइनल मुकाबले में मलेशिया के नूर मोहम्मद अजरीन अयूब और टैन वी कियांग को हराया। महिला T20 क्रिकेट एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के सामने जीत के लिए 56 रन का लक्ष्य रखा था। भारत ने 8 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। मौसम विभाग ने सोमवार तक पूर्वोत्तर राज्यों, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi said India's 7.8% quarterly growth amid global uncertainty reflects its economic strength. He said India has come a long way from policy paralysis to policy dynamism. Addressing the gathering at the centenary celebrations of Sri Ram College of Commerce, SRCC, in New Delhi yesterday, Mr. Modi said the world is watching India become the fastest growing major economy. Contrasting past struggles with today's achievements, the Prime Minister emphasized that terrorism has been defeated with armed forces confidently striking enemies in their own homes and peace restored from Jammu and Kashmir to the northeast.
2: Duniya Bharat ko fragile 5 bata rahi thi. Aaj duniya Bharat ko fastest growing major economy banne hue dekh rahi. Abhi hafte bhar mein hi Bharat ki economy ko lekar kai sari positive khabrein aayi. 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी। ये 7.8% की ग्रोथ भी ऐसे समय में आई है जब वेस्ट एशिया का युद्ध चल रहा है।
1: Presenting hard economic data to counter persistent critics, the Prime Minister shared that smartphone exports now exceed 2.5 lakh crore rupees, while domestic defense production has hit an all-time high of nearly 2 lakh crore rupees. Prime Minister said, Sri Ram College of Commerce, SRCC, has given generations of students the opportunity to learn, grow and make a difference over the years. Mr. Modi said, the college has distinguished itself over the years, making a mark for academic excellence. He termed the alumni of SRCC as very special and the OGs. The Prime Minister stated that former Finance Minister Arun Jaitley was an alumnus of SRCC. He said SRCC alumni have left their mark in every sector. President Draupadi Murmu yesterday appointed Dr. Dinesh Sharma as the Lieutenant Governor of the Andaman and Nicobar Islands. A press communique issued by the Rashtrapati Bhavan

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। 3:10 हुए हैं। पेश है गीत गजल कार्यक्रम आपके साथ, मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ, जगजीत सिंह की आवाज में।

0: अच्छा तुम ये तो गाओ।
1: तेरे नैना
2: तेरे नैना तेरे।
0: तुम ऐसा करो ये गाओ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। चार बज चुके हैं, प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। आइए अब सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत के अंतर्गत गुट्टू वाद्ययम उषा विजय कुमार की प्रस्तुति रागम चारु इसी में।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद मास की 15वीं तिथि। तदनुसार 6 सितंबर सन 2026। श्रोताओं, सुबह के 4:56 और ठीक 15 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हम अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम आप कब सुन सकते हैं। 5 बजे होंगे हिंदी में समाचार और 5:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 5:10 का समय आओ यों करे कार्यक्रम का है, जिसके

5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत कार्यक्रम और 5:30 का समय स्वर रंजनी कार्यक्रम का है। हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी हिंदी समाचारों के साथ 6:00 और 6:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का है और 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन कार्यक्रम। रामचरितमानस से पाठ अयोध्या भाग कांड भाग 40 आप सुन सकते हैं 6:45 पर और 6:55 पर संस्कृत समाचार प्रसारित किए जाएंगे। श्रोताओं, आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये थी संक्षिप्त जानकारी। प्रातः के 5:00 को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की सकल घरेलू उत्पाद दर में 7.8% की तिमाही वृद्धि उसकी आर्थिक मजबूती को दिखाती है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया भारत को सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनते हुए देख रही है।
1: दुनिया भारत को फ्रेजाइल 5 बता रही थी, आज दुनिया भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनते हुए देख रही है। 7.8% क्वार्टरली ग्रोथ ने देश का जोश बढ़ाया है और इसी बीच जापानीज क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड कर दी है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कॉलेज के संस्थापक श्रीराम को श्रद्धांजलि दी और उनकी दूरदर्शी सोच को नमन किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर दिनेश शर्मा को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। राष्ट्रपति भवन की एक प्रेस विज्ञप्ति में इसकी जानकारी दी गई। डॉक्टर शर्मा रिटायर्ड एडमिरल देवेंद्र कुमार जोशी की जगह लेंगे, जो अक्टूबर 2017 से द्वीप समूह के उपराज्यपाल के तौर पर काम कर रहे थे। डॉक्टर शर्मा अभी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद हैं और राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही विकसित भारत का संकल्प पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालय में नगण्य ड्रॉपआउट दर शिक्षकों के प्रयासों के कारण ही संभव हो पाई है। जगदलपुर स्थित राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की विशेष अदालत ने झीरम घाटी माओवादी हमले के सभी 10 आरोपियों को विभिन्न आरोपों में दोषी ठहराया है। इस मामले में कुछ 11 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया, जिनमें से एक की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। अदालत ने 2 महिलाओं सहित सभी 10 आरोपियों को 29 लोगों की हत्या और 15 अन्य की हत्या के प्रयास का दोषी पाया। विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 4 दिन की यात्रा पर सऊदी अरब के रियाद पहुंच गए हैं। श्री सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सऊदी अरब में भारतीय राजदूत विपुल और सऊदी अरब के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के उपमंत्री डॉक्टर तारिक अल हमाद ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड ने जयपुर के ION डिजिटल जोन सीतापुरा परीक्षा केंद्र के प्रभावित उम्मीदवारों के लिए कल NEET PG 2026 की परीक्षा आयोजित की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि जयपुर में 5 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष

और पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई और बिना किसी परेशानी के संपन्न हुई। इससे पहले पिछले महीने की 30 तारीख को राजस्थान के जयपुर में परीक्षा केंद्रों पर बिजली की आंतरिक समस्या के कारण 2,445 उम्मीदवारों की परीक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। लग्जमबर्ग के उपप्रधानमंत्री जेवियर बेटेल भारत के 3 दिन के दौरे पर कल भारत आएंगे। इस दौरान वे दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार वे चेन्नई भी जाएंगे और IIT मद्रास के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी शौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। आज हम चर्चा करेंगे गैस्ट्राइटिस, गलत खान पान, शारीरिक श्रम की कमी होना, तनाव आदि हमारे जीवन शैली में इस तरह घर कर गए हैं कि ये हमारे लिए तमाम तरह की बीमारियों की जड़ है। और गैस्ट्राइटिस भी ऐसी ही समस्या जो किसी भी उम्र के व्यक्ति के लिए परेशानी का सबब बन गई है। परंतु आप सेहतमंद डाइट और योगासनों को जीवन शैली का हिस्सा बनाएंगे तो आप गैस्ट्राइटिस की समस्या से काफी हद तक निजात पा सकते हैं। इस कड़ी में मैं आपको आज पवन मुक्तासन के बारे में बताऊंगी जो आपको काफी हद तक गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम से छुटकारा दिला सकता है। तो आइए सीखते हैं कि किस प्रकार आप पवन मुक्तासन करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों घुटनों को मोड़े, श्वास छोड़ते हुए दोनों घुटनों को अपने वक्ष स्थल के ऊपर लेकर आए, श्वास भरते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करें, आपस में फंसाएं और अपने पैरों को पकड़ लें। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर की ओर उठाएं जब तक आपकी ठुड्डी घुटनों से ना लगे। कुछ समय तक इस स्थिति में बने रहें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन के नाम से जाना जाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आए, श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को भी जमीन पर ले आए। अभ्यास के अंत में शव आसन में कुछ क्षण के लिए विश्राम जरूर करें। यह अभ्यास कम से कम 3 से 4 बार अवश्य दोहराएं, तभी आप इसका परिपूर्ण रूप से लाभ उठा पाएंगे। इस आसन में कुछ सावधानियों को ध्यान से करें, जैसे पैरों की गतिविधियों के अनुसार ही श्वास पर श्वास को एक लय में लाएं, घुटनों को नासिका से स्पर्श करते यानी घुटनों को नाक से स्पर्श करते हुए यह अनुभव करें कि कमर में

आपके किस हिस्से में खिंचाव महसूस हो रहा है। यह आसन कब्ज की बीमारियों को दूर करने में सहायक है और हमारी पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। कुछ हद तक कमर की मांसपेशियां, कमर के लिगामेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी को भी बढ़ाता है। तो आज हमने सीखा कि गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम के लिए आप पवन मुक्त आसन का अभ्यास किस प्रकार कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमानी शौखंद, आपकी योग विशेषज्ञ। आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन बताऊंगी जिसका नाम है सेतुबंध आसन। सेतुबंध शब्द का अर्थ है सेतु का निर्माण। इस आसन में शरीर की आकृति बिल्कुल सेतु की अवस्था का रूप ले लेती है, इसीलिए इस आसन को सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। सेतुबंध आसन के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लाएं, जितना पॉसिबल हो सके अपने हिप जॉइंट्स के पास लेकर आएं, यानी नितंब के पास लेकर आएं। अब हाथों से पैर के टखनों को मजबूती से पकड़ें और घुटनों और पैरों को एक सीध में रखने का प्रयास करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपने नितंब और धड़ को ऊपर की ओर उठाएं और एक पुल नुमा आकृति बनाएं, यानी एक ब्रिज बनाने का प्रयास करें। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड कम से कम रुकने का प्रयास करें। ध्यान रहे, इस अवस्था में आपका श्वास पर श्वास की क्रिया सामान्य बनी रहे, यानी आपको ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करना है, सामान्य श्वास लेते रहना है। 10 से 30 सेकंड तक इस स्थिति में रुकने के बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस अपनी स्थिति में आ जाएं और शव आसन में लेटकर शरीर को शिथिल छोड़ दें। दोस्तों, 10 से 30 सेकंड तक रुकना, इस आसन को करने के बाद जब आप शव आसन में लेटे तो आंखें बंद करके अपने शरीर पर ध्यान दें और उसमें होने वाले बदलाव को भी महसूस करें। धीरे धीरे जब आप यह निरंतर यह अभ्यास करते हैं तो आप रुकने की जो टाइम पीरियड होता है, यानी 10 से 30 सेकंड का जो समय है, उस समय को भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी एक मिनट तक भी आप उस स्थिति में रुक सकते हैं। इस आसन को आप कम से कम 3 से 4 बार अवश्य करें। सेतुबंध आसन की स्थिति में कम से कम 10 से 30 सेकंड रुकने का भी प्रयास जरूर करें। अगर आप 10 से 30 सेकंड इस स्थिति में आराम से बने रह सकते हैं तो आप अपने समय को बढ़ाकर 1 मिनट तक भी कर सकते हैं, यानी इस आसन को आप 1 मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रहे, यह आसन करते समय अंतिम अवस्था यानी फाइनल पोज में आपके कंधे, गर्दन और सिर जमीन से लगे होने चाहिए, और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में आप अपने कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। और यदि जरूरत हो तो फाइनल पोज में भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कमर ऊपर नहीं उठा पाते, तो आप अपने हाथों का भी सहारा ले सकते हैं, अपनी कमर पर हाथ रखकर भी अपने शरीर को ऊपर की ओर उठा सकते हैं। यह आसन न केवल कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है बल्कि चिंता को भी कम से कम करने में सहायक है। उदर यानी पेट के अंगों में भी कसावट लाता है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है उससे भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको कुछ सावधानियां भी बताती हूँ। यदि किसी व्यक्ति को हर्निया या कोई रिसेंटली पेट की सर्जरी हुई है तो इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आज आपने सीखा कि किस प्रकार आप सेतुबंध आसन कर सकते हैं और किस प्रकार आप इस आसन का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कमर की मांसपेशियों में मजबूती, कब्ज को कम करना, पेट के अंगों में भी मजबूती लाना, अपनी पाचन शक्ति को बढ़ाना और तनाव को भी ये काफी हद तक कम करता है। आखिर में आपसे मैं फिर कहूंगी, प्रतिदिन करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद।

श्रोताओं, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर प्रातः के 5:20 और ठीक 36 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश भक्ति गीत।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

आइए अब सुनते हैं स्वर रंजनी कार्यक्रम में गिटार पर अजय पी झा का राग नट भैरव में प्रस्तुतिकरण।